0: लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्त बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
3: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
5: उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
3: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
6: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
3: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है, यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
7: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए, हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास को सफल होने वाला नहीं।
3: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है, 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
8: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। गाली देते
3: हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है, क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
9: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है, 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सुबह 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
3: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुप जाता है।
10: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
11: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
12: काल सद्या ह्यांचं मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। अरे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी, आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
3: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है।
13: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया ये हादसा?
14: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर्स है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव्ड डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है, वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था वो इंटैक्ट है और वो अभी ना बाकी जो हुआ उसके लिए विल हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन विल हैव टू कम विद सम स्ट्रॉन्ग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट।
3: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। आईआईटी बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टानें गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।
0: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था। 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन ये पहाड़ कूड़े का था। ये प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है। 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़कर निकल जाते हैं।
3: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा। कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है। चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है। सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर एनडीआरएफ की टीमें लग जाती। यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है। इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप एनडीआरएफ के लोगों से समझिए।
15: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली जिसमें से 1 निकाली है। एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं।
16: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है।
3: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं? जवान
16: पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
3: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
17: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
18: देखो ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
3: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
19: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
3: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
17: पूछताछ की जाएगी इस मामले में।
18: देखो अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
17: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक की डेथ हुई है ऐसा दमकल विभाग का कहना है। तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
18: नहीं देखो, जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
3: बस यहां गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
0: सूरत यानी कि गुजरात की डायमंड सिटी, जहां इतनी बारिश पिछले 3 दिन में हुई है कि दावा यह किया गया कि दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है, और जब पानी सूरत में उतरा तो लोगों को बहुत नुकसान का पता चला।
3: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, पर ये वही पुदार आर्केड है जहां पे पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया था।
20: यहां पे ये गुजरात का सबसे बड़ा मोबाइल हब है और यहां पे नए शोरूम है, रिपेयरिंग है, सेकंड हैंड वाले भी है, और ये एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था, आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
21: 5 दुकान लाइन में अपना होलसेल का काम था, होलसेल में आपको पता होगा कि बहुत सारा स्टॉक होता है, सब प्रीमियम और ब्रांडेड चीज अभी आई थी माल अपने पास, 20 से 30 कार्टून आए थे और पुराना भी माल बहुत डिस्प्ले करा हुआ था। टोटल आश्रे 1.5 से 2 करोड़ का हमारा नुकसान है टोटली, अभी कोई भी प्रशासन हमको कोई जवाब नहीं दे रही है।
3: जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहां जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ 2 फ्लोर गोडाउन है और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे।
22: रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत के भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा है, ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन 1000 दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है, और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है।
0: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है, दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हॉर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुस्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हॉर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हॉर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले, एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है। तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy. To be honest with you, they're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें, तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अफ्तेके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हॉर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हॉर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है, यहां पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुंचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहां पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहां हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज़ से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है। यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केश्म द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है, मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज़ को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज़ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज़ की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज़ पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज़ पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज़ पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या यह समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चौगादक दहला, अमेरिका ने हमलों से किया इनकार, मशहद में आयतुल्ला खामनेई सुपुर्दे खाक। चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे चंपत राय को झटका, अनिल मिश्रा गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद, अनुकल्प की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरी कार भी बरामद की। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पीएम मोदी बिग बैश लीग मैच का करेंगे ऐलान, मेलबर्न में बोले पीएम मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, न्यूजीलैंड के लिए आज होंगे रवाना।

0: देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और 6 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बताएंगे, ईरान में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनी गई है। बुशहर, कोनारक, इन तमाम शहरों के साथ साथ कई और शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। दूसरी खबर यह कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया है, तो आखिर हमले हुए कैसे, हमले किए किसने? इसके अलावा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत में होने वाले बिग बैश लीग के मैच का ऐलान करेंगे। अगली खबर, चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे हैं चंपत राय। अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी को अब बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा गुरुग्राम की भी खबर दिखाएंगे, जहां देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। तो शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे चल रहे तनाव की। ईरान की समाचार एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से यह हमले की जानकारी दी है। ईरान में धमाके सुने गए हैं। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक दक्षिणी ईरान के बुशहर और चोगादक इलाके में धमाके हुए हैं। एजेंसी के मुताबिक बुशहर और चोगादक में कुल 6 धमाके सुने गए हैं। बुशहर प्रांत के आसपास भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। मेहर ने कोनारक शहर में भी 3 धमाकों की खबर दी है। कुछ तस्वीरें भी उन इलाकों से आई हैं और उसके बाद को बता दिया, लगातार दूसरा दिन है। इसके पहले कल सुबह भी इसी तरह के धमाके सुनाई दिए थे, जब बंदर अब्बास से लेकर के केशम और उसी के अलावा चार्क आइलैंड पर भी हमले हुए थे। और आज 2 और शहरों में हवाई हमले, जिनकी जानकारी आ रही है। ईरानी न्यूज एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं कि इन जगहों पर धमाके सुने गए हैं। बुशहर और चोगादक वो इलाके हैं जहां पर ये धमाके सुने गए हैं। और इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर यह है, दरअसल ईरान और अमेरिका के जंग को लेकर के, कि ईरान की सरकार एजेंसी ने यह भी कहा है कि इरना में बंदर अब्बास में भी धमाकों की खबर, जिसका उन्होंने खंडन कर दिया है। ईरान न्यूज एजेंसी ये कह रही है कि बुशहर शहर के पहाड़ी इलाके में एक सैन्य ठिकाने पर अमेरिका और इजराइल के प्रोजेक्टाइल से हमले हुए हैं। यानी उन्होंने प्रोजेक्टाइल की दिशा को देखा है और उस कैलकुलेशन से उनका यह दावा है कि बंदर अब्बास में धमाके नहीं हुए हैं लेकिन बुशहर में हुए हैं और बाहरी इलाकों में मिसाइलों से हमले हुए हैं, प्रोजेक्टाइल से हमले हुए हैं। ईरान एजेंसी ये कह रही है कि ये हमले अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हैं। यानी उन्होंने मिसाइल के इनकमिंग को ट्रेस किया है और उसके बाद ये दावा किया है कि ईरान पर यह हमला अमेरिका और इजराइल का कोऑर्डिनेटेड अटैक है। वहीं ईरान पर नए अमेरिका के हमलों का इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया है। इसके पहले कल सेंट्रल कमांड ने औपचारिक रूप से माना था कि हमला किया गया है। हॉर्मुज में हो रही जहाजों पर हमले के बदले में कार्रवाई की गई, लेकिन अब अमेरिका की ओर से यह कहा जा रहा है कि आज जो हमला ईरान पर हुआ है उसमें अमेरिका का हाथ नहीं है, ये हमले अमेरिका ने नहीं किए हैं। वहीं मध्य पूर्व के तमाम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस बार ये हमला संभवतः मिडल ईस्ट के यानी खाड़ी के देशों का ये कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है। तो क्या इसमें कतर, कुवैत, बहरीन शामिल है? हमारे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, अमेरिका ने कहा है कि आज का हमला उसका नहीं है, ईरान ये कह रहा है कि उन्होंने प्रोजेक्टाइल जो देखे हैं संभवतः उसे ट्रेस किया है जो कि अमेरिका और इजराइल द्वारा हो सकता है। तो अगर ईरान पर हमले हुए हैं, क्या मिडल ईस्ट के जो विशेषज्ञ हैं जो कह रहे हैं कि संभवतः इस बार कुवैत, बहरीन, कतर, ये इन्होंने मिलकर के कॉपरेशन किया है, क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने?
1: अभी तक तो फिलहाल जानकारी ना ही तो खाड़ी के किसी देश की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई हमला ईरान पे किया है या ईरान किसी शहर पे किया है, लेकिन इतना जरूर है कि एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के कई शहरों में यूज किया गया, चाहे बंदर अब्बास हो चाहे फिर वो बुशेरा हो। तो जाहिर है कि अगर कुछ डिफ्यूज करने की बात ईरान कर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल्स या ड्रोन तो आए होंगे उन इलाकों की ओर। दरअसल यहाँ पर एक प्लेयर पिछले 3 दिन के दौरान, जो 3 दिन से लगातार हमले हो रहे थे, 2 तो अमेरिका की तरफ से किए गए, लेकिन माना जा रहा है और जो ईरान का भी दावा है कि इजराइल की तरफ से किसी युद्धपोत की से ये मिसाइल जो है दागी गई हैं इन खासतौर बुशेरा शहर की तरफ। तो जाहिर है कि शायद कहीं ना कहीं इसराइल की तरफ, जो क्योंकि इसराइल सबसे ज्यादा खलता है ईरान को और उनको ये भी पता है कि जो युद्ध है सब कुछ

0: तरफ से ही जो है प्लांट भी किया गया और एग्जीक्यूट भी किया गया। तो और पिछले कुछ दिनों के दौरान इसराइल ने धमकी भी दी थी कि अभी बाकी है ईरान के साथ इसराइल का हिसाब। तो ये काफी महत्वपूर्ण मामला है।
1: ठीक है अशरफ, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे इस खबर के बाद। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो है दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। आधी रात को बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में दीपक नांदल गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए हैं, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आधी रात को हुए इस एनकाउंटर में करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। इसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठा दीपक नांदल गुरुग्राम के एक व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकी दे रहा था। एक्सटॉर्शन कॉल के बदले पुलिस ने उसे ट्रेस किया, जिसके बाद उसके शूटरों ने कल व्यापारी के घर पर फायरिंग की। पुलिस ने सभी बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई की पुलिस ने, जिसमें 4 बदमाश ढेर हो गए, एक घायल हो गया। इनके पास से 5 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। ये दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सुशांत लोक में आधी रात को बड़ा ऑपरेशन किया गया, एक एनकाउंटर हुआ है और बदमाश इसमें मारे गए। एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हुए हैं, एक घायल हुआ है, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। दीपक नांदल गैंग था जो कि एक्सटॉर्शन कॉल एक स्थानीय व्यापारी को दे रहा था, पैसे वसूलने की भी कोशिश की। पुलिस ने इसे ट्रेस किया और उसके बाद एक पूरा ऑपरेशन सेट किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। रिकवरी में ऑटोमेटिक वेपन्स भी इनके पास से बरामद हुए हैं। सुशांत लोक में आधी रात को ये एनकाउंटर हुआ है।
2: गुरुग्राम के सुशांत लोक में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। दोनों के बीच तकरीबन 25 से 30 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी थी, जिसमें 4 बदमाश गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की फायरिंग में ढेर हुए हैं। 5 बदमाशों को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे चार को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मैं इस वक्त इसी सुशांत लोक में मौजूद हूं। आप साफ तौर से देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मामले की तफ्तीश जारी है। दरअसल 9:30 बजे के करीब क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली थी कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में 4 से 5 हथियारबंद बदमाश गुरुग्राम के प्रमुख व्यवसायी के घर पर फायरिंग करने वाले हैं। जैसे ही क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली, क्राइम ब्रांच ने इस पूरे इलाके में बैरिकेटिंग की थी। उसके बाद इन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा था और जैसे ही गुरुग्राम पुलिस की टीम को सूचना मिली कि ये बदमाश यहां पर पहुंचे हैं और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, वैसे ही तमाम क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और दोनों के बीच में आमने सामने की फायरिंग हुई, जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी थी, 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक बदमाश को गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 3 क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों को भी गोली लगी है, जिन्हें की गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 बदमाश गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर्स बताए जा रहे हैं।
1: हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पूरी जानकारी दीजिए, एक तो ये ट्रेस कैसे हुआ, पुलिस को कैसे पता चला और उसके बाद ये कॉल थी ये, क्योंकि 4 बदमाश मारे जाते हैं, 3 पुलिसकर्मी, यानी अपने आप में बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है।
0: बिल्कुल, पूरी तैयारी थी। आप देखिए, चूंकि जब से व्यापारी के पास कॉल आई थी और उसको धमकी दी गई थी, उसके बाद से पुलिस दीपक नांदल से जुड़े जितने भी शूटर हैं या जो भी उसके कांटेक्ट में जो भी बदमाश थे, उनको ट्रैक करना पुलिस ने शुरू कर दिया था। और इसी के दौरान पुलिस को इन बदमाशों के, जो 5 बदमाश हैं, इनके छिपे होने का जानकारी मिली थी। क्योंकि देखिए, मामला इस बार बड़ा था और पुलिस ने पिछले कई समय से देखा था कि किस तरीके से फायरिंग की वारदात थी, लोगों को धमकी देने के बाद घर के बाहर फायरिंग कर दी जा रही थी। तो इसके बाद पुलिस एकदम एक्शन मोड में आ देखिए, और जो ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की तरफ से कहना है कि उन्होंने बदमाशों को पूरी तरीके से सरेंडर करने का एक मौका दिया था, लेकिन जो बदमाश थे उनके पास से जो बरामदगी हुई है, आप वो भी देखिए, काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके पास से मिले हैं, जो मौका वारदात में मिले हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जैसे ही बदमाशों को घेरा और उनको सरेंडर करने के लिए कहा, और पुलिस उनको जैसे ही लगा कि पुलिस मौके पर मौजूद है, बदमाशों ने तुरंत गोली चलाई। अब चूंकि रात का वक्त भी था, पुलिस का कहना है कि उनको लगा कि वो अंधेरे का फायदा उठा के भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस आसपास की जगह पे जो भी जगह होती है पूरे इलाके में उन्होंने ट्रैप लगा के रखा हुआ था, उनको भागने का मौका नहीं मिला, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की।
1: ठीक है मांझू, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मधु विहार में खबर आ रही है जहां देर शाम पूरा इलाका अंधाधुंध गोली चली है। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल गया। शुभम बैंक्वेट हॉल पर करीब 10 से 15 लोगों ने गोलियां चलाई। फायरिंग के दौरान एक महिला के पैर में गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय कैब में महिलाएं भी वहां मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि शुभम बैंक्वेट हॉल पर कब्जा करने के लिए फायरिंग की गई। चश्मदीदों के मुताबिक 10 से 15 राउंड गोलियां चली हैं। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई और जब जानकारी मिली तो पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। घटना की छानबीन की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस समय मौके पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था जिसके सामने पूरी घटना हुई है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक महिला के पैर में गोली लगी है।
3: जब हम पे ओरिजिनल पेपर लिखे क्लियर हो गया कि बैंक टीनी का है, उन्होंने तो अनलीगल तरीके से पेपर बनवा रखे थे, तो जब उनको लीगल तरीके से नहीं हुआ वो हमें वो कर पाए फाइट, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया, उन्होंने गन फायरिंग करी है।
1: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। हिमांशु, देश की राजधानी में 10 से 15 राउंड गोली चला के अपराधी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, डर तो है ही नहीं बिल्कुल कानून व्यवस्था पुलिस का।
0: और ये भी सब देखिए, क्योंकि कोई अचानक से छिप कर गोली चलाए तो उसका बंद दे दिया जाता है। अच्छे से पहचान है, सबको पता है कि गोली चला रहे हैं, वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन कोई डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जानकारी मिली है कि जो दो पक्ष है, जो बैंकेट हॉल को लेकर के जो लड़ाई चल रही है, जो विवाद चल रहा है, दोनों पक्षों को बिठा करके शाम में ही कल आपस में समझाने की कोशिश की गई थी और एक तरीके से एक आपस में बात करके समझौते वाली बात थी, लेकिन समझौता हुआ नहीं। और रात के वक्त ही उसमें से एक पक्ष जो आता है उनमें एक युवक अचानक से पिस्टल निकालता है और उसने गोली चलानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो महिला थी उसके पैर को छूते हुए गोली निकली और गनीमत रही कि बाकी किसी और को गोली नहीं लगी। जब महिला के
1: ठीक है मांझू, पूरी घटना पर नजर बनाए रखें। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मधु विहार में इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे चंपत राय को एक और झटका लगा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय की डिजिटल आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। अब चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी दर्शन वाली पास बनाने वाली आईडी बंद कर दी गई है। अब ये लोग वीआईपी आईडी नहीं बना पाएंगे। इनकी आईडी से कोई पास भी जारी नहीं होगा। सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास, ये दो वीआईपी, सोच लीजिए भगवान का मंदिर है लेकिन यह वीआईपी पास बनते हैं। और वीआईपी पास कौन बनाते हैं? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये वो लोग हैं। ये बाकी हमारे और आप जैसे सामान्य लोग घंटों लाइन में खड़े रहेंगे तब नंबर आएगा। ये वो लोग थे जो पास बनाते थे। अब इनकी डिजिटल आईडी बंद कर दी गई है। सभी ट्रस्टियों के नाम की आईडी सिस्टम में बनाई जाती है, जिसके अनुसार अब सूत्र ये कह रहे हैं कि यह फैसला कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन की अध्यक्षता वाले नए प्रशासन ने लिया है। अब वहां नए प्रशासक आ गए हैं। पहले जिनके रिकमेंडेशन पर जो श्रद्धालु आते थे उनकी आईडी से सुगम दर्शन, विशिष्ट दर्शन पास बनाए जाते थे। टिन्नू यादव इसी सिस्टम का फायदा उठाकर सैकड़ों पास जारी करवा चुका था। सोचिए भगवान के दरवाजे पर अगर ये वीआईपी पास वाली व्यवस्था बंद हो जाए तो सारे भक्त एक जैसे हो जाएंगे ना। भगवान के लिए तो सब एक जैसे हैं। बहरहाल बात करेंगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी सनातनी सब जो लड़ाई है उसे साबित करने की। कौन बड़ा सनातनी है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो तो सनातनी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च हो रहा है वो समाजवादी पार्टी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च होता था। इन सब के बीच वफ को लेकर भी खींचतान बढ़ रही है। यूपी में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं तो बस दंगल शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट।
4: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
5: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
6: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्त बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
5: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
6: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
7: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
6: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
8: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आज़ादी हमें दी गई है, यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
6: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी CEO होता है, यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा 2 मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
9: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए, हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं।
6: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है, 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: अब आपको लगेगा यूपी के चुनाव हैं तो कोई बात करेगा सड़कों की, इंडस्ट्री की, काम की, आपके नौकरी की। फिलहाल तो चलिए बाबर आजम, यही सब चल रहा है। बहरहाल बारिश इस वक्त मौसम में एक अपराधी बन गई है। बारिश अपराधी नहीं होती है, लेकिन बन गई है। वो इसलिए क्योंकि हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकड़ा किस पर फोड़ती है? बारिश पर। वो अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली हाल ही में किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, तो सवाल उठा कि आखिर जिसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया गया, वहां आखिर खामियां क्या है? जब सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
10: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं
11: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
12: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक पर है 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इसका ठप है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
11: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
13: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
14: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
15: काल सद्या मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। वारे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी, आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
11: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है।
16: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया ये हादसा?
17: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है, वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट।
11: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। आईआईटी बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।
1: अब ये फडणवीस साहब को कौन समझाएगा कि सिस्टम की आलोचना, सरकार की आलोचना, सवाल करना उस राज्य या राष्ट्र के खिलाफ नहीं होता। सरकार और देश अलग चीजें होती हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
19: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
21: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
22: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
23: शुक्र की कौन सी राशि व्यक्ति को जिद और क्रोध देती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बड़े उदार होते हैं? और शुक्र की कौन सी राशि शनि को बहुत प्रिय है? शुक्र की कौन सी हैं राशियां और क्या है उनकी विशेषताएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।
19: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
21: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
22: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
18: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
24: May I have your attention, please?
25: College shouldn't waste your time or your money. That's why WGU's programs are built with input from industry experts and updated regularly. So what you learn is what employers need right now. Practical skills, recognized certifications, real-world relevance that opens doors. Get an education that actually delivers. It's one that prepares you for the career you're chasing today and the opportunities that will shape your tomorrow. Learn more at wgu.edu.
19: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
26: No.
27: Oh, no.
28: Welcome to Get Real.
26: I got something to say.
28: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
27: Oh, my God.
26: It's got to be deliciously desperate.
27: Why would you
0: do these girls forgive him?
2: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo bloody hoo.
28: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
0: Love runs deeper than we know.
28: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

लेकर चौगादक दहला। अमेरिका ने हमलों से किया इनकार। मशहद में आयतुल्ला खामनेई सुपुर्दे खाक। चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे चंपत राय को झटका। अनिल मिश्रा, गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। अनुकल्प की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरी कार भी बरामद की। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को मिला इनाम। उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार। कल ही पार्टी में शामिल हुए सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पीएम मोदी बिग बैश लीग मैच का करेंगे ऐलान। मेलबर्न में बोले पीएम मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत। न्यूजीलैंड के लिए आज होंगे रवाना। लगातार तीसरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से हराया। एम्बापे मेसी की बराबरी की सबसे ज्यादा 8 गोल दागे।

0: उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। ऋषिकेश, हरिद्वार, चीला रोड पर लगातार बारिश के कारण बीन नदी उफान पर है। तेज बहाव के बीच स्कूटी सवार फंस गया। स्थानीय लोगों ने एक शख्स को बचाया। नैनीताल में फिर फिसली पहाड़। एक साल तक कोई काम नहीं हुआ। मानसून लौटते ही लोगों पर अब खतरा मंडराने लगा है। सूरत में लगातार हो रही बारिश जानलेवा बन गई। अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। नदी के पानी में क्रेन और डंपर के ड्रोन डूबे। वीडियो से सामने आई तस्वीरें। बिजनौर में भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई। घरों में पानी घुस गया। लोगों की मुसीबत बढ़ गई। गोंडा में थोड़ी सी बारिश से ही शहर में जलभराव होने लगा। हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम की काम की पोल खुल गई। मानसून में मूसलाधार बारिश में भारतीय सेना ने कमाल दिखाया। दूधिया स्थित बालासन नदी पर 20 दिनों में 34 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया। हिमाचल में मूसलाधार बारिश। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। आगामी 12 से 18 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सड़कें डूबी है। ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ा है। लोगों को परेशानी हो रही है। आज भी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी मानसून बारिश के बाद दिल्ली के अलीपुर इलाके में सड़कें जलमग्न हो गई। जलभराव के बीच कई गाड़ियां फंसी रही। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश और बिजली से अब तक 7 लोगों की मौत। पूर्वी यूपी के लिए आज भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम यूपी के लिए कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। कई शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंदन मार्ट मॉल की बाउंड्री वॉल गिर गई। पास की सड़क कई फीट नीचे धंस गई। गाजियाबाद में भारी बारिश से जल भरा हुआ वैशाली सेक्टर 3 में सड़कें तालाब बन गए। रिहायशी इलाकों के घरों में पानी घुसा। इंदिरापुरम में जलभराव के बीच करंट उतरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे। प्रयागराज में पहली बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई। सिविल लाइन समेत कई इलाकों में जलभराव हुआ। सड़कें तालाब बन गई। सहारनपुर में झमाझम बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर भरे पानी में स्विमिंग करते नजर आए बच्चे। मेरठ में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सड़कों और गलियों में 2 फीट तक पानी भरा। आम जनजीवन से काफी प्रभावित हुआ। मुजफ्फरनगर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते जनजीवन ठप पड़ गया है। रिहायशी इलाकों समेत मंदिर परिसर में पानी भरा। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी। आगरा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन व्यस्त हुआ। कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। सीवर ओवरफ्लो के कारण घरों में गंदा पानी घुसा। 200 परिवार घरों में कैद हो गए। सहारनपुर में उफनती नदियों में कई बाइक सवार बह गए। ग्रामीणों ने महिला समेत 3 लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी बैंड के पास भारी मलबा आने से नेशनल हाईवे 707 बंद हुआ। यातायात प्रभावित। रास्ता खोलने में प्रशासन जुटा है। विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खौफनाक वीडियो सामने आया है। सड़क पर मलबा आया। बाल बाल बचे लोग। धौलपुर में भी भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई। आफत वाली बारिश में भरभरा कर 2 मंजिला मकान गिर गए। परिवार के 6 लोग घायल हुए। केरलम के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन पुनर्विकास कार्य के दौरान 100 साल से ज्यादा पुराना घंटाघर ढह गया। कोई हताहत नहीं। सूरत यानी गुजरात की डायमंड सिटी, जहां इतनी बारिश पिछले 3 दिन में हुई है कि यह दावा किया जा रहा है कि दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। जब पानी सूरत में उतरा तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ। शहर की सूरत ही बदल गई।
1: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। पर ये वही पुदार आर्केड है जहां पे पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया था।
2: यहां पे ये गुजरात का सबसे बड़ा मोबाइल हब है और यहां पे नए शोरूम है, रिपेयरिंग है, सेकंड हैंड वाले भी है और ये एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है। तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था। आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
3: 5 दुकान लाइन में अपनी अपना होलसेल का काम था। होलसेल में आपको पता होगा कि बहुत सारा स्टॉक होता है सब प्रीमियम और ब्रांडेड चीज अभी आई थी माल अपने पास, 20 से 30 कार्टून आए थे और पुराना भी माल बहुत डिस्प्ले करा हुआ था। टोटल आश्रे 1.5 से 2 करोड़ का हमारा नुकसान है टोटली। अभी कोई भी प्रशासन हमको कोई जवाब नहीं दे रही है।
1: जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ 2 फ्लोर गोडाउन है और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे।
4: रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत की भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा है ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन हजार एक दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है। और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है।
0: एक बड़ी खबर आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की आधी रात को बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में दीपक नांदल गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आधी रात को हुए इस एनकाउंटर में करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई, इसमें 3 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसकी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठा दीपक नांदल गुरुग्राम के एक व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकी दे रहा था।
5: गुरुग्राम के सुशांत लोक में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। दोनों के बीच तकरीबन 25 से 30 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी थी, जिसमें 4 बदमाश गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की फायरिंग में ढेर हुए हैं। 5 बदमाशों को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे चार को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मैं इस वक्त इसी सुशांत लोक में मौजूद हूं, आप साफ तौर से देख सकते हैं। गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मामले की तफ्तीश जारी है। दरअसल 9:30 बजे के करीब क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली थी कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में 4 से 5 हथियारबंद बदमाश गुरुग्राम के प्रमुख व्यवसायी के घर पर फायरिंग करने वाले हैं। जैसे ही क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली, क्राइम ब्रांच ने इस पूरे इलाके में बैरिकेटिंग की थी, उसके बाद इन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा था। और जैसे ही गुरुग्राम पुलिस की टीम को सूचना मिली कि ये बदमाश यहां पर पहुंचे हैं और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, वैसे ही तमाम क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और दोनों के बीच में आमने सामने की फायरिंग हुई, जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी थी, 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 1 बदमाश को गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 3 क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों को भी गोली लगी है, जिन्हें की गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 बदमाश गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर्स बताए जा रहे हैं।
0: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: समंदर में चीन की हेकड़ी का अंत और इंडो पैसिफिक में भारत ऑस्ट्रेलिया की महाजुगलबंदी। मेलबर्न की धरती से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने मिलकर बीजिंग के विस्तारवादी मंसूबों की रीढ़ तोड़ दी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर पूरे हिंद महासागर में अपनी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघना ड्रैगन के लिए नामुमकिन होगा। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक नया संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके साथ ही एक बेहद खास मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप यानी समुद्री सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसका सीधा मतलब है अब समंदर में भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना मिलकर चीन की हर संदिग्ध हरकत की टोह लेगी। यही नहीं, भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई का रास्ता भी साफ हो गया है जो भारत की न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरतों को नई उड़ान देगा। रणनीतिक मोर्चे पर चीन को घेरने के साथ साथ मोदी ने चीन के आर्थिक साम्राज्य पर भी चोट की है। मेक इन इंडिया और फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया की ताकतों को मिलाते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के दिग्गज बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी की सप्लाई चेन से चीन के एकाधिकार को खत्म करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया ने महागठबंधन का ऐलान कर दिया है। केवल रणनीतिक और आर्थिक ही नहीं, मोदी के इस दौरे में भारत की सांस्कृतिक जीत भी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 3 ऐतिहासिक और बहुमूल्य प्राचीन मूर्तियों ग्रेनाइट के नंदी, भद्रकाली के साथ कांस्य के त्रिशूल और भगवान कार्तिकेय की 12वीं सदी की मूर्ति को सम्मान सहित भारत को वापस सौंप दिया है। मेलबर्न की सड़कों पर तिरंगा लहरा रहा है और प्रवासी भारतीयों का जोश बता रहा है कि विश्व पटल पर भारत का डंका किस तरह बज रहा है। साफ है, मेलबर्न से प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐतिहासिक दौरा बीजिंग के लिए एक खुली चेतावनी है कि अगर इंडो पैसिफिक में किसी ने भी दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये अभेद चक्रव्यूह उसे नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
1: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
2: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्त बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है। एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
3: उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
2: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के दो सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है जिसमें 10 सदस्यों में दो सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: यार भाई ना दुबे पे हो गया।
5: लीपापोती है, लीपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है।
6: फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है। तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है। और इन सब को किसने रखा था? किसने रखा था? सिर्फ महामंत्री जी ने, चंपत राय जी ने। चंपत राय कैसे बेदाग बच सकते हैं? उनके नाक के नीचे हो रहा है, उनके लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे बच सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं योगी जी, अगर किसी और ने किया होता तो अब तक बुलडोजर गरज गया होता। क्या बुलडोजर की बैटरी बनने चली गई है? बुलाइए और अपराधियों को ऐसा सबक दीजिए।

शहर चौगादक दहला, अमेरिका ने हमलों से किया इनकार, मशहद में आयतुल्ला खामनेई सुपुर्दे खाक। चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे चंपत राय को झटका, अनिल मिश्रा गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद, अनुकल्प की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरी कार भी बरामद की। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पीएम मोदी बिग बैश लीग मैच का करेंगे ऐलान, मेलबर्न में बोले पीएम मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, न्यूजीलैंड के लिए आज होंगे रवाना। लगातार तीसरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से हराया, एम्बापे मेसी की बराबरी की, सबसे ज्यादा 8 गोल दागे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शुक्र की राशियों के बारे में। शुक्र की राशियां कौन कौन सी हैं, इनका प्रभाव क्या है और ये अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकती हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में

डिसिप्लिन पैदा करता है, अनुशासन पैदा करता है, जबकि तुला राशि वालों में शुक्र चंचलता पैदा करता है, उन्माद पैदा करता है। देखिए, वैसे तो दोनों शुक्र की राशियां हैं, वृष भी और तुला भी, लेकिन इन दोनों में शुक्र की ज्यादा प्रिय राशि तुला मानी जाती है, और दोनों के स्वामी शुक्र होने के बावजूद इन दोनों राशियों के जो गुण हैं, इन दोनों राशियों के जो स्वभाव हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। कार्यक्रम में आगे वृषभ और तुला राशि पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब हम बात करते हैं शुक्र की पहली राशि के बारे में, जिसका नाम है वृषभ राशि। वृषभ राशि या वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी हैं शुक्र। वृष राशि चंद्रमा की बड़ी प्रिय राशि है, और चंद्रमा जब वृष राशि में बैठते हैं तो बहुत शक्तिशाली, बड़े ताकतवर हो जाते हैं। वृष राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बुध। बुध की भूमिका वृषभ राशि में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वृष राशि को सौंदर्य, साहस और आत्मविश्वास की राशि माना जाता है, और वृष राशि का कनेक्शन होता है आपकी वाणी से, आपके बोलने से, और आपके पैसे रुपए के मामले से वृष राशि का सीधा कनेक्शन है। आप

के शरीर में जो मस्कुलर सिस्टम है, आपके शरीर का जो पेशिका तंत्र है, वो वृषभ राशि से संबंध रखता है। शुक्र का स्वभाव चंचल होना है, लेकिन वृष राशि शुक्र की होने के बावजूद अनुशासित रहती है, डिसिप्लिन्ड रहती है। वृष राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है जिद्दी होना और क्रोधी होना। अगर वृषभ वाले अपनी जिद छोड़ दें, अपना क्रोध छोड़ दें, तो जिंदगी बड़े आराम से चलेगी। वृषभ वालों को सलाह लेकर एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए, पन्ना पहनना इनके लिए अच्छा होगा। और वृष राशि वालों को जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह कम से कम 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे शुक्र की दूसरी राशि की बात करेंगे, तुला राशि की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न जयदीप जी ने हमें लिखा है और जयदीप जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1973। जन्म का समय सुबह के 5:50। जन्म का स्थान है मुंबई। जयदीप जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। जयदीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कर्ज से छुटकारा साल 2027 के अंत तक मिल पाएगा। साल 2027 के अंत तक आपको कर्जे से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। रोज सुबह एक बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ या हलवा पूड़ी निर्धनों में बांटें। निरंतर ऐसा एक साल तक करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब बात करते हैं शुक्र की दूसरी राशि के बारे में जिसका नाम है तुला राशि। तुला राशि मुख्यतः वायु तत्व की राशि है और इस राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है और शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि वालों के जीवन का जो मुख्य ग्रह है, जो इनका जीवन चलाता है, वो मुख्यतः शनि है। तुला राशि के लोग ग्लैमरस, उदार और सरल स्वभाव के होते हैं। न्याय, आकर्षण और धन इनके पास बहुत होता है। प्रेम के लिए और विवाह को देखने के लिए तुला राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि मानी जाती है। आपके शरीर में आपकी किडनी डाय

पर डिपेंड करता है। और तुला राशि बड़ी चंचल राशि है, बहुत जल्दी एकाग्र नहीं होती, लेकिन ये है बैलेंसिंग राशि। अगर किसी की राशि तुला है तो वो अपने जीवन में चीजों को बैलेंस करना जानता है। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है दिखावा करना और ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास में अक्सर तुला वाले मारे जाते हैं। तुला वालों को नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए, रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़ना चाहिए और सलाह लेकर के शनि का रत्न, अगर सलाह मिले तो नीलम भी आपको धारण करना चाहिए। वृष और तुला राशि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी राशि वृषभ है यानी वृष है और आपके जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य की, भावनाओं की या संघर्ष की, तो क्या उपाय करेंगे? वृष राशि वालों को हमेशा बेवजह के संघर्ष से बचना चाहिए, बेवजह मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये राशि कभी कभी बेवजह मेहनत करवाती है, यानी वृषभ राशि के लोग कभी कभी बिना वजह के मेहनत करते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप मुश्किल से बचना चाहते हैं तो रोज सवेरे और रोज शाम माता लक्ष्मी की उपासना करें और चांदी जरूर पहने। चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला या चांदी की चेन पहनना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपकी राशि तुला राशि है और आपके जीवन में प्रेम की, भावनाओं की, पैसे की, बेवजह के उतार चढ़ाव की दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? तुला राशि वालों को अपनी फैमिली लाइफ का, अपने पारिवारिक जीवन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने पारिवारिक जीवन में गड़बड़ी करने से बचना चाहिए। तुला वालों का अक्सर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन, उनकी लव लाइफ गड़बड़ होती है और इमोशंस को लेके, परिवार को लेके समस्याएं इनको परेशान करती हैं। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो रोज शाम को 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करिएगा। ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा और तुला वालों की बुद्धि और दिमाग सही चले इसके लिए सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिएगा तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

भारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि आटा गूंथ करके फ्रिज में या अलग से पहले से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पिंड का प्रतीक है और इससे आत्माएं आकर्षित होती हैं। क्या ऐसा है? देखिए, जब पिंडदान किया जाता है तो चावल के आटे की गोलियां या लड्डू बनाए जाते हैं और उस समय पूर्वजों का आवाहन किया जाता है, तब पूर्वज आते हैं। आप आटा गूंथ करके फ्रिज में रख देंगे तो उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका पिंड से या आत्माओं से कोई संबंध नहीं है। तो आप बहुत आराम से अपनी जरूरत के हिसाब से आटा गूंथ कर पहले से फ्रिज में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, परिवार में शुभ कार्य होगा। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विजय लक्ष्मी जी ने हमें लिखा है, इंदौर मध्य प्रदेश से लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 28 नवंबर 2004। जन्म का समय सुबह के 9:45 और जन्म का स्थान है इंदौर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा विदेश आगे पढ़ने जाना चाहता है, क्या विदेश जाना उसके लिए उचित रहेगा और उसका भविष्य कैसा होगा। विजयलक्ष्मी जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अभी मैं उनको अगले 2 साल तक 2026-27
विदेश जाने की कोई सलाह नहीं दूंगा। आगे जो मैनेजमेंट की फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर वो इंडिया में ही रह करके करें तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 2028 के बाद अगर स्थितियां बेहतर रहीं तो आप नौकरी करने के लिए इनको विदेश भेज सकती हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे, इनको डिप्रेशन वगैरह ना हो, पढ़ाई ठीक चलती रहे, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं। और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह और शाम इनके लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो सफेद चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

मेष राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, मन प्रसन्न होगा। आज सावधान रहना होगा। मकर राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज एकादशी की तिथि है। आज सात्विकता बनाए रखें और आज गीता का पाठ करिएगा। योगिनी एकादशी है, पापों का प्रायश्चित होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज के साथ भारत में होने वाले बिग बैश लीग के मैच का ऐलान करेंगे। ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग का मैच भारत की सरजमी पर खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई में 12 दिसंबर को सीजन ओपनिंग मैच खेला जाएगा और मेलबर्न रेनगेट्स और पर्थ स्कॉचेस एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने सामने होंगे। बशर्ते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के बीच अंतिम समझौता हो जाए। बिग बैश लीग के मैच के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज ही न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें भी आ रही हैं। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा बेहद खास होगा क्योंकि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचेगा। तो ये मेलबर्न की तस्वीरें हैं और बिग बैश एक बड़ा मुकाबला जो कि भारतीय सरजमी पर खेला जाएगा। तो पहली बार भारत में बिग बैश लीग का आयोजन होगा और मेलबर्न से ही प्रधानमंत्री मोदी इस लीग मैच का ऐलान करेंगे। पहली बार भारत में ये बिग बैश लीग का मैच होने वाला है जिसकी घोषणा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न के उस विशाल स्टेडियम से ही करेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, बिग बैश का मैच भारत की सरजमी पर, आमतौर पर हम देखते हैं कि कल्चर, खेल ऐसी चीजें हैं जो दो देशों को जोड़ती हैं, उनके रिश्तों को मजबूत करती हैं। मेलबर्न से ये संदेश देना कि बिग बैश भारत में होगा, इनको अगर आप डिप्लोमेसी के अलावा रिश्तों में अगर जोड़ें तो क्या परिभाषा इसको निकालते हैं?
1: देखिए, आजकल क्रिकेट के पिच पर भले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में प्रतिद्वंदी माने जाते हो, लेकिन कल राजनीति के पिच पर या कूटनीति के पिच पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के बीच में जोड़ी साझेदारी नजर आई, उसमें तो साफ तौर पर निश्चित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो साझेदारी है या जो आपसी सहयोग है, रणनीतिक सहयोग है, उसके कई रिकॉर्ड बनाए हैं। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के ही बयान को यदि आप देखें तो उन्होंने कहा कि खेल की जो साझेदारी है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। बिग बैश के मैच का भारत में होना ये बताता है कि किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के न केवल खेल संबंध भी मजबूत हो रहे हैं बल्कि रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हुई है और कम्युनिटी से लेकर क्रिकेट से लेकर क्रिटिकल मिनरल तक इस साझेदारी का विस्तार देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ ये जो संदेश दिया जा रहा है दोनों देशों के रिश्तों के लिए, और कहते हैं ना कि सभ्यता, संस्कृति, खेल, ये एक दो देशों के बीच रिश्तों को और प्रगाढ़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ प्रधानमंत्री मोदी दरअसल संदेश देंगे, भारत में ये बिग बैश लीग का पहला मैच होगा और जिसकी घोषणा सीधे मेलबर्न के मैदान से होगी। और अब वक्त हो चला है नॉन स्टॉप 100 का।

शहर में धमाकों के बाद मछली पकड़ने वाली घाट पर कई नावों में आग लगी। जलती नावों का वीडियो सामने आया। धमाकों की जांच जारी है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान में लगातार हो रहे हैं धमाके। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, चौकादक और कोनारक में कई जगह विस्फोट हुए। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बड़ा दावा यह है कि ईरान की सरकारी एजेंसी ने कहा है कि कोनारक में ईरानी नौसेना के ठिकाने पर हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण अब नहीं है। अमेरिकी हमलों के बीच मशहद में सुपुर्दे खाक के ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई। खबर चीन से। फुजियान में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। घटना में 28 लोगों की मौत हो गई है। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वीडियो में फैक्ट्री और आसपास की इमारतें आग की लपटों में घिरे दिखाई दी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अंकारा नेटो समिट में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का अनोखा गिफ्ट देखने को मिला। नेटो नेताओं को विदाई में असली गोलियों के साथ रिवॉल्वर गिफ्ट की। गिफ्ट देखकर बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैरान रह गए। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तलखी पर बोली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। कहा, मुझे ट्रंप से रिश्ते सुधारने की कोशिश का कोई पछतावा नहीं है। मैंने हमेशा इटली के फायदे के लिए रिश्ते बनाए। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ऋषिकेश, हरिद्वार, चीला रोड पर लगातार बारिश के कारण बीन नदी उफान पर है। तेज बहाव के बीच स्कूटी सवार फंस गया। स्थानीय लोगों ने एक शख्स को बचाया। लगातार भारी बारिश के बाद नैनीताल में फिर मंडराया लैंडस्लाइड का खतरा। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश बनी जानलेवा। अब तक 14 लोगों की मौत। नदी के पानी में क्रेन डूबी और डंपर के वीडियो ड्रोन से सामने आए। बिजनौर में भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई। घरों में पानी घुस गया। लोगों की मुसीबत बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में थोड़ी सी बारिश से शहर में जलभराव हो गया। हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम के काम की पोल खुल गई। मॉनसून में मूसलाधार बारिश में भारतीय सेना ने कमाल दिखाया। दुधिया स्थित बालासन नदी पर 20 दिनों में ही 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज बनाया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए मूसलाधार बारिश के लिए कई जिलों का येलो अलर्ट जारी किया है कि आगामी 12 से 18 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

0: एनसीआर में लगातार दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, सड़कें डूब गई हैं, ट्रैफिक व्यवस्था ठप पड़ी है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भारी मानसून की बारिश के बाद दिल्ली के अलीपुर इलाके में सड़कें जलमग्न हो गई, जलभराव के बीच कई वाहन फंस गए, येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, बारिश और बिजली से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों के लिए 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया है, कई शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंदन मॉल की बाउंड्री वॉल गिर गई, पास की सड़कें भी कई फीट धंस गई। गाजियाबाद में भी भारी बारिश से जलभराव, वैशाली सेक्टर 3 में सड़कें तालाब बन गए, रिहायशी इलाकों के घरों में पानी घुस गया। इंदिरापुरम में जलभराव के बीच करंट उतरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे। प्रयागराज में पहली बारिश में नगर निगम की पोल खुली, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में जलभराव, सड़कें तालाब बन गए। सहारनपुर में भी झमाझम बारिश से शहरों के कई इलाके जलमग्न हुए, सड़कों पर पानी भरा, स्विमिंग करते नजर आए बच्चे। मेरठ में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, सड़कों गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मुजफ्फरनगर में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जनजीवन ठप पड़ गया है, रिहायशी इलाकों समेत मंदिर परिसर में पानी भरा, स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ी। आगरा में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कई इलाकों में पानी भरा, जल भरा और सीवर ओवरफ्लो के कारण घरों में गंदा पानी घुसा, 200 परिवार घरों में ही कैद हो गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उफनती नदियों में बह गया बाइक सवार, ग्रामीणों ने महिला समेत 3 लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी बैंड के पास भारी मलबा आया, नेशनल हाईवे 707 बंद, यातायात प्रभावित, रास्ता खोलने में जुट गया प्रशासन। विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खौफनाक वीडियो सामने आया है, सड़क पर मलबा आने से बाल बाल लोग बचे। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गए, आफत वाली बारिश में भरभराकर 2 मंजिला इमारत गिर गई, परिवार के 6 लोग घायल हुए। केरलम के खोजीकोड रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया, स्टेशन पुनर्विकास कार्य के दौरान 100 साल से ज्यादा पुराना घंटाघर ढहा, कोई हताहत नहीं। यूपी के झांसी में चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में एक शख्स गिर गया, ट्रेन के नीचे जाने से पहले आरपीएफ जवान ने जान बचाई। सुल्तानपुर में महिला बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में युवक को थप्पड़ जड़ा, वीडियो वायरल होते ही मुकदमा दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, आग की चपेट में गैस सिलेंडर फटा, धमाके में 2 घर जलकर आग हो गए। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक आग लग गई, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में कार्डबोर्ड रोल गोदाम में भीषण आग लग गई, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के सबसे बड़े आयोजन को संबोधित किया। स्टेडियम के अंदर करीब 30,000 भारतीय मूल के मौजूद रहे लोग, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। स्टेडियम के भीतर ढोल नगाड़ों के बीच मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी, कई भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की भी झलक देखने को मिली। मेलबर्न के प्रतिष्ठित मार्वल स्टेडियम में शानदार आयोजन हुआ, मेलबर्न मीट्स मोदी नाम के इस मेगा शो को पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताया, कहा आज मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर के कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन करते हुए विरोध व्यक्त किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के सभी मुद्रा मंदिरों में दान पेटियों की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी का आदेश दिया, राम मंदिर मामले को लेकर फैसला लिया गया। हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में जारी है लगातार बिखराव, बीजेपी में शामिल हुए पूरे राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव, प्रकाश बराई। टीएमसी में छोड़कर बीजेपी में आए ममता के 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बनाए गए अब बीजेपी के उम्मीदवार। आज एनडीए की बैठक में शामिल होंगे सीएम सम्राट, पेंशन भुगतान कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात से भड़के संजय राउत, पूछा गद्दारों को क्यों इज्जत दे रहे हैं पवार, जिसने सरकार गिराई आखिर उससे कैसी दोस्ती। महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, मंत्री योगेश कदम ने कहा यूसीसी पर बनी समिति रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र परिवहन विभाग गैर मराठी भाषी ऑटो चालकों को सिखा रही है मराठी भाषा, 16 अगस्त से यात्रियों से संवाद न कर पाने और टेस्ट में विफल होने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ हादसे में मलबे में अभी भी तलाश जारी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। गुजरात में मॉनसून की जबरदस्त दस्तक के बाद मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर मंथन किया। संभल में 59 साल पुरानी इमारत को ध्वस्त किया गया, हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत ने जर्जर बिल्डिंग को ढहाया, भारी बारिश के बीच 3 घंटे कार्यवाही चली। गुजरात के वेरावल के जुए में एसएमसी के रेड के दौरान बवाल हुआ, पुलिस टीम पर हमला हुआ, 40 नामजद समेत 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया। लखनऊ के लोहिया संस्थान पर मेडिकल लापरवाही का आरोप, फूड पाइप सर्जरी के बाद युवक का हाथ काटना पड़ा, मरीज ने गंभीर आरोप लगाया। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव हुआ, नायब तहसीलदार घायल हुआ, 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया। कौशाम्बी में जमीन विवाद पर बवाल हुआ, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम में बड़ा इनकाउंटर हुआ है, क्राइम ब्रांच के 3 कर्मचारियों को गोलियां लगी, मुठभेड़ में 4 शूटर ढेर किए गए। विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के सभी शूटर थे, व्यापारी के घर पर फायरिंग करके भाग रहे थे आरोपी, पुलिस ने घेरा। हरियाणा के नारनौल में कार ने एक बुजुर्ग को उड़ा दिया, सीसीटीवी में उछलकर 20 मीटर दूर गिरते दिखा शख्स, मौके पर ही मौत हुई। रामपुर पुलिस ने ठगी का खुलासा किया, 2 गिरफ्तार किए गए, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। झारखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का खुलासा, ग्रामीणों ने संदिग्ध आरोपी को दबोचा। दिल्ली के वेंकट हॉल के झगड़े में एक गोली चली, 10 राउंड फायरिंग हुई, महिला को छू कर निकली गोली। पटना में संविदा लाइनमैन की मौत पर बवाल हो गया, परिवार ने मारपीट का आरोप लगाया, सड़क जाम करके बवाल किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर अचानक भरभराकर मलबा गिर गया, फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का खौफनाक वीडियो। पुणे में वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के महिला ने जमकर हंगामा किया, रास्ता बंद करने को लेकर के पुलिस से महिला भिड़ गई, सड़क पर ही लेट गई। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अलवर में एक बुजुर्ग की हत्या की गई, हाथ पैर बांधकर गला दबाया, बुजुर्ग के घर से लाखों का कैश गायब है। इंदौर आ रही बस में टायर फटने के बाद भीषण आग लग गई, 26 यात्रियों की जान बची, सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चोरी के आरोप में युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो सामने आया। जोधपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर तलवार लाठी से हमला, वारदात सीसीटीवी में कैद। लगातार 3rd वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से हराया, एम्बाप्पे ने मेसी की बराबरी की, सबसे ज्यादा 8 गोल दागे। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज से इकलौते टेस्ट मैच की शुरुआत होगी, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच ये ऐतिहासिक मैच होगा, 142 साल के इतिहास में लॉर्ड्स में पहली बार खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड से T20 सीरीज हारा, 9 विकेट से 4th मैच गंवा दिया। कप्तान श्रेयस के 80 रन काम नहीं आए, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पिछली T20 सीरीज 2014 में जीती थी। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए 14 T20 में इंग्लैंड ने 159 रन का टारगेट सिर्फ 13.5 ओवर में पूरा किया, 1 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। बद्रीनाथ धाम में मानसून के दौरान प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिली, बादलों से घिरे तीर्थ की सुंदरता काफी बढ़ गई। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में आस्था और उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, प्रशासन सुरक्षा इंतजामों पर खास नजर रख रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर के और उसे सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए टीमें सतर्क हैं, यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी निरंतर जारी है, तापमान में गिरावट के बाद भी मत्था टेकने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को फिलहाल विराम दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। दक्षिण एक्टर अकिन की फिल्म लेनिन भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी, इसके जरिए एक्टर अखिल 3 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। डिज्नी की मोस्ट अवेटेड लाइव एक्शन फिल्म मोआना भी आज रिलीज हो रही है, मोआना के किरदार में कैथरीन लगाया नजर आएंगी। हॉरर फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए एक बार फिर दस्तक दे रही है अमेरिकी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म एविल डेड बर्न, ये मूवी एविल डेड फ्रेंचाइजी की 6वीं फिल्म होगी। बतौर लीड हीरो अपनी पहली फिल्म भाई तेरा स्टार है लेकर आ रहे हैं राघव जुयाल, फिल्म का ट्रेलर रिलीज 30 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी राघव की फिल्म।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
3: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details. Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. After a dominating performance against the United States, Belgium will take on Spain in Los Angeles with a trip to the semifinals on the line. Spain, who has yet to concede a goal the entire tournament, is minus 350 to qualify for the next round. This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: In association with
12: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
13: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
11: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
14: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
15: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
16: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
17: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा, उतनी बार वक्त बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है। एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
18: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
17: अगर ऐसा होता है तो MP के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी CEO होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा 2 मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
19: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
1: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं. कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है. वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते. उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता. उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता. उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता. उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते. और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते. याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था. उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं.
3: यार भाई, लिपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं. एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है. अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो. ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है. दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते. आज भी यूपी में आपने देखा होगा, जो अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवारों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है.
4: फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है. तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है. और इन सब को किसने रखा था? किसने रखा था? सिर्फ महामंत्री जी ने, चंपत राय जी ने. चंपत राय कैसे बेदाग बच सकते हैं? उनके नाक के नीचे हो रहा है, उनके लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे बच सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं योगी जी, अगर किसी और ने किया होता तो अब तक बुलडोजर गरज गया होता. क्या बुलडोजर की बैटरी बनने चली गई है? बुलाइए और अपराधियों को ऐसा सबक दीजिए.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। पीएम मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खड़े होकर बिग बैश लीग के भारत में आयोजन का ऐलान कर दिया है। इस खास मौके पर पीएम एंथनी एल्बनीज और पूर्व कप्तान स्टीव वॉक भी उनके साथ मौजूद रहे। बीबीएल के आगामी सीजन का ओपनिंग मैच चेन्नई में खेला जाएगा और इस दौरान पीएम मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ियों से बातचीत की। ये पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का मैच भारत की सरजमी पर खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई में 12 दिसंबर को सीजन ओपनिंग मैच खेला जाएगा और मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने सामने मैच खेलेंगे। मेलबर्न में ऐलान किया गया पीएम एल्बनीज के साथ मैच का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिग बैश लीग का ऐलान आज हो चुका है। चेन्नई में पहला मैच खेला जाएगा बिग बैश लीग का और ये तमाम तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरे दिन वो मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है।
1: एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं। एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। अभी हमने बच्चों को कबड्डी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए इन बच्चों से गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिल गया। उनके जोश को देख करके लगा आज यहाँ बच्चों का एग्जीबिशन मैच नहीं है, फ्यूचर चैंपियंस का ऑडिशन चल रहा है। उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा से यह स्पष्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
0: आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राम मंदिर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता ही चला है कि चोरी की राशि एक हिस्सा उसका शेयर बाजार में निवेश किया गया और कुछ रकम ब्याज पर भी दी गई थी। दरअसल पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने चोरी की रकम अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई और बाद में उसे अपने खातों में वापस मांगकर लेन देन छिपाने की कोशिश की गई। एक बड़ा खुलासा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुआ है। ब्याज पर पैसे दिए गए थे, शेयर मार्केट में भी ये चोरी के जो रुपए थे उन्हें लगाया गया था, साथ ही रिश्तेदारों को भी ये पैसे दिए गए थे और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से ये सारा लेन देन किया गया। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी अनुकल मिश्रा को जब वो घर लेकर गई तब 20 मिनट की तलाशी में भी बहुत कुछ मिला है। अभी फिलहाल एक बड़ा खुलासा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में, शेयर मार्केट में भी ये पैसे लगाए गए हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के।

0: आशीष क्या अपडेट है? कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट में भी चोरी का ये पैसा लगाया गया है।
1: अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चढ़ावा चोरी मामले में जांच जारी है और इस दौरान दान राशि का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया है और कुछ रकम ब्याज पर भी दी हुई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक चोरी की रकम अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में भी ट्रांसफर करवाई गई, बाद में उनके खातों से वापस मंगाकर लेन देन छिपाने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी अनुपम मिश्रा और घर से लाकर तलाशी भी की और परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की। आरोपी लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे घर अभियान है और तकरीबन 30 बैंक खातों को गया है। आरोपियों की आय से अधिक लेन देन की बात सामने आई, जिसके बाद आए और की गई है। ये जो पैसा है जो अलग अलग खातों में गया था, उन खातों से जैसे निकाल कर जो अनुकल मिश्रा हैं और लवकुश मिश्रा, इनके खातों में आया और उसके बाद इसको शेयर मार्केट में भी प्रयोग किया गया, साथ ही साथ ब्याज पे भी दिया गया और अन्य मामलों में भी इसका प्रयोग किया गया। तो जो पैसा था दान का उसको अलग अलग जगह पर। चलिए
0: ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने चोरी के पैसों से खरीदी गई दूसरी कार को भी फिलहाल बरामद कर लिया है। आरोपी अनुकल्प की निशानदेही पर पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। रिपोर्ट देखिए।

0: भगवान राम के दान की लूट करने वालों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदी गई दूसरी कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी अनुकल्प की निशानदेही पर पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की। रिमांड के दौरान गुरुवार को पुलिस तीनों आरोपियों को उनके घर लेकर पहुंची और निशानदेही पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई अहम चीजें बरामद की गयी। अनुकल्प मिश्रा के निशानदेही पर कार के अलावा एक सोने की चेन और सोने का पेंडुलम भी बरामद किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पैसों के लेनदेन से जुड़े कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने नगद पैसा लेकर अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि चोरी की रकम का इस्तेमाल कहां कहां किया गया और उससे कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी गई। इसके साथ ही मामले में आर्थिक लेनदेन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अयोध्या से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे चंपत राय को एक और बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी निष्क्रिय कर दी गई है। अब चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी दर्शन पास बनाने वाली आईडी बंद कर दी गई है। अब इनके आईडी से कोई भी पास जारी नहीं होंगे। सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास, दो तरह के पास जारी किए जाते हैं। इसके लिए सभी ट्रस्टियों के नाम की आईडी सिस्टम में जनरेट किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार ये फैसला कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन की अध्यक्षता वाले नए प्रशासन ने लिया है। दरअसल पहले जिनके रिकमेंडेशन पर इनके रिकमेंडेशन पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके आईडी से सुगम दर्शन और विशिष्ट दर्शन पास जारी किए गए थे। टिनू यादव इसी सिस्टम का फायदा उठाकर सैकड़ों पास जारी करवा भी चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अब जो आईडी पास ये प्रोवाइड करवाते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। चंपत राय समेत तीन बड़े ट्रस्टियों की आईडी बंद हो गई है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। आशीष, देखिए, अगर ये मुद्दा समय रहते हुए नहीं सुलझाया गया तो आने वाले चुनाव में इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? आशीष, आपको आवाज आ रही है? तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीन बड़े ट्रस्टियों की आईडी अब बंद कर दी गई है। चंपत राय समेत तीन बड़े ट्रस्टी ऐसे हैं जिनकी आईडी को बंद कर दिया गया है, ये फैसला लिया गया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय की आईडी बंद कर दी गई है। एक और बड़ी खबर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। आज वो अयोध्या पहुंचेंगे और चढ़ावा चोरी की जांच के बीच योगी का ये दूसरा दौरा माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा जो कि दूसरा दौरा होने वाला है, जांच के बीच ये दूसरा दौरा है। अभी इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, तलाशी भी घरों की ली गई है और कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी सरकार ने देर रात 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। इसमें ज्यादातर अधिकारी सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई तबादले देर रात किए गए। यूपी में 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और इसमें ज्यादातर अधिकारी सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी बताए जा रहे हैं। बड़ा एक प्रशासनिक फेरबदल यूपी में कल देर रात किया गया जिसमें 20 आईएएस के तबादले किए गए हैं और इसमें ज्यादातर विशेष सचिव स्तर के अधिकारी बताए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुरुग्राम की, जहां पर आधी रात को बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में दीपक नांदल गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में चार बदमाश तो ढेर हो गए और एक गंभीर रूप से घायल है। आधी रात को हुए एनकाउंटर में करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। इनमें तीन पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठा दीपक नांदल गुरुग्राम के एक व्यापारी को रंगदारी के लिए लगातार धमकी दे रहा था, जिसके बाद उसके शूटर्स ने कल व्यापारी के घर पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने सभी बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में चार बदमाश ढेर हो गए और एक घायल भी हुआ है। इसके साथ ही इनके पास से 5 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। और इस पर और जानकारी आपको दे देते हैं कि कल ये पूरा मामला क्या था। चार बदमाश वहां पर मौजूद थे, पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई है। गुरुग्राम में ये पूरा जो केस था वो चल रहा था, गुरुग्राम में मुठभेड़ हुई है। अब आप समझिए, सुशांत लोक में बदमाशों से मुठभेड़ हुई, पुलिस की आधी रात को गुरुग्राम में एनकाउंटर किया गया। दीपक नांदल गैंग के शूटर से सामना हुआ है और एनकाउंटर में चार शूटर फिलहाल ढेर भी हो गए हैं, एक अभी घायल बताया जा रहा है। इस पूरी मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस और इन शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई है। शूटर्स के पास से 5 ऑटोमेटिक हथियार बरामद भी किए गए हैं। अब इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल भी इन शूटर से की जाएगी। तो गुरुग्राम के सुशांत लोक में देर रात गोलीबारी की घटना सामने आई है और वहीं एक व्यापारी के घर पर फायरिंग भी उस बीच की गई है। तो नांदल गैंग के शूटर्स ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की, जिसके स्कॉर्पियो से सवार थे, सभी बदमाश स्कॉर्पियो से वहां पर आए थे, फायरिंग इन्होंने की, पुलिस ने घेराबंदी कर इनको सरेंडर करने को कहा और उसी बीच इनकी मुठभेड़ पुलिस के साथ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 5 बदमाशों को गोली भी लगी है जिनमें से एक बदमाश घायल हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मधु विहार की। दरअसल यहां पर देर शाम पूरा इलाका अंधाधुंध चली गोलियों की गूंज से दहल गया। शुभम बैंकेट हॉल पर करीब 10 से 15 लोगों ने गोलियां चलाई। फायरिंग के दौरान एक महिला के पैर में गोली लगी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त घटना हुई उस समय कैब महिलाएं भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि शुभम बैंकेट हॉल पर कब्जा करने के लिए फायरिंग की गई है। चश्मदीदों ने यह बताया कि 10 से 15 राउंड गोलियां चलाई गई और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फायरिंग की घटना से इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और घटना की छानबीन की जा रही है। यहां पर पीड़ितों का कहना है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस समय मौके पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था जिनके सामने ये पूरी घटना हुई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच फिलहाल आगे कर रही है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की और ईरान की, क्योंकि खबर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े हुए तनाव की है। ईरान की एक समाचार एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक दक्षिणी ईरान के बुशहर और चोगादक में धमाके हुए हैं, कई धमाके हुए हैं। मेयर के मुताबिक बुशहर और चोगादक में कल कुल 6 धमाके किए गए। बुशहर प्रांत के आसपास भी धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। वहीं मेयर ने कोनारक शहर में भी 3 धमाकों की खबर दी है। तो चोगादक में 6 धमाके हुए हैं। इसी के साथ कहां कहां पर धमाके हुए ये आप समझिए। चोगादक, बंदर अब्बास और बुशहर को निशाना बनाया गया जहां पर ये हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया के द्वारा ये बताया गया है और इन्हीं जगहों पर हमले किए गए। ईरान में धमाके को लेकर अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। अमेरिका ने कहा है दक्षिणी ईरान में हमने हमले नहीं कराए हैं। अमेरिका इससे नकार रहा है। तो दक्षिणी ईरान में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। वहीं बुशहर और चोगादक में धमाके किए गए और साथ ही 6 धमाके बुशहर और चोगादक में हुए हैं जिसकी आवाज सुनाई दी गई है। कोनारक में भी 3 धमाकों की खबर सामने आई है लेकिन अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, क्या अपडेट है? ये जो धमाके अभी हाल ही में हुए हैं इससे अमेरिका नकार रहा है?
2: बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया है कि पिछले 12 घंटों के दौरान ईरान पर अमेरिका की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर बुशहर, जो कि मात्र एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है, पावर प्लांट ईरान का, वहां पर कल भी ताबड़तोड़ हमले हुए थे और आज भी जो है ईरानी मीडिया और ईरानी एजेंसियों का दावा है कि कई सारे प्रोजेक्टाइल्स को उन्होंने हवा में ही डिफ्यूज किया एयर डिफेंस सिस्टम से। तो ये कहां से ये प्रोजेक्टाइल्स आए अभी तक तो साफ नहीं है। ये भी शक जताया जा रहा है कि शायद इजराइल ने जो है ये बुशहर को निशाना बनाने की कोशिश की मिसाइल से, जो कि किसी युद्धपोत से समंदर से दागे गए हैं, या फिर इसमें किसी और गल्फ कंट्री का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी तक तो ये साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ घंटों के दौरान जो है अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले रुके हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बेहतर बात मानी जाती है कि शायद अब ये डिएस्केलेट टेंशन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का ये भी कहना है कि पिछले 48 घंटे के दौरान जो अमेरिका की तरफ से साउथ यानी दक्षिणी ईरान पर हमले हुए हैं उनमें 14 लोगों की जान गई है, जिनमें कुछ मछुआरे भी हैं और साथ ही साथ 30 लोग घायल है, खासतौर से बंदर अब्बास में। और छोटी नावों को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका का यह कहना है कि ये छोटी नावें जो हैं ये आईआरजीसी की नावें हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में माइनस बिछाने के साथ साथ जहाजों
1: चलिए
2: पर
1: ठीक है। और ये नए हमले को लेकर कहीं ना कहीं इसराइल पर भी शक जताया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी के लिए। वहीं अमेरिका से एक बार फिर से जारी तनाव के बीच ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर मशहद में कर दिया गया। उनमें इमाम रजा दरगाह परिसर में सुपुर्द खाक उन्हें किया गया और इस दौरान लाखों लोगों ने नम आंखों से साथ अपने नेता को अंतिम विदाई दी और अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की भाषा सुनाई दी गई। तस्वीर आप देखिए, लाखों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हुए, आयतुल्ला अली खामेनेई सुपुर्द खाक हो चुके हैं और कई लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। नम आंखों के साथ उन्होंने यहां विदाई दी है। मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया गया। बात कर लेते हैं अब दिल्ली एनसीआर में आफत बनकर बरस रही बरसात की। लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते दिल्ली से लेकर गाजियाबाद में हादसों ने लोगों को डरा दिया है। दिल्ली के समयपुर बादली में 7 साल के बच्चे की डूबने की वजह से मौत हो गई। तो वहीं गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर बारिश के जमा पानी में डूबने के कारण 3 साल की बच्ची की जान चली गई है, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
0: दिल्ली एनसीआर में हो रही मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद में जलभराव से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी के समयपुर बादली में 7 साल के बच्चे की पानी के गड्ढे में डूबने से जान चली गई। परिवार का आरोप है कि बारिश के दौरान हमेशा यहां पानी भर जाता था, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया जिसके चलते उनके बच्चे की जान चली गई। दिल्ली ही नहीं गाजियाबाद में भी बारिश से हुए हादसों ने लोगों को डरा कर रख दिया है। गाजियाबाद के सर्वोदय नगर इलाके में घर के बाहर गली में भरे पानी में डूबकर 3 साल की बच्ची की जान चली गई। बच्ची घर में खेल रही थी, बाहर गली में पानी भरा हुआ था। बच्ची खेलते खेलते उसी पानी में गिर जाती है जिसके बाद मौत हो जाती है।
3: ये वो गली है जहाँ पूरी गली में पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि जिस समय बारिश हो रही थी दोपहर के समय, उस समय करीब 3 फुट से ज्यादा पानी यहाँ भरा हुआ था।
4: तो हमारी गली में 3 फुट पानी भर गया। यहाँ एक छोटी बच्ची थी 2.5-3 साल की, वो खेल रही थी और वो गली में पानी में आके डूब गई। किसी को पता नहीं लगी, जब वो तैर के ऊपर आ गई तब उसको देखा गया।
0: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बारिश के जलभराव के दौरान पार्क के बाहर करंट फैलने की वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें बबलू नाम का सिक्योरिटी गार्ड पार्क के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक करंट की चपेट में आने के बाद गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यही नहीं, गाजियाबाद के अंकुर विहार में पानी में बहती लाश से लोगों में हड़कंप मच गया। बारिश के पानी में एक अज्ञात शख्स का शव तैरता मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से राजेश खत्री और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो वही मैदानों के बाद अब मानसूनी आफत पहाड़ों पर बरस रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से अभी से हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है, तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने आज हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल में स्कूल भी बंद कर दिए हैं।
0: मैदानों के साथ साथ अब पहाड़ों पर हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरे, जिसके बाद से यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को रोकना पड़ा। इसके बाद लंबा जाम लग गया। पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने यात्रियों से जहां है वहीं रहने की अपील की गई है।
5: लगातार हो रही बारिश के चलते जो गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे है वो जगह जगह पर बंद हो गया है। लगातार 14 घंटे से बारिश लगी हुई है और इसके चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे की यदि बात की जाए तो सिलाई बैंड और श्याना चट्टी के पास पूरी तरह से बंद हुआ है। एहतियातन प्रशासन के द्वारा यात्रियों के वाहन को रोका जा रहा है, यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी आवाजाही के लिए मना किया गया है।
0: वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से पानी झरनों की तरह बह रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक को रोक रोक कर आगे बढ़ाया जा रहा है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे ही नहीं आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर भी लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ से गिरे बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं, जिसके बाद रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, साथ ही कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और टीना साहू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है फ्रांस। मोरक्को को 2-0 से हरा दिया गया। एम्बापे में दूसरे हाफ के 60वें मिनट में गोल दागा गया। इसके 6 मिनट बाद उस्मान डेम्बेले ने दूसरा गोल कर फ्रांस की जीत पक्की कर दी। अब फ्रांस का सामना सेमीफाइनल में होगा स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से। वहीं एम्बापे के इस टूर्नामेंट में 8 गोल हो गए हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। चलिए इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. After a dominating performance against the United States, Belgium will take on Spain in Los Angeles with a trip to the semifinals on the line. Spain, who has yet to concede a goal the entire tournament, is -350 to qualify for the next round. This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
11: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
12: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: समझ कर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: नहीं इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
13: In association with
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

भारत में होगा क्रिकेट का मशहूर बिग बैश लीग का एक मैच, चेन्नई करेगा मेजबानी। मेलबर्न से पीएम मोदी का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती का एक और अहम पड़ाव, आज जाएंगे न्यूजीलैंड। ईरान के बुशहर और बंदर अब्बास में फिर से धमाकों की गूंज, अमेरिका का हमले से इनकार। ईरान बोला हॉर्मुज में हिमाकत की तो कई देशों को नुकसान, अयातुल्ला अली खामेनेई हुए सुपुर्द खाक।

चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम, ब्याज पर भी दिए गए थे पैसे, आरोपियों का खुलासा। दूसरी कार भी बरामद, चंपत अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को इनाम उपचुनाव के लिए, पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। कल ही शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। लगातार तीसरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से हराया। एम्बापे ने मेसी की बराबरी की, सबसे ज्यादा 8 गोल दागे।

राजस्थान के बुशहर में धमाकों के बाद मछली पकड़ने वाले घाट पर कई नाव में लगी आग। जलती नाव का वीडियो आया सामने, धमाकों की जांच जारी। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान में लगातार हो रहे हैं धमाके। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदराबाज, बुशहर, चोकादक और कोणार्क में कई विस्फोट हुए। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बड़ा दावा ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक कोणार्क में ईरानी नौसेना के ठिकाने पर किया गया हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज किया, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण नहीं। अमेरिकी हमलों के बीच मशहद में सुपुर्द खाक ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत, दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप के साथ तलखी पर बोली इटली की पीएम मेलोनी, कहा मुझे ट्रंप से रिश्ते सुधारने की कोशिश का कोई भी पछतावा नहीं, मैंने हमेशा इटली के फायदे के लिए रिश्ते बनाए। अंकारा नेटो समिट में टर्की के राष्ट्रपति दर्गन का अनोखा गिफ्ट, नेटो नेताओं को विदाई में दी असली गोलियों के साथ रिवॉल्वर, गिफ्ट देखकर हैरान रह गए बेल्जियम के पीएम। चीन के फुजियान में एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घटना में 28 लोगों की हुई मौत। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वीडियो में फैक्ट्री और आसपास की इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दी। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश पर रेड अलर्ट, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली के स्कूलों में छुट्टी घोषित। ऋषिकेश, हरिद्वार, चीला रोड पर लगातार बारिश के कारण बीन नदी उफान पर, तेज बहाव के बीच फंसा स्कूटी सवार स्थानीय लोगों ने शख्स को बचाया। लगातार भारी बारिश के बाद नैनीताल में फिर से मंडराया लैंडस्लाइड का खतरा, पूरे इलाके में दहशत का माहौल, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। सूरत में लगातार हो रही बारिश बनी जानलेवा, अब तक 14 लोगों की मौत हुई। नदी के पानी में डूबी क्रेन और डंपर के ड्रोन वीडियो आए सामने। बिजनौर में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। गोंडा में थोड़ी सी बारिश से शहर में जलभराव, हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम की काम की खुली पोल। मॉनसून में मूसलाधार बारिश में भारतीय सेना का कमाल, दूधिया स्थित बालासन नदी पर मात्र 20 दिनों में बनाया 34 मीटर लंबा बेली ब्रिज। हिमाचल में मूसलाधार बारिश, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, आगामी 12 से 18 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में लगातार दो दिनों से हो रही है भारी बारिश, सड़कें डूबी और ट्रैफिक व्यवस्था पड़ी ठप, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। भारी मॉनसून बारिश के बाद दिल्ली के अलीपुर इलाके में सड़कें जलमग्न, जलभराव के बीच फंसे कई वाहन, येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश और बिजली से अब तक 7 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों के लिए 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया, कई शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंडन मार्ट मॉल की बाउंड्री वॉल गिरी, पास की सड़क भी कई फीट धंसी। गाजियाबाद में भी भारी बारिश से जलभराव, वैशाली सेक्टर 3 में सड़कें बनी तालाब, रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। इंदिरापुरा में जलभराव के बीच करंट उतरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप। प्रयागराज में पहली बारिश में नगर निगम की खुली पोल, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बनी तालाब। सहारनपुर में भी झमाझम बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर भरे पानी में स्विमिंग करते नजर आए बच्चे। मेरठ में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही है भारी बारिश, सड़कों और गलियों में 2 से 3 फीट तक भरा पानी, आम जनजीवन प्रभावित। मुजफ्फरनगर में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन ठप हुआ, रिहायशी इलाकों समेत मंदिर परिसर में भरा पानी, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। आगरा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में भरा जल भराव और सीवर ओवरफ्लो के कारण घरों में घुसा पानी, लगभग 200 परिवार घरों में हुए कैद। सहारनपुर में उफनती नदी में बहे बाइक सवार ग्रामीणों ने महिला समेत 3 लोगों की बचाई जान। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी बैंड के पास भारी मलबा आने के कारण NH 707 बंद हुआ, यातायात प्रभावित, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खौफनाक वीडियो आया सामने, सड़क पर आया मलबा, बाल बाल बचे लोग। धौलपुर में भी भारी बारिश के कारण सड़कें बनी तालाब, आफत वाली बारिश में भरभराकर गिरा 2 मंजिला मकान, परिवार के 6 लोग घायल। केरलम के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, स्टेशन पुनर्विकास कार्य के दौरान 100 साल से ज्यादा पुराना घंटाघर ढहा, कोई हताहत नहीं। यूपी के झांसी में चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में गिरा शख्स, ट्रेन के नीचे जाने के कारण पहले आरपीएफ जवान ने बचाई जान। सुल्तानपुर में महिला बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होते ही मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के पालघर में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग, आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर फटा, धमाके में 2 घर जलकर खाक हुए। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक से लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक कार्डबोर्ड रोल गोदाम में भीषण आग लगी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सीएम योगी का 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरा, कई विकास और सरकारी कार्यक्रमों में होंगे शामिल, ट्वीट कर लिखा। अयोध्या और बस्तर में विकास और जन कल्याण के नए अध्याय जोड़ेंगे। आज
सीएम योगी अयोध्या और उनका दौरा करने वाले हैं। कल कुशीनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सचिव स्तर समेत 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, शेयर बाजार में लगाई गई चोरी और दान की राशि। पुलिस सूत्रों का दावा, चोरी की रकम रिश्तेदारों के खातों में भेजकर वापस मंगाई गई, लेन देन छिपाने की कोशिश की गई। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर की तलाशी, तीनों आरोपियों से जुड़े 30 बैंक खाते फ्रीज। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 22 जुलाई के बाद दर्शन पूजन से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक नई व्यवस्था की तैयारी। चढ़ावा विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट सख्त, मंदिर की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और चढ़ावा प्रबंधन में 22 जुलाई को होंगे बदलाव। मेलबर्न में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, भारत में होगा बिग बैश लीग का आयोजन। चेन्नई में खेला जाएगा बिग बैश लीग का पहला मुकाबला, 12 दिसंबर को रेनेगेड्स और स्कॉचर्स होंगे आमने सामने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा खिलाड़ियों का हौसला देखकर बोले पीएम मोदी, क्रिकेट दोनों देशों का साझा जुनून। पीएम मोदी ने खेल सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर, कहा ऑन फील्ड के साथ आउटफील्ड साझेदारी भी मजबूत। पीएम मोदी और अल्बनीज ने लॉन्च किया रोड मैप, स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी पर होगा फोकस। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन करते हुए व्यक्त किया रोष। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के सभी मुजराई मंदिरों में दान पेटियों की 24 घंटे से ज्यादा सीसीटीवी निगरानी का दिया आदेश, राम मंदिर मामले को लेकर लिया फैसला। हार के बाद टीएमसी में जारी है लगातार बिखराव, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश बराई। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बनाए गए बीजेपी के उम्मीदवार। आज एनडीए की बैठक में शामिल होंगे सम्राट, सीएम और पेंशन भुगतान कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के दौरान प्रकृति की अनुपम छटा, बादलों से घिरे तीर्थ की बड़ी सुंदरता। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, प्रशासन सुरक्षा इंतजामों पर रख रहा है नजर। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलने के लिए टीम सतर्क, यात्रा मार्ग की लगातार की जा रही है निगरानी। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी निरंतर जारी, तापमान में गिरावट के बाद भी मत्था टेकने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को दिया गया है विराम, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। संभल में 59 साल पुरानी इमारत को किया गया ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत ने जर्जर बिल्डिंग की ढहाया और भारी बारिश के बीच 3 घंटे तक चली ये कार्यवाही। गुजरात के वेरावल में जुए पर एसएमसी की रेड के दौरान बवाल हुआ, पुलिस टीम पर हमला, 40 नामजद समेत 200 लोगों पर केस। लखनऊ के लोहिया संस्थान पर मेडिकल लापरवाही का आरोप, फूट पाइप सर्जरी के बाद युवक का हाथ काटना पड़ा, मरीज ने लगाए गंभीर आरोप। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, नायब तहसीलदार घायल, 200 लोगों पर केस दर्ज। कौशाम्बी में जमीन विवाद पर बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का एक वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम में एनकाउंटर क्राइम ब्रांच के 3 कर्मचारियों को भी लगी गोलियां, मुठभेड़ में गुरुग्राम में 4 शूटर ढेर हुए, एक घायल। विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के थे ये सभी शूटर, व्यापारी के घर पर फायरिंग कर भाग रहे थे आरोपी। नारनौल में कार ने बुजुर्ग को उड़ाया, सीसीटीवी में उछलकर 20 मीटर दूर गिरते दिखाई दिया शख्स, मौके पर मौत। रामपुर पुलिस ने किया ठगी का खुलासा, 2 गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ करते थे ठगी। झारखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का खुलासा, ग्रामीणों ने संदिग्ध आरोपी को दबोचा। दिल्ली के बैंकेट हॉल में एक झगड़े में गोली चली, 10 राउंड फायरिंग हुई, महिला को छू कर निकली गोली। पटना में संविदा लाइनमैन की मौत का पर बवाल, परिवार ने लगाया पीट पीट कर हत्या का आरोप, सड़क जाम कर किया बवाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर अचानक से भरभरा कर गिरा फ्लाईओवर का हिस्सा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का खौफनाक मंजर। पुणे में वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर महिला का जमकर हंगामा, रास्ता बंद करने को लेकर पुलिस से भिड़ी महिला, सड़क पर लेटी। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। अलवर में बुजुर्ग की हत्या, हाथ पैर बांधकर गला दबाया, बुजुर्ग के घर से लाखों का कैश गायब। इंदौर आ रही बस में टायर फटने के बाद लगी भीषण आग, 26 यात्रियों की बची जान, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चोरी के आरोप में युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो आया सामने। जोधपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर तलवार लाठी के साथ हमला, वारदात सीसीटीवी में कैद। लगातार तीसरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से हराया, एम्बापे ने मेसी की बराबरी की, सबसे ज्यादा 8 गोल दागे। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज से इकलौते टेस्ट मैच की शुरुआत, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा मैच। भारत और इंग्लैंड की ये मैच होगा ऐतिहासिक, 142 साल के इतिहास में लॉर्ड्स में पहली बार खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच।
भारत 12 साल बाद इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारा, 9 विकेट से चौथा मैच गंवाया। कप्तान श्रेयस के 80 रन काम नहीं आए। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज 2014 में जीती थी। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए चौथे टी20 में इंग्लैंड ने 159 रन का टारगेट सिर्फ 13.5 ओवर में पूरा किया, एक विकेट खोकर हासिल कर लिया मैच।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 8:16 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर 1:15 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:44 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है।
5: जो सनातन है वही समाजवादी है।
4: ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं धन की राजनीति करती है।
6: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है।
7: हमारे धर्म में सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है।
4: बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए, यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी, यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
8: मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो लेकिन मुसलमान की सीना चोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
4: इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है।
9: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
4: यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

दोस्ती का एक और अहम पड़ाव, आज जाएंगे न्यूजीलैंड। ईरान के बुशहर और बंदर अब्बास से फिर धमाकों की गूंज, अमेरिका का हमले से इनकार। ईरान बोला हॉर्मुज में हिमाकत की तो कई देशों को नुकसान। आयतुल्ला

0: पाने के लिए चोरी की रकम पहले अपने रिश्तेदारों और फिर करीबी लोगों के बैंक खातों में डाली, बाद में उसे अपने खातों में वापस मंगाकर लेन देन छिपाने की कोशिश की। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, अब धीरे धीरे तमाम अलग अलग तरीके के मनी ट्रेल सामने आ रहे हैं। पहले कहा गया कि कार खरीदी गई, अब शेयर मार्केट में निवेश की बात आ रही है। किन किन लोगों ने कहां कहां अलग अलग जगहों पर पैसे लगाए, जिसमें जमीन खरीद भी शामिल है?
1: नेहा, देखिए एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जब तीन चार लोगों को, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, इन तमाम लोगों को जब रिमांड पर लेकर अब पूछताछ की गई है, तो और भी खुलासे आए हैं, जिसमें अपने करीबियों रिश्तेदारों के अकाउंट्स में आय से ज्यादा संपत्ति मिली है, उनको फ्रीज किया गया है, 30 अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। कल गाड़ी पकड़ी गई है, वो गाड़ी बरामद कर ली गई है और इस वक्त वो राम जन्मभूमि थाने में सीज करके रखी हुई है, जो इस चंदे के पैसे से इन आरोपियों ने खरीदे थे। इसके अलावा ये भी अभी चर्चा है कि जो ये भी जानकारी सामने आई है कि पैसे शेयर बाजार तक में लगाए गए थे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि आखिर में हाल के दिनों में ये लोग इतने बेलगाम हो गए थे कि वो एक बार में ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर जा रहे थे। जो बैंक है, बैंक की तरफ से भी लापरवाहियां सामने लगातार आ रही हैं कि किस तरीके से जानबूझ करके इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया है। तो कल आखिरकार तकरीबन 40 घंटे की पूछताछ के बाद जो तीन आरोपियों को जो लिया गया था रिमांड पर, उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है, लेकिन नए खुलासे आ रहे हैं। एक और बात सामने आ रही है, वो ये कि क्या इस पर भी तहकीकात हो रही कि क्या जो लोगों ने अपने गहने चढ़ाए उसे भी क्या गला करके सर्राफे को बेचा गया। कई सर्राफे के जो मालिक हैं वो इस वक्त रडार पर हैं। तो इस वक्त लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और लगातार जांच चल रही है। नेहा,
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में कई जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें पैसे से खरीदी गई एक और कार भी जब्त हुई है। इन खुलासों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और फिर चंपत राय, अनिल मिश्रा की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से विदाई के बाद पहली बार यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि करीब 20 दिन पहले भी योगी यहां पहुंचे थे, जब चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का हमला तेज था। उम्मीद की जा रही है आज योगी अयोध्या से विपक्ष पर हमले की धार को और तेज करेंगे। इसकी झलक कल बांदा में देखने को मिली।
3: याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
2: इस बीच अयोध्या में चढ़ावा चोरी केस की जांच जारी है। थाना राम जन्मभूमि में खड़ी ये स्विफ्ट डिजायर कार चढ़ावा चोरी केस में नई बरामदगी है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के निशानदेही पर कार बरामद की गई है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। दरअसल पुलिस कल तीन आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा को लेकर सुबह 4 बजे इनके पैतृक निवास पर लेकर गई थी और छापेमारी की, जहां से कार और कई चीजें बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प के निशानदेही पर कार के अलावा सोने की चेन और सोने का पेंडुलम भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों की 40 घंटे की रिमांड लेकर पुलिस ने चढ़ावा चोरी पर गहन पूछताछ की थी। पूछताछ और निशानदेही के आधार पर लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हो चुकी है ब्रिजा कार।
4: पुलिस ने जिन तीन आरोपियों की रिमांड ली सुबह सुबह आज 4 बजे लेकर उन्हें उनके पैतृक निवास पर ले गई सूत्रों के मुताबिक, और तीनों के पैतृक निवास से काफी कुछ बरामद किया है। उनमें से एक ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और बड़ी बात यह है इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक एक ज्वेलरी और एक गोल्ड पेंडुलम भी जो है वो अनुकल्प के आवास से बरामद किया है पुलिस ने। तो कहां से आखिर इतना

0: सोना खरीद लिया, कहां से इतनी गाड़ियां अनुकल्प ने खरीद ली जब मासिक आय महज 13 से 15 हजार रुपए थी।
1: तीनों आरोपियों के 40 घंटे की रिमांड खत्म हो चुकी है और कल तीनों को वापस जेल भेज दिया गया। इस बीच चढ़ावा चोरी केस में कल एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी गई है। इस आईडी का उपयोग श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच में पाया कि इन आईडी का दुरुपयोग करते हुए उचित जांच पड़ताल के बिना अंधाधुंध वीआईपी पास जारी किए जाते रहे। सूत्रों के मुताबिक जांच में कथित तौर पर यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव ने इस खामी का फायदा उठाकर सैकड़ों अनधिकृत वीआईपी दर्शन पास जारी किए। आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी वीआईपी पास जारी कराने के नाम पर एक कथित रैकेट चला रहे थे। इसके जरिए अवैध रूप से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे। चढ़ावा चोरी केस की परतें जैसे जैसे उतर रही हैं, आस्था के साथ गंदे खेल का भंडाफोड़ होता जा रहा है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये जो डिजिटल आईडी का इस्तेमाल वीआईपी पास जारी करने के लिए किया जाता था, ये किस तरह का रैकेट था? एक एक पास के लिए पैसे लिए जाते थे और अगर लिए जाते थे तो कितने?
3: देखिए, सबसे पहले तो इनका जो डिजिटल आईडी जो था, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और इनकी आईडी दरअसल टिन्नू यादव के पास हुआ करती थी। वो अंधाधुंध तरीके से जितने लोग चाहते थे या जितने लोगों को वो चाहता था, वीआईपी दर्शन या सुलभ दर्शन के नाम पर वो पास जारी होते थे। फिलहाल जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने एक तरीके से नए तरीके की जो व्यवस्था की है, उसमें चाहे चंपत राय हो या फिर गोपाल राय, इनकी जो डिजिटल आईडी है उसके नाम से अब कोई भी वीआईपी पास जारी नहीं होगा, ये उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो एक तरीके से ये साफ हो गया कि चूंकि किसी दूसरे शख्स के पास इस डिजिटल आईडी का पासवर्ड हुआ करता था, खासकर टिन्नू के पास, और वो इसका मिसयूज किया करता था, वो जिसे चाहता या जितने लोगों को चाहता था उनको ये सुलभ दर्शन होते थे। आरोप तो ये भी लग गए थे कि इस सुलभ दर्शन के जरिए पैसे की उगाही हो रही है, यानी कि अगर किसी को राम मंदिर आकर के दर्शन करना है, डिजिटल आईडी अगर उसको सुलभ पासे चाहिए तो वहां पर पैसे लगते थे। तो ये एक बड़ा, कह सकते हैं कि उस लिहाज से भी फैसला है, और कहीं ना कहीं चंपत राय के लिए बड़ा झटका है कि ऐसा शख्स जो महासचिव रहा है उसकी डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी गई है, यानी कि अब उसके नाम से कोई भी सुलभ दर्शन पास जारी नहीं होगा। और यही गोपाल राव के साथ भी हुआ है। तो ये दोनों मुख्य थे, अब इस्तीफे हो चुके हैं, दोनों बाहर हैं। इस वजह से ट्रस्ट ने इन दोनों की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी है।
2: ठीक है,
3: अब कोई इनका पासवर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। इस दौरे में मशहूर मेलबर्न क्रिकेट मैदान से आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ और पूर्व कप्तान स्टीव वॉक की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लीग बिग बैश के ओपनिंग मैच का आयोजन भारत में कराने का ऐलान किया। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। ये पहला मौका होगा जब भारत की सरजमीं पर किसी विदेशी लीग का मैच होगा।
4: 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानि बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
2: बात गुरुग्राम की, जहां पर आधी रात को बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हुए हैं, 1 गंभीर रूप से घायल है। आधी रात को ऐसे एनकाउंटर में करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। 3 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश दीपक नांदल गैंग के। तो ये देर रात एनकाउंटर जिसमें चार बदमाश ढेर, एक घायल, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। यानी कि ये लंबा चौड़ा एनकाउंटर चला जिसमें तीन पुलिस वाले गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं।
5: गुरुग्राम में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों की आवाज से गूंज उठा गुरुग्राम का तुषांत लोक इलाका। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में पुलिस की गाड़ियां और सायरन और सुरक्षा बल। तुषांत लोक में दीपक नांदल गैंग के शूटरों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से करीब 25 से 30 राउंड तक फायरिंग हुई जिसमें पांच बदमाशों को गोली लगी जिसमें चार बदमाश ढेर हो गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बदमाशों की तरफ से की गई गोलीबारी में तीन गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
6: क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली थी कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में चार से पांच हथियारबंद बदमाश गुरुग्राम के प्रमुख व्यवसायी के घर पर फायरिंग करने वाले हैं। जैसे ही क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली, क्राइम ब्रांच ने इस पूरे इलाके में बैरिकेटिंग की थी। उसके बाद इन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा था और जैसे ही गुरुग्राम पुलिस की टीम को सूचना मिली कि ये बदमाश यहां पर पहुंचे हैं और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, वैसे ही तमाम क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और दोनों के बीच में आमने सामने की फायरिंग हुई जिसमें पांच बदमाशों को गोली लगी थी। चार की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि एक बदमाश को गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा तीन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी गोली लगी है जिन्हें की गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
5: विदेश में बैठा गैंगस्टर दीपक नांदल गुरुग्राम के एक व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकियां दे रहा था जिसके बाद उसके शूटर ने व्यापारी के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया।
7: एक व्यापारी जिसको एक विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफी समय से फिरौती की कॉल्स आ रही थी और धमकी दी जा रही थी, उसके घर के ऊपर पहुँच कर उन्होंने यहाँ सुशांत लोक फेस टू एरिया के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान में पुलिस जब यहाँ पर मौके पर पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम्स, तो उनको जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी।
5: बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से पांच ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात मौसम की करेंगे। देश भर में इस समय मॉनसून सक्रिय है। यूपी में पिछले 24 घंटे में जबरदस्त बरसात हुई है। प्रयागराज से मेरठ तक मूसलाधार बारिश से सब कुछ पानी पानी हो चुका है। हापुड़ में दरअसल भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर 3 फीट तक पानी भर चुका है।
1: दो दिन की लगातार बारिश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक जनजीवन को बेहाल कर दिया है। शहर हो या कस्बे, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर जलभराव है, गलियां तालाब बन चुकी हैं और कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। बाजार सूने हैं, लोग घरों में कैद हो गए और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हुई। ये यूपी का हापुड़ जिला है। पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बरसात ने हापुड़ को मानो डुबा दिया है। जल निकासी के दावों की पोल खुल गई है। हापुड़ के हाफिजपुर रेलवे अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इसी पानी से गुजरने को मजबूर हैं। बाइक और कारें पानी में बंद हो रही हैं, लेकिन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब जरा यूपी के मुजफ्फरनगर की तस्वीर भी देखिए। गलियों में पानी, सड़कों पर सैलाब, घर की डेहरी तक पानी। मुजफ्फरनगर के शाहबुद्दीनपुर रोड, रामपुरी, एकता विहार में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। कॉलोनी के अंदर के सभी नाले चोक कर गए। खर्च भी होता है लेकिन जब बारिश होती है तो सब बह जाता है। यूपी का मौसम चुनावी है इसलिए यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जनता की सुध लेने निकल पड़े। खुद पानी में उतरे ताकि लगे कि मंत्री जी भी इस असुविधा से व्यथित हैं। मुजफ्फरनगर के हनुमत धाम में मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। रुड़की चुंगी की जर्जर पुलिस चौकी में भी पानी घुस गया। और ये मेरठ की सड़कें हैं जो बारिश से लबालब भर गई। सड़क पर लहरें उठने लगी। आसपास की दुकानों में पानी घुस गया। शहर के चौक चौराहे पानी में डूब गए। मेरठ शहर में भी जल निकासी के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अब जरा आगरा की भी तस्वीरें देखिए। ये थाना कमला नगर का कर्मयोगी मोहल्ला है, जहां बारिश के बाद सड़क पर अचानक बड़ा सा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि स्कूलों की छुट्टी थी, बारिश की वजह से ट्रैफिक भी कम था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
8: सावधान, अगर आप आगरा की सड़कों पर चल रहे हैं तो कहीं आपकी गाड़ी सीधे सड़क तोड़ते हुए पाताल लोक में ना समा जाए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आगरा की कई सारी सड़कों की देखने को मिल रही है, जहां बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हुए हैं।
1: ये प्रयागराज है, जहां बारिश का पानी सिविल लाइंस थाने में घुस गया। सिविल लाइंस प्रयागराज शहर का सबसे वीवीआईपी इलाका है। थाने के ठीक सामने प्रयागराज नगर निगम का ऑफिस है, लेकिन जल निकासी नहीं होने की वजह से थाना डूब गया। कहने को तो प्रयागराज स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी में बारिश के पानी के प्रबंध का इंतजाम शून्य है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात उत्तराखंड की, जहां पर दोहरी मार पड़ रही है। आसमान से आफत है और पहाड़ से बोल्डर गिर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड अलर्ट मोड पर है। बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, हर जगह मॉनसून ने मुसीबत बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर भी कई रास्ते बंद हो गए।
1: पहाड़ों पर मानसून सक्रिय है, आसमान से आफत बरस रही है। उत्तराखंड के कई जिले अलर्ट मोड पर हैं। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लोगों को आगाह किया गया है कि अपने घर पर रहें, जरूरत हो तभी निकलें। इन सब के बीच पहाड़ों पर आसमानी कहर भी दिखने लगा है। बरसाती नाले उफान पर हैं। ये ऋषिकेश की बिन नदी है। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बारिश से अचानक नदी में उफान आ गया। हरिद्वार चिल्ला रोड पर सैलाब आ गया। एक स्कूटी सवार उफनती नदी के बीचों बीच फंस गया। गनीमत रही कि समय रहते कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और स्कूटी सवार को सुरक्षित निकाल लिया। देहरादून के विकास नगर में भी भारी बारिश मुसीबत लेकर आई। हिमाचल प्रदेश से सटे इलाकों में तेज बारिश ने आफत बढ़ा दी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कुछ जगहों पर झरना फूट पड़ा। पानी के साथ पहाड़ से भी मलबा गिर रहा है। राहत बचाव दल की एक टीम मौके पर तैनात कर दी गई है।
9: हमारी मौजूदगी दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग जुट्टो के पास है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये यात्रा मार्ग है। यहाँ से अक्सर गंगोत्री यमुनोत्री धाम की दर्शन करने वाले यात्री गुजरते हैं और पूरे रोग रूप में बह रहा ये झरना तो आवाजाही करने वाले हैं, लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। आप देखेंगे कि भव्य रूप में बह रहे झरने से मलबा और पत्थर भारी मात्रा में जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर आ गया है। लोग मुश्किल आवाजाही कर पा रहे हैं।
1: बागेश्वर में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिरने लगे। गनीमत रही कि उस वक्त वहां से यातायात बंद था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन और राहत बचाव दल की टीमें चौकन्ना हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। पहाड़ों से मलबा आने की वजह से बार बार ट्रैफिक रोकना पड़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बीआरओ को तैनात किया गया है, ताकि मलबा जल्दी साफ कराया जा सके। प्रशासन ने पर्यटकों को भी आगाह किया है कि मौसम की चेतावनियों का सख्ती से पालन करें।
10: लगातार हो रही बारिश के चलते जो गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे है वो जगह जगह पर बंद हो गया है। लगातार 14 घंटे से बारिश लगी हुई है और इसके चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे की यदि बात की जाए तो सिलाई बैंड और स्याना चट्टी के पास पूरी तरह से बंद हुआ है। एहतियातन प्रशासन के द्वारा यात्रियों के वाहन को रोका जा रहा है। यहां तक कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी आवाजाही के लिए मना किया गया है।
1: पिथौरागढ़ में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट है, जहां अचानक पहाड़ टूटने से रास्ता बंद हो गया। यह हादसा टंपा के पास हुआ, जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रियों को परेशानी हो सकती है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और बात ममता बनर्जी की, जिनकी चुनौतियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। विधायकों से शुरू हुआ टूट का सिलसिला अब राज्यसभा सांसदों तक पहुंच चुका है। सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और सिर्फ शामिल नहीं हुए, हाथ उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी की पक्की हो गई है।

0: पहले विधायक टूटे, फिर 20 सांसद छूटे, पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ी, मुश्किलों से जूझ रही ममता बनर्जी की चुनौती और बढ़ रही है, क्योंकि महीने भर पहले जिन 3 राज्यसभा सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा वो एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए और कुछ ही देर बाद ये तीनों बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बन गए। बीजेपी को इन तीनों नेताओं सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबड़ाई की जीत का पूरा भरोसा है, यानी उपचुनाव के बाद भी उच्च सदन में भेजे जाने वाले चेहरे वही रहने की उम्मीद है, बस उनकी पार्टी का रंग बदल चुका है।
1: हमारे यहाँ हम कितना ज्यादा केंद्र विरोधी है ये दिखाने के लिए कभी बंद, कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी कुछ, ये हमारे 3 जनरेशन बर्बाद हो गया है बंगाल का। 3 जनरेशन बर्बाद हो गया जिनके पास कुछ उनका अपॉर्चुनिटी था, वो बंगाल से भाग के बाहर चले गए, ये वृद्धाश्रम बन गए हमारा सारे राज्य।
2: एक पार्टी एक टाइम कुछ दिन के लिए थोड़ा अपोजिशन में चला आया, इसके लिए अगर सीनियर लोगों को ऐसा सब चेंज, अभी ये खराब है वो खराब है, अरे जब चीफ मिनिस्टर थे ममता बनर्जी तब अब कुछ छोड़ा नहीं, अब सब छोड़ने का टाइम, ये पब्लिक देख रहा है, पब्लिक सब देख रहा है।
0: संसदीय नियमों के मुताबिक सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिकबड़ाई का कार्यकाल सितंबर 2029 तक का था, जबकि सुष्मिता देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक चलना था। अब इन खाली सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और तृणमूल छोड़ने वाले यही 3 नेता उम्मीदवार होंगे। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो नंबर गेम अब पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 208 विधायक हैं। 3 सीटों वाले इस उपचुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए लगभग 70 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो बिना किसी बाहरी समर्थन के अपने 3 उम्मीदवारों को आसानी से 70, 69 और 69 वोट दिला सकती है। इस गणित के हिसाब से 3 सीटों पर जीत पूरी तरह पक्की मानी जा रही है। साफ है इस कदम से बीजेपी ने ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका दे दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: और अमेरिका से एक बार फिर जारी तनाव के बीच ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर मशहद में कर दिया गया है। उन्हें इमाम रजा दरगाह परिसर में सुपुर्द खाक किया गया और इस दौरान लाखों लोगों ने नम आंखों से अपने नेता को अंतिम विदाई दी और अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की।
0: मशहद का इमाम रजा दरगाह परिसर लोगों का समंदर, हाथों में ईरानी झंडे, धार्मिक बैनर और अली खामनेई की तस्वीरें। लाखों की भीड़ अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहां जुटी थी। कई लोग अपने मोबाइल फोन पर अली खामेनी और मौजूदा सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनी की तस्वीरें भी दिखाते नजर आए। मातमी माहौल के बीच सामूहिक दुआएं की गईं। सुपुर्दे खाक करने से पहले खामेनी के बेटे आयतुल्ला सैयद मुस्तफा खामेनी ने इमाम रजा दरगाह में अपने पिता की जनाजे की नमाज की अगुवाई की। इसके बाद अली खामेनी को दरगाह के करीब सुपुर्दे खाक किया गया। इसी के साथ ईरान में कई दिनों से चल रहे शोक समारोह का समापन मशहद में हुआ। इससे पहले तेहरान, कोम, नजफ और कारबला में भी अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। मशहद में उमड़ी भारी भीड़ ने दिखाया कि अली खामेनी की अंतिम विदाई केवल एक धार्मिक समारोह नहीं बल्कि ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक श्रद्धांजलियों में से एक बन गई। खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान उनके समर्थकों ने किल ट्रंप के बैनरों के साथ अमेरिका को संदेश देने की भी कोशिश की कि अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ईरान में आक्रोश बेहिसाब है। आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में जिस तरह से लाखों लोगों ने लाल कपड़ा दिखाया ये इस्लामिक परंपरा में बदले या खून का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामेनी को मशहद में इमाम रजा की दरगाह के अंदर दफनाने की वजह भी खास है। शिया संप्रदाय के कुल पवित्र 12 इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला या सामर्रा में। इमाम रजा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने जहर देकर हत्या करवा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन अमेरिकी हवाई हमले में हुई थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता का पद संभाला। ऐसे समय में यह अंतिम संस्कार हुआ है जब युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो।
3: और बात क्रिकेट की करेंगे क्योंकि क्रिकेट में भारत को एक बार फिर से हार मिली है। 4 महीने पहले भारत T20 का विश्व विजेता बना था, लेकिन 4 महीने बाद ही टीम इंडिया की T20 में दुर्गति हो रही है। पहले आयरलैंड में 2 मैचेस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। अब इंग्लैंड में भी भारत ने सीरीज गंवा दी है। कल ब्रिस्टल में खेले गए मैच में भारत को इंग्लैंड ने एक तरफा तरीके से 9 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए टीम इंडिया 7 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को 1 विकेट खोकर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर ही टिक पाया। उन्होंने 59 गेंदों पर 80 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से श्रेयस को मजबूत साथ नहीं मिल पाया। इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली। और बात फीफा वर्ल्ड कप की, लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस पहुंच गया है। कल खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। फ्रांस की जीत पे एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने गोल किए। एम्बापे ने इस टूर्नामेंट में 8 गोल दागे हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली। अब सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.

भारत में होगा क्रिकेट के मशहूर बिग बैश लीग का एक मैच, चेन्नई करेगा मेजबानी, मेलबर्न से पीएम मोदी का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती का एक और अहम पड़ाव, आज जाएंगे न्यूजीलैंड। ईरान के बुशहर और बंदर अब्बास में फिर धमाकों की गूंज, अमेरिका का हमले से इनकार, ईरान बोला हॉर्मुज में इमाकत की कई देशों को नुकसान, आयतुल्ला खामेनेई हुए सुपुर्द खाक। राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट लगाई लूट की रकम, ब्याज पर दिए थे पैसे, आरोपियों का खुलासा, दूसरी कार बरामद, चंपत और अनिल मिश्रा की गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद, टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए। ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को इनाम, उपचुनाव के लिए पार्टी ने बनाया उम्मीदवार, कल ही शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। लगातार तीसरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से हराया, एम्बापे ने मेसी की बराबरी की, सबसे ज्यादा 8 गोल दागे। साढ़े 9 बज गए हैं, बुलेटिन में वक्त हो गया है 100 शेयर 100 खबर का। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी, अलीगढ़ में बारिश बनी आफत, सड़कों पर जलभराव, कई इलाकों में लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी में मॉनसून की दस्तक ने बरपाया कहर, पश्चिमी जिलों के लिए आरएमडी का रेड अलर्ट जारी, आज भी तेज बारिश का अलर्ट। सहारनपुर में बारिश का असर, ऑरेंज अलर्ट के चलते प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूल बंद। दिल्ली में भारी बारिश को लेकर आरएमडी की चेतावनी, खराब मौसम के बीच येलो अलर्ट जारी। कडोदरा में लगातार हो रही बारिश के बीच मगरमच्छों की मौजूदगी से दहशत का माहौल, विश्वामित्र नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छों का झुंड नजर आया। नेपाल के पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले महाम नदी के तटबंध टूटे, कई एकड़ फसल जलमग्न। कटिहार में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण कई हिस्सों में कटाव का कहर जारी, लोगों में पलायन को लेकर दहशत। यूपी के बांदा में बारिश का कहर, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान, ग्रामीणों ने देर रात डीएम आवास पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। हिमाचल लगातार मूसलाधार बारिश जारी, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, 12 और 18 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश और बिजली से अब तक 7 की मौत। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंदन मार्ट मॉल की बाउंड्री वॉल गिरी, पास की सड़क भी कई फीट धंसी। गाजियाबाद में भी भारी बारिश से जलभराव, वैशाली सेक्टर 3 में सड़कें बनी तालाब, रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। इंद्रापुरम में जलभराव के बीच करंट उतरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत, बिजली विभाग का लापरवाही के आरोप। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, टिहरी रुद्रप्रयाग नैनीताल बागेश्वर और चमोली में स्कूलों की छुट्टी। ऋषिकेश हरिद्वार चीला रोड पर लगातार बारिश कारण बीन नदी उफान पर, तेज बहाव के बीच फंसा स्कूटी सवार, स्थानीय लोगों ने शख्स को बचाया। लगातार भारी बारिश के बाद नैनीताल में मंडरा लैंडस्लाइड का खतरा, पूरे इलाके में दहशत का माहौल, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। सूरत में लगातार बारिश बनी जानलेवा, 14 लोगों की मौत, नदी के पानी में डूबी क्रेन और डंपर को ड्रोन वीडियो आए सामने। बिजनौर में भारी बारिश के चलते सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी, लोगों के लिए बढ़ गई है मुसीबत। प्रयागराज में पहली बारिश में नगर निगम की खुली पोल, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बनी तालाब। सहारनपुर में झमाझम बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर भरे पानी में स्विमिंग करते नजर आए बच्चे। मेरठ में पिछले 48 घंटों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, सड़कों और गलियों में 2 से 3 फीट तक भरा पानी, आम जनजीवन प्रभावित। मुजफ्फरनगर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन ठप, रिहायशी इलाकों समेत मंदिर परिसर में भरा पानी। आगरा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में भारी जलभराव और सीवर ओवरफ्लो के कारण घरों में घुसा गंदा पानी। सहारनपुर में उफनती नदी में बहे बाइक सवार, ग्रामीणों ने महिला समेत 3 लोगों की बचाई जान। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी बैंड के पास भारी मलबाने से 707 बाधित। विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खौफनाक वीडियो आया सामने, सड़क पर आया मलबा। धौलपुर में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, आफत वाली बारिश में भरभराकर गिरा 2 मंजिला मकान, 6 घायल। केरलम के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर बड़ा सड़क हादसा, स्टेशन पुनर्विकास कार्य के दौरान 100 साल से ज्यादा पुराना घंटा घर ढहा। सीएम योगी का 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरा, कई विकास और सरकारी कार्यक्रमों में होंगे शामिल, ट्वीट कर लिखा अयोध्या और बस्ती में विकास और जन कल्याण के नए अध्याय जुड़ेंगे। आज सीएम योगी अयोध्या और बस्ती का करेंगे दौरा, कल कुशीनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सचिव स्तर समेत 20 आईएएस तबादले के तहत बहाल। बीएचयू पर एनजीटी की बड़ी कार्रवाई, 33 पेड़ों की अवैध कटाई पर 2,65,00,000 का पर्यावरण जुर्माना वसूलने का दिया आदेश। लोहिया संस्थान पर मेडिकल लापरवाही का आरोप, फूड पाइप सर्जरी के बाद युवक का काटना पड़ा हाथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, शेयर बाजार में लगाई जा रही थी चोरी की रकम,
पुलिस सूत्रों का दावा, चोरी की रकम रिश्तेदारों के हाथों में बेचकर वापस मंगाई गई, लेन देन छिपाने की कोशिश। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर की तलाशी, तीनों आरोपियों से जुड़े 30 बैंक खाते फ्रीज। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 22 जुलाई के बाद से दर्शन पूजा से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक की नई व्यवस्था की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर दान गिनती कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, लगभग 2 दर्जन कर्मियों ने छोड़ी ड्यूटी। मेलबर्न में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, भारत में होगा बिग बैश लीग का आयोजन। चेन्नई में खेला जाएगा बिग बैश लीग का पहला मुकाबला, 12 दिसंबर को रेनेगेड्स और स्कॉचर्स होंगे आमने सामने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा खिलाड़ियों का हौसला देकर बोले पीएम, क्रिकेट दोनों देशों का साझा जुनून है। पीएम मोदी ने खेल सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर, कहा ऑन फील्ड के साथ साथ आउटफील्ड साझेदारी मजबूत। पीएम मोदी एल्बनीज के ने लॉन्च किया रोड मैप, स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी पर होगा फोकस। ईरान के बुशहर में धमाकों के बाद मछली पकड़ने वाले घाट पर कई नावों में लगी आग, जलती नाव का वीडियो आया सामने। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान लगातार धमाके, न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, चोंगादक और कोनारक में विस्फोट हुए। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बड़ा दावा, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक कोनारक में ईरानी नौसेना के ठिकानों पर किया गया हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने ईरान के दावे को किया खारिज, का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। अमेरिकी हमलों के बीच मशहद में सुपुर्द कहा कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई। यूपी के झांसी में चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में गिरा ट्रक से, ट्रेन के नीचे जाने से पहले आरपीएफ जवान ने बचाई जान। सुल्तानपुर में महिला बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में युवक पर जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल। पालघर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर फटा, धमाकों में घर जलकर पूरी तरह खाक। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक कार्डबोर्ड रोल गोदाम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पुणे के आलंदी में पालकी प्रस्थान के दौरान महिला ने बीच सड़क पर किया हंगामा, ट्रैफिक व्यवस्था का विरोध करते हुए सड़क पर लेटी। रोहतास में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक नेशनल हाईवे जाम किया। अजमेर जोधपुर आरटीओ को बम उड़ाने की धमकी, 1 घंटे तक चली गहन जांच के बाद नहीं मिला कोई विस्फोटक। सहारनपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत, मामूली विवाद, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पटना में पति के अवैध संबंध का विरोध करना पड़ा पत्नी को भारी, पति ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या की, दोनों आरोपी गिरफ्तार। संभल में 59 साल पुरानी इमारत को किया गया ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत ने जर्जर बिल्डिंग को ढहाया, भारी बारिश के चलते 3 घंटे तक चली कार्रवाई। गुजरात के वेरावल में जुए पर एसएमसी की रेड के दौरान बवाल, पुलिस टीम पर हमला, 40 नामजद समेत 200 लोगों पर केस दर्ज। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, नायब तहसीलदार घायल, 200 लोगों पर केस दर्ज। कौशाम्बी में जमीन विवाद पर बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। गुरुग्राम में हुआ एनकाउंटर, क्राइम ब्रांच के 3 कर्मचारियों को लगी गोली, मुठभेड़ में 4 शूटर ढेर। विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के थे सभी शूटर, व्यापारी के घर पर फायरिंग करके भाग रहे थे आरोपी। नारनौल में कार ने बुजुर्ग को उड़ाया, सीसी में उछलकर 20 मीटर दूर गिरते दिखा शख्स, मौके पर मौत। रामपुर पुलिस ने किया ठगी का खुलासा, 2 गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ करते थे ठगी। झारखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का खुलासा, ग्रामीणों ने संदिग्ध आरोपी को दबोचा। दिल्ली के वेंकट हॉल में झगड़े में चली गोली, 10 राउंड फायरिंग, महिला को छूकर निकली गोली। पटना में संविदा लाइनमैन की मौत पर बवाल, परिवार ने लगाया पीट पीट कर हत्या का आरोप, सड़क जाम कर किया बवाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर अचानक गड़बड़ाकर गिरा फ्लाईओवर का हिस्सा, सीसी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। पुणे में वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर महिला का जमकर हंगामा, रास्ता बंद करने को लेकर पुलिस से भिड़ी महिला, सड़क पर ही लेट गई। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा पूर्णिया समेत कई रूट्स पर सुविधा। राजस्थान के हरियालो राजस्थान अभियान को बढ़ावा, लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रही है सरकार। लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क घूमने वाले पर्यटकों के लिए नई सुविधा, रेलवे चलाएगा एमजी टूरिस्ट एसी चेयर कार ट्रेन। गुजरात के दाहोद दौरे पर नितिन गडकरी, दिल्ली मुंबई हाईवे परियोजना का समीक्षा, काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश। दिल्ली में इंटरनेशनल रेश फेडरेशन की वर्षगांठ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की शिरकत, डॉक्टर अशोक अग्रवाल की मौजूदगी में प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। अलवर में बुजुर्ग की हत्या, हाथ पैर बांध कर गला दबाया, बुजुर्ग के घर से लाखों का कैश गायब। इंदौर आ रही बस में टायर फटने के बाद लगी भीषण आग, 26 यात्रियों की बची जान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चोरी के आरोप में युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो वायरल। जोधपुर में पुरानी रंजिश में युवक की तलवार, लाठी से हमला, वारदात सीसी में कैद। लगातार 3rd वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंचा फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से मात देकर मेसी की बराबरी
एम्बापे ने की सबसे ज्यादा 8 गोल दागे। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज अलग अलग इकलौते टेस्ट मैच की शुरुआत। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच ये मैच होगा ऐतिहासिक। 142 साल के इतिहास में लॉर्ड्स में पहली बार खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड से T20 सीरीज हारा, 9 विकेट से 4th मैच गंवाया। कप्तान श्रेयस अय्यर के 80 रन काम नहीं आए। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने पिछले T20 सीरीज 2014 में जीती थी। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए 4th T20 में इंग्लैंड ने 169 रन का टारगेट सिर्फ 13.5 ओवर में हासिल किया। 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया लक्ष्य। साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी ने फिल्म लेनिन में बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। इसके जरिए एक्टर अखिल 3 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कर रहे हैं कमबैक। डिज्नी की मोस्ट अवेटेड लाइव एक्शन फिल्म मोआना भी हो रही है लॉन्च। मोआना के किरदार में कैथरीन लोगाइया आएंगी नजर। हॉरर फिल्मों के शौकी लोगों के लिए एक बार फिर दस्तक दे रही है अमेरिका सुपरनेचुरल फिल्म ईविल डेड बर्न। बतौर लीड हीरो अपनी पहली फिल्म भाई तेरा स्टार लेकर आ रहे हैं राघव जुयाल। फिल्म का ट्रेलर रिलीज 30 जुलाई को थिएटर्स में होगी लॉन्च। और इस बीच बड़ी खबर चीन से, जहां के फुजियान प्रांत में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने के बाद बड़ा हादसा हुआ है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में तकरीबन 28 लोगों की मौत हो गई है। CCTV वीडियो में बहुमंजिला फैक्ट्री आग की लपटों में घिरी हुई दिख रही है। आसमान में घना काला धुआं उठता दिख रहा है। आग में फंसे कई लोग छत पर दिखाई दिए हैं, जबकि उनके चारों ओर धुआं फैल रहा है। फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर में पहले आग लगी, उसके बाद ये आग फैलती चली गई, अन्य मंजिलों तक पहुंच गए। उसके बाद देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका थी। 28 मौत उसमें बताई जा रही है। एक जूता फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद दूर तक ये धुएं का काला गुबार देखा गया। बेहद भीषण यह अग्निकांड जिसमें 28 लोगों की जान चली गई है। रुकेंगे शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
7: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
8: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग रहे। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: In association with
15: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
16: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
14: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.
17: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का है। लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।

गलती किसकी थी, दोषी कौन, जिम्मेदारी किसकी, लापरवाह कौन कि राम के धाम में चोरी का कलंक लग गया। ट्रस्ट कहता है कि 6 जुलाई की बैठक के बाद व्यवस्था में तेजी से सुधार किया जा रहा है। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बन गए। अब बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। जहां दान की गिनती होगी वहां 43 लोग रहेंगे। 13 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लग गए। दान पेटी को कक्ष तक पहुंचाने के लिए 27 निजी सुरक्षा कर्मी रखे गए। दान पेटियों के पास अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए। बाकी आगे का काम संभालने के लिए ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए सर्च कमेटी बन चुकी है। सीईओ आते ही सारा मामला पटरी पर आ जाएगा, वरना सरकार से लेकर अदालत तक तमाम रास्ते खुले हुए हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ओह सॉरी

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा। ठीक है
1: बिल्कुल सही
0: मैं भाई। तीन तेरा तीन मेरा। ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
5: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
6: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त मुगल परस्त मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है। एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
7: उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
6: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के दो सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
8: कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं, कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं। ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

भारत में होगा क्रिकेट का मशहूर बिग बैश लीग का एक मैच, चेन्नई करेगा मेजबानी। मेलबर्न से प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती का एक और अहम पड़ाव, आज जाएंगे न्यूजीलैंड। ईरान के बुशहर और बंदर अब्बास में फिर धमाकों की गूंज, अमेरिका का हमले से इनकार, ईरान बोला हॉर्मुज में हिमाकत की तो कई देशों को नुकसान, आयतुल्ला खमेनी हुए सुपुर्द खाक। राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम, ब्याज पर भी दिए थे पैसे, आरोपियों का खुलासा, दूसरी कार भी बरामद, चंपत अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को इनाम, उपचुनाव के लिए पार्टी ने बनाया उम्मीदवार, कल ही शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश।

0: मोरक्को को 2-0 से हराया। एम्बापे ने मेसी की बराबरी की, सबसे ज्यादा 8 गोल दागे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: पास एक एकड़ जमीन के दस्तावेज मिले जो उसने महज 6 लाख रुपए में जो दस्तावेज बता रहे हैं उसमें खरीदी, हालांकि इसके जमीनी दाम बहुत ज्यादा हैं। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, ये बताइए कि ये जो सारा पैसा जो दान चोरी का किया गया वो शेयर मार्केट तक में लगाया गया, कैसे पता चल रहा है इन सब के बारे में?
1: देखिए अंजलि, जब जांच हो रही है तो दर दर परत खुल रही है इसकी, और पुलिस साफ तौर से एक एक बिंदु पर जांच कर रही है, उन जगह पर ले भी जा रही है जहां जहां इन्होंने पैसे को छुपाया है या जहां जहां रखा हुआ है। इस बार जो जानकारी पुलिस के हाथ आई है उसमें सबसे बड़ी बात थी कि इनकम मिश्रा और जिस तरीके से शुक्ला, माफ कीजिएगा, और अविनाश, इन दोनों ने जो पैसा अपना लगाया वो अलग अलग अकाउंट्स में भेजा जिससे कि शक ना हो कि इनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। दूसरा, उन अकाउंट से जब पैसा लिया तो उसको शेयर मार्केट में निवेश किया, और निवेश करने के साथ साथ कई लोगों को वो पैसा ब्याज पर भी दिया गया। यानी कि अलग अलग अकाउंट्स जो थी, 30 अकाउंट ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड मिले हैं जिनको फ्रीज कर दिया गया है, वो भी पुलिस की जांच में आया है। तो साफ तौर से इनका जो मकसद था वो यही था कि ऐसे पैसे को डाइवर्ट करना जिससे कि वो इनकम टैक्स में ना आया या किसी तरीके से पहचान में ना आ पाए, इस वजह से वो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे थे और फिर उन्हीं अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में ना मंगाकर शेयर मार्केट में लगा रहे थे जिससे कि पूरी तरीके से ये हो जाए कि इनका जो पैसा है वो इनके अकाउंट में ना होकर इधर उधर डाइवर्ट है। तो जो चंदा का पैसा है, जो दान का पैसा है,
0: चंदे के पैसे से फायदा कमाने की कोशिश शेयर बाजार के जरिए भी की गई। तो आरोपी अनुकम मिश्र की निशानदेही पर एक और कार भी बरामद हुई है। अयोध्या थाने में रखी ये सफेद स्विफ्ट कार अनुकल्प ने दान चोरी के पैसे से खरीदी है, ये पता चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प ने इसे कबूला और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने इस कार को बरामद कर थाने में खड़ा कर दिया है। थाने में रखी ग्रे कलर की ब्रेजा कार दूसरे आरोपी अविनाश की है, उसी की निशानदेही के बाद इसे जब्त किया गया था। तो चलिए वापस रुक करते हैं आशीष का। आशीष, जो पैसा है वो एक जगह ही नहीं लगा, जहां हमने बताया शेयर बाजार, वहीं अब सामने आ रहा है कि कारों पर भी खर्च हुआ, इसकी डिटेल्स बताइए।
1: बिल्कुल अंजलि, देखिए जो पैसा है वो किस मद में खर्च किया जाना है ये भी दिमाग लगा रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। इन्होंने कार के रूप में जो आपने बताया कार खरीदी और उस कार में दान का पैसा लगाया, क्योंकि इसके अलावा जो प्लॉट्स हैं वो प्लॉट खरीदे, जमीन जो थी वो सस्ती जमीन थी, उसको किस तरीके से खरीदा दान के पैसे से वो भी पुलिस की जानकारी में आया है। पुलिस वहां पर भी लेकर गई थी जहां पर इन्होंने जमीन को खरीदा है। इसके अलावा जो आभूषण जो सोने के थे उसमें भी पैसा लगाया, यानी कि उन सोने के आभूषणों से भी कहीं ना कहीं पैसा अलग अलग जगह शिफ्ट किया गया है। तो एक तो पैसा जब लेने के बाद किस तरीके से वो ट्रैप ना हो तो उसको शेयर मार्केट में डाला गया, अलग अलग अकाउंट में डाला गया, उसके बाद जो सामान लिया गया घर का, फिर चाहे वो कार हो या लैंड हो।
0: तो पैसा कहां कहां लगाया गया ये तो हमने आपको बता ही दिया। साथ ही चढ़ावा चोरी केस में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और पूर्व व्यवस्थापक गोपाल राव पर नकेल कसी हुई नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन ने तीनों की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी है। इस आईडी का उपयोग श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था, और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच में पाया है कि इन आईडीज का दुरुपयोग करते हुए उचित जांच पड़ताल के अंधाधुंध वीआईपी पास जारी करने के लिए किया गया। तो ये बात सामने आ रही है जांच पड़ताल में, और सूत्रों के मुताबिक जांच में कथित तौर पर यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी टिनू यादव ने इस खामी का फायदा उठाकर सैकड़ों अनाधिकृत वीआईपी दर्शन पास जारी किए। आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी वीआईपी पास जारी करने के नाम पर एक कथित रैकेट भी चला रहे थे और इसके जरिए अवैध रूप से लाखों रुपए की कमाई भी करते रहे। तो एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष का। आशीष, तो न सिर्फ पैसा चढ़ावा चोरी से आ रहा था बल्कि आईडी से वीआईपी दर्शन के पास जारी करके उन्हें बेचा भी जा रहा था क्या?
1: बिल्कुल अंजलि, देखिए कई ऐसे सबूत मिले हैं पुलिस को जिसमें कई ऐसे फर्जी रसीदें मिली हैं, कई ऐसे पासेस मिले हैं जो पास बनाकर लोगों को अंदर बुलाया जाता था, उनको दर्शन कराया जाता था, यही सब व्यवस्था चरमराई जिसके बाद अब उनकी आईडी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो

0: दास है उनकी नई आईडी बनी है, उससे ही अब पास इशू किया जाएगा। जो पुराने जितने भी डिजिटल पास इशू होते थे उन सब पे लगाम लगा दी गई, नकेल कस दिया गया है, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा था वो इन्हीं के जरिए शुरू हुआ था और इतनी तादाद में हो रहा था कि लोगों का कितने लोग अंदर आ रहे हैं नहीं पता है, कौन लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक जो टिन्नू यादव है वो इन पास का, इन आईडी का प्रयोग करता था। अथॉरिटी भले ही बड़े ट्रस्ट के लोगों पर हो, लेकिन प्रयोग उसका टिन्नू यादव जैसे लोग कर रहे थे और किसी को भी वीआईपी एंट्री की तरह करा रहे थे। तो ये पासेज और जो ऑथेंटिकेशन था ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चरमरा गया था और इसी वजह से ये सारी चीजें निकल कर एक एक कर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में सारे जितने भी पुराने डिजिटल साइन करने वाले थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, उसमें फिर चाहे चंपत राय का हो, अनिल मिश्रा का हो, सभी का अब जो है नए बनाए जा रहे हैं, यानी कि नए धीरेन्द्र दास का बनाया गया है और अब उन्हीं से इश्यू किया जाएगा। यानी कि बहुत ही सुरक्षा और फूक फूक कर कदम अब ट्रस्ट रख रहा है
1: कि किसी भी प्रकार का मोड में नजर आ रहा है ट्रस्ट। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जाँच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। आज एक बार फिर उसी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर बड़ा हमला बोल सकते हैं। कल बांदा की जनसभा में योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा था कि जिन्हें कब्रिस्तान से प्यार है वही राम मंदिर का विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया था।
2: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
3: एसआईटी क्या है? लीपा पोती है। लीपा पोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उनपे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
1: हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। अभिषेक, सभी सियासी पार्टियों की नजर रहेगी मुख्यमंत्री के इस दौरे पर, प्रोग्राम क्या है अयोध्या में उनका?
4: देखिए अंजलि, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। बीकापुर जगह है जहां स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की, पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लेकिन अयोध्या का ये दूसरा दौरा है उनका जब से ये पूरा चढ़ावा कांड आया है। याद करिए पिछली बार जब वो अयोध्या आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, आप हमें 15 दिन आप धैर्य रखें। तो खैर 15 दिन हो गया है, पहली रिपोर्ट आ गई है। आज सबकी नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर रहेगी। हालांकि 421 करोड़ की परियोजनाएं और कुल 217 जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, लेकिन नजर तो इस बात पर रहेगी कि अयोध्या में जो कुछ अभी तक हुआ है उस पर योगी आज कहते क्या हैं, इस पर ही सबकी नजर होगी।
1: जी, शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। खबर गुरुग्राम सीध से दिल्ली से सटा, जहां आधी रात को बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में दीपक नांदल गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए हैं और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आधी रात को हुए एनकाउंटर में करीब 25-30 राउंड फायरिंग हुई, इसमें 3 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठा दीपक नांदल गुरुग्राम के एक व्यापारी को रंगदारी के लिए लगातार धमकी दे रहा था, जिसके बाद उसने शूटरों को भेजा और शूटरों ने कल व्यापारी के घर पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने सभी बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश ढेर हो गए और 1 घायल हो गया। साथ ही इसके पास से 5 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं।
5: गुरुग्राम में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों की आवाज से गूंज उठा गुरुग्राम का तुरंत लोक इलाका। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में पुलिस की गाड़ियां और सायरन और सुरक्षा बल। तुरंत लोक में दीपक नांदल गैंग के शूटरों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से करीब 25-30 राउंड तक फायरिंग हुई, जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी, जिसमें 4 बदमाश ढेर हो गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बदमाशों की तरफ से की गई गोलीबारी में 3 गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
6: क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली थी कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में 4 से 5 हथियारबंद बदमाश गुरुग्राम के प्रमुख व्यवसायी के घर पर फायरिंग करने वाले हैं। जैसे ही क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली, क्राइम ब्रांच ने इस पूरे इलाके में बैरिकेटिंग की थी। उसके बाद इन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा था और जैसे ही गुरुग्राम पुलिस की टीम को सूचना मिली कि ये बदमाश यहां पर पहुंचे हैं और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, वैसे ही तमाम क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और दोनों के बीच में आमने सामने की फायरिंग हुई, जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी थी, 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 1 बदमाश को गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 3 क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी गोली लगी है, जिन्हें की गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
5: विदेश में बैठा गैंगस्टर दीपक नांदल गुरुग्राम के एक व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकियां दे रहा था, जिसके बाद उसके शूटर ने व्यापारी के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया।
7: एक व्यापारी जिसको एक विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफी समय से फिरौती की कॉल आ रही थी और धमकी दी जा रही थी, उसके घर के ऊपर पहुँच कर उन्होंने यहाँ सुशांत लोक फेस टू एरिया के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान में पुलिस जब यहाँ पर मौके पर पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम, तो उनको जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी।
5: बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।
1: ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, सुशांत लोक फेस टू गुरुग्राम का एक बेहद पॉश रिहायशी इलाका, वहां पर इस तरह का हमला होना, क्या गैंगस्टर्स का दबदबा बढ़ता जा रहा है गुरुग्राम में?
8: शायद यही वजह है कि जो आपने कार्रवाई पुलिस की देखी है यहाँ पे अंजलि, वो शायद यही जवाब दिया गया है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, दरअसल जिस तरीके से स्कॉर्पियो की जो मूवमेंट थी सुशांत लोक गुड़गांव में, वो पुलिस को पता चल गई थी, क्योंकि पुलिस ने लगातार जो नांदल है, जो गैंगस्टर विदेश में बैठ के धमकियां दे रहा है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। तो पुलिस को स्कॉर्पियो की जब लोकेशन मिली और पता लगा कि सुशांत लोक में वो ट्रेवल कर रही है, घूम रही है, तो पुलिस ने ट्रैप लगाना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने एक व्यापारी के घर के बाहर वो गाड़ी रुकती है और अंधाधुंध वो फायरिंग करने लगते हैं। जाहिर तौर पर जबरन उगाही के इरादे से ये फायरिंग की जा रही थी, ताकि व्यापारी को डराया जाए, आसपास के लोगों में डर पैदा किए जाए और इनका जो व्यापार है वो चले। लेकिन तभी पुलिस वहां पर पहुंच गई। जो पुलिस के 3 कर्मचारी, जो पुलिस के 3 कर्मी घायल हुए हैं, उसमें उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से सबसे पहले ये बोला गया कि हथियार डाल दो, लेकिन डालने के बजाय उन्होंने गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में 4 की मौत हुई है।
1: जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए। और अब बात दिल्ली NCR में आफत बनकर बरसी बरसात की। लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली से लेकर गाजियाबाद में हादसों ने लोगों को डरा दिया है। दिल्ली के समयपुर बादली में 7 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वहीं गाजियाबाद में बारिश के जमा पानी में डूबने से 3 साल की बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन और म्युनिसिपल एजेंसियों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं।

0: दिल्ली एनसीआर में हो रही मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद में जलभराव से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी के समयपुर बादली में 7 साल के बच्चे की पानी के गड्ढे में डूबने से जान चली गई। परिवार का आरोप है कि बारिश के दौरान हमेशा यहां पानी भर जाता था, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इनके बच्चे की जान चली गई। दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद में भी बारिश से हुए हादसों ने लोगों को डरा कर रख दिया है। गाजियाबाद के सर्वोदय नगर इलाके में घर के बाहर गली में भरे पानी में डूबकर 3 साल की बच्ची की जान चली गई। बच्ची घर में खेल रही थी, बाहर गली में पानी भरा हुआ था। बच्ची खेलते खेलते उसी पानी में गिर जाती है, जिसके बाद मौत हो जाती है।
1: ये वो गली है जहाँ पूरी गली में पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि जिस समय बारिश हो रही थी दोपहर के समय, उस समय करीब 3 फुट से ज्यादा पानी यहाँ भरा हुआ था।
2: तो हमारी गली में 3 फुट पानी भर गया। यहाँ एक छोटी बच्ची थी 2.5-3 साल की, वो खेल रही थी और वो गली में पानी में आके डूब गई, किसी को पता नहीं लगी। जब वो तैर के ऊपर आ गई तब उसको देखा गया।
0: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बारिश के जलभराव के दौरान पार्क के बाहर करंट फैलने की वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बबलू नाम का सिक्योरिटी गार्ड पार्क के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक करंट की चपेट में आने के बाद गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यही नहीं, गाजियाबाद के अंकुर विहार में पानी में बहती लाश से लोगों में हड़कंप मच गया। बारिश के पानी में एक अज्ञात शख्स का शव तैरता मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से राजेश खत्री और गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
3: बारिश में बच्चों की मौत पर देखिए गाजियाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट।
4: एक दिन की बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी। गाजियाबाद में जिस जगह पर हम खड़े हैं, वहां से तो जो हादसा सामने आया है उस पर कोई यकीन ही नहीं कर सका, जब वो सुना कि कोई बच्ची भला घर के बाहर ठीक सामने कैसे डूब के मर सकती है। ये तो प्रशासन के लिए डूब मरने की बात है कि अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ है। क्या हुआ था, नाम क्या है आपका?
5: सुमित कुमार।
4: सुमित जी, आपकी बेटी कितनी बड़ी थी?
5: 3 साल की थी।
4: और कहाँ खेल रही थी?
5: वो यही खेल रही थी, यहाँ से यहाँ तक चली आई, पानी फिसला, यहाँ भी गिर गई, बेचारे खत्म हो गई।
4: कितना पानी था?
5: पानी इतना था,
6: 3-4 फुट
5: था
4: यहाँ तक पानी था, मतलब ऊपर तक।
5: कमर तक
4: पानी। तो उसके मतलब ये बारिश होती तो आमतौर पे इतना पानी यहाँ भर जाता? हाँ, कल ज्यादा था।
5: नहीं, आमतौर इतना ही भरता है यहाँ पे।
4: तो कभी यहाँ पर कोई कोशिश नहीं हुई यहाँ पर पानी
5: नहीं हुई?
4: कल की बात बताएं, अचानक से पैर फिसला, फिर क्या हुआ?
5: फिर बच्ची खत्म हो गई एकदम, पानी से उतरा गई।
4: अच्छा, वो डूब गई?
5: हाँ, डूब गई, वो उतरा गई। मैं फिर उसे हॉस्पिटल लेके गया, फिर हॉस्पिटल में मैंने कहा इसमें धड़कन नहीं है बच्चे में।
4: तो आप लोगों को पता नहीं चला कि वो खेलते हुए यहाँ डूब गई? जब वो ऊपर की तरफ आई तब पता लगा?
5: नहीं, मैं सामान लेने गया था उधर से, जब मैं उधर से आया तब देखा कि हमारी बच्ची, हाँ यही थी।
3: मानसून की जद में पूरा देश आया तो पहाड़ से लेकर मैदान तक अब बादलों की बदमाशी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पहाड़ों के दरकने से खौफ है, वहीं मैदानों में सैलाब की मार कहर बरपा रही है। और बात अगर उत्तराखंड की करेंगे तो उत्तराखंड में दोहरी मार पड़ रही है। आसमान से आफत और पहाड़ से बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड अलर्ट मोड पर है। बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, हर जगह मॉनसून ने मुसीबत बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं।
7: पहाड़ों पर मानसून सक्रिय है, आसमान से आफत बरस रही है। उत्तराखंड के कई जिले अलर्ट मोड पर हैं, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लोगों को आगाह किया गया है कि अपने घर पर रहें, जरूरत हो तभी निकलें। इन सब के बीच पहाड़ों पर आसमानी कहर भी दिखने लगा है। बरसाती नाले उफान पर हैं। ये ऋषिकेश की बिन नदी है। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बारिश से अचानक नदी में उफान आ गया। हरिद्वार चिल्ला रोड पर सैलाब आ गया। एक स्कूटी सवार उफनती नदी के बीचों बीच फंस गया। गनीमत रही कि समय रहते कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और स्कूटी सवार को सुरक्षित निकाल लिया। देहरादून के विकास नगर में भी भारी बारिश मुसीबत लेकर आई। हिमाचल प्रदेश से सटे इलाकों में तेज बारिश ने आफत बढ़ा दी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कुछ जगहों पर झरना फूट पड़ा। पानी के साथ पहाड़ से भी मलबा गिर रहा है। राहत बचाव दल की एक टीम मौके पर तैनात कर दी गई है।
6: हमारी मौजूदगी दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग जुड्डो के पास है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये यात्रा मार्ग है। यहाँ से अक्सर गंगोत्री यमुनोत्री धाम की दर्शन करने वाले यात्री गुजरते हैं और पूरे रोग रूप में इस वक्त दे रहा ये धरना तो आवाजाही करने वाले हैं, लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए तो जीवन बना हुआ है। आप देखेंगे कि रोग रूप में बह रहे झरने से मलबा और पत्थर भारी मात्रा में जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर आ गया है। लोग मुश्किल आवाजाही कर पा रहे हैं।
7: बागेश्वर में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिरने लगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत से होगी। इस दौरान दोनों देशों की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे ले जाने पर भी बातचीत होगी। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी एक बिजनेस इवेंट और स्पोर्टिंग इवेंट में भी शामिल होंगे। इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने वहां पर एक बार फिर से एकजुट होने की वहां पर कोशिश है और वहां पे एक कार्यक्रम होगा ऑरा मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और न्यूजीलैंड में 40 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा होगी। अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: एकजे, Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
11: Right field, and it will...
10: From the first pitch of the season to the stretch run.
11: And that's the ball game.
10: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
12: The number one Korean.
13: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
14: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
13: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
14: अर्ज किया है
13: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
15: वाँ वाँ वाँ वाँ।
13: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
16: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
17: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: पापा।
10: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का
11: सब कैशलेस हो गया
10: है।
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
14: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
15: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
16: In association with
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: In association with
19: भारत की अपनी
20: Hop on board and settle in for an easy going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
13: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
16: In association with
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों की नई इबारत लिखकर न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। भारत में होगा बिग बैश लीग का एक मैच, मेलबर्न में किया ऐलान। ईरान के बुशहर और बंदर अब्बास में फिर धमाकों की गूंज। अमेरिका का हमले से इनकार, ईरान बोला हॉर्मूज में हिमाकत की तो कई देशों को नुकसान। आयतुल्लाह अली खमेनेई हुए सुपुर्दे खाक। राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम, ब्याज पर भी दिए गए थे पैसे। आरोपियों का खुलासा, दूसरी कार भी बरामद। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता बैनर्जी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों को इनाम। उपचुनाव के लिए पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। कल ही शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी के कई शहरों में एक दिन की बारिश बनी जानलेवा। गाजियाबाद में बच्ची की मौत, गार्ड की गई जान। उत्तराखंड में आज भारी बरसात का अलर्ट, कई जगह पहाड़ दरकने से तबाही।

0: دارم تمام.
1: اللهم صل على محمد و آل محمد.

0: के इस हिस्से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब अगले आधे घंटे तक बात मिडिल ईस्ट में धधकते अंगारों की होगी। खामनेई सुपरदे खाक युद्ध 3.0 की आग, मौत के 132 दिन बाद ईरान के दिवंगत सुप्रीम नेता अली खामनेई को मशहद में मिट्टी दे दी गई। खामनेई की अंतिम यात्रा चल रही थी और इधर अमेरिकी फौजें ईरान को दहला रही थी। इन सब के बीच अमेरिकी मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। वॉल स्ट्रीट ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने प्लान बनाया है। पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे कि ईरान का ट्रंप प्लान आखिर है क्या। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ईरान में अयतुल्ला अली खामनेई का सुपुर्दे खाक किया जा रहा था उन्हें, और ईरान के कई शहरों में धमाके चल रहे थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी ईरान के बुशहर और चोगादक में कई धमाके हुए हैं। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुशहर और चोगादक में कुल 6 धमाके हुए हैं। बुशहर प्रांत के आसपास भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। मेहर ने कोणार्क शहर में भी 3 धमाकों की खबर दी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये धमाके कहां कहां हुए, कहां कहां अमेरिका ने निशाना बनाया। तो मानचित्र पे आपको ये दिखा रहे हैं, ये है वो इलाके जहां पर धमाके किए अमेरिका ने। अमेरिका का ये दावा है कि उसने सिर्फ सैन्य ठिकानों या फिर उन ठिकानों पर हमले किए जहां पर कोई सैन्य कार्रवाई हो रही थी। तो कोणार्क, बंदर अब्बास और बुशहर, ये वो शहर रहे जिन पर अमेरिका ने इस वक्त हमला किया। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने किसी भी तरह के हमलों का से इनकार किया है। ईरान के शहरों में धमाकों पर अमेरिका ने बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमने हमले नहीं किए हैं। अमेरिकी मीडिया की माने तो यूएस ने इन धमाकों से खुद को साफ अलग कर लिया है, जबकि ईरान अमेरिका और इसराइल को ही जिम्मेदार बता रहा है। उसका कहना है कि इन्होंने ही ये हमले किए हैं और कोशिश ये थी कि अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम यात्रा में खलल डाला जाए। उन्होंने हमले किए, कई शहरों पर हमले किए, लेकिन अब अमेरिका इन हमलों से इनकार कर रहा है और अपने आप को जिम्मेदार नहीं बता रहा है। ईरान पर नए हमलों से अमेरिका का साफ इनकार है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया है, ये उसका दावा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा शुरू करते हैं हमारे सहयोगी सुमित का। सुमित, ईरान पर हमले हुए, सबने देखा, उसके वीडियो भी सामने आए, लेकिन अब अमेरिका कहता है उसने नहीं किया।
1: देखिए बिल्कुल, अगर आप दोनों बयानों को देखें, जब बुशहर के अंदर या फिर आप कह सकते हैं बंदर अब्बास के अंदर या फिर कोणार्क के अंदर जो हमले हुए हैं, उसको ईरानी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका द्वारा किए गए, अमेरिका द्वारा मीडिया द्वारा कहा गया कि हमने नहीं किए। दोनों की मीडिया द्वारा ये कहा जा रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से ना तो ईरान ने कुछ कहा है ना ही अमेरिका ने कहा है। मैं आपको थोड़ी पीछे लिए चलता हूं, क्योंकि आपको याद होगा 40 दिन की जब जंग हुई थी तब और जब उसके बाद सीज फायर हुआ था, उसके बाद इस्फहान में कई बार धमाकों की आवाज सुनाई दी। बाद में ये पता लगा कि जो मिसाइल्स दागे गए थे, जो शेल्स पड़े थे इनएक्टिव, उनको निष्क्रिय किया जा रहा है। उस समय ये अटैक हुए या उस समय ये धमाके हुए, तो अभी तक कई चीजें हैं जो क्लियर होनी बाकी है। लेकिन ईरान की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हमारे जो कोस्टल लाइन है, जो आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, करीबन 2400 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, और अमेरिका का पूरा फोकस इस समय जो सदन से नीचे जो आप कह सकते हैं कोस्टल लाइन था, चाहे वो बंदर अब्बास हो, बुशहर हो, कोणार्क हो, खार के पास जो द्वीप है, वहां पर सारा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि जो रिसेंट हमले किए जा रहे हैं, जो पकड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अमेरिका की, वो इसी शक्ति है, यानी यहीं पर जो ताकत ईरान ने अभी अपनी वहां पर इकट्ठा की है, उसी ताकत को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने स्पेसिफिक तौर पर इन जगहों पर अटैक करने शुरू किए गए। लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन हाँ
0: जी,
1: ईरान की तरफ से भी अब पलटवार करने की कोशिश की जा रही है, कुवैत हो, बहरीन हो, तो ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां पर बातचीत तो नहीं हो रही, लेकिन एक नई जंग की तैयारियां जरूर दिखती नजर आ रही हैं।
0: पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और अब बात अली खामनेई के सुपुर्दे खाक की। खामनेई की मौत के 132 दिन बाद, यानी कि कल, उन्हें दफन कर दिया गया। खामनेई के पैतृक शहर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अली खामनेई को विदाई देने के लिए मानो पूरा ईरान सड़कों पर था। एक तरफ तो लोग अपने नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे थे, दूसरी ओर अमेरिका के प्रति आक्रोश भी साफ दिखाई दे रहा था।
2: मशहद का इमाम रजा दरगाह परिसर लोगों का समंदर हाथों में ईरानी झंडे धार्मिक बैनर और अली खामनेई की तस्वीरें लाखों की भीड़ अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहां जुटी थी। कई लोग अपने मोबाइल फोन पर अली खामेनी और मौजूदा सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनी की तस्वीरें भी दिखाते नजर आए। मातमी माहौल के बीच सामूहिक दुआएं की गईं। सुपुर्दे खाक करने से पहले खामेनी के बेटे आयतुल्ला सैयद मुस्तफा खामेनी ने इमाम रजा दरगाह में अपने पिता की जनाजे की नमाज की अगुवाई की। इसके बाद अली खामेनी को दरगाह के करीब सुपुर्दे खाक किया गया। इसी के साथ ईरान में कई दिनों से चल रहे शोक समारोह का समापन मशहद में हुआ। इससे पहले तेहरान, कोम, नजफ और कारबला में भी अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। मशहद में उमड़ी भारी भीड़ ने दिखाया कि अली खामेनी की अंतिम विदाई केवल एक धार्मिक समारोह नहीं बल्कि ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक श्रद्धांजलियों में से एक बन गई। खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान उनके समर्थकों ने किल ट्रंप के बैनरों के साथ अमेरिका को संदेश देने की भी कोशिश की कि अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ईरान में आक्रोश बेहिसाब है। आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में जिस तरह से लाखों लोगों ने लाल कपड़ा दिखाया ये इस्लामिक परंपरा में बदले या खून का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामेनी को मशहद में इमाम रजा की दरगाह के अंदर दफनाने की वजह भी खास है। शिया संप्रदाय के कुल पवित्र 12 इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला या सामर्रा में। इमाम रजा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने जहर देकर हत्या करवा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन अमेरिकी हवाई हमले में हुई थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता का पद संभाला। ऐसे समय में यह अंतिम संस्कार हुआ है जब युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो
0: नेता के बदले नेता, जान के बदले जान। पूरे ईरान में इस समय डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। सार्वजनिक तौर पर लोग पोस्टर लहरा रहे हैं जिसमें लिखा है वी विल किल ट्रंप। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने खुफिया सूत्रों से बड़ा दावा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ट्रंप की को मारने के लिए ईरान ने एक नया प्लान भी बनाया है।
3: क्या ईरान ट्रंप की हत्या करवाना चाहता है? अमेरिकी राष्ट्रपति को निपटाने के लिए ईरान ने नया किलिंग प्लान बनाया है। ट्रंप ने क्यों कहा कि वो ईरानी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं? नेतन्याहू की मोसाद ने ट्रंप की CIA को ऐसी कौन सी जानकारी दी कि अमेरिका चौकन्ना हो गया? ईरान के हिट लिस्ट में पहला नाम ट्रंप का है, ट्रंप को ये बात किसने बताई? डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे ईरान में दशकों से लगते रहे। अली खामेनेई के जनाजे में भी तेहरान से इंतकाम की आवाज उठी। ऊंची इमारतों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे कि वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। और अब इजराइल की एक खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये साजिश 2020 से चल रही है। इसे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2020 में अमेरिकी हमले में सुलेमानी की मौत हुई थी। अमेरिकी अधिकारी पहले भी कह चुके हैं कि ट्रंप को ईरान और उसके प्रॉक्सी से खतरा है। अब जब अमेरिका ने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान को तहस नहस कर दिया, तो ये खतरा और भी बढ़ गया। खुद ट्रंप भी मानते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं।
4: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
5: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go, right?
4: But was there a specific threat?
5: So perhaps someday you want to change professions.
3: 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के साझा हमले में आयतुल्ला खामेनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद एक एक करके अमेरिका ने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। ईरान भी अपने तरीके से जवाब देता रहा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए, लेकिन जो नुकसान अमेरिका ने ईरान को पहुंचाया है उसकी भरपाई आसान नहीं है। दावे तो यहां तक किए गए कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा भी घायल हैं। जिस दिन से उनको नेता घोषित किया गया उस दिन से आज तक वो कभी सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जिस तरह से ईरानियों ने अमेरिका के खिलाफ गुस्सा दिखाया उससे साफ है कि ईरान किसी भी स्थिति में ट्रंप और अमेरिका से बदला लेना चाहता है। ट्रंप और नेतन्याहू भी ये बात जानते हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इस मिशन में लगे हुए हैं। ईरान और अमेरिका की अदावत पुरानी है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम नेता को मारा, ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। नए सुप्रीम नेता मुज्तबा कई महीनों से भूमिगत हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या ईरान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा? ईरान की सड़कों पर ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा तो साफ दिखता है, लेकिन अब इजराइल ने जो रिपोर्ट अमेरिका को दी है वो चौंकाने वाली है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिकी प्रशासन इस रिपोर्ट की पुष्टि करता है और क्या इजराइल या ईरान इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर मध्य पूर्व की राजनीति से लेकर वैश्विक सुरक्षा समीकरणों तक दिखाई दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
8: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
9: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
10: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
11: Sanitary Solutions.
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
16: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
15: जी,
16: आपको कोई तकलीफ हुई
15: अभी तक?
16: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते हैं आप मुझे?
15: अपना पर्सनल जान पहचान के?
16: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
15: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे।
16: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़िया, इसमें जो गाड़िया जा रही है ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेन नहीं है। टोयोटो के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेन नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, दो चार दिन कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटा कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी वो खराब हुई वगैरह, तो उनने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तुमने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
15: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
16: आप ही बता। फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ, अब FIR दर्ज की उसके लिए। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही।
0: मैं भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे।
1: जय राम जी की।
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है।
6: जो सनातन है वही समाजवादी।
5: ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं धन की राजनीति करती है।
7: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है।
8: हमारे धर्म में सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है।
5: बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए, यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी, यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
9: मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो लेकिन मुसलमान की सीना चोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
5: इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है।
10: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
5: यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रधानमंत्री मोदी 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा, भारत में होगा बिग बैश लीग का एक मैच, मेलबर्न में किया ऐलान।
1: ईरान के बुशहर और बंदर अब्बास में फिर धमाकों की गूंज, अमेरिका का हमले से इनकार, ईरान बोला हॉर्मुज में हिमाकत की तो कई देशों को नुकसान, आयतुल्लाह अली खमनई हुए सुपुर्दे खाक।
0: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में शेयर मार्केट में लगाई गई लूट की रकम, ब्याज पर दिए गए पैसे, आरोपियों का खुलासा, दूसरी कार बरामद, चंपत अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद।
1: टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता बनर्जी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों को इनाम, उपचुनाव के लिए पार्टी ने बनाया उम्मीदवार, कल ही शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश।
0: यूपी के कई शहरों में एक दिन की बारिश बनी जानलेवा, गाजियाबाद में बच्ची की मौत, गार्ड की गई जान, उत्तराखंड में आज भारी बरसात का अलर्ट, कई जगहों पर पहाड़ दरकने से तबाही।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं शतक आज तक पर।

उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक ने मचाई तबाही। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश और बिजली से अब तक 7 लोगों की मौत। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंदन मार्ट मॉल की बाउंड्री वॉल गिरी। पास की सड़क भी कई फीट धसी। गाजियाबाद में भी भारी बारिश से जलभराव। वैशाली सेक्टर 3 में सड़कें बनी तालाब। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। इंदिरापुरम में जलभराव के बीच करंट उतरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप। रुद्रप्रयाग में 2 दिन से आफत की बारिश जारी। नदी नाले उफान पर। लगातार बारिश से दरकने लगी बद्रीनाथ हाईवे की पहाड़ियां। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश ने मचाई तबाही और कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। अलीगढ़ में बारिश बनी आफत। सड़कों पर जलभराव। कई इलाकों में लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी में मानसून की दस्तक ने बरपाया कहर। पश्चिमी जिलों के लिए आईएमडी का रेड अलर्ट। आज भी तेज बारिश का अलर्ट। यूपी के सहारनपुर में बारिश का असर। ऑरेंज अलर्ट के चलते प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद।

0: वंठा प्रयागराज इलाकों समेत मंदिर परिसर में भरा पानी, स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी। आगरा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में भरा जल भरा, सीवा ओवरफ्लो के कारण घरों में घुसा गंदा पानी।
1: उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली के स्कूलों में छुट्टी घोषित। ऋषिकेश हरिद्वार चिला रोड पर लगातार बारिश की वजह से बीन नदी उफान पर, तेज बहाव के बीच फंसा स्कूटी सवार, स्थानीय लोगों ने शख्स को बचाया। लगातार भारी बारिश के बाद नैनीताल में फिर मंडराया लैंडस्लाइड का खतरा, पूरे इलाके में दहशत का माहौल, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। सूरत में लगातार हो रही बारिश बनी जानलेवा, अब तक 14 लोगों की मौत, नदी के पानी में डूबी क्रेन और डंपर के ड्रोन वीडियो आए सामने। बिजनौर में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। सहारनपुर में फंती नदी में बहे बाइक सवार, ग्रामीणों ने महिला समेत 3 लोगों की बचाई जान। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी बैंड के पास भारी मलबा आने से NH 707 बंद, यातायात प्रभावित, रास्ता खोलने में जुटा है प्रशासन। विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खौफनाक वीडियो आया सामने, सड़क पर आया मलबा, बाल बाल बचे लोग। धौलपुर में भी भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, आफत बनी बारिश में भर भरा कर गिरा दी 2 मंजिलों वाला मकान, परिवार के 6 लोग घायल। केरलम के कोरिकोड रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, स्टेशन पुनर्विकास कार्य के दौरान 100 साल से ज्यादा पुराना घंटाघर ढहा, कोई हताहत नहीं।
0: पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे को पूरा करके न्यूजीलैंड के लिए रवाना है, दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ होगी। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी एक बिजनेस इवेंट और स्पोर्टिंग इवेंट में शामिल होंगे, इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच, चेन्नई में खेला जाएगा लीग का मुकाबला, 12 दिसंबर को रेनेगेड्स और स्कॉर्चर्स होंगे आमने सामने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा खिलाड़ियों का हौसला देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्रिकेट दोनों देशों का साझा जुनून है। सीएम योगी का 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरा, कई सरकारी कार्यक्रमों में होंगे शामिल, ट्वीट कर लिखा, अयोध्या और बस्ती में विकास और जन कल्याण के नए अध्याय जुड़ेंगे। आज सीएम योगी अयोध्या और बस्ती का करेंगे दौरा, कल कुशीनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सचिव स्तर समेत 20 IAS अधिकारियों के तबादले। BHU पर NGT की बड़ी कार्रवाई, 33 पेड़ों पर अवैध कटाई पर 2,65,00,000 पर्यावरण जुर्माना वसूलने का आदेश। लोहिया संस्थान में मेडिकल लापरवाही का आरोप, फूड पाइप सर्जरी के बाद युवक का काटना पड़ा हाथ।
1: पटना में मुख्यमंत्री आवास पर NDA की बैठक, घटक दलों के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शामिल, नीतीश कुमार भी मौजूद। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहली बार NDA की बड़ी बैठक, विधानसभा सत्र और उपचुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को मिलेगी 1100 मासिक पेंशन। सीएम सम्राट चौधरी आज 97.84 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे 1,423 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा लोगों को। पटना में गिरिराज सिंह का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला, दोनों को बताया एक्सीडेंटल नेता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, शेयर बाजार में लगाई गई चोरी की दान राशि। पुलिस सूत्रों का दावा, चोरी की रकम रिश्तेदारों के खातों में भेजकर वापस मंगाई गई, लेन देन छिपाने की कोशिश। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 22 जुलाई के बाद दर्शन पूजा से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक नई व्यवस्था की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर दान गिनती कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, लगभग 2 दर्जन कर्मियों ने छोड़ी ड्यूटी। अयोध्या में नई व्यवस्था लागू करने की हो रही है तैयारी, अब सिर्फ 1.5 दर्जन लोग कर रहे हैं चंदा गिनती, शिफ्ट में भी की गई है कमी।
0: राम मंदिर चढ़ावा विवाद में PIL याचिका पर 13 जुलाई को होगी सुनवाई। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस का मोर्चा, देश भर में 50 नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ में दीपेंद्र हुड्डा रखेंगे कांग्रेस का पक्ष। BSP प्रमुख मीडिया से रूबरू, लखनऊ में प्रेस वार्ता। मेरठ में ललिता गौतम केस में मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील की। यूपी में बारिश बिजली से तबाही पर सीएम

0: सख्त 24 घंटे मुआवजा देने के निर्देश। यूपी पंचायत व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रधानों को प्रशासक बनाने की वैधता पर उठे सवाल। ईरान के बुशहर में धमाकों के बाद मछली पकड़ने वाले घाट पर कई नावों में लगी आग, जलती नाव का वीडियो आया सामने, धमाकों की जांच जारी। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान में लगातार हो रहे धमाके, न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, चोगादक और कुनारक में कई विस्फोट। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बड़ा दावा, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक कुनारक में ईरानी नौसेना के ठिकाने पर किया गया हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को किया खारिज, का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। अमेरिकी हमलों के बीच मशहद में सुपुर्द खाक, ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनी।
1: यूपी के झांसी में चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में गिरा शख्स, ट्रेन के नीचे जाने से पहले आरपीएफ जवान ने बचाई जान। सुल्तानपुर में महिला बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल हुआ तो मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के पालघर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर फटा, धमाकों में दो घर जलकर खाक। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक कार्डबोर्ड रोल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। गया में छात्र के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक की परिजनों ने स्कूल में घुसकर की पिटाई, आरोपी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। बिहार के सहरसा में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी, झड़प के दौरान एक मछुआरे को लगी गोली, गंभीर हालत में इलाज जारी। इंदौर में गलत दिशा से आ रहे बाइक सवारों को टोकना एक स्थानीय युवक को भारी पड़ा, बाइक सवारों ने युवक की जमकर पिटाई की। आसनसोल में स्कूल की किताबें उठाने को लेकर खूनी संघर्ष, हिंसक झड़प में कई घायल, पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद में मां और बेटे की हत्या से हड़कंप, अब तक की पूछताछ में महिला के पति और उसके जेठ पर मिलकर हत्या करने की आशंका। पुणे के आलंदी में पालकी प्रस्थान के दौरान महिला ने बीच सड़क पर किया हंगामा, ट्रैफिक व्यवस्था का विरोध करते हुए सड़क पर लेटी।
0: रोहतास में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने घंटों नेशनल हाईवे को जाम किया। अजमेर जोधपुर आरटीओ को बम छुड़ाने की धमकी, एक घंटे तक चली गहन जांच के बाद नहीं मिली कोई विस्फोटक सामग्री, धमकी भरे मेल की पुलिस ने जांच शुरू की। सहारनपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत, मामूली विवाद में पति ने पत्नी के उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पटना में पति के अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को पड़ा भारी, पति ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या की, दोनों आरोपी गिरफ्तार। संभल में 59 साल की पुरानी इमारत को किया गया ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत ने जर्जर बिल्डिंग को उठाया, भारी बारिश के बीच 3 घंटे तक चली अवध कार्रवाई। गुजरात के वेरावल में जुए पर एसएमसी की रेड के दौरान बवाल, पुलिस टीम पर हमला, 40 नामजद समेत 200 लोगों पर केस। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, नायब तहसीलदार घायल, 200 लोगों पर केस दर्ज। कौशाम्बी में जमीन विवाद पर बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल।
1: गुरुग्राम में एनकाउंटर, क्राइम ब्रांच के 3 कर्मचारियों को भी लगी गोलियां, मुठभेड़ में 4 शूटर ढेर। विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के थे सभी शूटर, व्यापारी के घर पर फायरिंग करके भाग रहे थे आरोपी। नारनौल में कार ने बुजुर्ग को उड़ाया, सीसीटीवी में छलकर 20 मीटर दूर गिरते दिखे शख्स, मौके पर मौत। रामपुर पुलिस ने किया ठगी का खुलासा, दो गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ करते थे ठगी। झारखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का खुलासा, ग्रामीणों ने संदिग्ध आरोपी को दबोचा। दिल्ली के वेंकट हॉल में झगड़े में चली गोली, हुए 10 राउंड की फायरिंग, महिला को छूकर निकली गोली। पटना में संविदा लाइन मैन की मौत पर बवाल, परिवार ने लगाया मारपीट और हत्या का आरोप, सड़क जाम कर किया बवाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर अचानक भरभराकर गिरा फ्लाईओवर का हिस्सा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का मंजर। पुणे में वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर महिला का जमकर हंगामा, रास्ता बंद करने को लेकर पुलिस से भिड़ी महिला, सड़क पर लेटी। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
0: भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज से इकलौती टेस्ट मैच की शुरुआत, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच ये मैच होगा ऐतिहासिक, 142 साल के इतिहास में लॉर्ड्स में पहली बार खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारा, 9 विकेट से चौथा मैच गंवाया। कप्तान श्रेयस अय्यर के 80 रन काम नहीं आए। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पिछले टी20 सीरीज 2014 में जीती थी। लगातार तीसरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंचा फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से हराकर एम्बापे ने मेसी की बराबरी की, सबसे ज्यादा 8 गोल दागे। साउथ इंडियन एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म लेनिन की बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। इसके जरिए एक्टर अखिल 3 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कर रहे हैं वापसी। डिज्नी की मोस्ट अवेटेड लाइव एक्शन फिल्म मोआना भी हो रही है लॉन्च। मोआना के किरदार में कैथरीन लगाया आएंगी नजर। हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर, दस्तक दे रही है अमेरिकी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म इविल डेड बम बर्न। बतौर लीड हीरो अपनी पहली फिल्म भाई तेरा स्टार लेकर आ रहे हैं राघव जुयाल, फिल्म का ट्रेलर लॉन्च।

0: अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट मैदान से आज प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ और पूर्व कप्तान स्टीव वॉक की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लीग बिग बैश के ओपनिंग मैच का आयोजन भारत में करने का ऐलान किया। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। यह पहला मौका होगा जब भारत की सरजमीं पर किसी विदेशी लीग को होस्ट किया जाएगा। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर प्रधानमंत्री का ये बड़ा ऐलान, वहां की लीग का आयोजन भारत के चेन्नई में किया जाएगा। वहीं अलग अलग सेरेमनीज में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। दोस्ती की वो तस्वीर जो ऐतिहासिक हो गई, जिसमें एल्बनीज के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, और अब न्यूजीलैंड के लिए वो रवाना हो गए।
1: ट्वेंटी थर्टी में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं। एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच, और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। अभी हमने बच्चों को कबड्डी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए इन बच्चों से गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिल गया। उनके जोश को देख करके लगा आज यहाँ बच्चों का एग्जीबिशन मैच नहीं है, फ्यूचर चैंपियंस का ऑडिशन चल रहा है। उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा से यह स्पष्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है।
2: पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत से होगी। इस दौरान दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे की बातचीत करेंगे। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी एक बिजनेस इवेंट और स्पोर्टिंग इवेंट में भी शामिल होंगे। इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने किया ओरा मोदी नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। न्यूजीलैंड में 40 सालों बाद किसी भारतीय पीएम की यह यात्रा हो रही है। इससे पहले 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे।

0: और न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। यहां पर भारतीय कम्युनिटी के नेतृत्व करने वाले भाव ढिल्लन से बात की हमारे सहयोगी प्रणव ने।
1: भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड में यात्रा 4 दशक के बाद हो रही है, क्या कुछ खास इस बार होने वाला है और कैसे ये प्रधानमंत्री का दौरा भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को और मजबूती देगा?
2: इस टाइम जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो अभी हमारे दोनों देशों के अंदर एक FTA साइन हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी आर कमिंग स्ट्रेट आफ्टर दैट। सो हमारा जो रिलेशनशिप दोनों देशों का इज नॉट जस्ट ऑन ट्रेड, बिकॉज FTA ट्रेड के लिए हुआ है, लेकिन हमारा यह भारतीय समुदाय पिछले 40 साल में बहुत बड़ा है, तो उसके लिए भी एक ये बहुत, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन आवर डायस्पोरा और वो हमें अपना राष्ट्रदूत बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है।
1: और आपने देखा ही होगा कल मेलबर्न के अंदर किस तरीके का कम्युनिटी इवेंट हुआ, क्या न्यूजीलैंड में भी उसको टक्कर देने वाला किसी इवेंट को आयोजित करने की तैयारी है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ स्पार्क अरीना में कल हमारा भारतीय समुदाय इकट्ठा होके मेलबर्न जैसा एक बहुत भव्य स्वागत देगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को।
0: तो वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: आज तक प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, एकजे द नंबर वन।
5: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: Korean skincare brand, now in India.
9: Papa.
10: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
10: छक्का
11: सब कैशलेस हो गया
10: है। ओ ला भाई मेरा बैट,
11: वो अभी तो ठीक हुआ तू,
10: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
12: बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: AU सोच बदलो और बैंक भी।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
9: Vimal, bolo zubaan kesri. Hind, bade aaram se.
11: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ही कहा, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: भारत लेकर न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। भारत में होगा बिग बैश लीग का मैच। मेलबर्न में किया ऐलान।
1: ईरान के बुशहर और बंदर अब्बास में फिर धमाकों की गूंज। अमेरिका का हमले से इनकार। ईरान बोला हॉर्मूज में हिमाकत की तो कई देशों को नुकसान। आयतुल्लाह अली खमेनी हुए सुपुर्द खाक।
0: राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम। ब्याज पर दिए पैसे आरोपियों का खुलासा। दूसरी कार बरामद। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद।
1: टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता बनर्जी के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को इनाम। उपचुनाव के लिए पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। कहा कि कल ही शामिल हुए सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश।
0: यूपी के कई शहरों में एक दिन की बारिश बनी जानलेवा। गाजियाबाद में बच्ची की मौत, गार्ड की गई जान। उत्तराखंड में आज भारी बरसात का अलर्ट। कई जगह पहाड़ दरकने से तबाही।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।

0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी के पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया गया। दान चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश मिश्रा, करुणेश पांडे से पूछताछ में खुलासा हुआ है।
1: इतना ही नहीं, आरोपियों ने चढ़ावा चोरी को छिपाने के लिए चोरी की रकम पहले अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में डाली और बाद में उसे अपने खातों में वापस मंगा कर लेनदेन छिपाने की भी कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। तो अयोध्या में चंदा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कैसे चंदा चोरी के आरोपी पैसे से पैसा बनाने के ट्रेन में लगे हुए थे, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक और एक 11 में अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आरोपी पैसों की चोरी से लेकर संपत्ति बनाने के खेल में खुल्लम खुल्ला लगे हुए थे।

0: चढ़ावे की चोरी का निवेश प्लान। चढ़ावे का पैसा शेयर बाजार में लगाया। रामधन को ब्याज पर लगाया, पैसा बनाया। चोरी के पैसे से खरीदी जमीन जायदाद, चढ़ावे के पैसे से चमचमाती कार।
1: कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विरोधियों को मंदिर के विकास, मंदिर के सौंदर्यीकरण पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं आता। वो अक्सर विरोधियों पर मंदिर बनाम कब्रिस्तान का सवाल उठाकर हमले करते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद तस्वीर बदली बदली दिखने लगी है। जिस राम मंदिर के निर्माण में अकूत पैसे खर्च किए गए, उसी राम मंदिर के भीतर चढ़ावे में सेंधमारी को लेकर हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। अब ये पता चला है कि कैसे चढ़ावे की चोरी करने वाले एक को 11 बनाने में लगे थे। पता चला है कि राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंकों और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते।
2: जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, साय चढ़ावा चोरी अयोध्या में करने वाले जो ट्रस्ट के अंदर बैठे थे उनको ये लगता था कि जब हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे मालिक हैं यहाँ पर बैठे हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, और इसी वजह से चढ़ावा चोरी होता गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसके बाद 30 खातों को फ्रीज कर दिया गया। यही नहीं, अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है। अब ऐसे में ट्रस्ट के अंदर मौजूद ये मानते थे कि जब हमारे आका हुक्मरान अंदर बैठे हुए हैं तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, जब भी कुछ होगा तब वे बाहर निकाल लिए जाएंगे। लेकिन पाप का घड़ा जैसे ही फूटा वैसे सब एक एक करके गिरफ्तारी होती रही और सब बाहर आने लगा।
0: मशहूर कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। चढ़ावा चोरों को लगता था कि हुकूमत में अपने लोग बैठे हैं तो उनका बाल बांका नहीं हो सकता। उन्हें ये भी लगता है कि बड़े लोगों से नजदीकियां उन्हें किसी भी संकट से बचा लेंगी, लेकिन वो गलत थे, गफलत में थे। जब पाप का घड़ा फूटा तो जेल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जांच एजेंसी ने करीब 30 खातों को फ्रीज कर दिया है और पैसों की धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल लूटकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है अपराध की कलई खुलती जा रही है। पता चल रहा है कि कैसे चोरी के धन से आरोपी धन्ना सेठ बनने में लगे थे। चोरी के पैसे से जमीन, चोरी के पैसे से जेवरात, चोरी के पैसे से कार, चोरी के पैसे से शेयर खरीदे जा रहे थे। यानी कि आरोपियों के जबरदस्त वारे न्यारे हो रहे थे। अनुकल्प मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान करीब 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन करीब 6,70,000 रुपए में खरीदी गई थी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। यानी आरोपी अपनी मर्जी और बेफिक्री से चढ़ावे की चोरी करते, जायदाद बनाते रहे और ट्रस्ट के पदाधिकारी चैन की नींद सोते रहे। वैसे उन्हें इतने बड़े सिंडिकेट का पता नहीं चला, उन्हें कोई भनक नहीं लगी, ये अपने आप में बड़ा।
3: तो आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर एक और कार बरामद हुई है। अयोध्या थाने में रखी गई सफेद स्विफ्ट कार अनुकल्प ने दान चोरी के पैसे से खरीदी। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प ने इस जुर्म को कबूला है। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने कार बरामद कर थाने में रख ली है। थाने में रखी ग्रे कलर की ब्रेजा कार दूसरे आरोपी अविनाश की है। उसी पर निशानदेही के बाद इसे जब्त किया गया।
4: तो ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, ये जो बरामदगियां अब हो रही हैं, कैसे कैसे उनके तार जोड़े जा रहे हैं इन आरोपियों और इस चंदे से जो इन्होंने खर्च किया अलग अलग जगहों पर?
2: बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से ये पहले चोरियां की गई चंदे की और उसको अलग अलग जगह पर लगाया गया है, कह सकते हैं कि जो चंदा चोर थे इतने चालाक थे कि वो कैसे रुपयों को मैनेज करना है, कहां खर्च करना है, ये सब पहले से ही षड्यंत्र तरीके से उनको पता था। इसी वजह से कई कई ऐसे जो खाते थे उन लोगों को परसेंट पे खाते लिए गए और उनके खातों में ये रकम डाली गई, जिससे कि शक ना हो और इकट्ठे अगर अकाउंट में जाता है तो बैंक को भी शक ना हो। इस तरीके से 30 खातों को सीज किया गया है। इसके अलावा जो लैंड है अयोध्या में वो काफी महंगी ली गई, चूंकि जो चंदा चोरी का पैसा है वो कैसे लैंड में प्रयोग कर लिया जाए और उनसे कहीं ना जाए, जमीन और जायदाद बनाने की कोशिश इसी चंदे चोरी से की जा रही थी। साथ ही साथ कई लोगों को जो पैसा ज्यादा पड़ गया तो ब्याज के तौर पर भी देने लगे कि आप काम कर लो, दोबारा हमें वापस ब्याज देते रहना। यानी कि मंसूबे वही थे कि जो पैसा चंदा चोरी से निकाला उसको या तो ब्याज के नाम पर दे रहे थे या अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, या इसके अलावा वो सबसे बड़ी बात है शेयर मार्केट में भी लगा रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये पैसा कहीं ना कहीं फंसा दो जिससे कि किसी को शक भी ना हो, तो इस वजह से मुनाफा कमाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ये तो अलग अलग तरीके थे। अब जब पुलिस जांच कर रही है तब एक एक करके खुलासे हो रहे हैं कि कहीं पे प्रॉपर्टी के नाम पर, कहीं बैंक के अकाउंट्स में फ्रीज हो गया है, कहीं पर शेयर मार्केट के नाम पर, तो कहीं पर प्लॉट के नाम पर, या कहीं गाड़ियां खरीदी जा रही नई नई। तो ये सारी चीजें चंदा चोर पूरी तरीके से अपने पैसों का जो चंदा चोरी के थे चढ़ावा के उसको प्रयोग कर रहे थे और इस षड्यंत्र को आगे बढ़ा रहे थे। उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि कभी भी ऐसा पाप का घड़ा फूटेगा और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनको ये लगता था कि वो मजबूत स्थिति में हैं और जब भी कुछ होगा तो उनके सरपरस्ती पे जो भी लोग हैं उनको बचा लेंगे और कहीं ना कहीं वो हमेशा इस तरीके के कार्य करते रहेंगे, क्योंकि ट्रस्ट जैसी बड़ी चीज है, राम मंदिर जैसी बड़ी चीज है, कभी इसकी जांच हो पाना मुश्किल होगी। और बहुत सारे देश में मंदिर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कभी ऐसा नहीं होता है।
3: साथ अयोध्या में चंदा चोरी मामले की जांच के बीच आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा है और आज कई विकास योजनाओं का ऐलान वो करेंगे। अयोध्या में एक बड़ी रैली भी करेंगे। सबकी निगाहें आज योगी की तरफ होंगी, ये जानने के लिए वो चंदा चोरी के मुद्दे पर कैसे पलटवार करते हैं, क्या बयान देते हैं। दान चोरी विवाद के बीच योगी का ये दूसरा दौरा है और विपक्ष के आरोपों को लेकर क्या जवाब दिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें।
5: चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और फिर चंपत राय अनिल मिश्रा की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से विदाई के बाद पहली बार यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या आए। हालांकि करीब 20 दिन पहले भी योगी यहां पहुंचे थे जब चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का हमला तेज था। उम्मीद की जा रही है आज योगी अयोध्या से विपक्ष पर हमले की धार को और तेज करेंगे, इसकी झलक कल बांदा में देखने को मिली।
1: याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
5: इस बीच अयोध्या में चढ़ावा चोरी केस की जांच जारी है। थाना राम जन्मभूमि में खड़ी ये स्विफ्ट डिजायर कार चढ़ावा चोरी केस में नई बरामदगी है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के निशानदेही पर कार बरामद की गई है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। दरअसल पुलिस कल तीन आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा को लेकर सुबह 4 बजे इनके पैतृक निवास पर लेकर गई थी और छापेमारी की, जहां से कार और कई चीजें बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प के निशानदेही पर कार के अलावा सोने की चेन और सोने का पेंडुलम भी बरामद हुआ है।
4: और आइए सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
6: इन परियोजनाओं के लिए भी बीकापुर विधानसभा के आप सभी मतदाता बहन और भाइयों को, यहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। यहां के विधायक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रुचि लेकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाया है। एक सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास के बारे में रुचि लेता है तो परिणाम कैसे आते हैं, आज ये अयोध्या जनपद में देखने को मिल रहा है। बीकापुर में, रुदौली में, मिल्कीपुर में, गोसाईगंज में, अयोध्या में, ये सब दिखाई देता है। मुझे 19 जून को रुदौली में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। विकास की योजनाएं आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो पहले असंभव था, आज इन जनप्रतिनिधियों के कारण वह संभव हो गया है। बहनों और भाइयों, आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और, जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अयोध्या वैभवशाली है, वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। आप सोचो, नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक, घाटों की एक श्रृंखला, और गुप्तार घाट जो कभी उपेक्षित था, आज देखो ना, परिवार के साथ कभी घूमने के लिए जाइए, कितना सुंदर हो गया है, कितना सुंदर हो गया है। सूरज कुंड का हमने पुनरुद्धार किया है। वर्तमान में विधायक अमित सिंह चौहान के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर भरत कुंड का सुंदरीकरण का काम भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वो अयोध्या में दिखाई देता है, प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया, उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है, हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा स्मारक बना करके रखा हुआ है, जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्त के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहन और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में, समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है बिना भेदभाव के, अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हर जी की पेड़ी है, ऐसे अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है, उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया।
3: रुकेंगे आज से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
3: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
2: More top sports.
4: And he's gonna go! There's the tying goal!
2: And everything in between.
4: This game is over!
2: Upgrade now for the premium listening experience.
5: यार भाई ना
6: दुबे लिपापोती है एसआईटी किसने मनाई है और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवारों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है।
7: फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है। तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है। और इन सबको किसने रखा था? किसने रखा था? सिर्फ महामंत्री जी ने, चंपत राय जी ने। चंपत राय कैसे बेदाग बच सकते हैं? उनके नाक के नीचे हो रहा है, उनके लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे बच सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं योगी जी, अगर किसी और ने किया होता तो अब तक बुलडोजर गरज गया होता। क्या बुलडोजर की बैटरी बनने चली गई है? बुलाइए और अपराधियों को ऐसा सबक दीजिए।

ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों की नई इबारत लिखकर न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। भारत में होगा बिग बैश लीग का एक मैच, मेलबर्न से बड़ा ऐलान। अयोध्या की धरती से सीएम योगी का विपक्ष पर आक्रमण। कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं राम की जन्मभूमि को बदनाम। हमने बदल दिया अयोध्या की सूरत। राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम, ब्याज पर भी दिए थे पैसे। आरोपियों का खुलासा, दूसरी कार भी बरामद। चंपत, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को इनाम। उपचुनाव के लिए पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। कल ही शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। ईरान के बुशहर और बंदर अब्बास में फिर धमाकों की गूंज। अमेरिका का हमले से इनकार। ईरान बोला हॉर्मुज में हिमाकत की तो कई देशों को नुकसान। आयतुल्लाह खामनेई हुए सुपुर्द-ए-खाक।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर में पहली रिपोर्ट अयोध्या से है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की परतें अब जैसे जैसे खुल रही हैं, कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि राम मंदिर के चढ़ावे से निकाली गई रकम को सिर्फ खर्च नहीं किया गया बल्कि उसे बढ़ाने की कोशिश हुई। आरोपियों ने पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया, इसके साथ पैसों को ब्याज पर भी दिया गया। अब जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश में जुटी है।
1: अयोध्या मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। अनक्लब की कार बरामद हुई है जिसमें उसने दान में किए गए जो रुपए थे उससे ये कार खरीदी थी। यही नहीं, इसके अलावा जो पैसे थे, जो रुपए थे दान चोरी के, वो अलग अलग तकरीबन 30 अकाउंट में भेजे गए। अब जांच के बाद उन 30 अकाउंट को फ्रीज किया है। खास बात, जानकारी ये मिली है कि ये 30 अकाउंट से जो रकम थी वो निकाल कर शेयर मार्केट में लगाई गई और उससे मुनाफा कमाया जा रहा था। ये मुनाफा इसलिए भी चूंकि किसी तरीके से इनकम टैक्स के दायरे में ना आए और किसी भी ट्रैप में ना आ पाए, ना ही पुलिस इसकी जानकारी कर पाए, इसलिए अपने अकाउंट में ना लेकर दूसरे अकाउंट्स में ली गई और जिसके बाद उसको शेयर मार्केट में लगा दिया गया। यही नहीं, जो 30 अकाउंट फ्रीज किए गए हैं दान की चोरी के मामले में, उसमें ये भी कहा गया है कि अलग अलग लोगों को जो पैसा दिया गया था उनसे ब्याज के साथ साथ ब्याज पर भी अयोध्या में दिया गया। यानी कि ये साफ हो गया कि जो दान चोरी का पैसा था वो अलग अलग मद में खर्च किया जा रहा था।
0: अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों में गिरे चंपत राय को एक और झटका लगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद कर दी गई।

0: वीआईपी पास या सुलभ दर्शन नहीं होगा। दरअसल पूछताछ में पता यह भी चला था कि वहां पर काम कर रहे कर्मचारी इनके पासवर्ड को अपने पास रखते थे और इसके जरिए वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसा भी वसूला जाता था।
1: एक और बड़ी खबर है, अयोध्या में आज सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो आस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, राम मंदिर में अड़ंगा लगाने और राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आज आस्था के नाम पर आरोप लगा रहे हैं।

0: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।
1: तो 12:12 रिपोर्टर में बात पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में आज पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीजी पर और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लीग बिग बैश के ओपनिंग मैच का आयोजन भारत में कराने का ऐलान किया। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा और ये पहला मौका होगा जब भारत की सरजमी पर किसी विदेशी लीग का मैच खेला जाएगा।
2: इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी इस यात्रा के अब अंतिम पड़ाव की तरफ है। लेकिन इन तीनों ही देशों के दौरों में एक सूत्र सिरे से नजर आता है और वो ये कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निवेश, व्यापार और कारोबार के नए अवसर तलाशे जा सके, किस तरीके से हिंद प्रशांत के इलाके के अंदर भारत की रणनीतिक और सामरिक साझेदारी को मजबूत किया जा सके, साथ ही संस्कृति से लेकर व्यापार, कारोबार और निवेश तक, और साथ ही क्रिकेट के मैदान से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और साथ ही भारतीयों के लिए रोजगार, कारोबार और व्यापार के जो अवसर हैं वो भी मजबूत हो सके। अगर बात करें न्यूजीलैंड की तो प्रधानमंत्री का दौरा करीब 4 दशक के बाद वहां हो रहा है और ऐसे समय में हो रहा है जब न्यूजीलैंड भारत के साथ अपने बाजार और व्यापार और कारोबार को बढ़ाने की कोशिश और कवायद में जुटा हुआ है।
1: तो बिग बैश लीग के बारे में ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं।
3: 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
1: अब 12 बजे

0: और पटना से बिहार की राजधानी पटना की थोड़ी देर में एनडीए की एक बैठक शुरू होगी। बैठक में एनडीए घटक दलों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। 20 जुलाई से शुरू होने वाली बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एनडीए के अंदर तालमेल बढ़ाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आगामी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे।
1: मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने आज पहली बार एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक पटना में बुलाई है और इस बैठक में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन के अंदर किस तरीके से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ 20 जुलाई से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और फिर 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव भी होना है, तो इन दोनों मुद्दों पर भी गठबंधन के अंदर रणनीति पर विचार किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे।
0: तो देखिए, बहुत अहम बैठक ये कही जा रही है। रणनीति यहां पर बनाई जाएगी उपचुनाव को लेकर, जो कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। और ये जगह क्यों खाली हुई, ये तो आप समझते होंगे। नितिन नवीन क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ऐसे में ये जगह खाली हुई। सबकी रणनीति यहां पर है इस सीट को जीतने की। नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए की पहली ये बैठक है सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी के। और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली खबर बंगाल की बता रहे हैं तापस सेन गुप्ता।
2: तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी के पद से इस्तीफा देने के बाद प्रकाश तिवारी, सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव जब भाजपा के खेमे में कल शामिल हुए, उसके चंद घंटों के अंदर यह ऐलान किया गया भाजपा की ओर से कि इन तीनों को राज्यसभा के पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर फील्ड करेगी बीजेपी। लेकिन उसी समय पश्चिम बंगाल के सचिवालय में शुभेंदु अधिकारी से मिलते हुए दिखे बागी ग्रुप के तृणमूल कांग्रेस के एमपी शताब्दी रॉय और साथ में यूसुफ पठान। अटकलें ये लगाई जा रही कि जिस तरीके से राज्यसभा सीटों में इन तीन लोगों को फील्ड किया गया वो भाजपा में शामिल हो गए, तो क्या आने वाले दिनों में ठीक इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद हैं लोकसभा के, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि इस बारे में खुलासा अभी तक कुछ नहीं हुआ है और जो बाकायदा बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी हुआ है ये उनके रणनीति के तहत हुआ है। लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी के साथ यूसुफ पठान और शताब्दी रॉय की मीटिंग की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि महज एक औपचारिकता थी उनसे मिले, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही कि क्या शायद आने वाले समय में इसी तरीके से लोकसभा के जो बागी एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के वो भी क्या तृणमूल कांग्रेस से हटकर बीजेपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर पश्चिम बंगाल या राष्ट्र राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा।
0: अब बंगाल के बाद जो अगली खबर है वो गुरुग्राम से, जहां आधी रात को बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए और एक गंभीर रूप से घायल है। आधी रात को हुए एनकाउंटर में करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुए, इसमें 3 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश दीपक नांदल गैंग के हैं, जो रंगदारी वसूलने आए थे, लेकिन पुलिस से मुठभेड़ हो गई।
3: 9 जुलाई की देर रात गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 4 बदमाश मारे गए जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक सुशांत लोक इलाके में एक नाबी बिजनेसमैन को लगातार विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल से धमकी मिल रही थी और फिरौती मांगी जा रही थी। इसी दौरान गुरुग्राम पुलिस को यह जानकारी मिली कि कुछ संदिग्ध बदमाश गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में हथियारों के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती, इधर 5 बदमाश सुशांत लोक में उस नामी व्यापारी के घर पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके भागने लगते हैं। गुरुग्राम पुलिस जब इन बदमाशों को रोकने के लिए कोशिश करती है तब बदमाश फायरिंग करने लगते हैं। दोनों तरफ से तकरीबन 24 राउंड फायरिंग होती है जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगती है, सभी को अस्पताल ले जाया जाता है जिसमें 4 बदमाशों की मौत हो गई। 1 बदमाश जिंदगी और मौत की अस्पताल में जंग लड़ रहा है। 3 पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। मौके से बदमाशों के पास से 5 ऑटोमेटिक वेपन बरामद हुआ है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठे दीपक नांदल के ये सभी शूटर थे।
0: अब 12:12 रिपोर्टर में अब खबर बारिश की। उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते 7 लोगों की अभी तक मौत की खबर है। गाजियाबाद में कल बारिश जानलेवा बन गई। इंदिरापुरम में जलभराव के बीच करंट उतरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
4: इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में, जहां पर एक युवक की मौत हो गई। मौत कैसे हुई हम यहां पर आपको बताते हैं कि सामने ये देखिए, ये पूरा इलाका अब बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि अभी यहां पर काफी देर तक रात में बिजली विभाग के लोग मौजूद थे। सामने आप देखिए पार्क का गेट नजर आ रहा है, ये देखिए पार्क के गेट के ठीक बगल में यहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर है। और कल बारिश की वजह से इस पूरी जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर पूरा पानी लगा हुआ था। और दोपहर करीब 2:50 पर बबलू और उसके पीछे एक युवक, दो लोग इस तरफ से चले आ रहे हैं, वहां पर वो पहुंचता और एकदम से गिर पड़ता है। एक सेकंड वो गिर पड़ता है। ये पूरा वाक्या सीसीटीवी में कैप्चर हो गया, जो सामने लगा हुआ है। और उसके बाद जो पीछे वाला युवक था वो बड़ी तेजी से पीछे की तरफ भाग जाता है।
0: और 12:12 रिपोर्टर में अगली जो रिपोर्ट है वो है देहरादून से। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। आसमान से मेघ बरस रहे हैं तो दरकते पहाड़ों से बोल्डर गिर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बारिश से ऋषिकेश की बिन नदी में उफान आ गया। एक स्कूटी सवार उफनती नदी के बीचों बीच फंस गया। गनीमत ये रही कि समय रहते उस कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और स्कूटी सवार को सुरक्षित निकाल लिया। देहरादून के विकास नगर में भी भारी बारिश मुसीबत बनकर आई। हिमाचल प्रदेश के सटे इलाकों में तेज बारिश ने आफत बढ़ा दी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कुछ जगहों पर झरना फूट पड़ा। पानी के साथ साथ पहाड़ से मलबा भी गिर रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। राहत बचाव दल की एक टीम मौके पर तैनात की गई है।
5: उत्तराखंड में मॉनसून देरी से आए या फिर तेजी से आए, मॉनसून हमेशा आपदा लेकर आता है। और उत्तराखंड में देखा गया है कि प्राकृतिक आपदा कम, मानव निर्मित आपदा ज्यादा देखी जाती है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है, वहीं 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। करीब 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। और इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने सभी जिलाधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए भी आदेश दिए हैं। SDRF जो है कई जिलों में तैनात की गई है। मॉनसून की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 48 घंटों में 200% से ज्यादा बारिश उत्तराखंड में देखने को मिली है। वहीं पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिली है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है वो कोटद्वार, पौड़ी के कोटद्वार और हरिद्वार के लक्सर और रुड़की क्षेत्र रहे हैं, जहां पर 100 mm के आसपास की बारिश दर्ज की गई है।
0: पहाड़ों से आपके लिए चलते हैं झारखंड। SIR के दौरान यहां एक BLO का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता सत्यजीत।
6: करवा दीजिएगा जो नागरिकता छीन लेंगे,
7: छीन लेंगे आपका, छीन लेंगे
6: तब वही बताए ना, हम लोग का डर ना हो जाएगा, बन जाएगा,
7: डर हो जाएगा।
6: जो पैसा नहीं दिए तो साला नागरिकता हमारे,
7: राजस्व पानी भरने दीजिएगा।
6: सुनो सब,
8: झारखंड में SIR की प्रक्रिया चल रही है और गढ़वा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें BLO ये कहती हुई सुनी जा रही है कि 50 रुपया दो नहीं तो तुम्हारा नागरिकता छीन लेंगे। और इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने के एवज में 50 रुपया की मांग उन्होंने की है। और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, तो जाहिर तौर पे SIR में इन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर जिस तरह से मामला सामने आ रहा है ये वाकई चिंताजनक भी है और कंसर्निंग है, जिस पर अधिकारियों की नजर तो बनी हुई है। वहां के DC PN मिश्रा ने ये कहा है पूरे मामले की जाँच होगी और ये जो है देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में पैसे की मांग की गई है। खर्चा पानी दो, ये अगर कोई VLO कहता है जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि इन्यूमरेशन फॉर्म जो है बकायदा उसको भरवाना है, SIR के पूरे प्रोसेस को सरलीकरण करना है यानी आसान बनाना है, वही अगर पैसा मांगता है फॉर्म भरने के एवज में, तो ये वाकई जो है चिंताजनक है।
0: और बात क्रिकेट की, इंग्लैंड के हाथों भारत को फिर से करारी शिकस्त मिली। कल ब्रिस्टल में खेले गए मैच में भारत को इंग्लैंड ने एक तरफा तरीके से 9 विकेट से हरा दिया।
9: इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज भारत अब हार चुका है। चौथे मुकाबले में भी भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड इस मुकाबले को 9 विकेट से जीतने में कामयाब रहा। भारत की बैटिंग एक बार फिर नहीं चली। कप्तान श्रेयस अय्यर की वो 80 रन जरूर आए लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं थे। टोटल 158 रन भारतीय टीम ने बनाया जिसको बहुत आसानी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने चेस कर लिया। अब भारत को आखिरी मुकाबला जीतना है। शायद यहाँ एक बदलाव आपको देखने के मिले बट उम्मीद यही की जानी चाहिए कि एटलीस्ट एक मुकाबला भारत यहाँ से जीत कर लौटे।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand.
12: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
11: Now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: पापा
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: बिलोंड चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
19: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
21: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
22: आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद है। लाइक आई डोंट नीड एनीवन्स कंपनी। आई लव टू जस्ट हैंग आउट बाय माई सेल्फ। फन फैक्ट, आई हैव नेवर हैड एनी जॉब इन माई लाइफ। मैंने सिर्फ कॉन्टेंट क्रिएशन ही किया है आज तक। मेरा कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट किया व्हेन आई वाज 16, सो जस्ट फ्रेश आउट ऑफ स्कूल। तो जब आपने ये बात अपने फैमिली में रखी होगी, फैमिली के सामने रखी होगी, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या मतलब यूट्यूबर बनना है? सो फॉर देम टू इवन थिंक कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने वाली हूँ वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग टू देम। Most embarrassing influencer moment. A beauty hack that actually works.
23: Ooh.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

और आइए वापस लिए चलते हैं यूपी एक्सप्रेस वे पर। सीएम योगी दो दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर हैं। सीएम ने अयोध्या की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अयोध्या में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का महापाप किया गया था। कल सीएम का कुशीनगर और गोरखपुर दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सचिव स्तर समेत 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले। बीएचयू पर एनजीटी की बड़ी कार्रवाई, 33 पेड़ों की अवैध कटाई पर 2,65,00,000 का पर्यावरणीय जुर्माना वसूलने का आदेश। लोहिया संस्थान पर मेडिकल लापरवाही का आरोप, फूड पाइप सर्जरी के बाद युवक का काटना पड़ा हाथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, चोरी की दान राशि को शेयर बाजार में लगाए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ। चढ़ावा चोरी में पुलिस सूत्रों का दावा, चोरी की रकम को रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया, इसके बाद रकम वापस मंगाकर लेन देन के सबूत छिपाने की कोशिश हुई। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 22 जुलाई के बाद नई व्यवस्था की तैयारी, दर्शन के चढ़ावे तक बदलेगा सिस्टम, पूजा दर्शन और चढ़ावे के नियम बदलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर दान गिनती कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, लगभग 2 दर्जन कर्मियों ने छोड़ी ड्यूटी। अयोध्या में नई व्यवस्था लागू करने की हो रही तैयारी, अब सिर्फ 1.5 दर्जन लोग कर रहे चंदा गिनती, शिफ्ट में भी की गई कमी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अपडेट, पीआईएल याचिका पर 13 जुलाई को होगी सुनवाई। राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस का मोर्चा, देशभर में 50 नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ में दीपेंद्र हुड्डा करेंगे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीएसपी प्रमुख मीडिया से रूबरू, लखनऊ में प्रेस वार्ता, मेरठ की ललिता गौतम केस में मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में ना लेने की अपील की। यूपी में बारिश बिजली से तबाही पर सीएम योगी सख्त, 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश, अधिकारियों को फील्ड में उतरने को कहा। यूपी पंचायत व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रधानों को प्रशासक बनाने की वैधता पर सवाल उठे। संभल में 59 साल पुरानी इमारत को किया गया ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत ने जर्जर बिल्डिंग के ढहाया, भारी बारिश के बीच 3 घंटे तक चली कार्रवाई। जौनपुर के अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, नायब तहसीलदार घायल, 200 लोगों पर केस दर्ज हुआ। कौशंबी में जमीन विवाद पर बवाल, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस जांच में जुटी। रामपुर पुलिस ने किया ठगी का खुलासा, 2 गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। सहारनपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत, मामूली विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौके घाट, पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में जलभराव मिली मासूम की जान, नाले में गिरकर 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। संत कबीर नगर और कुशीनगर में बारिश, बिजली बनी काल, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम। बुलंदशहर में बारिश का कहर, मस्जिद की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, मलबे में दबकर 4 घायल हुए। शामली में टीन शेड गिरने से हादसा हुआ, मलबे में दबकर पिता की मौत, 2 बेटे घायल। यूपी के 46 जिलों में बारिश का अलर्ट, 18 जिलों में ऑरेंज, 28 जिलों में येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई।

0: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा बयान आया। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अयोध्या की पहचान मिटाने की कोशिश की थी, राम मंदिर बनने से रोकने के लिए गोलियां तक चलवाई थी। सीएम योगी ने कहा कि एसपी कांग्रेस के राज में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई जाती थी।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।
0: तो अयोध्या की सरयू में विकास की गंगा बहाने का दावा करते हुए सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर और भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो देख रहे हैं कि अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने आज जनपद अयोध्या की बीकापुर विधानसभा इलाके में 432 करोड़ से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम बीकापुर से सोहावल ब्लॉक में आयोजित किया गया था। तो अयोध्या के चढ़ावा चोरी केस में अगले हफ्ते एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, यह बड़ी खबर। उससे पहले एसआईटी के अफसर अयोध्या दौरे पर भी आने वाले हैं, लेकिन इसी बीच अयोध्या में चोरी कांड के साइड इफेक्ट नजर आने वाले हैं, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी के आगामी दौरे से ठीक पहले राम मंदिर में दान की गिनती करने वाले लगभग 2 दर्जन कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद गुरुवार को केवल 1 दर्जन के आसपास गर्दनकर्मी ही ड्यूटी पर पहुंचे। राम मंदिर में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की दबी जुबान में शिकायत आने लगी है कि चोरी करे चोर, अंजाम भुगते कोई और।
2: लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग।
3: और वो कुल 8 लोग थे, रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। बस इन्हीं 8 लोगों की करतूत का अंजाम अब अयोध्या के राम मंदिर में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नई व्यवस्था में सुधार के नाम पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कर्मचारियों पर भारी पड़ रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़कर 9 घंटे कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया और खबर है कि एसबीआई तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए हैं। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चहावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण इसमें समय लग सकता है। वैसे चहावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है और नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो आईडी निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके वीआईपी पास जारी कराए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि दिनेन्द्र दास को वीआईपी पास जारी करने वाली आईडी दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा, प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इनके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों के सुझाव लिए जा रहे हैं। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला हो जाए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने संकेत दिए हैं कि संत समाज के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि चढ़ावा चोरी केस की जांच कर रही पुलिस ने जब पिछले 2 दिनों तक 3 आरोपियों से 40 घंटे की पूछताछ की तो क्या क्या खुलासे हुए हैं। चढ़ावे की चोरी से कैसे शेयर मार्केट से लेकर सूद गोरी तक के धंधे हो रहे थे।
3: मंदिर में चोरी के धन से प्लॉट, मंदिर में चोरी के धन से मकान, मंदिर में चोरी के धन से कार, मंदिर में चोरी के धन से शेयर बाजार, मंदिर में चोरी के धन से सूद का कारोबार। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी करने वाले गैंग के खुलासों से राम भक्त हैरान हैं। अब नया खुलासा हुआ है कि दान पात्रों से रकम उड़ाने के बाद चोर उस पैसे से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। थाना राम जन्मभूमि में खड़ी ये स्विफ्ट डिजायर कार चढ़ावा चोरी केस में नई बरामदगी है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर ये कार बरामद की गई है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। दरअसल पुलिस कल 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा को लेकर कल सुबह 4 बजे इनके पैतृक निवास पर गई थी और छापेमारी की, जहां से कार और कई चीजें बरामद की गईं। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प की निशानदेही पर कार के अलावा सोने की चेन और सोने का पेंडुलम भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों की 40 घंटे की रिमांड लेकर पुलिस ने चढ़ावा चोरी पर गहन पूछताछ की थी। पूछताछ और निशानदेही के आधार पर लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से ब्रेजा कार बरामद हो चुकी है।
4: पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की रिमांड ली सुबह सुबह आज 4 बजे लेकर उन्हें उनके पैतृक निवास पर ले गई सूत्रों के मुताबिक, और तीनों के पैतृक निवास से काफी कुछ बरामद किया है। उनमें से एक ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक एक एक, एक, एक ज्वेलरी और एक गोल्ड पेंडुलम भी जो है वो अनुकल्प के आवास से बरामद किया है पुलिस ने। तो कहां से आखिर इतना सोना खरीद लिया, कहां से इतनी गाड़ियां अनुकल्प ने खरीद ली जब मासिक आय महज 13 से 15 हजार रुपए थी।
3: तीनों आरोपियों की 40 घंटे की रिमांड खत्म हो चुकी है और कल तीनों को वापस जेल भेज दिया गया। इस बीच चहावा चोरी केस में कल एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी गई है। इस आईडी का उपयोग श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच में पाया कि इन आईडीज का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी उचित जांच पड़ताल के अंधाधुंध वीआईपी पास जारी किए गए। सूत्रों के मुताबिक जांच में कथित तौर पर यह सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव ने इस खामी का फायदा उठाकर सैकड़ों अनधिकृत वीआईपी दर्शन पास जारी किए। आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी वीआईपी पास जारी कराने के नाम पर एक कथित रैकेट चला रहे थे और इसके जरिए अवैध रूप से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे। चढ़ावा चोरी केस की परतें जैसे जैसे उतर रही हैं, आस्था के साथ गंदे खेल का भंडाफोड़ होता जा रहा है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: अब बात उत्तर प्रदेश में चल रही दलित राजनीति की। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड पर शुरू हुई सियासत अब तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंच चुके हैं। इससे पहले पुलिस ने मुजफ्फरनगर और मेरठ में चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन खबर है कि चंद्रशेखर थोड़ी देर पहले मेरठ पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 3 महीने पहले हुए एक मर्डर केस को लेकर 2 दिन पहले मेरठ में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। उसमें पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब सरकार और प्रशासन पर सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद के बाद आज मायावती ने भी मेरठ प्रकरण पर बयान दिया है, क्योंकि मेरठ मामले को लेकर अब सियासी स्कोरिंग की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस ने मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड के बाद हुए प्रदर्शन को देखते हुए उस गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। बावजूद इसके आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद आज वहां जाने की कोशिश करते नजर आए, जिसके बाद उन्हें मुजफ्फरनगर और मेरठ में पुलिस ने रोकने की कोशिश की।
5: मेरठ में 2 दिन पहले कचहरी रोड पर हुए इस लाठीचार्ज की घटना ने यूपी में दलित वोट की सियासत को सुलगा दी है। दरअसल ये प्रदर्शन 15 मई को हुई एक दलित युवती की हत्या के बचे हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग पर किया जा रहा था, जिसमें प्रदर्शनकारियों को उकसाकर पुलिस पर हमले की कोशिश की गई। उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ और महिला पुलिसकर्मी समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी दौरान मौके पर मौजूद एसएसपी अविनाश पांडे ने पकड़े गए प्रदर्शनकारियों में से एक नेता को कैदी वाहन में जाकर थप्पड़ भी मारा था और उसके बाद 13 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। दरअसल चुनावी सीजन में मुद्दा सूंघते फिर रहे सियासी दलों को इस मामले में सियासत का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट करके पुलिस अन्याय और प्रदेश प्रमुख पर सवाल उठा दिए, तो नए दलित नेता बने चंद्रशेखर ने बीजेपी को दलित विरोधी दमनकारी बता दिया, जिसके 2 दिन बाद मायावती ने ऐसे सियासतदानों से दलितों को सतर्क किया है।
6: लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है।
5: दरअसल मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़े तथ्य हैं कि मेरठ के टोपी नगर इलाके में 15 मई को ललिता गौतम नाम की युवती लापता हुई थी, जिसका शव 17 मई को रोहटा इलाके से मिला था। पुलिस ने 24 घंटे में मुख्य आरोपी पूर्व परिचित युवक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके साथ युवती बाइक पर गई थी और बाद में 2 सह आरोपी भी गिरफ्तार हुए, लेकिन पीड़ित परिवार और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। जिसके बाद तीन पुलिस महिला अधिकारियों ने विवेचना की जानकारी पीड़ित परिवार को देकर संतुष्ट किया था, जिसके सबूत पुलिस के पास हैं। पुलिस का आरोप है कि उसके बाद दूसरे जिलों के जिला बदर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने मिलकर पीड़ित परिवार को पैसों का लालच दिया और इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में संजय निषाद के एक बयान पर अब सियासत तेज हो गई। बड़ी खबर बताते हैं आपको। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने संजय निषाद पर बलिया का अपमान करने का आरोप लगाया। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद पर आरोप है कि उन्होंने बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल कह दिया था। इसी का विरोध करके कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए।
7: हमारे सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे हम बलिया के नौजवान। संजय निषाद तुम बाहर निकलो, संजय निषाद तुम होश में आओ, संजय निषाद तुम होश में आओ।
8: बलिया को उत्तर प्रदेश में अपवाद पिछड़े जिले के तौर पर नाम दिलवाने वालों लोग एक ही जाति क्यों विरोध कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहिए? मैं बलिया आज भी आया हूँ, आगे भी आऊंगा। बलिया किसी के पिताजी की जमीन नहीं है, अंग्रेज आए थे नदियों के रास्ते, सबसे पहले हमारी जाति ने उनका विरोध और डूबो को किनारा था। हम लोगों को आज़ादी में इतिहास पूछने वाले पहले जाके पढ़े क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और किन लोगों पर लगा था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। हम लोग इस देश के सभी लोगों का सम्मान करते हैं, सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं और किसी भी प्रकार का हम पहले भी कहे हैं कि ये क्रांतिकारी धरती है और क्रांतिकारी धरती से ही अंग्रेजों को मारकर भगाया था। निश्चित रूप से कुछ लोग अंग्रेजों के गद्दारों के साथ उधर से बंदूक चला रहे थे और हमारे लोग अंग्रेजों को मार रहे थे, तो निश्चित रूप से जो अंग्रेजों की तरफ से गद्दार बन के जो चला रहे थे उन्हें गद्दार तो कहना पड़ेगा। जो वफादार अंग्रेजों को मार रहे थे वो मार रहे थे, उसमें सब क्या।
0: और अभी यहाँ वक्त है बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
13: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
18: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
17: जी,
18: आपको कोई तकलीफ हुई
17: अभी तक?
18: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते हैं आप मुझे?
17: अपना पर्सनल जान पहचान के?
18: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
17: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे।
18: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियाँ, इसमें जो गाड़ियाँ जा रही है, ये जो फ्लेक्स है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, अभी कोई टाटा महिंद्र किसी के पास कोई कंप्लेन नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, दो चार दिन कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई, ये टोयोटा कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह, तो उनने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तुमने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
17: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
18: आप ही बता। कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ, अब FIR दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत लेंगे।
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
19: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
20: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
21: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों की नई इबारत लिखकर न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच। मेलबर्न से मोदी का बड़ा ऐलान। अयोध्या की धरती से सीएम योगी का विपक्ष पर आक्रमण। कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले कर रहे हैं राम की जन्मभूमि को बदनाम। हमने बदल दिया अयोध्या की सूरत। राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम। ब्याज पर दिए थे पैसे। आरोपियों का खुलासा। दूसरी कार बरामद। चंपत अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई की ड्रग्स तस्करी में पुलिस हिरासत पर चढ़ा सियासी पारा। सरकार पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। का पूरा केस मनगढ़ंत। और इंग्लैंड में सरेंडर कर चुकी टीम इंडिया और मैनेजमेंट से बीसीसीआई निराश। कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का होगा रिव्यू। लगातार बड़े अंतर से हार रही है टीम।

रही है बारिश, चलते कई इलाके जलमग्न। गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों पर पान के बीच रेंग की नजर आई गाड़ियां। गाजीपुर बॉर्डर पर जलभराव से बड़ी परेशानी, सड़कें बनी तालाब, लोगों की आवाजाही में दिक्कत। यूपी में मानसूनी आफत की चपेट में आया मुरादाबाद, तालाब में तब्दील नजर आई शहर की सड़कें। सड़क पर जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी, घुटनों तक पानी के बीच आवाजाही को मजबूर लोग। आगरा में आफत की बारिश से शहर का हाल बेहाल, कई सड़कों पर जमा हुआ है पानी। दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश बनी आफत, भारी भूस्खलन से NH10 पर जमा हुआ मलबा, सिक्किम जाने वाला रास्ता बाधित। लैंडस्लाइड से हाईवे मलबा जमा होने से सड़क बंद, मलबे की चपेट में आने से फंसा ट्रक, राहत बचाव और सफाई का काम जारी। रुद्रप्रयाग में दो दिन की झमाझम बारिश, मानसूनी आफत से उफान पर नदियां नाले। बरीनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरे मलबे से आवाजाही बाधित, सड़कें बंद। उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप से बड़ा खतरा, सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से बंद। उधम सिंह नगर में बारिश ने बरपाया कहर, तीन दिन में जोरदार बरसात से कई इलाके जलमग्न, तालाब में तब्दील हुआ पूरा शहर। लगातार बारिश के चलते घरों में घुसा पानी, सड़क पर घुटनों तक पानी के बीच आवाजाही को मजबूर है लोग। मुंबई के नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर दुकानदार की हैरान करने वाली तस्वीर, बारिश के गंदे पानी में चाय की केतली धोते नजर आया। त्रिपुरा में भारी बारिश ने बचाई आफत, नदियों ने दिखाया रौद्र रूप, तेज बहाव से नदी किनारों पर कटान, इलाकों में बड़ा खतरा, सब्जी और फसल को नुकसान। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। अलीगढ़ में बारिश बनी आफत, सड़क पर जलभराव, कई इलाकों में लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी में मॉनसून की दस्तक ने बरपाया कहर, पश्चिमी जिलों के लिए IMD का रेड अलर्ट, आज भी तेज बारिश का अलर्ट। यूपी के सहारनपुर में

बीएसपी प्रमुख मीडिया से रूबरू हो गए, लखनऊ में प्रेस वार्ता की। मेरठ के ललिता गौतम केस में मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील की। यूपी में बारिश, बिजली से तबाही पर सीएम योगी सख्त, 24 घंटे मुआवजा देने के निर्देश, अधिकारियों को फील्ड में उतरने के लिए कहा। यूपी पंचायत व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रधानों को प्रशासन बनाने की वैधता पर उठे सवाल। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई दौरा पूरा करके न्यूजीलैंड के लिए रवाना, इस दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता से होगी। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी एक बिजनेस इवेंट और स्पोर्टिंग इवेंट में शामिल होंगे, इसके बाद ऑकलैंड के 40,000 भारतीयों को करेंगे संबोधित। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच। चेन्नई में खेला जाएगा बिग बैश लीग का मुकाबला, 12 दिसंबर को रेनेगेड्स और स्कॉचर्स होंगे आमने सामने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा खिलाड़ियों का हौसला देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्रिकेट दोनों देशों का साझा जुनून है। कलकत्ता हाईकोर्ट के अभिषेक बैनर्जी को फटकार लगाई, 15 जुलाई को वॉइस टेस्ट के लिए पेश होने का आदेश दिए। ड्रग्स केस में रास्ते से छूटने के लिए एमपी कांग्रेस अध्यक्ष के भाई जीतू पटवारी ने दिया बड़ा बयान, कहा राजनीतिक प्रतिशोध के चलते मुझे फंसाया जा रहा है। ललिता गौतम हत्याकांड मामले को लेकर बिना नाम दिए चंद्रशेखर पर भड़की मायावती, मगरमच्छ बताकर सादा सीधा निशाना। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के मेरठ संभावित आगमन पर काशी टोल प्लाजा छावनी में तब्दील, बैरिकेडिंग कर पुलिस ने संभाला मोर्चा। बलिया में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अचानक बिजली गुल, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बलिया में मंत्री संजय निषाद का विरोध, संजय निषाद वापस जाओ के नारे लगाए, पुलिस ने युवाओं को हटाया। आमेर घाटी में भीषण हादसा, आपस में भिड़े स्कूटी और कार, टक्कर के बाद हवा में उछला युवक। आजमगढ़ में डबल मर्डर, आधी रात से पहले बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, घर में घुसकर पोते को भी मार डाला। भीलवाड़ा के चारागाह भूमि पर कब्जे का आरोप, भाजपा विधायक लाला राम बेडवा उनके बेटों पर उठे सवाल। ग्वालियर में ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, फर्जी होटल बुकिंग के नाम पर 50,000 की साइबर ठगी। झांसी में चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में गिरा शख्स, ट्रेन के नीचे जाने से पहले आरपीएफ जवान ने बचाई जान। सुल्तानपुर महिला बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के पालघर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग, आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर फटा, धमाके में दो घर जलकर खाक। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के अलीपुर इलाके में कार्डबोर्ड रोल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गया में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक के परिजनों ने स्कूल में घुसकर ही पिटाई, आरोपी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। बिहार के सहरसा में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी, झड़प के दौरान एक मछुआरे को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। इंदौर में गलत दिशा से आ रहे बाइक सवारों को टोकना, एक स्थानीय युवक को पड़ा महंगा, बाइक सवारों ने युवक की जमकर पिटाई की। आसनसोल में स्कूल की किताब उतारने को लेकर खूनी संघर्ष, हिंसक झड़प में कई घायल, पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद में मां और बेटे की हत्या के मामले में हड़कंप, पुलिस पूछताछ में महिला के पति और उसके जेठ पर मिलकर हत्या करने की आशंका। पुणे के आलंदी में पालकी प्रस्थान के दौरान महिला ने बीच सड़क पर किया हंगामा, ट्रैफिक व्यवस्था का विरोध करते हुए सड़क पर लेटी। रोहतास ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने कई घंटे तक नेशनल हाईवे को किया जाम। अजमेर जोधपुर आरटीओ को बम से उड़ाने की धमकी, एक घंटे तक चली गहन जांच के बाद नहीं मिली कोई विस्फोटक सामग्री। सहारनपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत, मामले विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पटना में पति के अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को पड़ा भारी, पति ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या की, दोनों आरोपी गिरफ्तार। संभल में 59 साल पुरानी इमारत को किया ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत ने जर्जर बिल्डिंग को ढहाया, 3 घंटे तक चली कार्रवाई। गुजरात के वेरावल में जुए पर एसएमसी की रेड के दौरान बवाल, पुलिस टीम पर हमला, 40 नामजद समेत 200 पर मामला दर्ज। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, नायब तहसीलदार घायल, 200 लोगों पर केस दर्ज। कौशाम्बी में जमीन विवाद पर बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम में एनकाउंटर क्राइम ब्रांच के 3 कर्मचारियों को लगी गोलियां, 4 शूटर ढेर। विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के थे सभी शूटर, व्यापारी के घर फायरिंग कर भाग रहे थे आरोपी। नारनौल में कार ने बुजुर्ग उड़ाया, सीसीटीवी में उछलकर 20 मीटर दूर गिरते दिखा शख्स, मौके पर मौत। रामपुर पुलिस ने किया ठगी का खुलासा, 2 गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ करते थे ठगी। झारखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, ग्रामीणों ने संदिग्ध आरोपी को दबोचा। दिल्ली के वेंकट हॉल में झगड़े में चली गोली, 10 राउंड फायरिंग, महिला को छूकर निकली गोली। पटना में संविदा लाइनमैन की मौत पर बवाल, परिवार ने लगाया मारपीट कर आरोप, सड़क जाम कर किया बवाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर अचानक भड़बड़ाकर गिरा फ्लाईओवर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का खौफनाक वीडियो। पुणे में वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर महिला का जमकर हंगामा, रास्ता बंद करने को लेकर पुलिस से भिड़ी महिला, देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई।

रैपिड ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोग की मौत। गुरुवार रात जिनजियांग शहर की फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग का वीडियो आया सामने। ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता के अंत्येष्टि में शामिल हुए बेटे मुस्तफा मेशम और मसूद खामनेई। आयतुल्ला खामनेई के उत्तराधिकारी और सुप्रीम नेता मुश्तबा नहीं आए। ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद जलती कई नावों का वीडियो आया सामने। गुरुवार सुबह बुशहर में सुनी गई कई धमाकों की आवाज। ईरान के नाटो शिखर सम्मेलन को बताया राजनीति प्रेरित। तुर्की के अंकारा में हुए शिखर सम्मेलन में हॉर्मुज से जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही का अहम मुद्दा। इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं ने कई मोर्चों पर सहयोग की बताई जरूरत। अपने नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखे जाने को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया बड़ा सम्मान। कहा आधिकारिक तौर पर ट्रंप के नाम से जाना जाएगा फ्लोरिडा का पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेलेंस्की ने यूक्रेन के पेट्रियट मिसाइल निर्माण पर अमेरिका के साथ समझौते का किया ऐलान। तुर्की के अंकारा में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात। यूएन ने यूक्रेन पर रूसी हमलों में जून महीने में कम से कम 265 लोगों की मौत की कही बात। यूएन सुरक्षा परिषद में कीव और दूसरी बड़ी आबादी वाला शहर। हंगरी में संविधान संशोधन के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। बुदापेस्ट में राष्ट्रपति दफ्तर के बाद बाहर जुटे लोग। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर हिरासत में लिए गए 3 तिब्बती कार्यकर्ता। झंडा लहराते लोगों को तिब्बत में मानवाधिकार सम्मान और तिब्बत से चीन को बाहर किए जाने के समर्थन में नारेबाजी।

0: बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीसीसीआई इंग्लैंड के साथ खेली गई टी20 सीरीज में भारत के हार के कारणों की समीक्षा करेगी। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के प्रदर्शन की समीक्षा भी की जाएगी। सीरीज इंग्लैंड ने 3-0 से अपने नाम कर ली है। कल ही मैच हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने एक बड़े मार्जिन से टीम इंडिया को हरा दिया था। बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, सभी इस वक्त नाकाम नजर आ रहे हैं, चाहे आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ। दोनों ही सीरीज में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, इसलिए अब इस परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, क्या कहीं ना कहीं बीसीसीआई जानती है कि कहां चूक हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये समीक्षा का एक प्रोसेस है इसलिए किया जा रहा है?
1: नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई को इस बात का इल्म नहीं है कि क्या कुछ गलत हो रहा है। ऑफ कोर्स उनको इस बात की जानकारी है, लेकिन चूंकि ये प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, अभी सीरीज ऑनगोइंग चल रही है, अभी आपको एक मुकाबला और खेलना है, सो इस दौरान बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स है वो नहीं चाहते वो इंटरवीन करे। आज तक ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजी साइकिया से बात की है और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्सेप्ट किया है कि रिव्यू किया जाएगा, जरूर रिव्यू किया जाएगा। और इस बात का रिव्यू किया जाएगा कि ये जो दो बार की वर्ल्ड चैंपियन है, आखिर इसको ऐसा क्या हो गया कि वो आयरलैंड जाती वहां भी हार जाती है, वो इंग्लैंड जाती है 5 मैच खेलने के लिए, वहां पर भी अब 3 मैच वो हार जाती है, 1 मैच चलो पानी से धुल गया था, लेकिन 3 मैच हारती है। टोटल 5 मैच आप हार चुके हो और आपने अभी फरवरी महीने के अंदर में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया, तो सडनली ऐसा क्या हो गया कि भारत टी20 में लगातार स्ट्रगल करने लगा, इस बात की समीक्षा होगी। और साथ ही साथ कप्तान और कोच से पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हम विदेशी धरती पर जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो आप इस बात को ऐसे देख सकते हैं कि बीसीसीआई जो है वो इस हार की समीक्षा करना चाहती है कि क्या गलत हुआ, क्या सिलेक्शन पैनल जो है उनसे बेहतर टीम बोर्ड को नहीं मिली, जो टीम मैनेजमेंट है उनको नहीं मिली, या फिर जो टीम मैनेजमेंट को टीम मिली थी उससे आप एक बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए जो कि आपको मैचेस जिता सके, इस बात की समीक्षा होनी है। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजी साइकिया ने साफ तौर पर आज तक को इस बात की जानकारी दी है कि बीसीसीआई यानी कि बोर्ड इस प्रदर्शन से बहुत ही निराश है और वो चाहते हैं कि उन रास्तों को खोजा जाए जिससे हम वापस जो है वर्ल्ड चैंपियन की तरफ बन सके। तो रिव्यू मीटिंग होगी, डेफिनेटली होगी, कप्तान से भी पूछा जाएगा, कोच से भी पूछा जाएगा कि आखिर आयरलैंड और इंग्लैंड में भारतीय टीम को होका गया, क्योंकि अगर आप देखिए तो बल्लेबाजी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चली। नए नवेले कप्तान यहाँ पर आए थे श्रेयस अय्यर, उनके खुद भी आप कह सकते हैं कि उनके कल के मैच में कुछ 80-82 रन आए, लेकिन वो जीत के लिए काबिल नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखिए, आपने वैभव सूर्यवंशी को खिलाया, वो 3 मैच उन्होंने खेले, उनके रन नहीं है, संजू सैमसन को बाहर बिठाया, अभिषेक शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो कोशिश कर रहे हैं, तिलक वर्मा इस टीम के लिए सबसे बड़ा इस वक्त सरदर्द बने हुए हैं, उनके रन नहीं आ रहे हैं, अक्षर पटेल की बात कर लीजिए, और गेंदबाजी में भी हमने काफी कुछ प्रयोग देखे। ओवरऑल इस सीरीज में अगर हम इंग्लैंड में हारे हैं, इस जिम्मेदार में ये भी मानता हूं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट है वो एक स्टेप में या एक फॉर्मूले के साथ आगे नहीं बढ़ी, कई सारे चेंजेस करने पड़े, लेकिन यहां अगर समीक्षा की जाएगी तो वो हार की समीक्षा की जाएगी। बाकी जो चीजें हैं कि कोच से पूछा जाएगा, ऑफकोर्स पूछा जाएगा, कोच की जिम्मेदारी है वहां पर, लेकिन साथ ही साथ नए नवेले कप्तान से भी पूछा जाएगा कि आपको इस सीरीज में क्या दिक्कतें आई,
0: लौटूंगी क्योंकि इस बीच एक बार ये जो परफॉर्मेंस है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कल का मुकाबला करो या मरो का था इंग्लैंड के साथ, जिसमें अगर इंडिया मैच जीत जाती तो अगले मैच में जीत के साथ वो सीरीज बराबर कर सकती थी, लेकिन पहला टी20 हुआ बारिश में अपूर्ण रहा, दूसरे टी20 में 4 विकेट से हार मिली, तीसरा टी20 125 रन से हार गई और चौथा टी20 9 विकेट से हार गई। ये आयरलैंड के साथ सीरीज जो 0-2 से भारत हार गई। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, क्या हम ये माने कि जो कभी अंडरडॉग समझे जाते थे आयरलैंड की टीम, अब उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता जा रहा है या टीम इंडिया का प्रदर्शन ही खराब था?
1: नहीं देखिए, आयरलैंड ने अच्छा खेला, इसमें कोई दो राय नहीं और हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और जहां तक रही भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात, भारतीय टीम आईपीएल खेल के आयरलैंड गई थी और आयरलैंड की कंडीशंस जो है आई थिंक वो अडॉप्ट करने में भारतीय टीम नाकाम रही। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम अगर वहां पर 2 मैच हारी है और 3 मैच इंग्लैंड में हारी है तो आप उनको ये कहोगे कि इस टीम का प्रदर्शन जो है अब भविष्य में भी खराब रहेगा। नहीं, ये वही टीम है जो जिसने 2024 में वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था टी20 का, अभी 2026 में जीता। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि बेहतर ट्रैक्स पर खेलने की आदी नहीं है भारतीय टीम। बेहतर ट्रैक्स का मतलब ये होता है कि जिस विकेट कंडीशन में आप अपने घर पे खेलते हो, आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा सूट करती है आपको, और जब आप एलियन कंडीशन पे खेलते हो, विदेशी सरजमी पे खेलते हो, आपको थोड़ी वहां पर दिक्कत आती है। आयरलैंड में थोड़ी कंडीशंस अलग थी, भारतीय टीम की बैटिंग वहां पर स्ट्रगल की, सेम हुआ इंग्लैंड में जहां पर आपकी फिर से जो बैटिंग लाइनअप थी उसने स्ट्रगल किया। तो मेरे हिसाब से शायद बेहतर ट्रैक्स पर ना खेलना और इस तरह के होम कंडीशंस के ट्रैक्स पर खेलकर आदि हो जाना भारतीय टीम के लिए एक सबसे बड़ा वहां पर सरदर्द था। और दूसरा कि आपको गेंदबाजी में भी अब सोचना पड़ेगा, अगर आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, आपके पास बुमराह नहीं है, इसका मतलब आपका कंप्लीट बैलेंस
0: समीक्षा की
1: हो
0: जाएगी, चाहे वो आयरलैंड के खिलाफ हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ, बीसीसीआई इस पर समीक्षा करेगा। पहले मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करते हैं, जहां पर दो ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के बाद सियासी विवाद इसलिए है क्योंकि पुलिस के मुताबिक ड्रग केस की जांच के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी का नाम आ रहा है। पुलिस ने कल रात नाना पटवारी को हिरासत में लिया था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया। नाना पटवारी का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है।
2: पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मादक पदार्थ लेके किसी को डिलीवरी करने जा रहे हैं, तो उसके आधार पर पुलिस ने उनको पकड़ा और उनसे पूछताछ की गई कि आप ये मादक पदार्थ किसको देने जा रहे हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि नाना पटवारी और दूसरा मानव गंगवानी, उन लोगों को भी हम लोगों ने उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हिरासत में लेके पूछताछ की गई। ये इरफान और रोनी ने बताया कि पहले भी इन लोगों ने इनसे ड्रग्स लिया है। पूर्व में नाना पटवारी और कुलभूषण पटवारी पे 9 अपराध पंजीबद्ध हैं।
3: किस तरह के हैं सर ये मारपीट?
2: ये मारपीट के अपराध हैं, कुछ SC ST के भी अपराध हैं और एक 420 का भी अपराध है तेजाजी नगर में।
4: मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट विजलपुर चौराहे पे है, बस वहाँ पे आके उन्होंने 9:30-10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर घुमाते रहे पूरा शहर में, इधर से उधर इधर से उधर।
5: क्या कहना?
4: कुछ भी नहीं। पूछता रहा उनसे कि क्या केस है मेरे को बताओ, कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने।
5: ब्राउन शुगर की बात आ रही
4: है? कुछ भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है, ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई थी जिनको पकड़ा है। मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर।
0: वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि उनके भाई नाना पटवारी को पुलिस ने बिना सूचना के हिरासत में ले लिया। उनका आरोप यह है कि बीजेपी की साजिश है।
6: किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था, ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं है। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है।
0: वक्त ही शो से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
12: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
13: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत सोना मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: खाड़ी में फिर भड़की जंग। ईरान का पलटवार, दहल उठे तीन देश। मिसाइलों की गड़गड़ाहट और सायरन की चीखों से दहल उठी है पूरी खाड़ी। ईरान और अमेरिका की जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। कुवैत, बहरीन और कतर में अचानक मिसाइल अलर्ट के सायरन बजने लगे। आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को कुवैत की सेना ने हवा में ही मार गिराना शुरू कर दिया। ये तबाही तब शुरू हुई जब अमेरिका ने ईरान पर नए दौर के भीषण हवाई हमले किए और जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत को निशाना बना डाला। ईरान की सरकारी मीडिया IRIB ने वीडियो जारी करते हुए कहा, ये कुवैत में अमेरिकी आतंकियों के बेस को निशाना बनाए जाने के फुटेज हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी बीती रात ईरान में बारूदी तबाही मचाई। लगातार दूसरी रात ईरान पर अमेरिकी बमबारी का वीडियो जारी करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अमेरिकी फौज ने 8 जुलाई को ईरान में अगले दौर की स्ट्राइक्स की हैं। इसका इरादा हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों और बेकसूर नाविकों पर ईरान की हमला करने की ताकत को और कमजोर करना है। सेंट्रल कमांड ने करीब 90 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी के संसाधन, मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज साइट्स, नौसैनिक क्षमता और ईरान तट के किनारे सैन्य ढांचे शामिल थे। अमेरिका ईरान के बीच वार पलटवार की जिद फिर से मध्य पूर्व को भीषण महायुद्ध में झोंकने पर तुल गई है। नाटो समिट से निकलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हो रहे धमाकों के वीडियो पोस्ट कर दिए और ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने साफ कर दिया कि सीज फायर अब इतिहास बन चुका है। ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं दे रहे बल्कि ईरान के पावर प्लांट, पानी के प्लांट और सबसे बड़े ऑयल हब खार द्वीप को जब्त करने की तैयारी में है, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। इधर ईरान के बुशहर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, चाबहार, कोनार और बंदर अब्बास जैसे बंदरगाहों पर लगातार धमाकों की खबरें हैं, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। सुलह की बात करने वाले धमकी पर उतर आए हैं मुख्य वार्ताकार और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धौंस और जबरन वसूली का दौर अब खत्म हो चुका है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं। इस बयानबाजी ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि शांति समझौता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस एक बयान के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। ईरान के भीतर इस बात को लेकर दो फाड़ हैं कि कड़ा रुख अपनाया जाए या पाबंदियां हटाने के लिए शांति समझौता किया जाए। लेकिन हुर्मुज पर कब्जे की इस जंग ने दुनिया को आर्थिक महातबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

रिश्तों की नई इबारत लिखकर न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा, चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच, मेलबर्न से मोदी का बड़ा ऐलान। अयोध्या की धरती से सीएम योगी का विपक्ष पर आक्रमण, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले कर रहे हैं राम की जन्मभूमि को बदनाम, हमने बदल दिया अयोध्या की सूरत।

राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम, ब्याज पर दिए थे पैसे, आरोपियों का खुलासा। दूसरी कार बरामद, चंपत अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई की ड्रग्स तस्करी में पुलिस हिरासत पर चढ़ा सियासी पारा, सरकार पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप, कहा पूरा केस मनगढ़ंत। आयरलैंड और इंग्लैंड में सरेंडर कर चुकी टीम इंडिया और मैनेजमेंट से बीसीसीआई निराश, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का होगा रिव्यू, लगातार बड़े अंतर से हार रही है टीम इंडिया।

0: नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मिडिल ईस्ट में धधकते अंगारों की इस वक्त चर्चा है क्योंकि खामेनेई सुपुर्द खाक हो चुके हैं। युद्ध 3.0 की आग ये बताई जा रही है। मौत के 132 दिन के बाद भी ईरान के दिवंगत सुप्रीम नेता अली खामेनेई को मशहद में अब सुपुर्द खाक कर दिया गया है। खामेनेई की अंतिम यात्रा चल रही थी और उधर अमेरिकी फौजें ईरान को दहला रही थी। सबके बीच अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया कि वॉल स्ट्रीट ने भी ये दावा किया कि ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने प्लान बनाया है। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे कि ईरान का ट्रंप प्लान है क्या। बात अब अली खामेनेई के सुपुर्द खाक की, क्योंकि खामेनेई की मौत के 132 दिन बीत जाने के बाद यानी कि कल उन्हें दफन कर दिया गया। खामेनेई के पैतृक शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। खामेनेई को विदाई देने के लिए पूरा ईरान मानो सड़क पर उतर आया हो अपने नेता को नम आंखों से विदाई देने के लिए। दूसरी ओर अमेरिका के प्रति आक्रोश भी साफ दिख रहा था।
1: मशहद का इमाम रजा दरगाह परिसर लोगों का समंदर हाथों में ईरानी झंडे, धार्मिक बैनर और अली खामेनेई की तस्वीरें। लाखों की भीड़ अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहां जुटी थी। कई लोग अपने मोबाइल फोन पर अली खामेनेई और मौजूदा सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई की तस्वीरें भी दिखाते नजर आए। मातमी माहौल के बीच सामूहिक दुआएं की गईं। सुपुर्दे खाक करने से पहले खामेनेई के बेटे आयतुल्ला सैयद मुस्तफा खामेनेई ने इमाम रजा दरगाह में अपने पिता की जनाजे की नमाज की अगुवाई की। इसके बाद अली खामेनेई को दरगाह के करीब सुपुर्दे खाक किया गया। इसी के साथ ईरान में कई दिनों से चल रहे शोक समारोह का समापन मशहद में हुआ। इससे पहले तेहरान, कोम, नजफ और कारबला में भी अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। मशहद में उमड़ी भारी भीड़ ने दिखाया कि अली खामेनेई की अंतिम विदाई केवल एक धार्मिक समारोह नहीं बल्कि ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक श्रद्धांजलियों में से एक बन गई। खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान उनके समर्थकों ने किल ट्रंप के बैनरों के साथ अमेरिका को संदेश देने की भी कोशिश की कि अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ईरान में आक्रोश बेहिसाब है। आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में जिस तरह से लाखों लोगों ने लाल कपड़ा दिखाया ये इस्लामिक परंपरा में बदले या खून का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामेनेई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह के अंदर दफनाने की वजह भी खास है। शिया संप्रदाय के कुल पवित्र 12 इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला या सामर्रा में। इमाम रजा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने जहर देकर हत्या करवा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन अमेरिकी हवाई हमले में हुई थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता का पद संभाला। ऐसे समय में यह अंतिम संस्कार हुआ है जब युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: नेता के बदले नेता, जान के बदले जान, पूरे ईरान में इस समय ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। सार्वजनिक तौर पर लोग पोस्टर लहरा रहे हैं कि वी विल किल ट्रंप। और इस बीच अमेरिकी मीडिया ने खुफिया सूत्रों से दावा किया है कि वॉल स्ट्रीट ने लिखा है कि ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने एक नया प्लान बनाया।
2: क्या ईरान ट्रंप की हत्या करवाना चाहता है? अमेरिकी राष्ट्रपति को निपटाने के लिए ईरान ने नया किलिंग प्लान बनाया है। ट्रंप ने क्यों कहा कि वो ईरानी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं? नेतन्याहू की मोसाद ने ट्रंप की CIA को ऐसी कौन सी जानकारी दी कि अमेरिका चौकन्ना हो गया? ईरान के हिट लिस्ट में पहला नाम ट्रंप का है, ट्रंप को ये बात किसने बताई? डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे ईरान में दशकों से लगते रहे। अली खामेनेई के जनाजे में भी तेहरान से इंतकाम की आवाज उठी। ऊंची इमारतों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे कि वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। और अब इजराइल की एक खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये साजिश 2020 से चल रही है। इसे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2020 में अमेरिकी हमले में सुलेमानी की मौत हुई थी। अमेरिकी अधिकारी पहले भी कह चुके हैं कि ट्रंप को ईरान और उसके प्रॉक्सी से खतरा है। अब जब अमेरिका ने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान को तहस नहस कर दिया, तो ये खतरा और भी बढ़ गया। खुद ट्रंप भी मानते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं।
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
4: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go, right?
3: But was there a specific
4: threat today? So perhaps someday you want to change professions.
2: 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के साझा हमले में आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद एक एक करके अमेरिका ने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। ईरान भी अपने तरीके से जवाब देता रहा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए, लेकिन जो नुकसान अमेरिका ने ईरान को पहुंचाया है, उसकी भरपाई आसान नहीं है। दावे तो यहां तक किए गए कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा भी घायल हैं। जिस दिन से उनको नेता घोषित किया गया, उस दिन से आज तक वो कभी सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जिस तरह से ईरानियों ने अमेरिका के खिलाफ गुस्सा दिखाया, उससे साफ है कि ईरान किसी भी स्थिति में ट्रंप और अमेरिका से बदला लेना चाहता है। ट्रंप और नेतन्याहू भी ये बात जानते हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इस मिशन में लगे हुए हैं। ईरान और अमेरिका की अदावत पुरानी है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम नेता को मारा, ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। नए सुप्रीम नेता मुज्तबा कई महीनों से भूमिगत हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या ईरान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा? ईरान की सड़कों पर ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा तो साफ दिखता है, लेकिन अब इजराइल ने जो रिपोर्ट अमेरिका को दी है वो चौंकाने वाली है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिकी प्रशासन इस रिपोर्ट की पुष्टि करता है और क्या इजराइल या ईरान इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर मध्य पूर्व की राजनीति से लेकर वैश्विक सुरक्षा समीकरणों तक दिखाई दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये नारे ईरान में इस्लामिक क्रांति के साथ चल रहे हैं। लेकिन इस नफरत का अंत कब होगा? इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? ईरान की कट्टरपंथी ताकतें अमेरिका को सबक सिखाने को ही श्रेष्ठ समाधान मानती हैं, तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के नए सुप्रीम नेता के पीछे पड़ गए। शायद यही वजह है कि मुज्तबा खामेनेई अब तक भूमिगत है।
5: ईरान का पवित्र शहर मशहद मायूस है। यहीं आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। यही वो शहर है जहां खामेनेई का जन्म हुआ था। जिस मिट्टी में वो पले बढ़े थे, आज उसी शहर में आयतुल्लाह को मिट्टी दी जा रही है। मशहद जहां इमाम रजा का मजार है, उसी जगह खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इमाम रजा का मजार शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र है। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमाम रहे हैं। उनमें से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमामों को या तो सऊदी अरब या फिर इराक के नजफ, कर्बला और समर्रा में दफनाया गया। इमाम रजा शिया मुसलमानों के आठवें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उन्हें जहर देकर उनकी हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों लाख शिया श्रद्धालु जियारत के लिए पहुंचते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ईरान में इस्लामी क्रांति का मुख्य केंद्र भी रहा है। मशहद को शहादत का शहर भी कहा जाता है। इसी दरगाह में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी दफनाए गए हैं। और सबसे बढ़कर ये कि यही मशहद आयतुल्ला अली खामेनेई का जन्म स्थान भी है। खामेनेई का पार्थिव शरीर कल इराक में था। आज वहां से ईरान लाए जाने के बाद उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है।

इससे पहले छठे दिन इराक के नजफ और कर्बला में खामेनेई की अंतिम यात्रा निकाली गई। नजफ में इमाम अली दरगाह पर अंतिम संस्कार की प्रार्थना की गई। फिर तमाम रस्मों के बाद वहां से खामेनेई के पार्थिव शरीर को कर्बला ले जाया गया। कर्बला में इमाम हुसैन दरगाह और अल अब्बास दरगाह पर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों शहरों में लाखों लोग जुटे, हर कोई अपने धर्म गुरु के लिए गम में डूबा था।

इराक से पहले ईरान के शहर कोम और तेहरान में बड़े आयोजन हुए। वहां मानो पूरा ईरान अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने उमड़ा था। 3 जुलाई को ही तेहरान में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। करीब 2 करोड़ लोगों ने खामेनेई को आखिरी विदाई दी थी।

0: मशहद के गवर्नर ने जानकारी दी है कि आयतुल्ला अली खामिनेई के अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। ताजा अमेरिकी हमलों के बीच ईरान की सरकार ने मशहद में आयोजित कार्यक्रम के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सड़कें, हवाई क्षेत्र बंद रखे गए हैं। ऐसे में ये आयोजन ईरान की ताकत और एकजुटता दिखाने का मौका भी है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां 56 साल के मुश्तबा खामिनेई को लगातार टारगेट कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर का गायब रहना ही फायदेमंद है। सच ये भी है कि अगर मुश्तबा खामिनेई की मौत हो गई, तो ईरान की सत्ता बिखरने में देर नहीं लगेगी और अंत IRGC का भी होगा, क्योंकि मुश्तबा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और उससे जुड़े संगठनों को सीधे बढ़ावा दे रहे हैं और संभावित हमलों के खतरे को देखते हुए वो लगातार सार्वजनिक जीवन से दूर और छिपे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वो किसी सुरक्षित गुप्त स्थान या बंकर से ही ईरान की सरकार चला रहे हैं और खुद को हमलों से बचा रहे हैं, क्योंकि ये भी निश्चित है कि अगर मुश्तबा की सुरक्षा में रत्ती भर भी लापरवाही बरती गई, तो वो सीधे अमेरिका और इसराइल के टारगेट पर होंगे। आज तक ब्यूरो।
1: और आपको ले चलेंगे अफगानिस्तान, जहां पाकिस्तान की क्रूरता के निशान साफ दिख रहे हैं। आज तक की टीम इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है। डुरन लाइन के पास बने अफगानी गांव पर मुल्ला मुनीर की फौज कहर बरपा रही है। 28 जून की रात को अफगानिस्तान पर हवाई हमले हुए, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
2: आज तक की टीम पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर पहुंची है। डुरन लाइन के पास उस गांव में आज तक पहुंचा है, जहां पाकिस्तान की जिहादी फौज ने लोगों के घरों पर हमला किया है।
3: आज तक की टीम वो पहला इंटरनेशनल क्रू है जो इस इतना दूर जो है इस डुरन लाइन के करीब पहुंचा है और आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि क्या हुआ था उस दिन यहाँ, किस तरीके से तबाही हुई थी और कैसे जो है उसके बाद एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का।
2: अफगानिस्तान का पक्तिया प्रांत, इसी राज्य में चमकानी गांव में पाकिस्तान ने 28 जून को हवाई हमला किया। पाकिस्तान के हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस मकान की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भयावह था।
3: खास तौर पे अगर हम आपको थोड़ा नजदीक ले जाए, मैं अपने कैमरन को बोलूंगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आस पास का जो सामान है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि आखिर यहाँ पे क्या था। इसे आप देख सकते हैं, जो मैट्रेसेस हैं या फिर तकिए और उसके अलावा जो महिलाओं के कपड़े हैं और जो बाकी सामान होता है घर का, वो यहाँ तबाह होके बिखरा हुआ है। उसके बाद एक और सिलसिला एस्केलेशन का शुरू हुआ और आज हालत ये है कि जब हम डुरन लाइन के बहुत करीब हैं, डुरन लाइन इस तरफ आपको दिखाऊंगा, कैमरन को बोलूंगा कि आपको दिखाए, यहां से जो है ड्यूरन लाइन का जो 2600 किलोमीटर इलाका है इस तरफ से है और ज्यादातर जो ये ड्यूरन लाइन जो ये बॉर्डर है ये खुला है, यानी कि इसकी फेंसिंग नहीं है और वो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में।
2: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा ड्यूरन लाइन तय होती है, इसका ज्यादातर हिस्सा खुला है, लोग आसानी से आर पार जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अमानवीयता से अफगानी नागरिक गुस्से में है। जिस इमारत पर 28 जून की रात को बॉम्बिंग की गई वो एक रिहायशी इमारत है।
4: जब वो मैं वहां फंसा था, मैं उस रूम पीता हूँ तीसरी फ्लोर पे, वहां फंसा था। मैंने किसी को आवाज की कि मेरी मुझे सीढ़ी दे दी, वहां की जो सीढ़ी है वो बनती पूरी ऊपर से जो गिरा हुआ था, तो मैंने आवाज की मुझे सीढ़ी दे दे, मेरी बाँ बंद है। मेरे पास अपनी वाइफ थी और छोटी 1 साल की बच्ची थी, तो उनको मैंने निकाल दिया, जख्मी थे तो उसको मैंने खुद निकाल दिया। पहले तो मैं सब चीज मेरे ऊपर पड़ी थी, मैं खुद को निकाल के फिर उनको निकाल दिया मैंने।
3: फिर एक और ब्लास्ट
4: यहाँ बिठा के उनके ऊपर कंबल, कोई चादर मदर, औरतों की जो चादर होते हैं हवातीन के, तो चादर मदर कुछ भी नहीं थी घर में, तो मैंने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दी कि आप यहाँ बैठे, मेरी माँ फंसी है, बहुत सारे बच्ची पसी है, मैं उनको निकालता हूं।
2: पाकिस्तान का जिहादी जनरल मुनीर कहता है कि यहाँ आतंकी छुपे थे, लेकिन यहाँ के निवासी कहते हैं कि आतंकी कौन है बताओ तो सही, जो जनरल और सरकार निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारती है वो आतंकी है या फिर वो मासूम बच्चे जो इन हमलों में मारे गए।
5: डर तो इतना ज्यादा डर है
4: पाकिस्तान के जो नाम अभी उसको देता है लोग दूसरा इसराइल, इसके जहाज हर शब हर रात यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लोगों के साथ बहुत ज्यादा खौफ है। जब भी उनके तैयार यहाँ पर फिजा में आते हैं, लोग आसमान की तरफ देखते हैं, रूस की तरफ, रूस हम आसमान की तरफ देखते हैं, कब क्या होगा, कहाँ पे अटैक होगा। यूं तो उसने मामूल बनाया है, कुनड़ में, खोस में, पक्तिका में, अभी यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो हमला हुआ वहशतनाक। इसराइल ने इतना जुल्म फलस्तीनियों पर भी नहीं किया है।
2: यहाँ के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने डूरंड लाइन से सटे इस गांव में जो क्रूरता की है वो फिलिस्तीन और गाजा में भी नहीं हुई। महिलाओं बच्चों को पाकिस्तानी सेना मार रही है। जिस परिवार को पाकिस्तान ने मारा वो बेहद शरीफ खानदान था। बाचा खान जो इस हमले के पीड़ित हैं, जिस रात हमला हुआ वो खुद अंदर फंसे थे, उनका 14 साल का बच्चा मारा गया। इनका गुस्सा कठमुल्ला मुनीर और शहबाज के खिलाफ है।
4: उसको मैं यही बोल रहा हूँ, पाकिस्तान इंटेलिजेंस को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान फौज को, आसिम मुनीर को ये बोल रहा हूँ कि आप बच्चे मार रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं और मेरे जज्बात कंट्रोल से बाहर है कि उसको क्या बोलो। हमारे बच्चे शहीद है, हमारे सारे कौम वाले शहीद हो गए, तो इसकी खातिर मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि आप आए, इंटेलिजेंस भी आए, इस्लामी इमारत अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से इजाज़ा ले ले, आपकी जोटे मीडिया ये भी यहाँ ले आए, यहाँ कोई सबूत जिसने देखा है, साल में एक दिन में नहीं, एक साल पूरे साल में, दो साल तीन साल से लेके अभी तक, अगर एक बंदा मेरे घर से निकला हुआ है, आया हुआ है, बैठा हुआ है, एक आया हुआ है, सबूत मुझे बता दे, मुझे सबूत बता दे, मैं पंसी देने के लिए तैयार हूँ।
2: शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ इतना गुस्सा है कि लोगों की जुबान बेकाबू हो जाती है। अफगानिस्तान की जनता पाकिस्तान को चुनौती दे रही है कि जिसको लेकर आना है आए और साबित करे कि यहाँ आतंकी रहते हैं। यहाँ के
1: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
6: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
10: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
11: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
12: कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम को भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते, और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिष सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
14: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
16: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
17: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
18: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
20: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
21: Norway will take on England in Miami, and Argentina will face Switzerland in Kansas City. Many are expecting England and Norway to be a close match. The draw is plus 280. Meanwhile, Argentina is favored to qualify for the next round at minus 300.
20: This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
15: Presented by
5: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
14: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों की नई इबारत लिखकर न्यूजीलैंड की ओर पीएम मोदी। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच। मेलबर्न से मोदी का बड़ा ऐलान। अयोध्या की धरती से सीएम योगी का विपक्ष पर आक्रमण। कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं राम की जन्मभूमि को बदनाम। हमने बदल दी अयोध्या की सूरत। राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम। ब्याज पर भी दिए थे पैसे। आरोपियों का खुलासा। दूसरी कार भी बरामद। चंपत, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई की ड्रग्स तस्करी में पुलिस हिरासत पर चढ़ा सियासी पारा। सरकार पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। कहा पूरा केस मनगढ़ंत। आयरलैंड और इंग्लैंड से सरेंडर कर चुकी टीम इंडिया और मैनेजमेंट से बीसीसीआई निराश। कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का होगा रिव्यू। लगातार बड़े अंतर से हार रही है टीम इंडिया।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। न्यूज रूम लाइव में आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दो बजते ही न्यूज रूम लाइव में आते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन सी खबर है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले किस खबर के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कैसे अयोध्या को लेकर सियासी बयानबाजी इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो विपक्ष बीजेपी संघ और सरकार पर निशाना साध रहा है। किस तरह की सियासी बयानबाजी चल रही है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर वो भी हम आपको बता दें, हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों दलित वोट पर घमासान मचा हुआ है, वो भी तब जब कुछ महीनों पहले हत्या हुई हो और उसके बाद अब मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा हो, उसके पीछे की वजह क्या है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें, इंग्लैंड में क्लीन बोल्ड हो गई, इससे पहले आयरलैंड में क्लीन स्वीप, उसके बाद इंग्लैंड में लगातार हारते ही जा रहे हैं, तो बीसीसीआई अब टीम इंडिया के प्रदर्शन से नाराज है। क्या बड़े फैसले उठाए जा सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और ठीक ढाई बजे आधे घंटे बाद आपके जितने भी सवाल हैं E20 एथेनॉल पेट्रोल फ्यूल को लेकर सीधे बातचीत होगी नितिन गडकरी की हमारे सहयोगी श्वेता सिंह की, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, सन्न कर देने वाली तस्वीर है। एक एक्सीडेंट होता है और इतना भीषण एक्सीडेंट होता है कि बाइक सवार कई फीट हवा में उछल जाता है, और ये उसका सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जयपुर में इस खौफनाक हादसे की तस्वीर आप देखिए, एक कार अपनी रफ्तार में आ रही है और अचानक बाइक पर सवार दो लोग जो बहुत तेज गति से हैं, और इसमें दिख रहा है कि वो हेलमेट भी नहीं लगाए हैं, बाइक की रफ्तार इतनी तेज है कि बाइक को काबू करने की बहुत कोशिश की जाती है, पैर लगाकर रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाइक की इतनी तेज रफ्तार होती है, और रॉन्ग साइड में भी था। आप देखिए बाइक की रफ्तार इतनी तेज है कि वो अपनी लाइन में नहीं रहे, रॉन्ग साइड में सामने से आ रही कार से जीप से सीधे टक्कर होती है, और उस टक्कर में जो गाड़ी चला रहा होता है शख्स वो कई फीट हवा में उछल जाता है। और इसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स जो बाइक पर सवार था उसकी मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार स्कूटी स्कॉर्पियो से जाकर टकरा जाती है। स्कॉर्पियो सवार स्कॉर्पियो अपनी अपनी लाइन में चल रही थी, लेकिन बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, और इसीलिए कहा जाता है कि गति सीमा का हमेशा पालन करें और मोड़ पर खासतौर पर गाड़ी की रफ्तार धीमी होनी चाहिए, नहीं तो आप काबू खो देते हैं, और जब आप काबू खो देते हैं तो उसके बाद क्या होता है ये तस्वीरें बता रही हैं। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का, उत्तर प्रदेश अयोध्या बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देखिए आस्था की बात कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं जो हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाया करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज सवाल उठाए गए विपक्ष पर। कल बांदा में कब्रिस्तान से विपक्ष के प्रेम की बात की, तो आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज की बात कहकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या?

0: कौन करवा रहा था ये?
1: तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले बांदा में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो कब्रिस्तान का जिक्र किया था, विपक्ष पर हमला साधा था।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
1: आस्था पर सवाल खड़े करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि अयोध्या की सूरत इस सरकार ने कैसे बदल दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। विपक्ष पर कल कैसे निशाना साधा था, एक बार वो आपको सुनाते हैं।
0: तो पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: एसआईटी क्या है? लीपापोती है। लीपापोती एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
1: तो देखिए ये तो सियासी बयानबाजी की बात रही, लेकिन जैसे जांच आगे बढ़ रही है बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। ये भी बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि जो दान चोरी की रकम है शेयर बाजार में लगा दी थी ताकि पैसा बढ़ता रहे, उनका ब्याज पर भी पैसे देना शुरू कर दिए थे। जो चढ़ावा चोरी कर रहे थे ये आरोपी, नाम अनुकल्प मिश्रा, अविनाश मिश्रा, करुणेश पांडे, इनसे पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ चढ़ावा चोरी को छुपाने के लिए चोरी की रकम को पहले अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डालते थे और फिर वहां से वापस लेते थे ताकि हिसाब किताब दिखाया जा सके। अब सूत्र के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के 30 बैंक खातों को फ्रीज किया है, जिसमें पता चला है कि गलत तरीके से लेन देन किया गया है और अब पता भी चल रहा है कि कैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाया, ब्याज पर पैसे दिए, रिश्तेदारों को पैसे दिए, अकाउंट में पैसों को चलाने का एक सिस्टम दिखाया गया ताकि ये पता चल सके कि ये सफेद पैसा है। लेकिन अब पूछताछ में पता चल गया 30 बैंक खाते फ्रीज हैं। दान चोरी केस में कितने खुलासे हुए हैं वो आप देखते जाइए। अनुकल्प अविनाश ने कबूला है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया, रिश्तेदारों के खातों तक पैसा पहुंचाया, जमीन खरीदी, दस्तावेज भी दिए, गाड़ी भी खरीदी, ब्रीजा कार आप देख चुके हैं ग्रे कलर की, अब एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की गई है और उसको भी खरीदा गया था, तो वही ये चोरी के पैसों से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर ये है कि जांच में पता चला है कि एक स्विफ्ट डिजायर कार भी खरीदी गई थी, एक सफेद कलर की कार खरीदी गई थी, कैसे? जो पैसा चुराया गया था उसी से। अब आप देखिए कि फर्जी रसीदें बनवाई गई, उसके नाम पर पैसा लिया गया, वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसा लिया गया, अंदर से गड्डियां चोरी की गई और उसको कहां लगा रहे थे? शेयर मार्केट में लगा रहे थे और फिर उसके बाद जो पैसा बच रहा था उस पैसे से ही गाड़ियां खरीद रहे थे।
3: अयोध्या प्रकरण में जांच जारी है और पुलिस ने अनुकेश मिश्रा के पैतृक निवास से एक गाड़ी बरामद की है। बताया जा रहा है ये गाड़ी स्विफ्ट डिजायर है जिसे अनुकल्प ने चंदा चोरी के पैसे से ही खरीदा था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस गाड़ी की, ये वो गाड़ी है, आप डिजायर गाड़ी है, नंबर प्लेट देखेंगे UP42BZ5222, ये गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिसको इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और हमने जब इस गाड़ी की डिटेल्स निकाले हैं तो क्या आता है ये भी दिखा दीजिए एक बार। ये आता है रविंद्र कुमार, सन ऑफ राजेंद्र प्रसाद, सारी डिटेल्स है, एड्रेस है जहां से जहां

0: का ये नोट किया गया है। और कुल मिलाकर ये गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि अनुकेश ने अपने पिता के नाम पर ली थी। तो किस तरीके से काली कमाई को सफेद करने की पूरी कवायद अयोध्या में चल रही है उसको दिखाती ये गाड़ी है, ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। आइए इसको थोड़ा सा आगे से भी दिखाते हैं, थोड़ा समीप आए, करीब आए और दिखाएं आपको क्या एक नंबर गाड़ी। आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ी खरीदी गई थी और इसकी गाड़ी से अनुकल्प मिश्रा जो है वो चलता था।
1: तो देखिए जांच हो रही है तो बहुत कुछ पता चल रहा है, तरीके पता पड़ रहे हैं। अब कई घंटों की पूछताछ हो रही है आरोपियों से, अब जब पूछताछ हो रही है तो वो कबूल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या उनकी मॉडल्स ऑपरेंडी थी, क्या तरीका था, तो कैसे ये लोग पैसों का घालमेल करते थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आप समझ सके इनकी मॉडल्स ऑपरेंडी।
2: अयोध्या के राम मंदिर में चोरी करने वाले गैंग के खुलासों से राम भक्त हैरान है। अब नया खुलासा हुआ है कि दान पात्रों से रकम उड़ाने के बाद चोर उस पैसे से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। थाना राम जन्मभूमि में खड़ी ये स्विफ्ट डिजायर कार चढ़ावा चोरी केस में नई बरामदगी है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर ये कार बरामद की गई है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। दरअसल पुलिस कल तीन आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा को लेकर कल सुबह 4 बजे इनके पैतृक निवास पर गई थी और छापेमारी की, जहां से कार और कई चीजें बरामद की गईं। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प की निशानदेही पर कार के अलावा सोने की चेन और सोने का पेंडुलम भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों की 40 घंटे की रिमांड लेकर पुलिस ने चढ़ावा चोरी पर गहन पूछताछ की थी। पूछताछ और निशानदेही के आधार पर लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से ब्रेजा कार बरामद हो चुकी है।
0: पुलिस ने जिन तीन आरोपियों की रिमांड ली सुबह सुबह आज 4 बजे लेकर उन्हें उनके पैतृक निवास पर ले गई सूत्रों के मुताबिक, और तीनों के पैतृक निवास से काफी कुछ बरामद किया है। उनमें से एक ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक एक ज्वेलरी और एक गोल्ड पेंडुलम भी जो है वो अनुकल्प के आवास से बरामद किया है पुलिस ने। तो कहां से आखिर इतना सोना खरीद लिया, कहां से इतनी गाड़ियां अनुकल्प ने खरीद ली जब मासिक आय महज 13 से 15 हजार रुपए थी।
2: तीनों आरोपियों की 40 घंटे की रिमांड खत्म हो चुकी है और कल तीनों को वापस जेल भेज दिया गया। इस बीच चढ़ावा चोरी केस में कल एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी गई है। इस आईडी का उपयोग श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच में पाया कि इन आईडीज का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी उचित जांच पड़ताल के अंधाधुंध वीआईपी पास जारी किए गए। सूत्रों के मुताबिक जांच में कथित तौर पर यह सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव ने इस खामी का फायदा उठाकर सैकड़ों अनधिकृत वीआईपी दर्शन पास जारी किए। आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी वीआईपी पास जारी कराने के नाम पर एक कथित रैकेट चला रहे थे और इसके जरिए अवैध रूप से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे। चढ़ावा चोरी केस की परतें जैसे जैसे उतर रही हैं, आस्था के साथ गंदे खेल का भंडाफोड़ होता जा रहा है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: दलित वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश में जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले ललिता गौतम हत्याकांड का मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल बनकर नहीं रह गया है बल्कि राजनीति का सबब बन गया है, राजनीतिक रंग इसने ले लिया है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग के बीच अब दलित राजनीति के दो बड़े चेहरे मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आमने सामने हैं। एक तरफ बीएसपी की मुखिया मायावती लगातार कानून व्यवस्था और सरकार को निशाने पर लेकर दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद खुद मेरठ पहुंचकर मामले को गर्मा चुके हैं। और पुलिस की तरफ से बहुत स्पष्ट किया गया था कि चंद्रशेखर आजाद को वहां पर नहीं पहुंचने दिया जाए, लेकिन चंद्रशेखर वहां पर अड़े हुए थे कि वो वहां पर पहुंच के रहेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, और इसी के चलते अब वहां पर काफी सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ मायावती, और मायावती ये कह रही हैं दलित समाज से कि आप आक्रामक रवैया मत अपनाइए, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और ये बड़ी खबर है बलिया से। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, उनका एक बयान आता है और उस एक बयान के बाद राजनीति वहां भी बढ़ जाती है और बलिया का अपमान का मुद्दा अब उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि संजय निषाद ने गलत किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बलिया चर्चा का केंद्र में है। उनके एक बयान को लेकर सियासी बवाल थम नहीं रहा है और युवाओं ने मंत्रियों को घेरने की पूरी रणनीति इस वक्त बना ली है और उनकी तरफ से कहा गया है कि संजय निषाद ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बलिया में जो लोग हैं उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। अब इसी बात को लेकर लोग नाराज हैं लेकिन संजय निषाद कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है। प्रदर्शनकारियों में इस वक्त काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस वहां पर प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश में जुटी है।
3: इतने बड़े प्रदर्शनकारी और क्रांतिकारी लोग आज आए थे कि एक लाठी भी नहीं छुटी और प्रदर्शन काफी हो गया। मैं बलिया आज भी आया हूँ, आगे भी आऊँगा। बलिया किसी के पिताजी की जमीन नहीं है। अंग्रेज आए थे नदियों के रास्ते सबसे पहले हमारी जाति में उनका विरोध और डूबों को किनारा था। निश्चित रूप से कुछ लोग अंग्रेजों के गद्दारों के साथ घर से बंदूक चला रहे थे और हमारे लोग अंग्रेजों को मार रहे थे। तो निश्चित रूप से जो अंग्रेजों की तरफ से गद्दार बनके जो चला रहे थे उन्हें गद्दार को कहना पड़ेगा।
4: हमारे सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे हम बलिया के नौजवान। संजय निषाद तुम बाहर निकलो, संजय निषाद तुम होश में आओ, संजय निषाद तुम होश में आओ। बलिया का हम
5: तो बहुत शिष्टाचारी थे लेकिन आज की तारीख में अपने निषाद समाज के लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, उनके हक और हकूक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। भारतीय जनता पार्टी से लगातार उनके हक की बात करते हैं वो, लेकिन वो उनको उनका हक नहीं दिला पा रहे हैं। और आज की तारीख में वो जिस तरीके से टिकट मांग रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उनको एक या दो सीट दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से वहां के नौजवानों ने इनका विरोध किया, इनको अविलंब बलिया छोड़ देना चाहिए था, लेकिन शासन प्रशासन के दम पे नौजवानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चलवाने काम किया जो निहायत निंदनीय है। नौजवान जो है, पूरे प्रदेश का नौजवान आगे आने वाले चुनाव में न सिर्फ संजय निषाद से बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगा।
6: निषाद समाज हिसाब मांग रहा है डॉक्टर संजय निषाद से। वो पूछ रहा है कि हमारे आरक्षण का क्या हुआ, हम अनुसूचित जाति में क्यों नहीं आए। आप तो सत्ताधीश हो गए, आप तो कैबिनेट मंत्री हो गए, लेकिन समाज को क्या मिला? समाज से जो आप वादा करके आए थे उसको क्या दिया? और जो आज संजय निषाद जी का विरोध हुआ है वो कल ओम प्रकाश राजभर जी का भी विरोध होगा। ये विरोध अब बढ़ेगा, राजभर समाज हो या निषाद समाज हो। जो वादा खिलाफी इनके नेताओं ने इनसे की है समाज से, समाज पूरा पूरा हिसाब लेगा।
1: और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्रिकेट से जुड़ी हुई। टीम इंडिया का जो हालिया प्रदर्शन रहा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जिसमें सीरीज की हार मिली, अब ये खबर आ रही है कि बीसीसीआई रिव्यू करेगा टीम इंडिया के प्रदर्शन को, क्योंकि बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है। आयरलैंड ने क्लीन स्वीप किया, टीम को हरा दिया। उसके बाद इंग्लैंड में भी 3-0 से निर्णायक बढ़त इंग्लैंड ने हासिल कर ली है। एक मैच हालांकि अभी भी बचा हुआ है लेकिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन का रिव्यू होगा, ऐसा कहा है बोर्ड के सचिव सैकिया ने। हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितिन से बात कर लेते हैं। नितिन, आयरलैंड के खिलाफ बहुत बुरा प्रदर्शन, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ, वहां भी अब सीरीज हाथ से चली गई है, तो अब क्या एक्शन लिया जा सकता है इस टीम पर?
7: ये देखिए, बीसीसीआई इस पूरे परफॉर्मेंस को जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत साकिया ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय आयरलैंड में करके आई और फिर इंग्लैंड पहुंची वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल, और ये एक बहुत संकट की बात है क्योंकि अभी आप बैक टू बैक दो बार T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बने हो। जिस तरीके का प्रदर्शन इस वक्त भारतीय टीम कर रही है इंग्लैंड में, आप देखिए कि लगातार हार मिल रही है और भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो किसी भी स्तर पर अपने उस स्टैंडर्ड पर नहीं है जिस स्टैंडर्ड के लिए भारतीय टीम जानी जाती है। यही वजह है कि
1: बिल्कुल, और ये चिंता का विषय है। दो बार विश्व विजेता और आप दो बार लगातार सीरीज हार चुके हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहें आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in.
9: for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
10: Sokudo.
11: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
12: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
13: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
14: वाह वाह वाह वाह।
13: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
15: समझकर इन्वेस्ट कर।
16: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
18: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
19: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
4: तो भरोसा है।
5: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM, commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: एयू
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
4: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

मानसूनी बारिश से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश से यूपी में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्वीर आगरा की है, जहां भारी बारिश के चलते शहर की गलियां दरिया बन गई हैं। लगातार हो रही बारिश ने आगरा नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। करीब 200 परिवार घरों में कैद हो गए हैं, जिनका घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। यही नहीं, आगरा के सुभाष नगर में भारी बारिश के बाद बीच सड़क के बीच बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसके चलते ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा। आगरा ही नहीं, यूपी के सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश ने बच्चों के लिए सड़कों को ही स्विमिंग पूल बना दिया, जिसमें बच्चे मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है, गलियां समंदर सी नजर आ रही हैं, जिसके चलते लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सहारनपुर की तरह प्रयागराज का भी हाल बेहाल है। 1-2 घंटे की बारिश के बाद शहर में जलभराव हो गया। आम लोगों के इलाके की क्या, यहां तो पुलिस स्टेशन भी नहीं बच पाया। पुलिस चौकी और फायर स्टेशन में भी बारिश का पानी घुस गया। लगातार हो रही बारिश के चलते गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद में 12वीं तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, रबर वो गल जाता है, क्या ये सही है?
1: ये पॉलिटिकल मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान।
1: मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
0: उन्हें चाहे ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है,
1: एक में हजारों जो मिलता उसके ऊपर एक्शन दो, किसी को छोड़कर।
0: देश के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर में शामिल, देश की राजधानी और साथ में देश की आर्थिक राजधानी, दिल्ली और मुंबई की हम बात कर रहे हैं। और ये दो शहर ऐसे हैं जिसमें अगर हम जो पारंपरिक यातायात का सबसे डिपेंडेबल साधन यानी कि रेलवे, उससे अगर हम एक सामान्य ट्रेन से आएं तो 18 से 20 घंटे का समय लगता है, और राजधानी अगर हो तो लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अब पूरे उस परिवहन की परिभाषा को बदलता हुआ एक ऐसा एक्सप्रेस वे दिल्ली और मुंबई के बीच जिसकी चर्चा बहुत होती थी, और नितिन गडकरी जी से हम लोग ये सवाल भी पूछते थे कि क्या वाकई संभव है कि दिल्ली और मुंबई 12 घंटे में, और अब जब हम उसके उस सिरे पर खड़े हैं जहां से दिल्ली में, चाहे ईस्ट दिल्ली हम लें या फिर दक्षिण दिल्ली लें, सबसे कुछ रास्ते हैं जो चढ़ जाते हैं इस पर आकर, ये संभव हो रहा है अब कुछ महीनों में?
1: देखिए, अभी तो हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर नहीं लगे हैं, पर आप ये जो रोड के ऊपर खड़े उसके नीचे वाला एरिया जो है, और एक कालिंदी कुंज वगैरह, ये पहले इस एरिया में मैं पब्लिक मीटिंग के लिए आया था और तब मैंने देखा वहाँ से चलना मुश्किल था,
0: काफी इंक्रोचमेंट,
1: वाकई इंक्रोचमेंट थी, ये थी गंदगी थी, नाले थे। अब उस एरिया के ऊपर से ये एलिवेटेड रोड है, ये स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन है, ये जो ब्रिज बना हुआ है ऐसे बहुत अच्छा डिजाइन है। अब यहीं से दिल्ली से निकलकर डायरेक्ट इस रोड से चढ़कर, हाँ। ये भी रोड तो डायरेक्ट हमारा ये जो जेवर एयरपोर्ट पे भी जाएगा,
0: जेवर एयरपोर्ट भी जाएगा,
1: तुरंत ये जेवर एयरपोर्ट का रोड है, और बीच में से पलटकर फिर हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट हो जाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी अभी जिस एरिया में हम दिल्ली के हैं ये रोड अभी अभी खुला नहीं है, कुछ दिन के लिए
1: ये अभी प्रधानमंत्री जी का डेट मांगी है और तुरंत मिलने के बाद ये पूरा हुआ है, और करीब 10,000 करोड़ का रोड हमने बनाया है, और बहुत सुंदर है। दिल्ली में हम 1,60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी तो हमने वसंत विहार की टनल भी मंजूर की है
0: जी,
1: 8-9 हज़ार करोड़ की, हाँ। और हम दिल्ली को बहुत कठिन काम है ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, पर दिल्ली से ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन से मुक्त करना,
0: हाँ।
1: ये हमारी कोशिश है और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं,
0: हाँ। ये उसका एक बड़ा प्रयास, क्योंकि नीचे हम वाकई
1: अब देखे ना, ये पूरा गंदगी का नाला है,
0: हाँ।
1: ये पुराना एरिया है,
0: हाँ।
1: वो शाहीन बाग वगैरह जो एरिया था वो नीचे में था
0: जी।
1: और देखो ये किस प्रकार से कितने बड़े समस्या ये काम करते समय, पर हमारे प्लास्टिक पड़ा हुआ है केड़ कचरा से, अब ये पूरा एरिया इंक्रोचमेंट है, झोपड़पट्टी है। हमने यहाँ से ऊपर में आकर देखो ये क्रेन कैसे डाली है,
0: हाँ।
1: कैसे बनाया, बेस बनाया, और नाले में घुस कर ये काम किया हुआ है, यानी आप नीचे जाके देखिए आप कि किस कितना कठिनाई में ये काम किया हुआ है, और ये नाले में हमने ऐसे ब्रिज तैयार किए।
0: तो हम अब एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हैं,
1: चले
0: जी। तो इस मैप के हिसाब से यहाँ पर सर रेड वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे।
1: अभी अभी हम लोग ये
2: सर हम लोग यहाँ से एंटर किए, ये दिल्ली का रिंग रोड है जो आपका डीएनडी है, वो यहाँ से ये हाईवे आया फरीदाबाद को बाईपास करते हुए, वो ये सोना पे ज्वाइन कर लेगा, ये गुड़गावा है, गुड़गावा सोना रोड है, ये एक्सप्रेस वे यहाँ शुरू होता है, यहाँ मिल जाएंगे सोना भी हम एक्सप्रेस वे,
1: और
2: तो ये जयपुर
1: इधर से
2: जेवर
0: एयरपोर्ट का,
1: ये
0: मतलब सारी डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे,
1: एकदम
2: सिग्नल फ्री है,
1: और ये जो लोग अंदर घुसते थे दिल्ली के, ये सब लोग अभी इधर आएंगे नहीं, इनको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, दिल्ली का ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा, 30-40% ट्रैफिक।
0: सर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं दिल्ली का ट्रैफिक कम करने का,
1: पर आप बताए दिल्ली पेरिफेरल रोड बना,
0: हाँ, हाँ,
1: जितने
0: हाँ,
1: ट्रक जाते थे अभी बाहर चले गए,
0: हाँ,
1: कम तो हुआ,
0: ठीक,
1: अगर ये नहीं होते तो ये बात अलग है, कम होने के बाद और नया बढ़ा,
0: हाँ,
1: इसके कारण इफेक्ट जितना आता है लोगों को नहीं आ रहा है।
0: एक तो वो कम हुआ, दूसरा मुझे लगता है कि जो दिल्ली के आसपास जो शहर है उनसे दूरी कम हुई, जयपुर हो गया, देहरादून हो गया।
3: दिल्ली देहरादून 2 घंटे में,
0: 2 घंटे
3: जयपुर 2.25 घंटे में, ये तो बदल एकदम हो गया। अब एग्जिस्टिंग दिल्ली जयपुर रोड का भी ट्रैफिक ज्यादा कम नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ा भी बहुत,
0: ट्रैफिक बढ़ा भी है। पर सर 1 लाख करोड़ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की,
3: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कीमत 1 लाख करोड़ की, अब ज्यादा हो जाएगी, 1,10,000 करोड़ सक गया है।
0: उस हिसाब का रिटर्न्स क्या, अगर एक आम आदमी सोचे, देखिए सरकार की बात एक होती है, एक होता है आम इंसान सोच रहा है।
3: देखिए ये रिटर्न के हिसाब से नहीं गिनना चाहिए। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक रिपोर्ट आया IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई का, ये एक समय हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP के हिसाब से 16% आती थी।
0: अच्छा।
3: और चाइना की 8%।
0: हाँ।
3: और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की ये 12% की, और अभी ये रिपोर्ट ऐसा आया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, तो ये एकदम 10% पे आई 6 महीने पहले।
0: हाँ।
3: अभी तो मुझे लगता है वो 9 पे आई होगी, सिंगल डिजिट पे। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे आयात निर्यात में हम लोग अगर 6% कॉस्ट कम हो जाएगी तो उतना कॉम्पिटिटिव होंगे, तो मुझे लगता है एक प्रकार से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, नई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और टूरिज्म बढ़ेगा। सिंपल उदाहरण बताता हूँ, यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ का दिल्ली से हमने भी रोड बना दी।
0: हाँ।
3: तो 3 गुना ट्रैफिक पर्यटकों का बढ़ा, कितना तन कर रहा, अब वो सरकार को कंट्रोल करना पड़ा, ये ज्यादा लोग बताइए। अच्छा टूरिज्म जब आता है तो 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए खर्चा होता, इससे रोजगार निर्माण होता।
0: तो सर अगर मैं एक ट्रक लेकर मान लीजिए मैं जा रही हूँ दिल्ली से मुंबई, तो डीजल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, पैसों के हिसाब से मेरी कितनी परसेंटेज मेरी बचत होगी?
3: देखो पहली बात तो एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अभी 48 घंटे लग
0: ट्रक को,
3: अब वो ट्रक जाएगा 18 से 20 घंटे, तो उसके करीब 28 घंटे बच गए, तो वो एक महीने में अगर 4 ट्रिप करता होगा तो 7 ट्रिप करेगा, तो एक ही ट्रक की 7 ट्रिप होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा जो चलते समय उतनी मशीन कम चलेगी तो फ्यूल भी बचेगी, और फ्यूल बचेगी, कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, और उसके कारण ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी।
0: सर फ्यूल की बात आपने की है तो मैं उस फ्यूल की बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे, जिसके साथ मतलब आपने जब इथेनॉल के बारे में बात करना शुरू किया था, मैं भी समझ सकती हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये चीजें देखनी है, लेकिन आप बहुत पैशनेटली उसके बारे में बताते भी थे। आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ
3: पहली तो बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता
0: जी,
3: अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात करता, इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की
0: जी,
3: और हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, CNG, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो, और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले, इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन है इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना, और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ये होता है, इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इसके, तो मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी, अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं, और टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है वो 550 इंडस्ट्री है, कोई चावल से बना था, कोई मक्के से बना था, कोई शुगर केन जूस से बना था, कोई मोलास, उसमें हमारा शेयर 0.07% यानी 1500 लीटर में 1,70,000 तो अल्कोहल बनाता हूँ, फिर बॉटलिंग प्लांट तो हम लोग नहीं के बराबर, तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलने का कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज कर रहे हैं।
0: पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
0: हाँ।
3: क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
0: अभी तक तो नहीं।
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं आप मुझे?
0: अपना पर्सनल जान पहचान के?
3: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ, है कोई?
0: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं।
3: मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़िया, इसमें जो गाड़िया जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, दो चार तास कोई पार्ट्स लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटो कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह, तो उनने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है, बोले नहीं देता, उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। फिर उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
0: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
3: आप ही बता कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ, अब FIR दर्ज की उसके घर। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
0: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
3: देखिए, अमेरिका में इथेनॉल है,
0: हाँ।
3: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
0: हाँ।
3: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है, वो यूज करने का कोई कारण?
0: पर सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है, क्या अभी कोशिश हो रही है या ये
3: पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको भी सेंटर पर किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता, 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट हो गए।
0: तो सर इसमें मतलब अगर हम बाकी रोड से कंपेयर करें, एक्सप्रेसवे से कंपेयर करें, तो इसमें कौन सी एक ऐसी चीज है, कोई नई टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज जो इसे बाकियों से अलग और एक तरीके से?
3: आपने जो लोहे का ब्रिज देखा ना,
0: हाँ,
3: वो अपने आप में बहुत बड़े साइज का अच्छा डिजाइन किया हुआ है। वैसे हमारे हर प्रोजेक्ट में भी हम लोग जो जितनी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको स्वीकार कर रहे हैं, वैसे इसमें एक टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। ये दो पियर है ना, इसके बीच में हमारे यहाँ केवल 30 मीटर डिस्टेंस होता है।
0: अच्छा।
3: अभी हमने एक मलेशिया से और सिंगापुर से एक टेक्नोलॉजी लाई है कि ये 120 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस।
0: अच्छा।
3: और एक ही पिलर के बीच में ऊपर का बीम स्टील फाइबर में कास्ट होगा।
0: हाँ।
3: और अभी हम 50,000 करोड़ के 5 ऐसे ब्रिज बना रहे हैं।
0: हाँ।
3: नीचे में कुना में,
0: हाँ।
3: नीचे में रोड, ऊपर में एक ही पिलर पर ब्रिज,
0: हाँ।
3: उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो।
0: अच्छा।
3: 4 फ्लोर 3 फ्लोर के 50,000 अभी मंजूर हो गए। हाँ। अब मैं भूमि पूजन के लिए भी जाने वाला हूँ।
0: हाँ।
3: मुख्यमंत्री जी का टाइम है।
0: और ये जो हम इस एक्सप्रेसवे की खासकर बात करते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अलाउड रहेगी इस पर।
3: हाँ, हाँ।
0: सर सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं होगा?
3: अभी तो फॉरेन में 200-225 किलोमीटर तक अलाउड।
0: हाँ।
3: वैसे हमारे यहाँ भी स्पीड और बढ़ सकती है, पर हमने हमारे यहाँ के ट्रैफिक डिसिप्लिन और लोगों का अप्रोच देखते हुए 120 तक सीमित किया।
0: अच्छा, 120 पे सेफ रहेगा इस
3: सेफ
0: हाईवे पर? अच्छा।
3: और हमने उधर पेंच में भी बनाया, नागपुर जबलपुर सुंदर बना है। हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को तरफ ध्यान देते हैं, पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को लिए सुविधा करके देते हैं। और हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रभी हम बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं। हम डांबर में हम बिटुमिन में प्लास्टिक और रबर डालकर वो मिक्स तैयार करने की कोशिश करते हैं, बायो बिटुमिन। ये परली है ना राइस स्ट्रॉ, इससे बायो बिटुमिन बनेगा, वो हम यूज करने की बात कर रहे हैं।
0: तर अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत दुनिया के देशों में रैंक कर रहा है अभी।
3: हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम दुनिया के आगे जाएंगे। यही तो बायो फ्यूल अल्टरनेटिव फ्यूल की बात है।
0: हाँ।
3: अगर आगे जाना होगा तो प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, और इसलिए फॉसिल फ्यूल को कम करना है। पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल को कम कर रही है, और वही तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, ये पंजाब और हरियाणा में 280 लाख टन परली जला देते हैं। ये पंजाब और हरियाणा का ऑफिशियल डाटा है। अब वो परली से बायो सीएनजी बनेगा, हवाई ईंधन बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और परली का भाव 2500 रुपये टन हो गया। तो हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। हमने गाजीपुर टेकड़ी की 7 मीटर हाइट कम थी, वो पूरा कचरा हमने सेग्रीगेट करके रोड में डाला। अब दिल्ली की मैं 2027 तक हमने निर्धार किया है कि हम लीगेसी वेस्ट देश की समाप्त कर रहे हैं।
0: बारिश इतनी तेज हो रही है, आपने ये भी कहा कि आपको टारगेट कर रहे हैं लोग, एक और चीज को लेकर बहुत ज्यादा टारगेटिंग हो रही है, वो ये है जो नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान।
3: मैं आपको प्रार्थना करता हूँ
0: जी,
3: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए। देखो गड्ढे नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, हेवी ट्रैफिक के बाद 2 साल 3 साल 4 साल कभी ना कभी प्रॉब्लम आते हैं। पर आप मुझे बताइए, आज जो लोग ही आपको फीडबैक देंगे इतना रोड अच्छा है, हमें 2 घंटा 3 घंटा नीचे हमारे बच गए, तो कमियां है और कमियां हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और अभी हमारे पास एक एक्सरे मशीन जैसा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर का, ऑफिसर का और रोड का एक्सरे निकाल के अब हम सब निकाल सकते हैं कि भाई गड़बड़ क्या है, राइडर क्वालिटी कैसी है, एक्सपांशन जॉइंट कैसे है, ये कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, यहाँ पेड़ लगे हैं तो कौन से है, कौन सी स्पेसीज है। हम सबका मैं अभी पिछले महीने में पूरा महीना मैंने 1,950 प्रोजेक्ट का रिव्यू लिया। कल भी मैंने करीब 23 एक्सप्रेस हाईवे का रिव्यू लिया, अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर सबके साथ। तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं कमी हो सकती है, चल रही है।
0: पर आप लोग एक्शन लेते हैं क्योंकि एनएचआई ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है, बताया
3: एक में हजारों जो भेजता उसके ऊपर एक्शन। तो मैं पहले कहता था कि अमेरिका से अच्छे रोड बनाएंगे, और अब हम हाईवे नेटवर्क, नेशनल हाईवे नेटवर्क में वर्ल्ड में नंबर एक पर पहुंचा। और मुझे अमेरिका से आए हुए लोग कहते हैं कि तुम ये अमेरिका के जैसे रास्ते की क्या बात कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला क्या हुआ, तो बोले हमारे रास्ते अमेरिका से भी अच्छे बने। इसका मतलब हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं, कई गड्ढे मिल सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं।
0: सर कई कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये इतना लंबा स्ट्रेच है, इसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि खुद से ये जानकारी हो कि ये खराब है? और
3: हमारे इसमें ये BOT हाइब्रिड एनुटी सब प्रोजेक्ट में 10-10 साल तक उस रोड को मेंटेन करने की गारंटी, डिफेक्ट लायबिलिटी उनके पास है, कुछ होगा तो उनके जिम्मेदार, उनकी बैंक गारंटी हमारे पास पड़ी है, हम जब करेंगे कार्रवाई।
0: यहाँ जो नुकसान अगर दिखा है वो भरेंगे?
3: हाँ बिल्कुल, उनका पर उनकी जिम्मेदारी है। बाद में इनका हम रेटिंग कर रहे हैं अभी।
0: हाँ।
3: बड़े बड़े कंपनियों को काम दिया है।
0: हाँ।
3: और खराब काम करेंगे तो इनको सिस्टम से निकाल देंगे, ब्लैकलिस्टेड कर देंगे।
0: अच्छा।
3: हाँ
0: तो क्वालिटी कंट्रोल दुरुस्त,
3: क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जी।
0: और सर एक जो वो कहते हैं ना कि समय के साथ जो डिजाइन, उसका डिजाइन की जो कितने समय तक वो आपके लिए प्रासंगिक रहेगी वो डिजाइन, जरूरतें बदलती हैं, उस हिसाब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अगर मैं समझना चाहूँ।
3: देखिए प्रॉब्लम एक है।
0: हाँ।
3: कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च रोज बदलता।
0: हाँ।
3: और सरकार में नई बात को एक्सेप्ट करने के लिए बड़े रिलेक्टेंट रहते हैं, क्योंकि कल कुछ कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नए प्रयोग करेंगे तो 10 में से 4 प्रयोग में कुछ अड़चन आ सकती है, तुरंत मीडिया उसको इलाज से, तो कोई करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थोड़ी रुके और हम अगले जो आपका रिव्यू पॉइंट है वहां पर हम ओके।
4: तो ये एक्सप्रेसवे पूरा खुलने का इंतजार सबको है. हम इस समय एक ऐसी रेस्ट एरिया में रुके हैं, बारिश बहुत हो रही है इसलिए शेड है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाती हैं. यहाँ पर ईवी के रिचार्ज का पॉइंट भी है और जो अब एक नॉर्म हो चुका है. लेकिन नितिन जी, अगर हम ये सोचें कि ये कब तक आपका टारगेट है, कब तक बिना किसी डाइवर्जन के, बिना इस पे से उतरे?
1: अभी तो लगभग ये बड़ौदा के आगे तक पूरा हो गया
4: जी.
1: केवल मुंबई के भी एक पैकेज में और इधर गुजरात में दो पैकेज में प्रॉब्लम है. वो कॉन्ट्रेक्टर फेल हो गया, हमने टर्मिनेट कर दिया.
4: अच्छा,
1: वही है. बाकी तीन पैकेज छोड़कर बाकी लोग लगभग 80% काम पूरा हो.
4: आज जिस तरह के इंस्पेक्शन के लिए आप निकले, रिव्यू के लिए निकले, ऐसे आप निकलते रहते हैं?
1: निकलते रहता हूँ, क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ कि हम जब लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो मैं आज बहुत सी बातें मैं समझ गया हूँ. कुछ बातें आपके सामने बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं इसमें सब बातें समझ गया हूँ. अब मैं इसके ऊपर वर्क करके फिर जब पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, तो इसका जब पता चलता है अधिकारी और कॉन्ट्रेक्टर को तो अवेयरनेस बढ़ता है. अभी ये जो हमने मशीन है, अभी जो मैं देखने लग ले जाऊंगा, ये एक्सरे मशीन है रोड का. मुझे कहाँ गड्ढा है, कहाँ स्लोप है, कहाँ राइडिंग क्वालिटी खराब है, या प्लांटेशन कितना हुआ है, स्ट्रक्चर्स कहाँ है, रोड पर कौन खड़ा, एवरीथिंग मेरे पास आ जाएगा. एआई का उपयोग किया
4: उस एक मशीन के साथ.
1: एआई ये भी बताएगा कि अगले 2 महीने के बाद रोड खराब होने वाला है क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी आ जाएगा.
4: अच्छा
1: हाँ.
4: और इतना महंगा रोड, टोल के लिए भी उतनी ही जेब खाली करनी होगी.
1: मैं अभी तो हमने सस्ता कर दिया ना, 3,000 रुपए में 200 टोल फ्री है, तो 15 रुपए में आ गए टोल, तो लगभग तो कोई प्राइस ही नहीं उसका.
4: अच्छा,
1: जो 150 रुपए भरते थे वो 15 रुपए में आ गया. तो कार वालों के लिए नहीं है, और बाकी ट्रक वालों के लिए तो उनका सेविंग भी है ना, फ्यूल का सेविंग है, टाइम का सेविंग है, उसमें उनका फायदा भी है.
4: चलिए नितिन जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खुल पाए. बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा हिस्सा हमें दिखाने के लिए, इसका पार्क हमें बनाने के लिए. बहुत धन्यवाद. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक.
5: Better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
10: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
11: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
0: जी,
3: आपको कोई तकलीफ हुई
0: अभी तक?
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते हैं आप मुझे?
0: अपना पर्सनल जान पहचान के?
3: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
0: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे।
3: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, दो चार दिन कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटा कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह। तो उनने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
0: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
3: आप ही बता। कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ।
0: हाँ।
3: अब FIR दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे। और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त ज्यादातर लोगों की नजर मीटर पर होती है, लेकिन इस मीटर के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। ये कहानी है क्रूड ऑयल की, सरकार के टैक्स की और उन सरकारी कंपनियों की जो देश तक ईंधन पहुंचाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और क्रूड सस्ता होने से इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा तो फिलहाल ऑयल कंपनियों को मिलता दिख रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है कि पेट्रोल और डीजल बेचने पर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन फिर से जंग से पहले वाले स्तर से ऊपर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के दौरान ग्लोबल आयात कीमतों में उछाल आया था। उस वक्त भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी बढ़ाई नहीं गई जितनी लागत बढ़ी थी। इसका असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा, लेकिन हालात बदलते ही तस्वीर भी बदलने लगी है। तेल महंगा होने पर कंपनियों का मार्जिन दबाव में आया था, लेकिन क्रूड सस्ता होने से फ्यूल बिजनेस में सुधार दिखने लगा है। जेपी मॉर्गन के अनुसार बीपीसीएल और आईओसी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं एचपीसीएल के मार्जिन भी पुराने लेवल पर लौटने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस का असर झेलना पड़ सकता है, हालांकि दूसरी तिमाही से कमाई में सुधार के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऑयल कंपनियों के लिए राहत की दूसरी वजह सरकार की टैक्स पॉलिसी है। सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा कंपनियों के पास रहा था। हालांकि इससे सरकार को सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यही बात आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल भी बन सकती है। अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं, तो सरकार दोबारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसे हालात में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव लौट सकता है। एक और चुनौती एलपीजी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कंपनियां अभी भी रसोई गैस पर नुकसान उठा रही हैं, लेकिन अगर तेल की कीमतों में नरमी जारी रही तो ये दबाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है। कुल मिलाकर क्रूड ऑयल में आई नरमी ने सरकारी ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन आगे की कहानी दो चीजें तय करेंगी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं। दूसरी, सरकार ईंधन पर टैक्स को लेकर क्या फैसला लेती है। इन दोनों का ही असर कंपनियों की कमाई से लेकर आम आदमी की जेब तक दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों की नई इबारत के बाद ऑकलैंड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा, भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। अयोध्या की धरती से सीएम योगी का विपक्ष पर आक्रमण का हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं राम की जन्मभूमि को बदनाम, हमने बदल दी अयोध्या की सूरत। राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम, ब्याज पर भी दिए थे पैसे, आरोपियों का खुलासा, दूसरी कार भी बरामद। चंपत, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई की ड्रग्स तस्करी में पुलिस हिरासत पर चढ़ा सियासी पारा, सरकार पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप, कहा पूरा केस मनगढ़ंत। आयरलैंड और इंग्लैंड से सरेंडर कर चुकी टीम इंडिया और मैनेजमेंट से बीसीसीआई निराश, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का होगा रिव्यू, लगातार बड़े अंतर से हार रही है टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं और इस दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत से होगी। इस दौरान दोनों देश की ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे की बातचीत करेंगे और न्यूजीलैंड में पीएम मोदी एक बिजनेस इवेंट और स्पोर्टिंग इवेंट में भी शामिल होंगे। इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने मोदी और कार्यक्रम का आयोजन किया है, किया ऑरा मोदी कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है और न्यूजीलैंड में 40 सालों बाद किसी भारतीय पीएम की यात्रा हो रही है। इससे पहले 1986 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश के चलते कई इलाकों की सड़कें जलमग्न, गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों पर पानी के बीच रेंगती दिखी गाड़ियां। गाजीपुर बॉर्डर पर जलभराव से बड़ी परेशानी, सड़कें तालाब बन गई हैं, लोगों को परेशानी। यूपी के मानसूनी आफत की चपेट में आया मुरादाबाद, तालाब में तब्दील नजर आई शहर की सड़कें। सड़कों पर जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी, घुटनों तक पानी के बीच आवाजाही को मजबूर हुए लोग। आगरा में आफत की बारिश से बुरा हाल, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ बरसाती पानी। दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश बनी आफत, भारी भूस्खलन से नेशनल हाईवे 10 पर जाम हुआ मलबा और सिक्किम जाने वाला रास्ता बाधित। लैंडस्लाइड से हाईवे मलबा जाम होने से सड़क बंद, मलबे की चपेट में आने से फंसा ट्रक, राहत बचाव का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में दो दिनों की जमाझम बारिश का कहर, मानसूनी आफत से उफान पर नदी नाले। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरे मलबे से आवाजाही की सड़कें बाधित हुई, केदारनाथ यात्रा पर भी असर पड़ा। उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप से खतरा बढ़ गया, सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। उधम सिंह नगर में बारिश ने बरपाया कहर, 3 दिनों की जोरदार बरसात से कई इलाके जलमग्न। तालाब में तब्दील हुआ पूरा शहर, लगातार बारिश के चलते घरों में घुसा पानी, सड़कों पर घुटनों तक पानी के बीच आवाजाही को मजबूर हुए लोग। त्रिपुरा में भारी बारिश ने मचाई आफत, नदियों ने दिखाया रौद्र रूप। तेज बहाव से नदी किनारों पर कटाव, कई इलाकों में बड़ा खतरा, सब्जियों की फसल को नुकसान। मुंबई के नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर दुकानदार की हैरान करने वाली तस्वीरें, बारिश के गंदे पानी में चाय की केतली धोती आई नजर। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। अलीगढ़ में बारिश बनी आफत, सड़कों पर जलभराव, कई इलाकों में परेशानी। यूपी में मानसून की दस्तक ने बरपाया कहर, पश्चिमी जिलों के लिए आईएमडी का रेड अलर्ट, आज भी तेज बारिश का अलर्ट। यूपी के सहारनपुर में बारिश का असर, ऑरेंज अलर्ट के चलते प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सभी स्कूल कल बंद। दिल्ली में भारी बारिश को लेकर आईएमडी की चेतावनी, खराब मौसम के बीच येलो अलर्ट जारी। वडोदरा में लगातार हो रही बारिश के बीच मगरमच्छों की मौजूदगी में दहशत का माहौल, विश्वामित्र नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छों का झुंड दिखाई दिया।
नेपाल के पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली महाव नदी के तटबंध टूट गए, कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई, सिंचाई विभाग पर सवाल उठे। कटिहार में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण कई हिस्सों में कटाव का कहर जारी है, लोगों के पलायन।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा, कहा भगवान राम के नाम पर बीजेपी ने डकैती की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, शेयर बाजार में लगाई गई चोरी की दान राशि। पुलिस सूत्रों का दावा, चोरी की रकम रिश्तेदारों के खातों में भेजकर वापस मंगाई गई, लेन देन छिपाने की कोशिश हुई। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव हुआ, 22 जुलाई के बाद दर्शन पूजा से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक नई व्यवस्था की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर दान गिनती कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, लगभग 2 दर्जन कर्मियों ने ड्यूटी छोड़ी। अयोध्या में नई व्यवस्था लागू करने की हो रही है तैयारी, अब सिर्फ 1.5 दर्जन लोग कर रहे हैं चंदा गिनती, शिफ्ट में भी कमी की गई। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में पीआईएल याचिका पर 13 जुलाई को होगी सुनवाई। राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस का मोर्चा, देश भर में 50 नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ में दीपेंद्र हुड्डा करेंगे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीएसपी प्रमुख मीडिया से रूबरू लखनऊ में प्रेस वार्ता, मेरठ के ललिता गौतम केस में मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में लेने की अपील की। यूपी में बारिश ब्रिजेस तबाही पर सीएम योगी सख्त, 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश, अधिकारियों को फील्ड पर उतरने को कहा। यूपी पंचायत व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रधानों को प्रशासक बनाने की वैधता पर उठे सवाल। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरा पूरा करके न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए, इस दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत से होगी। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी एक बिजनेस इवेंट और स्पोर्टिंग इवेंट में भी शामिल होंगे, इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच। चेन्नई में खेला जाएगा बिग बैश लीग का मुकाबला, 12 दिसंबर को रेनगेट्स और स्कॉर्चर्स होंगे आमने सामने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा खिलाड़ियों को हौसला देकर पीएम मोदी बोले, क्रिकेट दोनों देशों का साझा जुनून है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को फटकार लगाई और 15 जुलाई को वॉइस टेस्ट के लिए पेश होने का आदेश दिया। ड्रग्स केस में हिरासत में छूटने पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष के भाई जीतू पटवारी के भाई ने बड़ा बयान दिया, कहा राजनीतिक प्रतिशोध के कारण मुझे फंसाया जा रहा है। ललिता गौतम हत्याकांड मामले को लेकर बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर भड़की मायावती, मगरमच्छ बताकर सादा सीधा निशाना। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला रोका गया, मेरठ में ललिता हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। बलिया में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अचानक बिजली गोल, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बलिया में मंत्री संजय निषाद का विरोध, संजय निषाद वापस जाओ के नारे के बीच पुलिस ने युवाओं को हटाया। जयपुर की आमेर घाटी में हुआ भीषण हादसा, आपस में भिड़ी स्कूटी कार, टक्कर के बाद हवा में उछला युवक। आलमगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी, आधी रात पहले बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, फिर घर में घुसकर पोते को भी मार डाला। भीलवाड़ा में चारगाह भूमि पर कब्जे का आरोप, भाजपा विधायक लाला राम बेरवा और उनके बेटों पर उठे सवाल। ग्वालियर में ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, फर्जी होटल बुकिंग के नाम पर 50,000 की साइबर ठगी। यूपी के झांसी में चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में गिरा शख्स, ट्रेन के नीचे जाने से पहले आरपीएफ जवान ने जान बचाई। सुल्तानपुर में महिला बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होते ही मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के पालघर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर, धमाका हुआ, 2 घर जल गए। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक आग लगी, दमकल की टीम ने काबू पा लिया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक कार्डबोर्ड रोल गोदाम में आग लगी, दमकल की टीम ने काबू पाया। गया में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक के परिजनों ने स्कूल में जमकर पिटाई की, आरोपी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग। बिहार के सहरसा में 2 पक्षों के जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी, झड़प के दौरान एक मछुआरे को लगी गोली, गंभीर रूप से घायल। इंदौर में गलत दिशा से आ रहे बाइक सवारों को टोकने एक स्थानीय युवक को भारी पड़ा, बाइक सवारों ने युवक की पिटाई कर दी। आसनसोल में स्कूल की किताबें उतारने को लेकर खूनी संघर्ष, हिंसक झड़प में कई घायल। मुरादाबाद में मां और बेटे की हत्या से अड़कंप, अब तक की पूछताछ में महिला के पति और उसके जेठ पर मिलकर हत्या करने की आशंका। पुणे के आलंदी में पालकी प्रस्थान के दौरान महिला ने बीच सड़क पर किया हंगामा, रोहतास में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। अजमेर जोधपुर आरटीओ को बम से उड़ाने की धमकी, 1 घंटे तक चली गहन जांच के बाद विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। सहारनपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत, मामूली विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पटना में पति के अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को महंगा पड़ा, पति ने अपने भाई के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या की। ट्रेनों में ब्लैक बॉक्स जैसी हाईटेक निगरानी की तैयारी, मध्य रेलवे ने वीडियो सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया। ट्रेन हादसे की रोकथाम के लिए मिल सकेगी जरूरी जानकारी। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के स्कूलों में पॉक्सो जागरूकता अभियान की पहल। स्विट्जरलैंड में एआई समिट में दिखा ह्यूमनॉइड रोबोट रॉबर्ट, ट्रंप जकरबर्ग ओबामा समेत कई मशहूर हस्तियों के चेहरे बनाने में सक्षम। मैक्सिको के बड़े ड्रग माफियाओं को अमेरिका ले जाने वाला विमान अब म्यूजियम में प्रदर्शित। अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 आज हुई रिलीज, इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी धमाल फ्रेंचाइजी की 4थी फिल्म। चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को हाईकोर्ट से झटका,

0: की सिद्धि बरकरार। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम स्टारर कोर्ट रूम ड्रामा इक्का आज से नेटफ्लिक्स पर। थिएटर्स के 8 हफ्ते बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएगी पति पत्नी और वो टू। के मैनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की पहली झलक जारी हुई। चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता की अंत्येष्टि में शामिल हुए उनके बेटे मुस्तफा और मसूद खामनेई। ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद जलती कई नावों का वीडियो सामने आया। ईरान ने नेटो शिखर सम्मेलन को बताया राजनीति से प्रेरित। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। अपने नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखे जाने को लेकर ट्रंप ने बताया बड़ा सम्मान। जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइल निर्माण पर अमेरिका के साथ समझौते का किया ऐलान। यूएन ने यूक्रेन पर रूसी हमलों में जून महीने में ही कम से कम 265 लोगों की मौत की कही बात। हंगरी में संविधान संशोधन के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, राजधानी बुडापेस्ट में हुआ प्रदर्शन। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर हिरासत में लिए गए 3 तिब्बती कार्यकर्ता, झंडा लहराते लोगों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और यह भी कहा कि आस्था को कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने की तैयारी कराई थी। और इस बयान के बाद सवाल उठने लगे। हमारे साथ में इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रिजलाल जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजलाल जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आज आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुना?
1: जी हाँ।
0: लेकिन ब्रिजलाल जी, जिस 2003 के मामले का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया मंच से, बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था जिसकी चर्चा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।
1: उस समय माननीय मुलायम सिंह जी, BSP गवर्नमेंट गिरने के बाद 29 अगस्त 2003 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उस समय 26 अक्टूबर से 24 नवंबर 2003 तक रमजान था और उस दौरान रोजा इफ्तार का दौर चल रहा था। मुलायम सिंह जी कांग्रेस से सर तुष्टिकरण के माहिर लोग थे और हद तो तब हो गई जब ये तय किया गया पॉलिटिकल लेवल पर कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने उस पर नमाज पढ़ी जाएगी और रोजा इफ्तार होगा। उस समय मैं प्रदेश का IG लॉ एंड ऑर्डर था और हमारे SSP थे राजू सब्बरवाल और हमारे ही सर्विस के हमसे 2 साल सीनियर 75 बैच के IG जोन साहब थे जिनके अंदर में फैजाबाद आज का अयोध्या भी आता था। उन्होंने दबाव डाला कि वहां पर रोजा इफ्तार होगा हनुमानगढ़ी के सामने। राजू सबरवाल हमारे SSP ने मना कर दिया। जब मना कर दिया IG साहब गुस्सा हो गए, लेकिन जब नहीं होना तो नहीं हुआ। तब महंत जो थे उनके घर में रोजा इफ्तार की बात तय हुई। अब जब तय हुई तो उसके बाद जो जानकारी मालूम हुई इंटेलिजेंस से कि महंत जी का घर हनुमानगढ़ी से लगा हुआ है और उनकी थी 3 सीढ़ियां चढ़ करके उनके घर में जाते हैं, तो ये हुआ उन सीढ़ियों पर भी स्टेप पर भी चटाई बिछा दिया जाए, फिर सड़क पूरा घेर करके जिससे हनुमानगढ़ी का जो वो है मंदिर है उससे सट करके नमाज हो। लेकिन जैसे उस सीढ़ियों पर चटाई बिछाना शुरू हो गया, पुलिस ने हटा दिया, तो महंत जी के घर के अंदर रोजा इफ्तार हुआ था, नमाज पढ़ी गई थी और वहाँ कुछ मूर्तियाँ थीं, वहाँ पर जूते चप्पल रखे गए थे, कहा जाता है वो मूर्तियाँ भी अपमानित हुई। तो ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी जो समय ये हुआ, लेकिन उसको नहीं होने दिया गया, लेकिन महंत जी के घर में हुआ रोजा इफ्तार और नमाज।
0: अच्छा, मतलब SSP के कहने पर वहां पर रोका गया, उन्होंने आपत्ति जताई तब रोका गया, वरना मंदिर की जो शुरुआती 3 सीढ़ियां हैं वहां तक चटाई बिछाने का कार्यक्रम हो गया था नमाज पढ़वाने का, ये कहना चाह रहे हैं?
1: वहां पर भी और उसके बाद सड़क पर जो हनुमानगढ़ी के दीवालों से लगा हुआ वहां पर हुआ था। तो इस तरह से उसको, बल्कि एक सीनियर अफसर ने कहा था, नाम तो लेना उचित नहीं है, कि तुम्हारी जगह मैं होता तो हनुमानगढ़ी के अंदर न रोजा इफ्तार करवाता। तो उस समय कहा गया था कभी किसी मस्जिद में, जामा मस्जिद में कभी होली मिलन हुआ, होली खेली गई, जन्माष्टमी त्योहार हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ा गया, तो एक तरफ तो आप कहें ये क्या करेंगे और एक तरफ वो नहीं नहीं हो सकता। तो उस जमाने में तो डीएम एसपी तक अपने घरों में समाजवादी की सरकार में कांग्रेस सरकार में रोजा इफ्तार किया करते थे, डीआईजी कमिश्नर्स करते थे, तो वो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी। लेकिन मैंने 19 मई को इसी वर्ष जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था सड़कों पर नमाज नहीं होगी, तो मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें इस पूरे प्रकरण का जिक्र किया है और उसमें मैंने योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया था कि आपने सड़क पर नमाज करना प्रतिबंधित किया है, जो बिल्कुल सही है। और उसी परिपेक्ष में से मैंने ये 2003 की घटना का जिक्र किया मुझे, क्योंकि मैं खुद उस समय प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था और मैं अपने एसएसपी राजू सबरवाल के लगातार टच में था, और जिसके कारण हनुमानगढ़ी के सामने रोजा इफ्तार और नमाज नहीं हो पाया।
0: अच्छा ब्रजलाल जी, आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का जिक्र किया जिस जो घटनाक्रम 2003 का आप बता रहे हैं, लेकिन यह कहा गया कि तुष्टिकरण की राजनीति पूर्व की सरकारों ने की है। अब चूंकि आप कानून व्यवस्था संभाल चुके हैं उस वक्त उत्तर प्रदेश में, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ उदाहरण आपके सामने अगर ऐसे आए हों जहां पर ऊपर से कहा गया हो आपको कि इसमें आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनको ऐसा करने दो, जहां तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई दी हो।
1: वो मैंने जहां तक मेरी बात थी मैंने नहीं होने दिया, तुष्टिकरण के राजनीति नहीं होने दिया। मैं भी तमाम जिलों में एसएसपी रहा, डीआईजी रहा, डीआईजी रेंज रहा, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि अपने घर में रोजा इफ्तार अपने रेजिडेंस में कराया जाए।
0: लेकिन दबाव बनाया जाता था ऊपर से,
1: डीएम एसएसपी समाजवादी सरकार जी,
0: कोई दबाव ऊपर से बनाया जाता था, ऊपर से कोई कॉल फोन आते थे?
1: वो दबाव मैं नहीं मानता, क्योंकि उसका एक सबसे उदाहरण है माननीय मुलायम सिंह जी मुझे 1989 में ले गए थे एसएसपी टावा, और मैंने माननीय शिवपाल जी पर 9 अप्रैल 1990 को मुकदमा कायम किया था, सैफई के प्रधान दर्शन सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। कभी आप सुने होंगे मुख्यमंत्री के सगे भाई को उसी जिले का एसएसपी मुकदमा कायम कर दे, उसका बड़ा खामियाजा मैंने भुगता है। मुझे उस समय डिपार्टमेंटल फर्जी बनाकर बर्खास्त करने का प्रयास किया गया और कहा अखिलेश यादव जी ने, तो 19 मई 2013 को मेरे खिलाफ बाराबंकी में हत्या का मुकदमा कायम कराया था। जब मैं डीजीपी से हटा दिया गया था और मैं डीजी सिविल डिफेंस था, तब भी मैं जो कानून का शपथ लेकर संविधान का मैंने सेवा शुरू की, 37.5 वर्ष सेवा किया है, तो मैंने कभी दबाव वो मानता है जो कमजोर होता है।
0: अच्छा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बांदा में भी कहा है कि बहुत से लोगों को मंदिरों से दिक्कत हो रही है, ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान में सारा पैसा लगाते थे, तो ये आप सही मानते हैं? ये सही बोला,
1: सही उन्होंने कहा
0: जी,
1: हाँ बिल्कुल, उन्होंने डंके चोट पर किया और कब्रिस्तान की बाउंड्री में पता चला सरकारी जमीनें घेर करके बाउंड्री बना दी गई, यही तो परिणाम है, आज बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। सरकारी जमीनों पर मदरसे बन गए, मस्जिद बन गई, ये वही जमाना है तुष्टिकरण की नीति का। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हम सबकी बात करते हैं लेकिन तुष्टिकरण की बात नहीं मानते हैं और वही करते हैं जो कानूनन सही है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
0: शुक्रिया ब्रजलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक से बातचीत के लिए।
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
5: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
6: Presented.
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: Vimal, bolo zubaan kesri. Hind, bade aaram se.
6: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
7: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों की नई इबारत के बाद ऑकलैंड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अयोध्या की धरती से सीएम योगी का विपक्ष पर आक्रमण, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं राम की जन्मभूमि को बदनाम, हमने बदल दिया अयोध्या की सूरत। राम मंदिर के चोरों ने शेयर मार्केट में लगाई लूट की रकम, ब्याज पर भी दिए थे पैसे, आरोपियों का खुलासा। दूसरी कार भी बरामद, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी बंद। मध्य प्रदेश

0: कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई की ड्रग्स तस्करी में पुलिस हिरासत पर चढ़ा सियासी पारा, सरकार पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप, कहा पूरा केस मनगढ़ंत। यूपी के फिरोजाबाद में 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक कर मारने के दोषी को मिली फांसी की सजा, घटना के 40 दिन के अंदर हुआ फैसला, जिला जज ने सुनाई मौत की सजा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, अयोध्या चंदा विवाद सियासी फिजा में गूंज रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर बनाम कब्रिस्तान वाले हमले को एक और कदम आगे बढ़ाया है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच दूसरी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में नमाज का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था।
3: ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच और जबरदस्त सियासी विवाद के बीच जब सीएम योगी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे तो विरोधियों पर उनके तेवर हमेशा की तरह ही आक्रामक दिखे। जनसभा में फिर सीएम योगी ने अयोध्या की एक और पुरानी घटना का जिक्र किया, इस बार हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का हवाला देकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या?
4: दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर विवाद ने यूपी के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सूबे की सियासत में इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, वहीं योगी जवाबी हमलों के जरिए हिंदुत्व वाली राजनीति को धार दे रहे हैं।
2: इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
4: उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए वाली रणनीति के जरिए चुनावी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। अब चढ़ावा चोरी ने समाजवादी पार्टी के हमलों को नई धार दे दी है।
3: एसआईटी क्या लीपा पोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
4: यूपी के चुनावी रण से पहले ये विवाद बीजेपी के लिए इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकुंभ और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे पार्टी की राजनीतिक पहचान और विकास मॉडल का अहम हिस्सा रहे हैं। अब चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद विपक्षी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लिहाजा सीएम योगी न केवल विपक्ष पर जवाबी हमला बोल रहे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी की पीडीए वाली रणनीति पर भी काउंटर अटैक कर रहे हैं।
2: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया।
4: राम मंदिर चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद सीएम योगी ने फौरन ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बीच सियासत सियासी जंग भी बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में नमाज का जिक्र किया है। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल साल 2003 में जब आपसी सद्भाव से अयोध्या विवाद के समाधान के लिए हनुमानगढ़ी स्थित महंत ज्ञानदास के आश्रम में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली शामिल हुए। इसी रोजा इफ्तार के दौरान नमाज पढ़ने का आरोप लगा और फिर यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हनुमानगढ़ी के एक और महंत धर्मदास इस मामले को हाईकोर्ट ले गए, जिसके बाद हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार पर रोक लगी। हालांकि इस विवाद की गूंज यूपी की सियासत में कई बार सुनाई दी। इस बार फिर यूपी में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में नमाज का जिक्र किया है और समाजवादी पार्टी को घेरा है। इस बीच अयोध्या में चढ़ावा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कैसे चोरी के आरोपी पैसे से पैसा बनाने के खेल में लगे थे। चढ़ावा का पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे थे, लूट का पैसा ब्याज पर दिया जा रहा था।

0: चढ़ावे की चोरी का निवेश प्लान, चढ़ावे का पैसा शेयर बाजार में लगाया, राम धन को ब्याज पर लगाया, पैसा बनाया, चोरी के पैसे से खरीदी जमीन जायदाद, चढ़ावे के पैसे से चमचमाती कार।
1: कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं, कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विरोधियों को मंदिर के विकास, मंदिर के सौंदर्यीकरण पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं आता। वो अक्सर विरोधियों पर मंदिर बनाम कब्रिस्तान का सवाल उठाकर हमले करते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद तस्वीर बदली बदली दिखने लगी है। जिस राम मंदिर के निर्माण में अकूत पैसे खर्च किए गए, उसी राम मंदिर के भीतर चढ़ावे में सेंधमारी को लेकर हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। अब ये पता चला है कि कैसे चढ़ावे की चोरी करने वाले एक को 11 बनाने में लगे थे। पता चला है कि राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंकों और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते।
2: जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, शायद चढ़ावा चोरी अयोध्या में करने वाले जो ट्रस्ट के अंदर बैठे थे उनको ये लगता था कि जब हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे मालिक हैं यहाँ पर बैठे हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, और इसी वजह से चढ़ावा चोरी होता गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसके बाद 30 खातों को फ्रीज कर दिया गया। यही नहीं, अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है। अब ऐसे में ट्रस्ट के अंदर मौजूद ये मानते थे कि जब हमारे आका हुक्मरान अंदर बैठे हुए हैं तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, जब भी कुछ होगा तब वे बाहर निकाल लिए जाएंगे। लेकिन पाप का घड़ा जैसे ही फूटा वैसे सब एक एक करके गिरफ्तारी होती रही और सब बाहर आने लगा।
0: मशहूर कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। चढ़ावा चोरों को लगता था कि हुकूमत में अपने लोग बैठे हैं तो उनका बाल बांका नहीं हो सकता। उन्हें ये भी लगता है कि बड़े लोगों से नजदीकियां उन्हें किसी भी संकट से बचा लेंगी, लेकिन वो गलत थे, गफलत में थे। जब पाप का घड़ा फूटा तो जेल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जांच एजेंसी ने करीब 30 खातों को फ्रीज कर दिया है और पैसों की धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल लूटकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है अपराध की कलई खुलती जा रही है। पता चल रहा है कि कैसे चोरी के धन से आरोपी धन्ना सेठ बनने में लगे थे। चोरी के पैसे से जमीन, चोरी के पैसे से जेवरात, चोरी के पैसे से कार, चोरी के पैसे से शेयर खरीदे जा रहे थे। यानी कि आरोपियों के जबरदस्त वारे न्यारे हो रहे थे। अनुकल्प मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान करीब 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन करीब 6,70,000 रुपए में खरीदी गई थी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। यानी आरोपी अपनी मर्जी और बेफिक्री से चढ़ावे की चोरी करते, जायदाद बनाते रहे और ट्रस्ट के पदाधिकारी चैन की नींद सोते रहे। वैसे उन्हें इतने बड़े सिंडिकेट का पता नहीं चला, उन्हें कोई भनक नहीं लगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर एक और कार बरामद हुई है। अयोध्या थाने में रखी यह सफेद स्विफ्ट कार अनुकल्प ने दान जो चढ़ावा था उसमें से चोरी के पैसे से खरीदी। सूत्रों के अनुसार अनुकल्प ने इसे कबूला और उसी के निशानदेही पर पुलिस ने कार बरामद की और थाने में लेकर आए। थाने में रखी ग्रे कलर की ब्रिजा कार दूसरे आरोपी अविनाश की है। उसकी निशानदेही के बाद उसे उस गाड़ी को जब्त किया गया।
4: अयोध्या प्रकरण में जांच जारी है और पुलिस ने अनुकेश मिश्रा के पैतृक निवास से एक गाड़ी बरामद की है। बताया जा रहा है ये गाड़ी स्विफ्ट डिजायर है जिसे अनुकल्प ने चंदा चोरी के पैसे से ही खरीदा था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस गाड़ी की। ये वो गाड़ी है, आप डिजायर गाड़ी है, नंबर प्लेट देखेंगे UP42BZ5222। ये गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिसको इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और हमने जब इस गाड़ी की डिटेल्स निकाले हैं तो क्या आता है ये भी दिखा दीजिए एक बार। ये आता है रविंद्र कुमार, सन ऑफ राजेंद्र प्रसाद। सारी डिटेल्स है, एड्रेस है जहां से, जहां का ये नोट किया गया है। और कुल मिलाकर ये गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि अनुकेश ने अपने पिता के नाम पर ली थी। तो किस तरीके से काली कमाई को सफेद करने की पूरी कवायद अयोध्या में चल रही है उसको दिखाती ये गाड़ी है। ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। आइए इसको थोड़ा सा आगे से भी दिखाते हैं, थोड़ा समीप आए, करीब आए और दिखाएं आपको क्या एक नंबर गाड़ी। आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ी खरीदी गई थी और इसकी गाड़ी से अनुकल्प मिश्रा जो है वो चलता था।
3: अयोध्या मामले में अगले हफ्ते SIT की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। उससे पहले SIT के अफसर अयोध्या दौरे पर भी जाने वाले हैं, लेकिन इस बीच अयोध्या में इस मामले का असर दिखने लगा है। SIT के आने वाले दौरे से ठीक पहले राम मंदिर में दान की गिनती करने वाले लगभग 2 दर्जन कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद गुरुवार को केवल 1 दर्जन के आसपास गिनती करने वाले ही ड्यूटी पर पहुंचे। राम मंदिर में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की दबी जुबान में शिकायत आने लगी है कि चोरी करें चोर, अंजाम भुगते कोई और।
1: लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग।
0: और वो कुल 8 लोग थे, रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। बस इन्हीं 8 लोगों की करतूत का अंजाम अब अयोध्या के राम मंदिर में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नई व्यवस्था में सुधार के नाम पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कर्मचारियों पर भारी पड़ रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़कर 9 घंटे कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया और खबर है कि SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए हैं। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण इसमें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है और नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो आईडी निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके वीआईपी पास जारी कराए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि दिनेन्द्र दास को वीआईपी पास जारी करने वाली आईडी दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा, प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इनके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों के सुझाव लिए जा रहे हैं। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला हो जाए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने संकेत दिए हैं कि संत समाज के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: इस बीच दलित वोट बैंक को लेकर यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड ने अब कानून व्यवस्था के सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले लिया है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग के बीच अब दलित राजनीति के दो बड़े चेहरे मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आमने सामने आ गए।
5: मेरठ में दो दिन पहले कचहरी रोड पर हुए इस लाठीचार्ज की घटना ने यूपी में दलित वोट की सियासत को सुलगा दी है। दरअसल ये प्रदर्शन 15 मई को हुई एक दलित युवती की हत्या के बचे हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग पर किया जा रहा था जिसमें प्रदर्शनकारियों को उकसाकर पुलिस पर हमले की कोशिश की गई। उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ और महिला पुलिसकर्मी समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी दौरान मौके पर मौजूद एसएसपी अविनाश पांडे ने पकड़े गए प्रदर्शनकारियों में से एक नेता को कैदी वाहन में जाकर थप्पड़ भी मारा था और उसके बाद 13 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। दरअसल चुनावी सीजन में मुद्दा सूंघते फिर रहे सियासी दलों को इस मामले में सियासत का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट करके पुलिस अन्याय और प्रदेश प्रमुख पर सवाल उठा दिए तो नए दलित नेता बने चंद्रशेखर ने बीजेपी को दलित विरोधी दमनकारी बता दिया जिसके दो दिन बाद मायावती ने ऐसे सियासतदानों से दलितों को सतर्क किया है।
6: लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है, न कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है।
5: दरअसल मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़े तथ्य हैं कि मेरठ के टोपी नगर इलाके में 15 मई को ललिता गौतम नाम की युवती लापता हुई थी जिसका शव 17 मई को रोहटा इलाके से मिला था। पुलिस ने 24 घंटे में मुख्य आरोपी पूर्व परिचित युवक को गिरफ्तार कर लिया था जिसके साथ युवती बाइक पर गई थी और बाद में दो सह आरोपी भी गिरफ्तार हुए। लेकिन पीड़ित परिवार और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, जिसके बाद तीन पुलिस महिला अधिकारियों ने विवेचना की जानकारी पीड़ित परिवार को देकर संतुष्ट किया था, जिसके सबूत पुलिस के पास हैं। पुलिस का आरोप है कि उसके बाद दूसरे जिलों के जिला बदर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने मिलकर पीड़ित परिवार को पैसों का लालच दिया और इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
7: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
3: अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, तो ये खबर आपके लिए है। अब न बैंक की भारी गारंटी, न जमीन गिरवी और न ही ब्याज का बोझ। यूपी सरकार ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें 5 लाख तक का लोन बिना गारंटी और ब्याज मुक्त मिलेगा। सवाल है, कौन ले सकता है इसका फायदा और कैसे? उत्तर प्रदेश ने अब सिर्फ नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी देने वाले युवा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यानी युवाओं को उद्यमी बनाने का मिशन शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य है हर साल 1 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करना और अगले 10 साल में 10 लाख आत्मनिर्भर उद्यमियों की नई फौज खड़ी करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से शुरू होती है MY युवा योजना की कहानी। अक्सर नए उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है बैंक की गारंटी, जमीन गिरवी रखने की शर्त और महंगे ब्याज का बोझ। अब सरकार कह रही है अगर आपका आइडिया अच्छा है तो पूंजी की चिंता सरकार करेगी और इस योजना के तहत 21 से 40 साल के उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी वाला लोन वो देगी, यानी न किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी, न कोई संपत्ति गिरवी। इतना ही नहीं, सरकार पर योजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी देगी ताकि बिजनेस की शुरुआत आसान हो सके। योजना सिर्फ लोन देकर खत्म नहीं होती, अगर आप समय पर पहली राशि चुका देते हैं तो दूसरे चरण में 10 लाख से 20 लाख तक का लोन भी मिल सकता है, जिस पर सरकार तय सीमा का 50% ब्याज सब्सिडी भी देगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। आवेदन उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो सकती है, कम से कम 8वीं पास हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा, ITI और सरकारी कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। युवा UPMSME पोर्टल और आधिकारिक MY UVA पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकों को भी साफ निर्देश दिए हैं कि ऋण स्वीकृति में देरी ना हो ताकि युवाओं को समय पर पैसा मिल सके। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं, नौकरी ढूंढने के बजाय अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और सिर्फ पैसों की कमी आपको रोक रही है, तो MY UVA योजना आपके लिए बड़ा मौका बन सकती है। अब देखना होगा कि सरकार का 10 लाख नए उद्यमियों का सपना जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल। कहा, हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले कर रहे हैं राम की जन्मभूमि का बदनाम। हमने बदली अयोध्या की सूरत। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच पार्टी में सियासी हलचल तेज। राज्य प्रभारी भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम चन्नी से कल करेंगे मुलाकात। मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर वारिंग से है नाराजगी। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस में 7 मामलों में सुनवाई 3 महीने की जेल। अभिनेता के रवैये को बताया संदिग्ध। फिरोजाबाद में 1.5 साल के बच्चे की पटक पटक कर हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा। जिला जज ने महज 40 दिनों में सुनाया अपना फैसला। 30 मई की वारदात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और आज रणभूमि की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर के साथ में जो भारत के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। ऑकलैंड में खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी की पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सीधी बातचीत होने जा रही है। ये दौरा इस मायने में भी खास है कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह न्यूजीलैंड का दौरा है। हिंदुस्तान के महासागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दमदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर मौजूद है। 6 दिन 3 देश और अनगिनत महासमझौते। 6 जुलाई को दिल्ली से रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी का यह मिशन अब अपने आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारत का डंगा बचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब न्यूजीलैंड के धरती पर पहुंच चुके हैं, ऑकलैंड पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ 3 देशों का दौरा नहीं है। यह हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी दादागिरी को चारों तरफ से घेरने की भारत की वो रणनीति है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलबली मचा दी है। इस 6 दिनों के दौरे में कामयाबियां इतनी बड़ी हैं कि भारत के रक्षा और व्यापार जगत का पूरा भूगोल बदल सकता है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रुबोनो के साथ मिलकर भारत ने ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल कूटनीति को नई ऊंचाइयां दी हैं। इसके अलावा स्टील से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स तक 20 समझौतों पर मोहर लगाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में मिनी इंडिया का एक ऐसा हुजूम उड़ा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। प्रधानमंत्री एंथनी एल्ब्रीज के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऊर्जा रक्षा के लिए यूरेनियम की सप्लाई का ऐतिहासिक रास्ता साफ कर दिया है और रक्षा क्षेत्र में एक नया डिफेंस एंड सिक्योरिटी डेलीगेशन साइन कर वहां पर भारत की मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। ये नहीं, पहली बार बिग बैश लीग का मैच भारत लाने पर स्पोर्ट्स मास्टर स्ट्रोक की भी प्रधानमंत्री मोदी ने खेला। सबसे पहले आज की समाप्त हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: ऑस्ट्रेलिया में 3 दिनों का बेहद कामयाब और ऐतिहासिक मिशन पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, लेकिन कूटनीति के गलियारों में हलचल अभी भी पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की ही है। 8 से 10 जुलाई के इस दौरे ने न सिर्फ सिडनी के बाद मेलबर्न में मोदी मैजिक को दोबारा साबित किया, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक रिश्तों का पूरा भूगोल बदल कर रख दिया। इस दौरे का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मास्टर स्ट्रोक खेल के मैदान से निकला, जिसने क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम एल्बनीज ने ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग यानी बीबीएल के इतिहास का पहला विदेशी मुकाबला अब भारत की धरती पर खेला जाएगा। आगामी 12 दिसंबर को चेन्नई के चैपॉक स्टेडियम में पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच बीबीएल सीजन का ओपनिंग मैच होगा।
1: मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। इस वर्ष भारत में मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता और ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना।
0: इस दौरे की सबसे बड़ी सुर्खियां बटोरी पीएम मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी ने। मेलबर्न की धरती पर दोनों देशों के रिश्तों को क्रिकेट की भाषा में समझाते हुए पीएम मोदी ने जो कहा वो इस पूरे दौरे का निचोड़ बन गया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट के जैसा है।
1: डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी, आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे।
0: अगर इस दौरे के नतीजों को रिव्यू करें तो भारत की झोली में कई बड़ी रणनीतिक कामयाबियां आई हैं। सिविल न्यूक्लियर सहयोग के तहत यूरेनियम की सप्लाई का रास्ता साफ हुआ, जिसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ी ताकत दी। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, साइबर टेक और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बड़े करार हुए। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार को नई ऊंचाई देने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी CECA को भी फास्ट ट्रैक करने पर सहमति बन गई। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी मार बीजिंग पर पड़ी। दौरे के अंत में जारी हुए भारत ऑस्ट्रेलिया के साझा बयान ने ड्रैगन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। बिना नाम लिए हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति

फायदा पहुंचने वाला है। ये आपने खबर तो देख ली, लेकिन इसके मायने क्या है? इस खबर आयरन डोम के बारे में आप, इसकी खासियत क्या है, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आयरन डोम अब भारत में बनेगा। इसराइल की कंपनी राफेल इस सिस्टम को, इस मिसाइलों को बनाएगी और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सेक्टर के लिए भी और रक्षा प्रणाली के लिए भी। भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हब बनेगा और ये भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जब टीओटी यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भारत को इसमें मदद मिलेगी। यूएस के बाद भारत में आप कह सकते हैं इंटरसेप्टर मिसाइलें बनेंगी, और अब तक ये मिसाइलें यूएस में बनती थी, लेकिन अब भारत में भी इनका एक बड़ा हब बनने जा रहा है। इससे भारत के उद्योग जगत को बहुत मदद मिलेगी। भारत में बनने से इसकी लागत कम आएगी और सेना को भी इसका फायदा होगा, और जो अपने डिफेंस सिस्टम हमारे चल रहे हैं उसमें भी आगे इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी मांग है, और ऐसे वक्त के अंदर भारत में अगर ये सिस्टम बनाने की बात शुरू हुई है तो निश्चित तौर पर भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूती मिलेगी। भारत मिसाइलों को एक्सपोर्ट भी करेगा, यानी इस पर कोई ऐसा सैंक्शन नहीं है कि आप सिर्फ यहां पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, भारत उनको एक्सपोर्ट भी करेगा। यानी ये भारत के उद्योग, भारत की रक्षा प्रणाली सभी के लिए एक बहुत और इंपॉर्टेंट है बात है। सुदर्शन चक्र योजना में भी इससे बढ़ावा मिलेगा, यानी इसको लेकर भी जो भारत के अपनी कामकाज है या फिर अपने जो मैकेनिज्म भारत तैयार कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, उसमें भी भारत को इससे मदद मिलेगी आयरन डोम के आ जाने के बाद। और इजरायली तकनीक से एयर डिफेंस शील्ड को शक्ति मिलेगी। दरअसल आपको बता रहे हैं इजरायली तकनीक से एयर डिफेंस शील्ड को शक्ति मिलेगी, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि पाकिस्तान कितना ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन आयरन ड्रोन की जब आप बात करते हैं, जब आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी जब क्लोज मिसाइलें या फिर रॉकेट्स आगे जाते हैं, उससे इससे मदद मिलने वाली। और आइए अब इसी गेम चेंजर समझौते पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।

0: इसराइल का वो सुरक्षा कवच जिससे दुनिया के बड़े बड़े दुश्मन खौफ खाते हैं, जिसके मिसाइलें आसमान में विरोधी के रॉकेट्स को ढूंढ ढूंढ कर नेस्तनाबूद कर देती हैं। वो आयरन डोम अब भारत की महाशक्ति बनने जा रहा है। इसराइल की दिग्गज कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम अब भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत की ही धरती पर इसके इंटरसेप्टर मिसाइलों की प्रोडक्शन लाइन शुरू करने की महातैयारी में है। आपको बता दें कि ईरान और यूक्रेन युद्ध के दौरान इन इंसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। इसका मुद्दा हाल ही में नेटो की बैठक में भी बेहद गंभीरता से उठा था। दुनिया भर में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और सहयोगियों की जरूरत के लिए इन मिसाइलों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ साथ अब दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि भारत इस ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे मजबूत और किफायती केंद्र बनने जा रहा है। भारत के लिए ये राह नई नहीं है। भारत और इजराइल पहले ही बराक 8 जैसी बेहतरीन मिसाइलें मिलकर बना चुके हैं। यही नहीं, भारत के पास आकाश तीर जैसी अत्याधुनिक और अचूक एयर डिफेंस ऑटोमेशन प्रणाली बनाने और उसे ऑपरेट करने का बेहतरीन तजुर्बा है। आकाश तीर के जरिए भारतीय सेना ने पहले ही साबित कर दिया है कि कम लागत में आसमान में अभेद्य किला कैसे तैयार किया जाता है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को समझा दिया है कि आने वाले दौर में हवाई सुरक्षा ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ऐसे में आयरन डोम की तकनीक भारत आने से न सिर्फ हमारी अपनी सीमाएं और सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट सुपर पावर बनेंगे, बल्कि भारत दुनिया के लिए इन इंटरसेप्टर मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद एक्सपोर्ट हब बनने की राह पर भी निकल चुका है। शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से मचे घमासान को लेकर। आपको सीधे लिए चलेंगे ईरान, जहां से ये एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज पर ईरान के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को झूठा बताया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान के तय हुए रास्ते से ही जहाज गुजर सकेंगे। अमेरिका का कहना है कि यह सच बिल्कुल नहीं है। और सच तो यह है कि मई के महीने से ही अमेरिकी सेना ने 800 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज से आने जाने में मदद की है, और इस बेहद अहम व्यापार रूट से 380 मिलियन बैरल से भी ज्यादा का कच्चा तेल निकल चुका है।

0: और सीजफायर के बावजूद अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मूज में ईरान की ओर से जहाजों पर की गई फायरिंग। अमेरिका और ईरान के बीच अब लड़ाई परमाणु मुद्दे पर जाती हुई दिख रही है। ये लड़ाई हॉर्मूज पर नियंत्रण की है। पूरा मामला आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हॉर्मूज स्ट्रेट यानी जो पतली सी समुद्री पट्टी है आप वो इस वक्त बारूद के ढेर पर किस तरीके से बैठी है। ये आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि महायुद्ध में ईरान ने हॉर्मूज को अपने भरमास के तौर पर बना लिया। दरअसल आप एक बार फिर देख लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है का जिसका जिक्र हर बार किया जाता है, जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, यह है शिपिंग लेन यानी यह पर्शियन गल्फ है। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसको हमने यहां पर रिसाइकल किया हुआ या फिर इसको सर्कल किया हुआ और यहां से ओमान की खाड़ी की शुरुआत हो जाती है। अब ये पूरा जो इलाका है ये करीबन जो पैच है अगर आप इसका डिस्टेंस बताएं इसका ये करीबन 32 से 35 किलोमीटर का है और ये जो कोस्टल लाइन है ईरान की ये यहां से नीचे आती हुई यहां तक ये करीबन 2450 किलोमीटर की है। अब आप मानिए कि ईरान ने सिर्फ इसी को चोक किया हुआ है, बाकी कहीं पर भी ईरान की इतनी ज्यादा मौजूदगी नहीं है। अब यहां पर अमेरिकी शिप खड़े हैं और ईरान रहकर इस जगह पर से निकलने वाले टैंकर्स पर अटैक करता है क्योंकि ये एक नया रूट था ओमान इसके साथ साथ में जो अमेरिका ने डेवलप किया था जहां पर माइंस नहीं थी। लेकिन अब ईरान ये कहता है कि रूट ईरान ने जो डिसाइड किया यानी यहां से उसी रूट से कोई जहाज जा सकता है। अगर किसी रूट किसी और दूसरे रूट को लिया गया तो फिर ईरान उन टैंकर्स पर उन ऑयल शिप्स पर अटैक करेगा। यानी अब जो बातें चल रही थी देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल चुका है, यहां से शिप्स गुजरने शुरू हो गए हैं। दरअसल वो परिस्थितियां और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं क्योंकि अब सीधे तौर पर ईरान ने ऑयल टैंकर्स पर अटैक करना बंद नहीं किया और फिर अमेरिका ने कहा कि उसने एमओयू को खत्म कर दिया है और अब तभी से लेकर ईरान के कई हिस्सों के अंदर बड़े अटैक्स किए गए वो यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मूज के साथ साथ बुशहर का इलाके में, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो सिर्क का इलाका है और बाकी के जो चाबहार पोर्ट पर भी अटैक किए गए। और आप मानिए कि अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हुई चली गई। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझिए कि आखिरकार किस तरीके के ताजा हालात है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर अब जो हमले है यानी ईरान का संकेत परमाणु बम की जिद छूटे तो छूटे, यानी अब परमाणु बम के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, अब जिक्र हो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मूज का क्योंकि ईरान को लगता है कि इतने सैंक्शन झेलने के बाद अगर उसने एक और ऐसा प्राकृतिक बम या फिर अब नेचुरल डिजास्टर नेचुरल बम डेवलप कर लिया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मूज और जिसका इस्तेमाल करने से ईरान को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ये कहता है कि जो 1980 के अंदर जल संधि हुई थी इंटरनेशनल वाटरवेज के ऊपर वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर लागू ही नहीं होती। अब समझिए कैसे हॉर्मूज अमेरिका ईरान झगड़े की जड़ बनता जा रहा, इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: क्या दुनिया इतिहास के सबसे बड़े तेल संकट की ओर बढ़ रही है? ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने हुआ शांति समझौता महज चंद दिनों में बारूद की तरह उड़ गया। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। तेहरान का एक ही सूर हॉर्मुज पर अब ईरान का नया नियम मानना ही होगा। बीते 4-5 दिनों के भीतर हॉर्मुज की लहरें खून से लाल हो चुकी हैं। तेहरान की मर्जी के बिना गुजर रहे जहाजों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरान ने सीधे गोलियां बरसाईं। इसके बाद एक और तेल टैंकर को ईरानी नौसेना ने घेर कर निशाना बनाया। जवाब में अमेरिकी सेना ने जवाबी गोलीबारी की तो ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय अमेरिकी युद्ध पोतों पर मिसाइलें तान दी। दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों तक और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। साफ है कि जो परमाणु मुद्दा पिछले जंग की वजह था वो अब पीछे छूट चुका है। हॉर्मुज ही इस महायुद्ध का ग्राउंड जीरो बन गया है। ईरान इस गोल्डन वेपन से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका इसे ईरान के नियंत्रण में जाने नहीं देगा। ईरान ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिकी आक्रमण नहीं थमे तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का ठप होना और महाविनाश तय है। आज तक ब्यूरो।
0: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो आपने हमारी रिपोर्ट देख ली, अब आपको लिए चलेंगे अफगानिस्तान, जहां पे पाकिस्तान की क्रूरता के निशान साफ देखने को मिलते हैं। वहां वो सबूत भी आज तक के कैमरे में कैद हुए। आज तक की टीम इस समय अफगानिस्तान में और ड्यूरेंट लाइन के पास बने अफगानी कैंपों पर या गांव पर आसिफ मुनीर की फौज ने कैसे कहर बरपाया। 28 जून की रात भी अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए गए। मीर फरीद हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सच्चाई सामने के लिए रिपोर्ट भेजी और पाकिस्तान की फौज की पोल खोलती हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: आज तक की टीम पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर पहुंची है। डूरंड लाइन के पास उस गांव में आज तक पहुंचा है जहां पाकिस्तान की जिहादी फौज ने लोगों के घरों पर हमला किया है।
3: आज तक की टीम वो पहला इंटरनेशनल क्रू है जो इस इतना दूर जो है इस डूरंड लाइन के करीब पहुंचा है और आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि क्या हुआ था उस दिन यहाँ, किस तरीके से तबाही हुई थी और कैसे जो है उसके बाद एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का।
2: अफगानिस्तान का पक्तिया प्रांत, इसी राज्य में चमकानी गांव में पाकिस्तान ने 28 जून को हवाई हमला किया। पाकिस्तान के हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस मकान की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भयावह था।
3: खास तौर पे अगर हम आपको थोड़ा नजदीक ले जाए, मैं अपने कैमरन को बोलूंगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आस पास का जो सामान है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि आखिर यहाँ पे क्या था। इसे आप देख सकते हैं, जो मैट्रेसेस हैं या फिर तकिए और उसके अलावा जो महिलाओं के कपड़े हैं और जो बाकी सामान होता है घर का, वो यहाँ तबाह होके बिखरा हुआ है। उसके बाद एक और सिलसिला एस्केलेशन का शुरू हुआ और आज हालत ये है कि जब हम ड्यूरंड लाइन के बहुत करीब हैं, ड्यूरंड लाइन इस तरफ आपको दिखाऊंगा, कैमरन को बोलूंगा कि आपको दिखाए, यहां से जो है ड्यूरंड लाइन का जो 2600 किलोमीटर इलाका है इस तरफ से है और ज्यादातर जो ये ड्यूरंड लाइन जो ये बॉर्डर है ये खुला है, यानी कि इसकी फेंसिंग नहीं है और वो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में।
2: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा ड्यूरंड लाइन तय होती है, इसका ज्यादातर हिस्सा खुला है, लोग आसानी से आर पार जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अमानवीयता से अफगानी नागरिक गुस्से में है। जिस इमारत पर 28 जून की रात को बॉम्बिंग की गई वो एक रिहायशी इमारत है।
4: जब वो मैं वहां फंसा था, मैं उस रूम पीता हूँ तीसरी फ्लोर पे, वहां फंसा था, मैंने किसी को आवाज की कि मेरी मुझे सीढ़ी दे दी, वहां की जो सीढ़ी है वो बंद थी, पूरी ऊपर से जो गिरा हुआ था, तो मैंने आवाज की कि मुझे सीढ़ी दे दे, मेरी बाँ बंद है। मेरे पास अपनी वाइफ थी और छोटी 1 साल की बच्ची थी, तो उनको मैंने निकाल दिया, जख्मी थे तो उसको मैंने खुद निकाल दिया। पहले तो मैं सब चीज मेरे ऊपर पड़ी थी, मैं खुद को निकाल के फिर उनको निकाल दिया मैंने,
3: फिर एक और ब्लास्ट
4: यहाँ बिठा के उनके ऊपर कंबल, कोई चादर मदर, औरतों की जो चादर होते हैं हवातीन के, तो चादर मदर कुछ भी नहीं थी घर में, तो मैंने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दी कि आप यहाँ बैठे, मेरी माँ पसी है, बहुत सारे बच्ची पसी है, मैं उनको निकालता हूँ।
2: पाकिस्तान का जिहादी जनरल मुनीर कहता है कि यहाँ आतंकी छुपे थे, लेकिन यहाँ के निवासी कहते हैं कि आतंकी कौन है बताओ तो सही, जो जनरल और सरकार निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारती है वो आतंकी है या फिर वो मासूम बच्चे जो इन हमलों में मारे गए।
5: डर तो इतना ज्यादा डर है, पाकिस्तान के जो नाम अभी उसको देता है लोग दूसरा इसराइल, इसके जहाज हर शब हर रात यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लोगों के साथ बहुत ज्यादा खौफ है। जब भी उनकी तैयारी यहाँ पर फिजा में आते हैं, लोग आसमान की तरफ देखते हैं, रूस की तरफ, रूस हम आसमान की तरफ देखते हैं, कब क्या होगा, कहाँ पे अटैक होगा, यूं तो उसने मामूल बनाया है। कुनड़ में, खोस में, पक्तिका में, अभी यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो हमला हुआ वहशतनाक, इसराइल ने इतना जुल्म फलस्तीनियों पर भी नहीं किया है।
2: यहाँ के लोग,
0: आपने आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
10: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
12: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल। कहा, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले कर रहे हैं राम जन्मभूमि को बदनाम। हमने बदली अयोध्या की सूरत। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच पार्टी में सियासी हलचल तेज। राज्य प्रभारी भूपेश बघेल ने सीएम पूर्व सीएम चन्नी से की कल करेंगे मुलाकात। मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर वरिंग से है नाराजगी। शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे को 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत। डोंबिवली में डॉक्टर और नर्स से मारपीट का है मामला। सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी घटना। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किलें। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में सुनाई 3 महीने की जेल की सजा। अभिनेता के रवैये को बताया संदिग्ध।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
0: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब एक ही देश, एक ही शहर, एक ही आवाम कुछ ही हफ्तों के भीतर इस कदर बदल जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मुल्क की दास्तान दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठकर दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश को आंखें मिलाकर डरा रहा है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। मेरे दोनों तरफ आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। दरअसल इन विजुअल्स को बहुत ध्यान से देखिए। ये किसी दो अलग अलग देशों की तस्वीरें नहीं है, ये एक ही देश की तस्वीर है, लेकिन इनके बीच का अंतर आपको हैरान कर देगा। मेरे दाहिनी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इसी साल दिसंबर, माफ कीजिएगा, इससे इस साल से पहले दिसंबर की है और जनवरी महीने की है। ये वो ईरान है जो सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए देश के 31 प्रांतों की सैकड़ों लोग बगावत की आग में झुलस गए थे। आपको याद होगा कि जनवरी में ईरान के सड़कों पर हमने बहुत ज्यादा बड़े प्रदर्शन देखे थे। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ गुस्सा पूरे देश में फैल चुका था। सड़कें डेथ टू खामेनेई और इस्लामिक हुकूमत मुर्दाबाद के नारे से गूंज रही थी। जनता इतनी आक्रामक थी कि इस्लामिक सत्ता की सबसे क्रूर सेना यानी IRGC और बासिज फोर्स को दौड़ा दौड़ा कर पत्थर मारे जा रहे थे। लोग रिजिम चेंज को लेकर सड़कों पर उतरे थे और निर्वासित शाह के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। सर्वे कह रहा है कि 80% जनता इस तानाशाही के खिलाफ उस समय थी और सुप्रीम लीडर खामेनेई को की लोकप्रियता गिरकर 9-20% तक रह गई थी। हुकूमत ने इस बगावत को कुचलने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, गोलियां चलाई गई, हजारों लोगों को मार डाला गया, लेकिन अवाम झुकने को तैयार नहीं हुई। लेकिन अब दूसरी तरफ बाईं तरफ मेरी एक तस्वीर और देखिए। यह आज का ईरान है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के ज्वाइंट ऑपरेशंस के बाद सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और जो काम खामेनेई जीते जी नहीं कर पाए वो उनकी मौत ने कर दिया। इस्लामिक सत्ता ने इस मौत को शहादत का रंग दे दिया और देश में ऐसी सहानुभूति का चक्रव्यूह बना दिया जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। जिस मशहद शहर में जनवरी में महीने में सुरक्षा बलों को पीटा जा रहा था, उसी मशहद शहर में सड़कों पर खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों करोड़ों लोगों का हुजूम जुट गया। जो लोग कल तक डेथ टू खामेनेई चिल्ला रहे थे उनके हाथों में खामेनेई की तस्वीरें आ गई, आंखें आंसू से भर गई और सड़कों पर एक बार फिर से नारा गूंजा। लेकिन नारा था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल और डेथ किलर ट्रंप। मशहद के बीच चौराहे पर ट्रंप का विशाल काली पुतले को फूंक दिया गया। तो क्या खामेनेई की मौत ने ईरान को वाकई अंदर से एकजुट और पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया है? तेहरान की जमीन हालातों को भापने के लिए मैंने खुद तेहरान का दौरा किया और वहां के लोगों के नज भी टटोली और फिर वो रिपोर्ट तैयार की जो आपको दिखाता हूं और बताएगी आपको कि आखिरकार ईरान के अंदर इस समय बगावत की आग जब सुलग रही थी जनवरी में, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि करीबन 5-6 महीने के बाद ईरान की परिस्थितियां ही बदल गई। सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाता हूं।
2: एक ही मुल्क लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो क्या से क्या हो गया। 28 फरवरी को जब तक सुप्रीम लीडर अली खामिनई जिंदा थे तब तक ईरान की आवाम सत्ता पलटने की बगावत पर उतरी थी। डेथ टू डिक्टेटर और डेथ टू खामिनई के नारे लग रहे थे। फिर 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमले में खामिनई की हत्या हुई और इस्लामी सत्ता ने शोक से एक बार फिर अपने लिए समर्थन जुटा लिया। अब फिर से वहां डेथ टू अमेरिका और किल ट्रंप के नारे लग रहे हैं। लेकिन दिसंबर 2025 में ईरान में बड़े पैमाने पर शासन विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार में ईरानी मुद्रा रियाल में आई भारी गिरावट, महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन भाग गए। ये उसी ग्रैंड बाजार की तस्वीर है जहां प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। पूरे ईरान के 31 प्रांतों के सैकड़ों कस्बों में, जिनमें तेहरान, इस्फहान, तबरेज और शिराज के अलावा वो मशहद भी विद्रोह की आग में झुलस रहा था जहां खामिनई को दफनाया गया। मशहद में खामिनई को अंतिम विदाई देने वालों का हुजूम उमड़ा तो ड्रोन शॉट्स के जरिए इसे सत्ता के समर्थन का सबूत बताकर पेश किया गया। ये उसी मशहद की 9 जनवरी की तस्वीर है जिसमें सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी सीसीटीवी टावर पर चढ़कर कैमरे को तोड़ रहा है। नीचे मशहद के एक चौक पर खड़ी भीड़ उसका हौसला बढ़ा रही है। आज खामिनई के जाने पर उन्हें सबसे ताकतवर सुप्रीम लीडर बताया जा रहा है, लेकिन जनवरी में जावेद शाह यानी निर्वासित शाह के समर्थन में नारे लग रहे थे। तब सुप्रीम लीडर अली खामिनई की लोकप्रियता महज 9-20% रह गई थी और 70% से ज्यादा लोग सत्ता परिवर्तन चाहते थे। आज जिस IRGC और बसीज फोर्स को शोक की लहर ने फिर ताकत दी है, उन्हें इसी साल जनवरी के महीने में इस्लामी शासन विरोधी आवाम खदेड़ रही थी, उन पर पत्थर बरसा रही थी और वो जान बचाकर भाग रहे थे। ये गुस्सा हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत पर फूट रहा था जिन्हें तेहरान की सड़कों पर गोली मारी जा रही थी। इस्लामी सत्ता ही आवाम की दुश्मन बन गई थी। तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में सत्ता विरोधी छात्रों को पीटने के लिए बसीज फोर्स के लोगों को बुलाया गया और ये कहा गया कि सत्ता विरोधियों और समर्थकों में भिड़ंत हुई है। लेकिन जो काम खामिनई जीते जी नहीं कर पाए उसे उनकी मौत ने कर दिया। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन उनकी मौत ने ईरान को एकजुट कर दिया।
0: अब तक ऐसा बड़ा वेलकम या फिर ऐसा बड़ा आप कह सकते हैं आयोजन या श्रद्धांजलि अब तक ईरान में कभी नहीं की गई, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के इतिहास में इससे ज्यादा बड़ा लोगों का जमावड़ा कभी नहीं हुआ होगा। पूर्व सुप्रीम लीडर के जाने के बाद लोग गमजदा थे, परेशान थे, सड़कों पर आ गए, गुस्से में थे, नफरत में थे अमेरिका और इसराइल को लेकर। लेकिन एक उम्मीद दोनों में सुप्रीम लीडर के जाने के बाद एक बार फिर से जाग चुकी है कि वो अमेरिका और इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं।
2: ईरानी सत्ता अमेरिका और इसराइल का मुकाबला तो कर सकती है, लेकिन वो आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार और दमन के दौरान लोगों की मौत पर गुस्से को ज्यादा दिन तक काबू में नहीं रख पाएगी। खामिनई को सुपुर्दे खाक किए जाने का कार्यक्रम करीब हफ्ते भर तक चला। इस दौरान सहानुभूति की लहर दिखी। वहीं इससे पहले कानूनी या गैर कानूनी तौर पर युद्ध के दौरान कई सत्ता विरोधियों का सफाया भी कर दिया गया। डर और युद्ध के माहौल ने भावनाओं को दबाए रखा, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी है। शोक के इस कार्यक्रम का आयोजन इस्लामी निजाम की ओर से किया गया और इस वजह से वहां डेथ टू ईरान और डेथ टू ट्रंप के नारे भी लगे। ट्रंप का पुतला भी जलाया गया। इसे ही ईरान की मजबूती के तौर पर देखा या दिखाया जा रहा है।
0: जहां पर भी सुप्रीम लीडर के ऐसे बड़े पोस्टर लगाए गए उसमें एक ही बात लिखी गई, वी मस्ट अराइज, हमें खड़ा होना है। आज उनके जाने के करीबन 125-130 दिन के बाद अब पूरा ईरान एकजुट खड़ा हुआ नजर आता है और एक संदेश देता हुआ भी नजर आता है कि अमेरिका ने कितनी कोशिश की, लेकिन ईरान और ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकला है।
2: खामिनेई की मौत और युद्ध ने रिजीम को झटका तो दिया, लेकिन आईआरजीसी और कट्टरपंथियों ने तुरंत मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बना दिया। अब तक ना तो मुश्तबा खुद सामने आए, न ही उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सामने आया है, लेकिन इस्लामी सत्ता ने उनके जरिए अपनी पकड़ जरूर मजबूत बना ली है। यही वो नया ईरान है जहां इस वक्त किसी विरोध की गुंजाइश नहीं दिखती।
0: तुमने इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सबसे मजबूत सुप्रीम लीडर और सबसे लंबे समय तक रहने वाले सुप्रीम लीडर के तौर पर तो जाना ही जाएगा, बल्कि एक ऐसे सुप्रीम लीडर के तौर पर भी जाना जाएगा जिन्होंने ईरान को एक नए फेज या एक नई तैयारियों में खड़ा कर दिया। ऐसा ईरान जो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपनी ताकत को भी पहचानता है और अपने लोगों की हिम्मत को भी, और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस समय ईरान अब पुराने वाला ईरान नहीं रहा है।
2: भले ही इस वक्त ईरान एकजुट दिख रहा है, लेकिन लंबे समय में उसे आर्थिक संकट, युद्ध से हुए नुकसान और नागरिक असंतोष का सामना करना पड़ेगा। मुश्तबा खामिनेई को सुप्रीम लीडर तो बना दिया गया, लेकिन इस कदम को पारिवारिक तानाशाही के तौर पर देखा जा रहा है।
0: मुश्तबा खामिनेई ईरान के इतिहास में तीसरे सुप्रीम लीडर होंगे, लेकिन उनकी चुनौतियां दोनों ही सुप्रीम लीडर से कहीं ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि वो एक ऐसे समय पर इस समय सुप्रीम लीडर का कार्यभार संभाल रहे हैं जब जितना ईरान अस्थिर है उतना ही वो खुद भी, क्योंकि वो भी हमलों में घायल हुए हैं। खास बात ये भी कि मुश्तबा खामिनेई अपने पिता की लेगेसी को कैसे आगे ले जाते हैं, कैसे ईरान को और ज्यादा मजबूत करते हैं, और कैसे लगातार ईरान में ही जो बगावत की आवाजें खड़ी हो रही थी उनको कैसे शांत करते हैं, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।
2: अली खामिनेई को मशहद में दफना दिया गया। अब इस्लामी शासन आवाम का ध्यान बाहरी खतरे यानी अमेरिका और इसराइल की ओर ले जाना चाहता है। इससे न केवल आईआरजीसी यानी इस्लामी सत्ता की सेना के हाथ मजबूत होंगे, बल्कि देश की मौजूदा समस्याओं से भी ध्यान हटाने का मौका मिलेगा। सुमित चौधरी, तेहरान, आज तक।
0: क्या अमेरिका और ईरान का तनाव अब सीधे परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? यह खौफनाक दावा खुद ईरान की राजधानी तेहरान के डिप्टी मेयर हामिद रेजा गुलेमजादे ने किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अमेरिका के पास अब ईरान को झुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है परमाणु हमला। लेकिन क्या महाविनाश का यह बटन दबेगा? क्या ट्रंप वाकई न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? देखिए तेहरान से मेरी एक और स्पेशल रिपोर्ट।

0: क्या दुनिया एक बार फिर महाविनाश के उस मुहाने पर खड़ी है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं? क्या अमेरिका और ईरान का तनाव अब सीधे परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? ये सनसनीखेज सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये दावा खुद ईरान की राजधानी तेहरान के डिप्टी मेयर हामिद रेजा गुलाम जादेह ने किया है। उन्होंने सीधे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा है कि अमेरिका के पास ईरान को झुकाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है परमाणु हमला।
1: So if they wanted to make any achievements, they would have done it during those 40 days. And they don't have any other options. There remains only one option, which is the nuclear bomb. That even if it is used, it would not stop Iranian people. You have seen that, as I said, between 12 to 15 million people turned out in Iranian in ceremony in Tehran, and we have more millions of people in cities of Qom and Mashhad, and all of these people, which I think would be at least half of the people, half of the community, are ready to sacrifice themselves for the country.
0: तेहरान के डिप्टी मेयर ने साफ कहा कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ सभी पारंपरिक सैन्य विकल्प खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब एकमात्र विकल्प जो अमेरिकी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं वो परमाणु बमबारी है। वो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते और अगर ऐसा हुआ तो भी हम लड़ेंगे। गुलाम जादे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अली खामिनेई की मौत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान पर परमाणु बम गिरा सकते हैं? कूटनीतिक और सैन्य मामलों के एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी संभावना न के बराबर यानी बेहद कम है। ट्रंप की पूरी रणनीति मैक्सिमम प्रेशर की रही है जिसका मकसद ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, उसकी तेल अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना और सैन्य दबाव बनाकर उसे नई न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करना है, न कि एक पूरे देश को तबाह करना। ट्रंप का मुख्य लक्ष्य हमेशा से ये रहा है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार न आए। डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अब तक क्या कहा है ये समझना भी जरूरी है। अपनी रैलियों और साक्षात्कारों में ट्रंप हमेशा कहते आए हैं कि परमाणु हथियार दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कई बार कहा है कि परमाणु हथियारों की ताकत इतनी विनाशकारी है कि इसका इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। ट्रंप और उनके सलाहकारों ने बार बार दोहराया है कि ईरान को रोकने के लिए पेंटागन की टेबल पर सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन इसका मतलब परमाणु हमला नहीं बल्कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका या इसराइल की ओर से सर्जिकल या मिसाइल स्ट्राइक करना है। मानव इतिहास गवाह है कि परमाणु बम का इस्तेमाल आज तक सिर्फ एक ही देश ने किया है और वो देश अमेरिका ही है। आज से करीब 81 साल पहले यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैट मैन नाम के बमों ने पलक झपकते ही 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस भयानक तबाही के बाद से आज तक किसी भी देश ने युद्ध में दोबारा परमाणु हथियार चलाने की हिम्मत नहीं की है। परमाणु हमले की धमकी कई बार दी गई है लेकिन ये धमकी जितनी डरावनी होती है उसे अंजाम देना उतना ही नामुमकिन होता है। सुमित चौधरी, तेहरान, आज तक।
2: दरअसल ईरान की लीडरशिप और ईरान की सेना को भी लगता है कि एक आखिरी विकल्प जो अमेरिका के पास बचा है वो सिर्फ है न्यूक्लियर वेपन का, और अगर अमेरिका ऐसा इसको इस्तेमाल कर भी लेता है तो फिर ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए लगातार अब ईरान की तरफ से माना जा रहा है कि अब अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है और अमेरिका कितने ही बड़े हमले कर ले वो ईरान को अब झुका नहीं पाएगा, और शायद यही मोराल है जो ईरान को लगातार लड़ते रहने के लिए और अमेरिका को जवाब देने के लिए वहां पर उसे मजबूत कर रहा है। लेकिन न्यूक्लियर खतरों का डर सिर्फ अब ईरान और अमेरिका के बीच नहीं है, एक और ऐसा फ्रंट है जहां से न्यूक्लियर वेपन का डर अब और बढ़ता जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर है दुनिया के एक और फिर परमाणु तबाही के मुहाने पर खड़ी हो गई है, क्योंकि उत्तर कोरिया से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो अपनी परमाणु ताकत को क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरीके से बढ़ाने जा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अब उत्तर कोरिया ना सिर्फ ज्यादा परमाणु बम बनाएगा बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा घातक और विनाशकारी भी बनाएगा। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि सच्ची शक्ति सिर्फ ताकत के दम पर मिल सकती है, और उत्तर कोरिया अपने कॉम्बैट सिस्टम को अपडेट कर रहा है, जिसका मतलब है कि उसकी मिसाइलें अब और तेजी से और दूर तक मार कर सकेंगी। नए अत्याधुनिक नेवल बेस और अत्याधुनिक शिपयार्ड का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे समुद्र में परमाणु हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने अपनी खुफिया एजेंसी RGB यानी जो जनरल ब्यूरो को पूरी दुनिया पर पैनी नजर रखने और जासूसी करने का जिम्मा भी सौंपा है। यह सिर्फ एक देश की सैन्य तैयारी नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए रेड अलर्ट है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान सीधे उत्तर कोरिया के निशाने पर है, और किम जोंग उन उनकी ये जिद दुनिया के लिए किसी भी तरीके से एक बड़ा विनाशकारी साबित हो सकती है। चलिए रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
8: Akaji, the number one.

क्या दुनिया इतिहास के सबसे बड़े तेल संकट की ओर बढ़ रही है? ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने हुआ शांति समझौता महज चंद दिनों में बारूद की तरह उड़ गया। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। तेहरान का एक ही सूर हॉर्मुज पर अब ईरान का नया नियम मानना ही होगा। बीते 4-5 दिनों के भीतर हॉर्मुज की लहरें खून से लाल हो चुकी हैं। तेहरान की मर्जी के बिना गुजर रहे जहाजों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरान ने सीधे गोलियां बरसाई, इसके बाद एक और तेल टैंकर को ईरानी नौसेना ने घेर कर निशाना बनाया। जवाब में अमेरिकी सेना ने जवाबी गोलीबारी की तो ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय अमेरिकी युद्ध पोतों पर मिसाइलें तान दी। दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों तक और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। साफ है कि जो परमाणु मुद्दा पिछले जंग की वजह था वो अब पीछे छूट चुका है। हॉर्मुज ही इस महायुद्ध का ग्राउंड जीरो बन गया है। ईरान इस गोल्डन वेपन से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका इसे ईरान के नियंत्रण में जाने नहीं देगा। ईरान ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिकी आक्रमण नहीं थमे तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का ठप होना और महाविनाश तय है। आज तक ब्यूरो।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अयोध्या दौरे पर योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले कर रहे हैं राम जन्मभूमि को बदनाम। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच पार्टी में हलचल तेज, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से कल पूर्व सीएम चन्नी की मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष वारिंग से नाराजगी। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा, भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। शिवसेना पार्षद रमेश मात्रे को 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत, डोंबिवली में डॉक्टर और नर्स से मारपीट का मामला, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किल, दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस में 7 मामले में सुनाई 3 महीने जेल की सजा, अभिनेता के रवैये को बताया संदिग्ध।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। पिछले एक महीने से हम अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर गुजरते हफ्ते के साथ मंदिर में भ्रष्टाचार का ये मामला रंग बदल रहा है, राजनीतिक रंग भी ले रहा है, और राजनीति के लहरों पर सवार ये मुद्दा संगठित भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर आस्तिक नास्तिक तक पहुंच गया है, फिर मंदिर मस्जिद तक पहुंच गया है, फिर बाबर औरंगजेब से लेकर वक्फ कब्रिस्तान के रास्ते अब नमाज इफ्तार तक पहुंच चुका है। क्योंकि आज ही अयोध्या के बीकापुर की रैली में सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में अयोध्या की हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ा दी गई थी। सीएम ने चुनौती दी है कि क्या एसपी और कांग्रेस की सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करा सकती है। दरअसल सीएम योगी ने 2003 की एक घटना का जिक्र किया है, जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और हनुमानगढ़ी के ही महंत ज्ञानदास ने बाबरी मस्जिद केस में पक्षकार हाशिम अंसारी समेत बाकी लोगों के लिए हनुमानगढ़ी परिसर में एक इफ्तार का आयोजन किया था। शायद इसी तथ्य के हवाले से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि पराजय काल विपरीत बुद्धि। हालांकि अखिलेश ने इस संदेश का कोई संदर्भ नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड को लेकर यूपी में राजनीति का सांप्रदायिक रंग देखने को मिल रहा है, जिस तरह समाजवादी पार्टी कभी शंकराचार्य के साथ समाजवादी और सनातन की परिभाषा बता रही है, सनातन नहीं समाजवाद है का पोस्टर अपने दफ्तर पर लगा रही है, और अब जिस तरह सीएम योगी ने अखिलेश यादव को भगवा पहनकर कांवड़ लेने का चैलेंज दे डाला है, उसे लेकर लगता है कि आने वाला चुनाव विकास, महंगाई, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय से आगे सिर्फ और सिर्फ धर्म और मजहब के राह पर ही चला जाएगा। इन्हीं आशंकाओं और सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: अयोध्या में चोरों ने राम जी का चढ़ावा क्या चुराया, राजनीति को ऐसी आग लगी है कि लपटे कम नहीं होते। एक तरफ विपक्ष है जो चढ़ावा चोरी के आरोप में ट्रस्ट से लेकर बीजेपी संघ सरकार सबको खींचता है, दूसरी तरफ सीएम योगी जिन्होंने सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने के लिए चारों तरफ से घेर रखा है। पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी ने राम मंदिर चोरी का सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जितने हमले किए उसमें नया चैप्टर हनुमानगढ़ी का खुला है।
2: इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? ये
1: पुलिस करा रही थी। दावा यही है कि सरकार के इशारे पर हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज की कोशिश तब की गई थी। सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में तथ्य सामने आए कि यह घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से दोस्ती थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे। उस साल भी इफ्तार आयोजित की गई और चटाइयां हनुमानगढ़ी के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन फैजाबाद के एसएसपी ने इसे हटवा दिया। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराई गई। बाद में यह मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की तरफ से हाईकोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिलाई।
3: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है। वो हनुमान जी को राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? आस्था के नाम पर चंदा सुनना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। हनुमान जी का नाम उन्होंने कब लिया? कब की बात बता रहे हैं आप? हनुमान जी के विषय में उन्होंने कब रामायण हनुमान चालीसा बातें कही।
1: दरअसल अयोध्या के कांड को समाजवादी पार्टी आस्था को चोट का मुद्दा बनाती है और खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ती है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया है कि सनातन ही समाजवाद है, और इसी सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं। बीजेपी तो सोशल मीडिया पर समाजवादी सनातन के इतिहास के पन्ने तक दिखा रही है।

0: データコネクタビアプソースハッオンラインラエダー।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
2: सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
1: इन बयानों और इतिहास की घटित अघटित घटनाओं का हवाला देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी को हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश करते हैं, ताकि इन चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी के कांड पर बीजेपी बैकफुट पर ना आ सके। आज तक ब्यूरो।
3: तो गए मुर्दे भी कहीं ना कहीं उखाड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और मजहब की जब बात होगी तब पिछले 30 साल का पूरा लेखा जोखा लेने की कोशिश की जाएगी, और इसी पर चर्चा करेंगे कि हर बार योगी आदित्यनाथ अब धर्म और मजहब को लेकर आगे की राजनीति क्यों करना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यह क्यों कह रही है कि सनातन ही समाजवाद है, ये व्याख्या भी समझने की कोशिश होना जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सरदार आरपी सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में आएंगे। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस की पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन आज के सबसे बड़े मेहमान ब्रिजलाल होंगे, क्योंकि राज्यसभा के सांसद है, पूर्व डीजीपी एडीजी उत्तर प्रदेश डीजीपी रहे और एडीजी रहे थे लॉ एंड ऑर्डर जब ये 2003 की घटना का जिक्र किया जा रहा है, उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन तीन सवाल इस पैनल के सामने रखने से पहले, ब्रिजलाल जी आपका भी स्वागत रहेगा, लेकिन तीन सवाल इस पैनल के सामने। सबसे पहला सवाल, क्या 2003 में हनुमानगढ़ी मंदिर में के बाहर मुलायम सिंह सरकार ने नमाज पढ़वाई थी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज जाकर ये आरोप लगा रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर वहां पर नमाज पढ़वाई गई थी और वो आकर आज हमें सनातन का पाठ पढ़वा रहे हैं। दूसरा सवाल, विपक्ष को धर्म विरोधी साबित करने से बीजेपी को चढ़ावा चोरी कांड का नुकसान कम हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को चढ़ावा चोरी कांड का नुकसान हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। तीसरा सवाल,

0: हो रही है, क्या धरपकड़ हो रही है, क्या सामान जो चोरी का सामान है उसे जब्त किया जा रहा है, किया जा रहा है। उसके बाद आप अगर जानकर चार्ज करेंगे या जिस प्रकार के बयान अखिलेश यादव देने वो देंगे, और ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने जब ज्ञानवापी में शिवलिंग की बात हुई तो कह रहे ये बीजेपी वालों ने वहां पर लगा दी, यही अखिलेश यादव थे। और अभी आपने सुनवाया रामगोपाल यादव जी का, आपने एक पार्ट सुनाया जिसमें कहा गुंबद की बात की, अगर गुंबद के ऊपर जो थे सब नीचे उतार दिए, हमने कोई गुंबद से नीचे आने नहीं दिया, तो जो मूल बात उन्होंने कही वो आप छोड़ गए उसी वीडियो के अंदर। वो कहा कि राम तो वहां पर अनऑथराइज है मस्जिद के अंदर, मतलब रामलला जैसे घुसपैठी होते हैं, शब्द ये नहीं था, शब्द अनऑथराइज था, परंतु इस प्रकार के शब्द रामलला को लेकर इस्तेमाल किए। और फिर मुलायम सिंह ने तो ओपनली कहा था कि सरयू लाल करी तो हुई तो हुई, हमने तो और जरूरत पड़ती और करते, और वो कैसे भूल गए जहां पर मिले मुलायम काशी हवा में हो गए।
1: ठीक है, वो इतिहास तो सबको पता है, ये बार बार अभी याद दिलाने की क्या जरूरत आ पड़ी है। 2003 की घटना थी, हनुमानगढ़ी की घटना 2003 की थी, उस वक्त ये बातचीत हो रही थी कि कहीं शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। इफ्तार पार्टी के लिए बुलाने वाले थे महंत ज्ञानदास इफ्तार के लिए बुलाते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए लोग वहां पर बैठ जाते हैं। आज 23 साल के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं और उसके बाद याद दिलाते हैं कि हनुमानगढ़ी में जो महंत ज्ञानदास ने जो इफ्तार के लिए बुलाया था वो लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। ये जरूरत क्यों वहां पड़ी? जो कहा गया वो कहा गया, तो क्या राम मंदिर चोरी कांड का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा पुरानी बातें निकालकर?
0: नहीं, मैंने अभी स्पष्ट कहा राम मंदिर चोरी के अंदर कार्रवाई हो रही है और मैं आज आपके चैनल पर बड़ा और स्पष्टता से कह रहा हूं, उसमें कोई अधिकारी हो, ट्रस्ट का मेंबर हो, सब जांच के दायरे में, कोई कर्मचारी और होगा तो सब जांच के दायरे में। अभी उन्होंने जांच बढ़ाई है अपनी, उसके अंतर्गत और लोगों को पकड़ने की बात भी हो रही है, तो इसलिए इसका रस्ते लेना देना नहीं है। परंतु ये जो नए नए अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, अभी ये स्वामी मुक्तेश्वरन जी के आप मत्था देखकर उनके चरणों में बैठकर है, कभी उन्होंने उनसे पूछा कि उनकी जो ट्रस्ट है रमालिया ट्रस्ट है उसके बारे में क्या कहना है? 1,008 किलो के सोने की बात आ रही है उस ट्रस्ट को लेकर, कभी कहा उसके बारे में? कोई एक शब्द नहीं आया। कभी यह बताया कि जो आज वहां पर सेकेंड बात को वेरीफाई नहीं कर रहा, वहां पर जो खबरें हैं कि तीनू यादव और अखिलेश यादव के बीच में बातें होती थी, कि अखिलेश यादव अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट देंगे कि हाँ मेरी बातचीत नहीं होती थी, किसी और की बातचीत होती होगी, तो कई सारे प्रश्न हैं। ये वो प्रश्न तो समाज के सामने आएंगे, जैसे ये लोग अपनी तरफ जगह से प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वैसे हमारे को भी दिखा रहे हैं प्रश्न हम भी पूछे।
1: डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आप उनकी पढ़ाई में दखलंदाजी करोगे, आप कहोगे कि समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, उनके पिच पर जाकर क्रिकेट खेलने की कोशिश करोगे तो वो भी अपने तरीके से वो आपको बाउंसर डालेंगे, अब याद दिलाएंगे 2003 में क्या कहा था, रामगोपाल जी ने क्या कहा था, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, ये दोबारा पुरानी टेस्ट मैच शुरू हो जाएगी उसमें।
2: धन्यवाद साहिल। देखिए, कंफ्यूज पार्टी, पूरी तरीके से कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आज एक्सपोज हो गई है इस 140 करोड़ की जनता के सामने। आज जब लोगों को समझ में आ गया है कि 3,000 करोड़ रुपए का मंदिर बनाने के बाद, हजारों करोड़ों की चोरी का रास्ता बनाने के बाद, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। जब ये कलंक अपने मुंह पे लगा हुआ है तो किस किस का नाम ले? दिल्ली वाले
0: एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को
2: आरपी सिंह साहब, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए सुनने का ध्यान रखिए और तथ्य पे बोलूंगा।
1: हरपी सिंह जी, उनको बोलने दीजिए, आपकी बात पूरी सुन ली थी, उनको भी सुन लीजिएगा। हरपी सिंह जी, उनकी बात भी सुन लीजिए। एक एक करके बात करें।
2: हरपी सिंह साहब, बीच में बोलना बंद कीजिए और अपने टाइम पे बोलना सीखिए। तो जिस पार्टी का उदय ही राम भक्तों के नाम से हुआ था, जिस राम के नाम से राजनीति सन 1980 से लेके आज 2026 तक की थी, बड़ा बड़ा ढोल मंजारे के साथ जो किया था वो आज पकड़ी गई है। आज इन सब का काला चेहरा सामने आ चुका है और वो कब तक भागेंगे? तो इसलिए जब केंद्र सरकार ने भी हाथ छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने मुंह पे लगी हुई इस कालिक को छुपाने के लिए कभी वो वक्फ वोट की बात कर रही है, कभी वो हनुमानगढ़ी की बात कर रही है, कभी वो नमाज की बात कर रही है, कभी शमशान की बात कर रही है, कभी कब्रिस्तान की बात कर रही है।

0: आप देख रहे हैं पिछले 4-5-6 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को इधर से उधर इधर से उधर।
1: ये हनुमानगढ़ी वाला क्या मामला है आशुतोष जी?
0: कोई मामला नहीं, ब्रिजलाल जी बैठे हुए बताएंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं कहीं डिस्टर्ब मत होइए। सिर्फ आंख आपको जो है मछली की तरीके से आप उस पर तीर लगा के रखिए। कौन कौन राम मंदिर में
1: ब्रिजलाल जी के पास हम जाएंगे आशुतोष जी एक रिएक्शन सुन लेते हैं उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आता हूं। क्योंकि देखिए क्या है, आज योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे और उसके बाद उन्होंने शुरू किया 2003 में जो मामला हुआ था उसका जिक्र उन्होंने किया। शुरुआत होती है एक पॉडकास्ट से और वहां से उठाकर वो इस बात को रखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी के सीडीओ हुए थे। और अब यहाँ पर 2000 हनुमानगढ़ी के जो महंत थे उन्होंने वो सुन लेते हैं ना क्या बोल रहे हैं।
2: दिन की याद नहीं है, 2003 में एक अलगड़ा मस्जिद है अलगड़ा, तो वो पहले सगरिया पट्टी के आश्रम था, वो स्थान की जमीन सगरिया पट्टी के थी, ऊपर डिग्री भी हुआ था और इन लोगों ने उस मस्जिद के कैसे कर करके उगा के फंसा करके गांधा जी के और मस्जिद के फिर अपना मरम्मत भी करा लिया। और उसके बाद में यहाँ पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का, हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा अवतार के समय था कहा था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए। तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे दैनिक जागरण में। तब हम लोग कोर्ट में गए, हम गए स्वयं, हम और एक वो रहे का नाम रामवरण दास, दो आदमी नाम दे करके हम लोग गए और वहाँ पर हनुमान जी के दया से आपके पक्ष में आर्डर भेजा कि हनुमानगढ़ी एरिया में जितने दूर में हनुमानगढ़ी के एरिया है उसमें कोई भी अवैधानिक का नाम है हिंदू परंपरा के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, करता है तो उसको रोका जाए और दंड दिया जाए, लेकिन इन लोगों को कोई दंड नहीं किया गया।
1: तो मान धर्मदास यहां पर कह रहे हैं कि कैसे उन्हें अदालत जाना पड़ा और उसके बाद अदालत ने रोक लगाई कि हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, अगर हिंदू जगह है तो वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 2003 की यह तस्वीरें जहां पर महंत ज्ञानदास हमें नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष के जो बाकी लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने ही दरअसल इस इफ्तार का आयोजन वहां पर किया था। आशुतोष वर्मा, ये बात आज योगी आदित्यनाथ निकाल रहे हैं जब वो अयोध्या जाते हैं।
0: मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए 9 साल की चला चली की बेला है और जाते जाते मुंह पे इतनी बड़ी कालिक जब पुत गई है तब उनको 2003 क्या 2098-92 सब याद आ रहा है। ये भी एक दृश्य था जब इस उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे, एक दूसरे के वहां सिवैया भी खाते थे और मिठाइयां भी दीपावली में खाते थे, लेकिन नफरत की आग 2017 के बाद से ऐसी बोई कि आज खुद अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गए। आज इन सबको समझ में नहीं आ रहा है कि चंपत राय को ट्रस्ट से निकाला जाए कि ना निकाला जाए। आज FIR तक नहीं कर पा रहे हैं, उनको जेल तक नहीं कोई कर पा रहा है, क्योंकि डर सबको है भाजपा में कि जब वो आदमी पकड़ा जाएगा तो किस किस का नाम लेंगे। तो सबसे अच्छा काम है कि लगातार इस मामले को डायल्यूट करो और इधर से उधर कभी कब्रिस्तान शमशान और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके साथ पास लोग यही काम पूरे 2-3 दिनों से मीडिया में चला रहे हैं।
1: लेकिन
0: जहां देखिए योगी आदित्यनाथ,
1: आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा जी,
0: कब्रिस्तान शमशान के अलावा
1: उनके पास व्याख्या आप भी हमारे लिए कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी को भी शायद वो बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रही है और पैनल में बाकी लोग भी ये समझ पाए तो अच्छा होगा। ये क्या, ये शब्द, ये जो वाक्य है इसका क्या मतलब है कि सनातन ही समाजवाद है और समाजवाद ही सनातन है? ये पहली बार मैं ये व्याख्या देख रहा हूं, ये पहली बार ये व्याख्या देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी तो अभी आई है, सोशलिस्ट पार्टी के जमाने से आज तक मैंने कभी ऐसी व्याख्या नहीं देखी समाजवाद की।
0: देखिए ऐसा है कि जो समझ गए ठीक है, वो समझदार है, वो समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है, उनको यही बता देता हूं। मैं
1: आप समझाने की कोशिश तो करिए, हमें नहीं रहना है नाड़ी, आपकी राजनीति की भाषा हमें भी समझनी है थोड़ी सी।
0: आप तो समझ गए हैं, खैर आप अनाड़ी बनने की बहुत कोशिश करते। खैर देखिए साहिल जी, एक बात समझिए, हमारा फंडा बहुत क्लियर कट है। अखिलेश जी की लाइन है पीडीए, पीडीए, पी से पहला शब्द है वो है पीड़ित। और आज इस देश में पीड़ित कौन है? आप सबके वरिष्ठ पैनल में जितने लोग और करोड़ दर्शक वो देख रहे हैं वो सब जान रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति पीड़ित है और वो है सनातन। और एक पीड़ित के साथ
1: आशुतोष वर्मा जी
0: होती है।
1: देखिए आपने आपने पीडीए का फुल फॉर्म कहना शुरू किया तभी मुझे समझ में आ गया कि आपने सिलेबस पूरी तरीके से बदल दिया है। पहले आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, आप सीबीएसई बोर्ड में चले गए, या यूपी बोर्ड आपने अलग ढूंढ लिया है एक तरीके से?
0: नहीं नहीं नहीं,
1: देखिए पहले पीडीए का फुल फॉर्म में पिछड़ा होता था, पी का मतलब, अभी आप पीड़ित पे चले गए हैं, ठीक है। अब थोड़ी दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि आप पंडित पे चले जाओगे, पी से पंडित, जैसे स से समाजवाद की जगह पे स से सनातन हो गया है, वैसे पी से पंडित भी हो सकता है कुछ दिन में। ये नई परिभाषा हो गई, आपका बोर्ड बदल गया है सिलेबस का।
0: ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है साहिल जी। देखिए समाजवाद को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी को अभी और समय लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, ये 5 रुपए की किताब अशोका रोड में मिलती है, अगर आरपी सिंह साहब चाहे तो जाके खर्च कर सकते हो, ना हो तो हम मेल कर देंगे। और इसके संविधान में जो लिखा हुआ है तीसरे पैराग्राफ में, पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी। इन्होंने कब समाजवाद को समझा है? ये तो सदन में खड़े होकर समाजवाद के खिलाफ बात बोलते हैं।
1: ठीक है,
0: जिनकी पार्टी की नींव समाजवाद पे रखी गई है वो हमसे समाजवाद पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अपने संविधान के बारे में नहीं पता,
1: आरपी सिंह
0: इनको अपने राम के बारे में नहीं
1: आप
0: पता।
1: समझा दीजिएगा,
0: पैसा कमाना।
1: हनुमान गढ़ी का मुद्दा उठाकर सीएम योगी क्या बताना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को कि अगर आप जितना समाजवाद को सनातन से जोड़ोगे उतने पुराने मुर्दे उखाड़े जाएंगे, क्या यही बताने की कोशिश है?
3: नहीं नहीं, समाजवाद और सनातन का कोई तालमेल ही नहीं है। समाजवाद तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में रखने वाला एजेंडा है, और समाजवाद की बात करते हैं, अगर समाजवाद को सबसे ज्यादा किसी ने लागू किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर लाभ मिलता है, 60 करोड़ से अधिक लोगों को सिर पे छत दे दी गई है।
1: लेकिन इस बात का क्या मतलब है?
3: जल से नल,
1: मुलायम सिंह सरकार ने वहां पर नमाज पढ़वाई थी हनुमान गढ़ी के बाहर, क्योंकि हमें तो दिखाई दे रहा है कि वहां पर तो संतों ने नमाज पढ़वाई थी। उन्होंने कहा था कि आप आइए और हमारे यहाँ पर इफ्तारी करिए और उसके बाद नमाज पढ़ाई गई।
3: नहीं नहीं, संतों ने नहीं, इफ्तारी के बाद नमाज पढ़ी गई। इफ्तारी के लिए बुलाया था, नमाज के लिए नहीं बुलाया था। नमाज किसके कहने पर किसके शहर पर सबको पता है। और एक और बात, क्या वहां की इंटेलिजेंस फेल हो गई थी क्या? और मैं एक चैलेंज देता हूँ, ये तो मदरसे में पढ़कर है ना, आपने कहा डेफिनेशन पढ़ी। अब ये जो पीडीए की डेफिनेशन, मदरसे की डेफिनेशन है सबकी सब, परंतु जो मूल बात करें वो ये है कि क्या ये लोग आज अपने आप को रामभक्त कह रहे हैं, क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए खड़े होंगे? क्या इनसे पूछे कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या कहना है, कि जो रामलला वहां पर मस्जिद के नीचे है, उनकी जो स्थान है उसके बारे में क्या कहना है इनका, या ज्ञानवापी के बारे में क्या कहना है? ज्ञानवापी के बारे में तो कहते हैं कि
1: देखिए आशुतोष वर्मा जी,
3: वहां पर शिवलिंग पार्क है, वो तो भाजपा वालों ने वापस ये बयान
1: सनातन और समाजवाद का फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। पहले जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी थे तब वो खुलकर ये कह सकते थे कि बाबरी मस्जिद को नहीं गिराने देंगे। रामगोपाल यादव सदन में खड़े होकर ये कह सकते थे कि गुंबद पर चढ़ तो जाओगे लेकिन उतारने नहीं देंगे आपको। लेकिन आज आप ये नहीं कह पाओगे क्योंकि आपने स का सनातन कर दिया है, सिलेबस बदल गया है। आशुतोष जी,
0: देखिए साहिल जी, देखिए थोड़े से सीधे व्यक्ति है आरपी सिंह साहब, अपनी बातों में फंस जाते हैं फिर समझ नहीं पाते हैं। मैं इनसे कह रहा था राम मंदिर छोड़ के ये हर तरफ जाएंगे, ये काशी विश्वनाथ भागेंगे, कभी ये रामकृष्ण की नगरी भागेंगे, कभी 2003 में भागेंगे, कभी 15 में भागेंगे। कोई बात नहीं, नहीं मेरी बात
3: है आरपी सिंह साहब, इतने
0: अरे इतने अधीर मत होइए, अरे इतने अरे सुनिए तो भाई, इतने अधीर मत होइए, अरे इतने अधीर भाई, इस तरीके से डिबेट तो नहीं।
1: आरपी सिंह जी सुन लीजिए, आपकी बात शांति से सुनते हैं, ऐसा नहीं होगा,
0: फिर वही बात है,
1: ऐसा नहीं होगा, आपकी बात तो सुनते हैं ना। आशुतोष जी आपकी बात खत्म करिए क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी के पास भी जाना है, उनकी भी राय जाननी है समाजवाद को।
0: आरपी सिंह साहब मैं आपको कितना सम्मान करता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि आपके अंदर कोई परेशानी परेशानी नहीं है, अब मजबूरी है, भाजपा के पास कोई और प्रवक्ता बचा नहीं है, आप ही को भेज दिया जाता है। देखिए हम सब जानते हैं कि गलती हुई है, भाजपा से गलती हुई है, भाजपा अपना मुंह छिपाते छिपाते घूम रही है, लेकिन कब तक छिपाएगी, कब तक झूठी खाल भेज के जो है आप घूमते रहेंगे कि हमने देश को बदल दिया है। आज चोरों के साथ में मिले हुए हैं आप, जिस ट्रस्ट की आप बात करते हैं वो ट्रस्ट बनाया प्रधानमंत्री ने, वहां पे एक मिनट चोरी हो रही है।
1: आशुतोष जी,
0: हम सब जान रहे हैं,
1: इस पर तो हम बात कर चुके हैं ना। अब सवाल कहां पर उठता है मैं बताता हूं, जैसे ही आप इस बात का जिक्र करना शुरू करते हैं बीजेपी सवाल उठाती है कृष्ण जन्मभूमि पर, क्योंकि अब तो आप सनातनी बन गए, कृष्ण जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी क्या कहेगी। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव कहते थे कि बाबरी मस्जिद नहीं गिराने देंगे, क्या आप खड़े होकर कह सकते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं बदलने देंगे, संबल में मस्जिद नहीं बदलने देंगे, क्या आप ये कह सकते, आप ये सवाल उठेंगे?
0: कभी कभी भाजपा वाले जितने वीडियो चला रहे, कभी एक ऐसा वीडियो चलाइएगा, ठीक है, ये एक वीडियो है आपको शायद दिख रहा होगा नृपेंद्र मिश्रा जी ने, और इसमें खास उन्होंने बोला था कि क्या हुआ था उस समय, और अटल बिहारी वाजपेयी का वो वीडियो भी चलाइएगा जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने पे माफी मांगी थी। जिस दिन आप उसको समझ जाएंगे, आप
1: काला दिन कहा था,
0: ये भी कहा था कि वो नहीं होना चाहिए, और हम इस पे सॉरी कहते हैं। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे, जो नए भाजपाई है वो समझ जाएंगे,
1: ठीक है, चरण सिंह समाजवाद
0: समझ जाएंगे।
1: डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है यहाँ, समाजवादी पार्टी भी अपने सिलेबस से हट रही है, बीजेपी का सिलेबस तो वही है, बीजेपी उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकती है, ये हो क्या रहा है?
4: नहीं, ये हो ये रहा है कि बीजेपी को पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है, प्रधानमंत्री को पता है कि वो हिट विकेट हो चुके हैं। आपने क्रिकेट की भाषा शुरू की इसलिए मैं उसी में उत्तर दे रहा हूं। ये हिट विकेट हो चुके हैं, इनको पता है कि इन्हीं के नुमाइंदे जिनको इन्होंने ट्रस्टी बनाया था उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया है, और वो ये चंदा चोरी के मामले में बिल्कुल चक्रव्यूह में फंस गए हैं, बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी। अब वो चाहते हैं कि हम सांप्रदायिकता का कीचड़ फैलाएं और फिर कमल खिलाएं, क्योंकि कीचड़ फैलेगा तभी ना कमल खिलेगा। तो ये सांप्रदायिकता का कीचड़ फैलाना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। मथुरा की भी बात करेंगे, अब थोड़े दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, फिर जॉर्ज सोरोस को कनेक्ट कर देंगे किसी तरह से, ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा, डिफ्लेक्शन चलता रहेगा। लेकिन जनता जो 100 करोड़ हिंदू जनता जो मूल सवाल पूछ रही है, भाई ये चंदा चोरी हुई क्यों, और ये चंदा चोरी हुई है तो इसके अंदर प्रॉपर प्रक्रिया में काम क्यों नहीं हो रहा है, एसआईटी बनी है तो एसआईटी कॉम्प्रोमाइज क्यों नजर आ रही है। एसआईटी जो है उसने 5 जून को जो चंपत राय ने जो पैसे पकड़े थे उस समय का उस चीज का उल्लेख किया है, लेकिन ये एफआईआर 25 तारीख को क्यों होता है, 5 जून को एफआईआर क्यों नहीं हुआ। चंपत राय का नाम और अनिल मिश्रा का नाम, गोविंद गिरी का नाम, गोपाल राव का नाम, वो एसआईटी की रिपोर्ट में क्यों नहीं है, वो एफआईआर में क्यों नहीं है। तो ये एसआईटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, 100 करोड़ हिंदू जनता जो राम भक्त है वो जानते हैं कि ये चोर हैं,
1: यही
4: और सभी चोरों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं तो
1: यही बात, आशुतोष,
4: इन्होंने राम मंदिर को एटीएम बना करके
1: जो मुद्दा यहां पर चर्चा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आशुतोष आप एक राजनीतिक एनालिस्ट के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस बात को जरा समझाइए, यही बात मुझे रोहित सिंह जी से भी समझनी है। जब तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी चंदा चोरी के मामले पर बात कर रही है तब तक वो आगे हैं। जैसे ही बात सनातन और आस्था की शुरू हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है अब तो ये जाल में फंस गए। उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ हर दिन नहीं छोड़ रहे इस मुद्दे को, कभी अयोध्या लेकर आते हैं, कभी 2003 का मामला लेकर आते हैं, कभी कोई और चीज लेकर आते हैं, कभी नमाज का मुद्दा लेकर आते हैं, कभी कब्रिस्तान का मुद्दा लेकर आते हैं। कहीं चंदा चोरी छोड़कर आस्था में घुसने की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो नुकसान नहीं हो रहा है?
5: देखिए साहिल, मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले तुलसीदास की एक चौपाई में पढ़ देता हूं, जिसको समझना होगा वो समझ लेगा। धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोलहा कहो कोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओई, मांग के खैबे मसीद को सोइबे, मसीद माने मस्जिद, मांग के खैबे मसीद को सोइबे, लेने को एक न दई न दईबे को दो। यानी तुलसीदास जी मस्जिद से उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं मांग के खाएंगे और मस्जिद में सोएंगे। ये जो नए राम भक्त बने हैं इनको मस्जिद से प्रॉब्लम है, और ये दरअसल असली मुद्दा इसी बात को लेकर ये है। आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और वो मुद्दा क्या है, कि जो लोग मंदिर निर्माण के बाद 2 साल भी राम मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो लोग हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे करेंगे? ये बड़ा मुद्दा बनेगा और बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि ये सवाल मैं जब लोगों से बात करता तो लोग यही कहते हैं, अरे 2 साल के अंदर मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए, ये हिंदू समाज की सुरक्षा क्या करेगा? इसलिए मेरा कहना है, आज की तारीख में अगर आपने आरपी सिंह को सुना होगा और आशुतोष वर्मा को सुना होगा, एक कह रहे हैं कि रामराज्य जो था वही समाजवाद था और एक कह रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है। अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है वो समाजवादीकरण हो रहा है और भारतीय और समाजवादी पार्टी का भाजपाईकरण हो रहा है।
1: वो आपने 3 इडियट्स देखी होगी आशुतोष, 3 इडियट्स देखी होगी, 3 इडियट्स में गाना है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ये पूरा कंफ्यूजन है। ये समाजवाद और सनातन का जो मिश्रण किया जा रहा है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दे रही है ना, यही तो मेरा सवाल है कि जब तक चंदा चोरी का मामला था तब तक ठीक था, आस्था में घुस गए उसके बाद मामला पूरा बदल गया है।
5: साहिल अब दिक्कत कहां पे हो रही है? दिक्कत इस बात को हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मुलायम सिंह यादव से प्रॉब्लम थी तो उनको पद्म अवार्ड क्यों दिया, अगर वो हिंदू विरोधी थे, अगर वो नमाज पढ़वाते थे, है ना, अगर उनको गोली चलवाने से प्रॉब्लम थी तो नृपेंद्र मिश्रा को जिन्होंने गोली चलवाई थी उनको आपने मंदिर निर्माण का अध्यक्ष क्यों नियुक्त कर दिया? इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि तब की राजनीति अलग थी, अब की राजनीति अलग हो गई है। तो जो असली राम भक्त है उनको मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नकली राम भक्त है उनको मस्जिद से प्रॉब्लम है। यह मैंने तुलसीदास की चौपाई सुना दी आपको,
1: रोहित सिंह
5: से, मांग के खाइबे मस्जिद को सोइबे, लेने को एक न दईबे को दो,
1: ठीक है रोहित,
5: मांग के खाएंगे मस्जिद में सोएंगे।
1: जो सवाल आशुतोष को मैंने पूछा था वही सवाल आपके पास भी।
6: देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने स्वामी जी से मुलाकात करके समाजवाद को सनातन और सनातन को समाजवाद का जो नया परिभाषा देकर उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता को अपने जाल में फंसाने के षड्यंत्र का शंखनाद किया है, उसमें उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता फंसने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय सम्मानित समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव जी से प्रश्न कर रही है कि पूज्य स्वामी जी जिनका दर्शन आप लखनऊ में करने गए थे, उनको सितंबर महीना वर्ष 2015 में गणेश मूर्ति विसर्जन के समय आंदोलन के क्रम में दौड़ा दौड़ा कर क्यों पिटवाया था और बतुकों को क्यों दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया था? उस समय आपका समाजवादी सनातनवादी परंपरा का परिभाषा किस खेत में चल गया था बीज के रूप में नया पौधा बनने के लिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के प्रति इतने चिंतनशील समाजवादी पार्टी के अगुआ हो गए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश देश और दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबी ये पूछना चाहते हैं कि हम कसम कृष्ण की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे के साथ भगवान कृष्ण के वंशज होने का झूठा दम्ब भरने वाले समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव आगे आएंगे कि नहीं? और तीसरा प्रश्न, जब परम श्रद्धे स्वर्गीय कांसी राम जी के साथ उस समय के तत्कालीन समाजवादी पार्टी के अगुआ और भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन हुआ था और तथाकथित समाजवादियों ने एक नारा दिया था, मिले मुल्ला मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम,
1: ये मुल्ला आपने ऐड किया है रोहित सिंह जी, नारा तो मैंने भी सुना था,
6: समाजवादी पार्टी
1: मुल्ला मेरे ख्याल से आप ऐड कर रहे हो उसमें,
6: तो बोल नहीं रहे थे मुल्ला नहीं है तो क्या है मुलायम सिंह यादव?
1: रोहित सिंह जी नारा तो ठीक दीजिए ना, आपकी भूमिका ठीक है, आपको जो भूमिका रखनी है रख सकते हैं, एक मिनट जरा रुकिए उनको, रोहित सिंह जी रुकिए जरा,
6: चाहते हैं तो सुनिए,
1: नहीं रुकिए,
6: आपत्तिजनक लगे तो लगे,
1: नहीं नहीं आपत्तिजनक की बात नहीं है, आपत्तिजनक की बात नहीं है, जरा रोकिए उनको, रोकिए उनको, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, मैं आपके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कम से कम जो नारा लगा था वो तथ्यों का नारा लगाइएगा, नारा ये लगा था मिल गए मुलायम कांशी राम, हवा हो गया जय श्री राम, ये नारा था, आप मुल्ला आप अपने तरीके से ऐड कर रहे हैं वो अलग से आप बोल सकते हैं, जो नारा था वो नारा कायम रखिएगा, नारा मत बदलिएगा,
6: साहिल जी
1: गलत नहीं जाना चाहिए, आशुतोष जी जवाब दीजिए,
5: दरअसल ये जो
1: आशुतोष जवाब दीजिए,
5: साहिल जी ये जो नारा था ये बहुजन समाज पार्टी का नारा था,
6: बोलने दीजिए ना 20 सेकंड,
5: क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी पर ये हमला नहीं कर सकते, आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव पर हमला, बहुजन समाज पार्टी पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि दलित वोट खतरा हो जाएगा, इसलिए उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा था, ये समाजवादी पार्टी का नारा नहीं हुआ था।
6: गलत मत करिए प्लीज आदरणीय साहिल जी,
5: प्लीज गलत ना कहिए
1: जी। बोलिए रोहित सिंह जी।
6: आशुतोष जी आप देश के बड़े पत्रकार हैं, लोग आपका आदर करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रेम में इतने दीवाने मत हो जाइए कि रास्ता भटक जाना पड़े आपको भी, आपका बड़ा आदर है देश में। आदरणीय साहिल जी दलित वोट बैंक की चिंता करने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 1995 के बहन जी के ऊपर कातिलाना हमले को भुलाने का काम नहीं किया है। और सुनिए गेस्ट हाउस में जो बहन मायावती जी के साथ दुर्घटना हुई उसको देश का दलित वर्ग कभी माफ नहीं करेगा।
1: ठीक है।
6: दूसरा प्रमुख बात, किस प्रकार से प्रमोशन में आरक्षण के बिल का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था। चौथा महत्वपूर्ण बात, आज आपके चैनल के माध्यम से दुनिया भर के सनातनी को मैं याद दिला दूं, आपने उस वीडियो को भी दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। आप चौथे स्तंभ हैं, आप खड़े हैं उसके साथ। आदरणीय समाजवादी पार्टी के जो अंकल सैम हैं, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर क्या कहा था, अयोध्या में राम जी जो हैं इलीगल ऑक्युपेंट हैं। इस पर अखिलेश यादव का क्या जवाब है? जवाब देना पड़ेगा, देश के सनातन धर्मावलंबियों का प्रश्न है। इस देश में अगर 550 सालों के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अपने घर में जाने के संघर्ष का विराम लगा
1: 9 साल सरकार में बिताने के बाद,
6: एक सेकंड साहिल जी, 10 सेकंड,
1: रोहित सिंह जी आपने सारे मुद्दे रख गए, लब्बो बुआ आपके समझ में आ गया सर,
6: प्लीज
1: 10 सेकंड गिन के, 10 सेकंड,
6: चलिए 10 सेकंड,
1: आखिरी 10 सेकंड, चलिए
6: 10 सेकंड। इस देश में 550 सालों की गुलामी से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को अगर किसी ने निकाला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई के निर्णय ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकात्य कर्म प्रधान वैचारिक विचार ने, तीसरा आरएसएस बीएचपी बीजेपी और वीएचपी के संघर्ष ने और जनता के त्याग ने, क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग।
1: तो ठीक है, चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है वो भी बता दीजिएगा 10 सेकंड में।
6: रामद्रोही रहेंगे,
1: ठीक है,
6: इनकी दो पीढ़ी
1: रोहित सिंह जी विरोध में निकल गई। चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है वो भी बता दीजिएगा 10 सेकंड में।
6: तीनू यादव जिम्मेवार है,
1: कोई संगठन नहीं,
6: तीनू यादव का गैंग जिम्मेवार है, तीनू यादव का इन्वॉल्वमेंट,
1: तीनू यादव कहां से आए थे,
6: तीनू
1: यादव को किसने बुलाया था,
6: एसआईटी जांच,
1: तीनू यादव को किसने बुलाया था, तीनू यादव किसके पास था, किसने तीनू यादव को वहां पर रखा था, चाबी किसने दी थी तीनू यादव के हाथ में,
6: मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था, मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था,
1: चलिए
6: मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था,
1: आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा,
6: ओके
1: रोहित सिंह जी आपका जवाब हो गया। आशुतोष जी
5: देखिए साहिल, ये जो तीनू यादव का नाम लाया जा रहा है ना, ये पूरी तरीके से कास्टिस्ट लाइन है, बहुत ही घटिया किस्म की कास्टिस्ट लाइन है। इसमें अविनाश शुक्ला का नाम नहीं लिया जाएगा, इसमें अनुकल्प मिश्रा का नाम नहीं लिया जाएगा, लवकुश मिश्रा का नाम नहीं लिया जाएगा, करुणेश पांडे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ तीनू यादव को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इससे ज्यादा घृणित जातिवादी राजनीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप विशेष को करना चाहते हैं और आप अविनाश शुक्ला को बचाना चाहते हैं, अनुकल्प मिश्रा को बचाना चाहते हैं, लवकुश मिश्रा को बचाना चाहते हैं, करुणेश पांडे को बचाना चाहते हैं। ये बहुत ही घृणित और बहुत ही घटिया किस्म की जातिवादी राजनीति है, सिर्फ तीनू यादव को आइडेंटिफाई करना,
1: ठीक है,
5: और ऐसे ऐसे ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूँ आपके चैनल के ऊपर।
1: चरण सिंह सप्रा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है आशुतोष जी, चरण सिंह सप्रा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं।
4: नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि रोहित सिंह जी ने इतनी सारी बातें की रामद्रोह की, इन्होंने बातें की है तो रामद्रोह, तो ये जो चोरी हुई है तो ये रामद्रोह किसने किया है, ये कौन लोग थे, ये तो सभी वही लोग थे ना, तो जो बीजेपी प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किए हुए लोग थे, इनके नजर के नीचे ये रामद्रोह हुआ, ये राम के मुखौटे के तले रावण थे, इन रावण का क्या इलाज करना इस पर आप चर्चा नहीं करोगे, आगे पीछे की सारी बात करोगे बीजेपी के, अब ये बीच में बोलेंगे, अब ये देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था,
1: ठीक है, सुनिए समय खत्म हो रहा है, आखिर में
4: सुनने
1: का मेरे पास ठीक है, आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा ठीक है, बाकी को शांत करिएगा, आरपी सिंह और आशुतोष वर्मा आखिर में, एक एक मिनट मेरे पास बचा है। आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी की लाइन अब सनातन के आधार पर ही आगे खींचेगी, क्योंकि आपके पास राम राम मंदिर का मुद्दा मिला है आपको?
0: समाजवादी पार्टी की लाइन पीडीए थी, पीडीए है और पीडीए ही रहेगी। इसकी कोई भी कितनी भी व्याख्या कर ले, समाजवादी पार्टी ने हर बार पीडीए में पहला वर्ड पीड़ित बताया है और जो पीड़ित है वो पीडीए का पी है।
1: ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह जी देखिए, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी इसके अगले कुछ महीने क्या हमें एक बार फिर 2003, 1993, 1995 यही सब बातें सुनने मिलेगी? पूरी जो आपकी कैंपेन है क्या इसी तर्ज पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब सनातन की राह छोड़ने को तैयार नहीं है लगता?
3: नहीं, वो जो सनातन को समाजवाद से कंपेयर कर रहे हैं वो गलत है। सनातन और समाजवाद वो एक जैसा करें, गलत है। इनके मुंह से एक शब्द निकला जब सनातन को एचआईवी एड्स कहा गया था, जब ये कह रहा था गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं, इनके खड़गे साहब कह गए थे गंगा के डुबकी लगाते हैं उसका ख्याल है, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया था। तो ये क्या कि इनके लिए ये नया अडंबर है, ये गिरकेट है जो रंग बदल चुकी है। वो चुनाव के चलते हुए सब रंग बदल रहे हैं, इनको दिख रहा है कि ये चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए कर रहे हैं। परंतु मेरी बात नोट कर लेना, लोग समझते हैं कि असल और नकल में क्या फर्क है, कार्बन कॉपी और असली कॉपी में क्या फर्क है, लोग सब समझते हैं। ये जो घटना हुई इसके ऊपर पूरा एक्शन होगा, वापस रिपीट करो, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा।
1: 15 जुलाई का इंतजार
3: फर्जी सनातनी
1: हमें हमेशा रहेगा, और इस बात का भी इंतजार रहेगा कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास, महंगाई, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय, इन सब पर भी कहीं ना कहीं बातचीत हो। धर्म और मजहब पर कम ही बात होगी, ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से।
3: इंडियन क्रिकेट ने अगर कोई गोट देखा है तो आज मैं उनके सामने बैठा हूं। वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
4: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट, इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली।
3: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बज रहा है?
4: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है,
3: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है,
4: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए।
3: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
4: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते हैं,
3: जॉन मैकेनरो।
4: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज्यादा जोशीले हो जाए। आई लव टू प्रूव पीपल रॉन्ग।
5: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का है। लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वेयर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
6: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत सोना मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था।
1: ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच और जबरदस्त सियासी विवाद के बीच जब सीएम योगी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे तो विरोधियों पर उनके तेवर हमेशा की तरह ही आक्रामक दिखे। जनसभा में फिर सीएम योगी ने अयोध्या की एक और पुरानी घटना का जिक्र किया। इस बार हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का हवाला देकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया।
0: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या?
2: दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर विवाद ने यूपी के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सूबे की सियासत में इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, वहीं योगी जवाबी हमलों के जरिए हिंदुत्व वाली राजनीति को धार दे रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए वाली रणनीति के जरिए चुनावी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। अब चढ़ावा चोरी ने समाजवादी पार्टी के हमलों को नई धार दे दी है।
1: एसआईटी क्या लीपा पोती एसआईटी किससे मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
2: यूपी के चुनावी रण से पहले ये विवाद बीजेपी के लिए इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकुंभ और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे पार्टी की राजनीतिक पहचान और विकास मॉडल का अहम हिस्सा रहे हैं। अब चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद विपक्षी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लिहाजा सीएम योगी न केवल विपक्ष पर जवाबी हमला बोल रहे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी की पीडीए वाली रणनीति पर भी काउंटर अटैक कर रहे हैं।
3: हो गया
2: राम मंदिर चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद सीएम योगी ने फौरन ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बीच सियासत सियासी जंग भी बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: अयोध्या में चोरों ने राम जी का चढ़ावा क्या चुराया, राजनीति को ऐसी आग लगी है कि लपटे कम नहीं होते। एक तरफ विपक्ष है जो चढ़ावा चोरी के आरोप में ट्रस्ट से लेकर बीजेपी संघ सरकार सबको खींचता है, दूसरी तरफ सीएम योगी है जिन्होंने सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने के लिए चारों तरफ से घेर रखा है। पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी ने राम मंदिर चोरी का सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जितने हमले किए उसमें नया चैप्टर हनुमान गढ़ी का खुला है।
1: इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? ये
0: पुलिस करा रही थी। दावा यही है कि सरकार के इशारे पर हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज की कोशिश तब की गई थी। सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में तथ्य सामने आए कि ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से दोस्ती थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे। उस साल भी इफ्तार आयोजित की गई और चटाइयां हनुमानगढ़ी के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन फैजाबाद के एसएसपी ने इसे हटवा दिया। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराई गई थी। बाद में यह मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की तरफ से हाईकोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिलाई।
2: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है। वो हनुमान जी को राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। हनुमान जी का नाम उन्होंने कब लिया? कब की बात बता रहे हैं आप? हनुमान जी के विषय में उन्होंने कब रामायण हनुमान चालीसा बातें कही?
0: दरअसल अयोध्या के कांड को समाजवादी पार्टी आस्था को चोट का मुद्दा बनाती है और खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ती है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया है कि सनातन ही समाजवाद है, और इसी सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं। बीजेपी तो सोशल मीडिया पर समाजवादी सनातन के इतिहास के पन्ने तक दिखा रही है।
3: बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो नहीं मार सकता।

0: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
1: सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
0: इन बयानों और इतिहास की घटित अघटित घटनाओं का हवाला देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी को हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश करते हैं, ताकि इन चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी के कांड पर बीजेपी बैकफुट पर ना आ सके। आज तक ब्यूरो।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।
3: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, बने रहिए आज तक के साथ।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Acoj, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: का विपक्ष पर हल्ला बोल, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि को बदनाम। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन लिया वापस, पारिवारिक कारण से निर्णय, 13 जुलाई पर्चा भरने का अंतिम दिन। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, कल भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। 20% एथेनॉल नीति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुरानी गाड़ियों के लिए सादे पेट्रोल के विकल्प की मांग, बिना जानकारी मिश्रित पेट्रोल बेचने को बताया ग्राहक के अधिकारों का हनन। और बैंक खाते में करोड़ों की रकम फ्रीज करने के ईडी के निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंचा ममता का गुट, प्रवर्तन निदेशालय पर मनमानी का आरोप, सोमवार को सुनवाई संभव।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: एकोजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: जिसमें कि मेरी एवरेज जो पहले जितनी आ रही थी उससे कम एवरेज अभी आ रही है सर।
1: माइलेज पर कितना असर दिख रहा है आपको?
2: सर 5-10% का।
1: इतना गिरा है? सरकार कह रही है कि 3-5% मैक्सिमम हो सकता है लोग जो पर
2: 5-10% है सर।
1: नहीं चल रहा है कोई किसी तरह की कंप्लेन माइलेज में इंजन में किसी तरह की?
3: पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है, बाइक बर्बाद।
4: सच पे पर्दा डालने का काम तो सिर्फ नेतृत्व करता है। लॉबी से प्लांट करवा रहे, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे, कितना झूठ बोलो के भाई। आम आदमी परेशान।
5: पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है।
6: ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, दे आर द पीपल हु सर्विस द कार्स, दे ऑल से देयर इज नो डिफिकल्टी। नाउ व्हाई दिस सडन इंटरेस्ट?

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेट्रोल में इथेनॉल का सच क्या है? आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ है। अब देखिए क्या है ये E20 पेट्रोल, यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर घमासान छिड़ा रहा है। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा कहा कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए करना जरूरी है, क्योंकि हम कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% जो है वो हम आयात करते हैं, बाहर के देशों से लाते हैं, हमारे पास नहीं है कच्चा तेल। ऐसे में हमें अगर हम उसमें इथेनॉल मिलाएंगे तो हमें फायदा होगा। तो सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए E20 पेट्रोल की नीति लागू की थी। वैसे तो ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति मोदी सरकार से पहले की है, लेकिन साल 2013-14 में 1.5% ब्लेंडेड पेट्रोल के मुकाबले अब 20% ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 बिकता है। लेकिन इस मसले पर विरोध पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज हो गया है। विरोध में गाड़ी की माइलेज घटने, इंजन पर असर पड़ने जैसे तमाम दावे किए जाते हैं। इस बीच ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अब ये संस्थान क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको सरकार ने भी पहले कोट किया था कि वो 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर पहले साथ थी सरकार के इस E20 को रोल आउट में। लेकिन अब इसी संस्थान की एक अप्रकाशित रिपोर्ट जिनको अखबारों ने छापा है, ये अनपब्लिश रिपोर्ट है, उसमें एक तरह से आप समझ लीजिए आग में घी का काम किया है। ARAI वो संस्था है जिसने E20 रोल आउट को सही ठहराया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि E20 पेट्रोल को E10 कंप्लायंट गाड़ियों, यानी मोटे तौर पर समझिए कि पुराने इंजन वाली गाड़ियों में डालने से इंजन के रबड़ वाले हिस्से जैसे होजेस, गैस्केट्स और सील्स जो है, ओरिंग्स हैं, वो खराब होते हैं, यानी एक तरह से जो सामान इस्तेमाल होता है गाड़ी में उस पर असर पड़ता है। इसीलिए आज हम हल्ला बोल में ये सवाल उठा रहे हैं कि एथेनॉल वाला पेट्रोल क्या फायदे का सौदा है या नहीं, ब्लेंडेड पेट्रोल के फायदे बनाम नुकसान में कौन कितना सच बोल रहा है, यही आज हल्ला बोल का विषय है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। गाड़ी कितना माइलेज देती है? भारत में कार मोटरसाइकिल चलाने वालों का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। इस सवाल को गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने विज्ञापनों में खूब भुनाया है, लेकिन अब यही सवाल राजनीति की बहस में है। वजह बना है E20 पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला हुआ गाड़ी का ईंधन। पहले सोशल मीडिया, फिर विपक्ष ने E20 पेट्रोल पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। सवाल गाड़ी की माइलेज पर है, चिंता गाड़ी के इंजन की सेहत पर है, वार पलटवार E20 लागू करने के तरीके पर है, आरोप एथेनॉल के नाम पर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत पर है, और पूछा ये भी जा रहा कि अगर 20% एथेनॉल मिला हुआ है तो पेट्रोल पंप पर कीमतें क्यों नहीं घटी हैं? सरकार की E20 नीति पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधने की कोशिश की है। दोनों मंत्रियों ने आरोपों और चिंताओं को खारिज किया है।
1: देखिए, देर आर 20 करोड़ टू व्हीलर्स ऑन द रोड, देर आर 20 लाख फोर व्हीलर्स यूजिंग दैट फ्यूल ऑन द रोड, देर आर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, देर आर द पीपल हु सर्विस द कार्स, दे ऑल से देर इज नो डिफिकल्टी। नाउ व्हाई दिस सडन इंटरेस्ट?
2: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता, क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
2: जी,
3: आपको कोई तकलीफ हुई
2: अभी तक?
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती आप मुझे?
2: अपना पर्सनल जान पहचान के?
3: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
2: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे।
3: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा।
0: E20 पेट्रोल पर शुरू हुई बहस पर पेट्रोलियम मंत्रालय फैक्ट शीट जारी कर चुका है। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि E20 से कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही E20 नीति को टेस्टिंग के बाद ही लागू किया गया है। लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में नहीं चूक रहा। विपक्ष के पास अखबारों में छपी ARAI की एक अप्रकाशित रिपोर्ट भी है, जिसमें माइलेज पर असर पड़ने की बात कही गई है।
4: 30 करोड़ व्हीकल्स इनका कबाड़ा हो जाएगा, 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो।
5: पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है, बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें पर कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पर गड़बड़ी कहां है ये सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है।
6: सच पे पर्दा डालने का काम तो सिर्फ नेतृत्व करता है। लॉबी से प्लांट करवा रहे हैं, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे भाई, आम आदमी परेशान है लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लीक हो गया परीक्षा में, टंकी लीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वोट लाने का एक मंत्र आपने डेवलप कर लिया।
0: E20 नीति के विरोधियों का सवाल इस बात पर भी है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। वैसे जब E20 पर सरकार को घेरा जा रहा, तब इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति न तो नई है और न अकेले भारत में लागू की गई है। इसीलिए असली सवाल यही है कि पेट्रोल में एथेनॉल का सच क्या है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिलीप पटेल जुड़ रहे हैं जो कि चेयरमैन एंड MD है पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, टूटू धवन ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, मनीष कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष कश्यप के ही एक वीडियो के इर्द गिर्द ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। वो एक एक्टिविस्ट भी हैं, इसी के साथ राजनीति से भी उनका वास्ता है। लेकिन मनीष कश्यप ने गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे पहले वीडियो डाला और बहुत बवाल मचाया। योगेंद्र प्रताप सीनियर एडिटर ऑटो टुडे के भी हमारे साथ इस चर्चा में जो रहे। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपका पक्ष जानने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, मनीष कश्यप जैसे लोग तो सामने डाल रहे हैं वीडियो, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है। और आपने भी देखा होगा किस तरह से अचानक एक जबरदस्त

0: मान लीजिए जो चावल सड़ रहा है एफसीआई के गोडाउन से, उसको यूज करने के लिए इथेनॉल बनता है। मान लीजिए शुगर केन और मोलासिस का जो बचा हुआ रेसिड्यू है उससे बनता है। तो इथेनॉल के लिए अलग से कोई पानी नहीं चाहिए रहता है। तो देश के अंदर मेजोरिटी 40% इथेनॉल मक्के के किसान से होता है, जिसमें वाटर इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रहती, जिसका रेट 1200 से बढ़कर 2400 हो चुका है, किसानों को फायदा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप उठा के देखेंगी, भले वो किसान की बात करूं, मिडिल क्लास की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं या गाड़ी की बात करूं, ये पूरा का पूरा जो चला जा रहा है कि भाई इससे खराब होने वाला है, कहीं तथ्यात्मक नहीं है। इसीलिए जब लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की बात आई थी, 25 लोग प्रोटेस्ट पे नहीं आए थे। 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा? गाड़ी को तो फायदा होगी, किसान को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा, पर बड़ी बात मैं आपको बताता हूं फायदा क्या होगा। 1,90,000 करोड़ जो हमारा बिल है वो कम होगा। साथ में कोई भी गाड़ी अंजना जी जो सड़क पर आती है, वो ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दी गाड़ी सड़क पर आ जाओ। 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी ब्लेंडेड पेट्रोल हो, कोई भी इंजन पार्ट हो, उसकी टेस्टिंग होती है, ब्रेक टेस्टिंग होती है, कंपोनेंट टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है, तमाम रिपोर्ट बनती है। जो रिपोर्ट को भी कोट किया जा रहा है, उस रिपोर्ट का फाइनल रिकमेंडेशन देखिए, वो फाइनल रिकमेंडेशन ये कहता है कि अप्रैल 2025 तक E20 ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाना चाहिए। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बात नहीं कर रहे, या फिर उनका कोई दूसरा एजेंडा हो सकता है। अगर तथ्यात्मक यहां बात करें तो ये देश के हित में, देश के मिडिल क्लास के हित में, देश का फ्यूल है।
1: ठीक है मनीष कश्यप जी, वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के हित में है, एजेंडा है क्या आपका कोई? इसके बाद अभय जी फौरन आ रहे हो।
2: मैं इनसे कहना चाहता हूं कि किसान बिल जब आया था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो उनका कुछ एजेंडा होगा, लेकिन किसान बिल जब इन लोगों ने वापस लिया तो बोला क्या कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस ले लिया गया। जो 20% इथेनॉल की ये लोग बात कर रहे हैं, 20% इथेनॉल के वजह से गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो 25-30% माइलेज कम हो रहा है, दूसरा उसका रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तीसरा गाड़ी झटका ले रहा है इंजन के स्पार्क प्लग में, फ्यूल इंजेक्टर में, और फ्यूल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से बाधित हो रहा है, चौथा जो इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है। तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। और बाकायदा ARI ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके, अभी E10 चलने देना चाहिए था।
1: डेटा कहां से दे रहे हैं कश्यप जी? आवाज आ रही है मनीष जी? ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने भी ARI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है, इनका लिखा जो एग्जैक्ट लाइन है मैं पढ़ रही हूं। इट हैज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशन ऑफ व्हीकल्स विथ E20 इंक्रीज्ड 2-6% कंपेयर्ड टू E10, यानी 2-6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में, ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए।
2: मेरे पास, मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस है, उसका एवरेज कहता है कि 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17-18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17-18 का एवरेज देता है। भारत में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ARAI जितना एवरेज कहे उतना देता हो, उसे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12-13 आ गया है, और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3-6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया जाए कि 3-6% क्यों डाउन हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये बता दिया जाए, 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है, एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है।
1: अब प्रदीप भंडारी जी,
2: 20% मिक्स किया जा रहा है तो उससे ज्यादा, ठीक है, उससे सस्ता क्यों नहीं दिया जा रहा पेट्रोल को?
1: ठीक है, और इथेनॉल वापस बाहर से क्यों ला रहे हैं
0: अंजना जी?
1: ठीक है, तीन उनके स्पेसिफिक सवाल है, जवाब दीजिए। हाँ
0: अंजना जी, मैं पहली बात तो ये व्यक्ति का जो वीडियो है उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी रिबट हो गया। अब ये कोई व्यक्ति घासलेट करके दिखाएगा, इथेनॉल या एडल्ट्रेटेड पेट्रोल यूज करेगा, उसके लिए आप कह नहीं सकते कि वो E20 है। तो पहले वो वीडियो उन्होंने जो चलाया है वो पूरी फेक न्यूज हो चुकी है, फर्जी वीडियो। अब दूसरा, ये आपके यहाँ पे भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं डिबेट के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा अगर ARAI की रिपोर्ट कहती है 20% माइलेज कम होता है। आज का स्टेटमेंट है ARAI के चीफ राजी मिथानी, और मैं कोट करना चाहता हूं, अंडर नॉर्मल

0: ऑपरेटिंग कंडीशन द रिडक्शन टिपिकली इज 2-6%. हाउएवर माइलेज डिपेंड्स ऑन. अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है. आप अपने बारी के अंदर बोलिए अपना. आपको टिकट में चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ. मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना. अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द रिडक्शन इज टिपिकली 2-6%. रियल वर्ल्ड माइलेज डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, रोड कंडीशंस एंड व्हीकल मेंटेनेंस. टू से दैट इट रिड्यूसेस माइलेज इज रॉन्ग. ये आज के हिंदू बिजनेस लाइन का है. तो मैं वापस से अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं कि अगर एआरआई की रिपोर्ट 20% माइलेज की बात करिए, सरेआम झूठ है. वो एक्सेलरेशन बढ़ने की बात करिए, 40% कार्बन एमिशन कम की बात करिए. दूसरी चीज अंजना जी, आज नहीं आया 20% ब्लेंडेड पेट्रोल. एक साल से 20 करोड़ टू व्हीलर देश के ग्राउंड पे चल रहे हैं. कितना फेलियर रेट है बताइए? 20 करोड़ टू व्हीलर में से क्या 100 गाड़ी का फेलियर रेट ये बता सकते हैं या 50 गाड़ी का बता सकते हैं? और उसका कारण सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है. एक साल से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल चल रहा है. हमने प्रोडक्शन की बात करी, 600 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन देश का था, वो बढ़ के 1200 करोड़ लीटर होने वाला है. तो कोई बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है, किसान का फायदा होने वाला है. किसान को 1,90,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला हुआ है. तो तथ्यात्मक बात करो, बताओ किसने कहा माइलेज कम हुआ है, बताओ कि एक्सेलरेशन कम कैसे होता है, और बताओ किसान का फायदा कैसे नहीं होगा. फैक्चुअल बात करो, इधर उधर की बात सोशल मीडिया पर डाल देना.
1: ठीक है, दो तीन बातें जो बिल्कुल फैक्चुअल है वो पहले रखते हुए अभय जी आपसे सवाल पूछूंगी. वही एआरएआई जिसने E20 के रोल आउट को सपोर्ट किया था, उसकी एक अनपब्लिश रिपोर्ट कुछ अखबारों में छपी है जिसमें यह कहा गया है कि 2-6% माइलेज जो है वो कुछ गाड़ियों में कम हो सकती है. उसी में लिखा गया है कि जो रबर पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टील या मेटल के अन्य पार्ट्स हैं उन पर असर नहीं हो रहा है. अब इसको जिस तरह से सोशल मीडिया पर या जिस तरह से आक्रमण हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है? और अगर है तो अपनी दलील दीजिए.
2: बिल्कुल, मैं टेक्निकली भी बात करूंगा. एक छात्र ने मुझे अभी आते वक्त मैसेज भेजा कि वो गाड़ी में पेट्रोल डलाकर मंदिर गया था ताकि उसका पेपर अच्छा, एग्जाम अच्छी हो जाए. इधर पेपर लीक हो गया, उधर गाड़ी खराब हो गई, और उधर मंदिर से चंदा चोरी हो गया. और उसने आगे लिखा है मैसेज में कि सबका मालिक एक गटपुरी महाराज. गटकरी जी और पुरी साहब दोनों ने बंटा ढार कर दिया इस देश का. अब मैं अंजना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी. ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है भाई, क्या बात करते हैं आप.
1: अंजना बोले बोले अंजना जी
2: एक अब मनीष कश्यप जी ने कहा और आपने भी कहा एवरेज कम. आप जानती हैं पेट्रोल का, एक लीटर पेट्रोल की एनर्जी होती है 34 मेगा जूल, और इथेनॉल की होती है 21 मेगा जूल. मतलब सीधे सीधे 30% का अंतर है. दूसरा बात, मनीष कश्यप जी ने कही कि मिस फायर कर रही है, झटके ले रही है गाड़ी बंद हो जाती. क्यों हो जाती? क्योंकि इथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक है. इथेनॉल एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. कम मात्रा में हो तो इथेनॉल उसको कंटेन करके रखता है, मिक्स हो जाता है. लेकिन अधिक हो जाए तो, चूंकि वाटर की डेंसिटी सबसे अधिक है तो वो सेटल हो जाता है. उसके बाद कम डेंसिटी इथेनॉल की है और सबसे कम डेंसिटी पेट्रोल की है. तो ये फेज सेपरेशन हो जाता है, तीनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए गाड़ी मिसफायर करती है, बंद हो जाती है. उसके बाद हरदीप पुरी जी ने कहा कि साहब वो तो रेसिंग कार्स में भी यूज होता है इथेनॉल. हाँ होता है साहब, बरसों से होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसकी ऑक्टेन रेटिंग 109 से 110 है, बहुत अधिक है. लेकिन उसका फ्यूल कंप्रेशन और इंजन का डिजाइन स्पेसिफिकली कन्वर्ट किया जाता है. हरदीप पुरी साहब, इस तरह कैसे नहीं होता है? ये कमिटी ने रिकमेंड किया था कि इसकी कीमत कम रखें. 1,00,000 पेट्रोल पंपों पर 2023 के पहले की 17 करोड़ गाड़ियां हैं जो चल रही है. और इसी एआरएआई ने, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, वो कह रहा है कि फ्यूल होज, फ्यूल पाइप, ओरिंग, गास्केट, सील, डायफ्राम, ये सब 2023 के गाड़ियों के चेंज करने की आवश्यकता है. इंजन के लिए वो कहता है फ्यूल इंजेक्शन कैलिब्रेशन, ईसीयू मैपिंग, कोल्ड स्टार्ट कैलिब्रेशन, इग्निशन टाइमिंग, एयर फ्यूल रेशो, ये सब चेंज करने की आवश्यकता है. इसके बगैर काम होने वाला नहीं है. दूसरी बड़ी बात, जिस ब्राजील का ये उदाहरण देते हैं साहब, वहां पर उन्होंने क्या किया? फ्यूल टैंक, फ्यूल पाइप, फ्यूल इंजेक्टर, वॉल्व सारे स्टील के हैं. वो और फेज्ड मैनर में उन्होंने 1970 से चेंज किया। अभी जो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये डेडलाइन थी वो, अरे साहब वो जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की थी उसको 22 में अमेंड कर दिया, वो एक्चुअली 2030 के लिए टारगेटेड थी। और ये सरकार ने जवाब दिया है अपनी लोकसभा के उसमें कि हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया, हमने स्टडी कराई, स्टडी में सब कुछ अच्छा पाया। और ये ARAI की रिपोर्ट क्या कह रही है, ये तो तमाचा है करा रहा आपके गाल पर। देश को क्या समझ दिया प्रयोगशाला आपने, हर क्षेत्र को बर्बाद करके छोड़ेंगे, कितनी शर्मनाक बात है।
1: ठीक है, छोटा सा जवाब प्रदीप जी, प्रदीप जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी। हंस रहे हमारे साथ सीनियर एडिटर ऑटो टुडे के जुड़े हुए
3: जी,
1: उनके लिए टीवी डिबेट आपके लिए बहुत ही रोचक और मनोरंजक होगा। रुकिए मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ प्रदीप, प्रदीप जी,
3: अंजना जी, अंजना जी, देश आपके शो को देखता है। 11/8/2005 का मणिशंकर अय्यर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट है और मैं जस्ट 10 सेकंड का प्ले करना चाहूंगा।
4: होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से ये कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट।
3: इथेनॉल प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे, इथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट। अभय जी को कुछ नहीं पता, तो ये अपने सरकार के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर पाई थी क्योंकि कांग्रेस इम्प्लीमेंटेशन में जीरो थी, हमने किया क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने वाले। दूसरा, अभय जी साइंस आपको आता नहीं है, जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाता है तो उसके बाद मॉइस्चर नहीं होता, इथेनॉल को अलग से नीड्स है ब्लेंडेड पेट्रोल। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, ये ARAI की रिपोर्ट फेक कोट कर रहे हैं जिन जिन ने भी करा है। ये आज का ARAI के चीफ का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड पब्लिक स्टेटमेंट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पुरानी गाड़ियों के ऊपर भी टेस्टिंग हो चुकी थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं पाई थी। मारुति सुजुकी ने 2,80,00,000 गाड़ियों पे टेस्टिंग करी पुरानी, और साथ में 1,50,00,000 जो है और पुरानी गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग करी है। तो आप कह रहे हो कि जो करोड़ों गाड़ियों पे, लाखों गाड़ियों पे टेस्टिंग हो चुकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो फर्जी है। एक फर्जी सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया किसी ने अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, जो करने साबित हो गया, तो देश का मूड है। कुछ तो साइंटिफिक बात करो यार, कुछ तो लॉजिकल बात करो। किसानों का विरोध कर रहे हो जी, कांग्रेस किसानों का विरोध कर रही है ये कहते हुए कि किसान के फ्यूल को नहीं यूज करना चाहिए। मक्के के किसान को 2,400 रुपए क्विंटल मिला, दिक्कत हो रही है। शुगर केन फार्मर को ज्यादा पैसा मिल रहा, दिक्कत हो रही है। धान के किसान की बचत को फायदा हो रहा है तो दिक्कत हो रही है। कितने बड़े किसान के विरोधी
1: क्योंकि मनीष कश्यप पर ज्यादा हमला है।
2: बहुत छोटा सा अंजना जी, इनके लिए किसान दो ही है, बाबा रामदेव और अडानी, उसके अलावा देश के नागरिक कोई किसान नहीं है। ये जो स्टडी है इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे ना, तो वो आपको आपको पता लग जाएगा जितनी बातें मैंने की है, जहां जहां इसको उपयोग किया है,
1: मेहमानों को भी दिखाइए, अन्य मेहमानों को भी दिखाइए। आज तो इथेनॉल भी कंफ्यूज होगा योगेंद्र प्रताप, इथेनॉल भी कंफ्यूज होगा कि मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन है क्या। जब यूपीए में मेरी चर्चा हो रही थी तो क्या मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और था, क्या इंडिया आते आते कुछ और हो गया। लेकिन फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं, फैक्ट्स पर क्या है फैक्ट्स इस मुद्दे को लेकर, और क्या वाकई कार्स को खतरा है, सीधी भाषा में, सरल भाषा में जो हमारे दर्शक समझे।
5: जो कार्स जिस फ्यूल के लिए डिजाइन की गई है उसी पे चलनी चाहिए। जो E10 के लिए डिजाइन करी है वो E10 पर चलनी चाहिए, जो E20 के लिए है वो E20, जो फ्लेक्स फ्यूल के लिए है वो पूरा E85 तक चल सकती है। ब्राजील में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, उनका बहुत पुराना हिस्ट्री है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, ओवर 50 इयर्स। और वो लोग डिपेंडिंग ऑन द प्राइस कि जब एथेनॉल का प्राइस कम होता है या गैसोलीन का प्राइस कम होता है पेट्रोलियम का, तो वो ब्लेंडिंग बढ़ाते रहते थे और कम करते रहते थे एथेनॉल की। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि E25 हम यूज करेंगे। फिर एथेनॉल के प्राइसेस और कम हो गए, पेट्रोलियम के प्राइसेस और बढ़ गए, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है इसे E25 को E30 ले जाते हैं। पर उन्होंने जो टेस्टिंग की, E25 की कार्स E30 पर नहीं चल रही थी, तो उन्होंने E25 से बढ़ा के टेस्टिंग करी तो E26 पे चली, E27 पे चली, उससे ऊपर पे नहीं चल रही थी ठीक, तो उन्होंने E27 स्टैंडर्ड सेट किया। हमारे देश में हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब हमारा पूरा कारपूल E10 पे अडेप्टेड है, तो या तो हम सब कार कंपनी से कहें कि इन सब कार्स को रीट्यून करें, इन सब कार्स के कंपोनेंट्स जो खराब होते हैं एथेनॉल से वो चेंज करें और फिर इनको E20 पे चल E20 पे चलाएं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हाँ हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग करने में फायदा है, ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है, हमारे इम्पोर्ट बजट्स कम होते हैं, फॉरेन करेंसी आउटगोज कम होते हैं, तो ओवरऑल इट्स अ विन सिचुएशन, बट जिस तरह से कर रहे हैं वो थोड़ा लॉजिकल और साइंटिफिक करना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूंगा कि एक तो फ्लेक्स फ्यूल कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, फ्लेक्स फ्यूल कार्स लाएं, E85 E100 तक भी कर सकते हैं वो करें, उसका प्राइसिंग मार्केट फोर्सेस पे छोड़ें कि किस प्राइस पे बिकना चाहिए, तो लोग बाग डिसाइड कर सकते हैं वो E10 डालना चाहते हैं, E25 डालना चाहते हैं, E85 डालना चाहते हैं, क्योंकि वेरी क्लियरली फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है एथेनॉल मिक्स करने से। और जो ये रेस कार्स वगैरह में कह रहे हैं कि यूज करते हैं, इट्स अ स्मॉल ब्लेंड, E10 यूज करते हैं फॉर्मूला 1 में, ऐसा नहीं है कि E85 पे चला रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, उसमें रेस कार्स में यूज करने का ऑब्जेक्टिव अलग है, उससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो अलग होते हैं, रेस कार्स को एफिशिएंसी के लिए नहीं चलाते हैं, रेस कार्स को पैसे बचाने के लिए नहीं चलाते हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग इज नॉट फॉर प्रूविंग एफिशिएंसी, है ना। सो काफी सारी चीजें जो अभय दुबे ने कही वो भी ठीक थी, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कही ओवरऑल वो भी ठीक है, बट हमें फेज मैनर में करना चाहिए इतनी।
1: और सबसे बड़ी है कि आप तैयारी कीजिए कि भाई E10 की तैयारी है आपके पास, तो E10 रोल आउट कीजिए, E20 की तैयारी हो जाएगी, हाँ तो फिर उस पे कीजिए। टूटू धवन जी एक सेकंड, मैं सबको पहले बोल लें एक बार, ये लोग चेहरा देखने तो आए नहीं है। टूटू धवन जी आप इसको कैसे देख रहे हैं और आप कास और उस पर E20 के असर पर क्या कहना चाहेंगे?
6: देखिए मेरे को तो यही समझ आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, जबकि हमारे को पब्लिक को कंज्यूमर को टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाई गई और सडनली उनको कह दिया कि ये पहली अप्रैल से आपको E20 ही डलवाना पड़ेगा। जब आपको E20 ही डलवाना था तो बाकी की जो आपको उसमें जो पैसे की तब्दीली है, जो कम पैसे खर्च होते हैं एथेनॉल डालने के बाद, तो वो भी तो आपको आगे पास ऑन करने चाहिए टू द कंज्यूमर टू बी एबल टू सेटिस्फाई हिम। ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपके पास और जो विकल्प थे पेट्रोल के, जो बगैर एथेनॉल के जो चल रहे थे ऑलरेडी, वो भी आपको रहने देने चाहिए थे जिसको नहीं इस्तेमाल करना E20, और वो ही इज वेरी हैप्पी विद स्पेंडिंग मोर मनी और हाई ऑक्टेन डालेगा, 95 ऑक्टेन डालेगा, 100 ऑक्टेन डालेगा एट वॉट एवर प्राइस इट इज अवेलेबल, तो आप उनके साथ रहने दीजिए। बाकी जो एथेनॉल जो आपने वाला पेट्रोल डाल रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट है ऑफ कॉस्टिंग, वो आपको कंज्यूमर को जरूर पास ऑन करना चाहिए टू बी एबल टू बी जस्टिफाई द फैक्ट कि आपको ये पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। ARAI की रिपोर्ट और ICAT की रिपोर्ट एंड ऑल्सो अदर टेस्ट हाउसेज जो गवर्नमेंट के हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं, दैट शुड बी मेड पब्लिक टू बी एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर। और एक बार कॉन्फिडेंस विन हो जाता है तो देन द चॉइस लाइज विद द कंज्यूमर हिमसेल्फ कि वो E10 या E20 वाला पेट्रोल डालना चाहे।
1: बिल्कुल दिलीप पटेल जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, आप पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं और आपका पूरा पर्पस है कि हम वर्ल्ड फूड और एनर्जी इश्यूज को सॉल्व करने की, आप इसको कैसे देख रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को, E20 जो सरकार लाई है?
7: नमस्कार सबको, मैं बिहार से हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अभी जो चल रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे, उसमें मैं देख रहा हूँ 80% फेक, 90% फेक, मजाक बना लिया लोगों ने, कुछ लोगों ने चीटी तक दिखा दिया उसमें, वो चीटी दिखा रहे हैं, आप समझिए कि एक एल्कोहल को स्प्रे कर देंगे तो सारा चीटी मर जाएगा, उसमें चीटी लगा दिया लोगों ने, तो 99% तो इसमें पूरा फेक न्यूज लग रहा, कोई भी तथ्य की बातें नहीं हो रही है, जितने भी सोशल मीडिया पे TRP के लिए हो रहा है और जो भी चीज हो रहा है, सोशल बेनिफिट क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बेनिफिट क्या हो रहा है, इंजन को क्या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी ने बोला 30% तक इसका वो गिर रहा है, माइलेज गिर रहा है, 30% किसका 30% गिर रहा है ये पहले क्लियर होना चाहिए, 80% उसमें पेट्रोल है, उसका 30% तो नहीं गिर रहा है, 20% इथेनॉल है उसका 30% हो रहा है। एवरेज माइलेज जितनी भी भारत में गाड़ियां आ रही है कार की, वो 20 किलोमीटर का माइलेज का आ रहा है। अगर 20 किलोमीटर में से आप 80% पेट्रोल हटा दें तो 16 किलोमीटर तो उसकी आ गई, ठीक है, पेट्रोल की 16 किलोमीटर आ गए। 20% जो माइलेज है जो वो सॉरी 4 किलोमीटर जो माइलेज है वो डिपेंडेंट है इस पे, इथेनॉल पे। वो 4% का 30% कम करेंगे आप 4 किलोमीटर का 30%, तो आपको 1.2 किलोमीटर 20 किलोमीटर में। तो ये पूरी समझने वाली नहीं है, ये मिथ फैला के और वो करके और मिसगाइड करके लोगों को, पब्लिक को भड़का देना, थोड़ा सा टीआरपी ले लेना, सस्ता जिसको बोलते हैं चीप वो, तो ये सब चीज के कारण थोड़ा सा
1: पब्लिसिटी कहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से पब्लिसिटी डिसाइड हो सकती है, वहां से टीआरपी नहीं मिलती है। लेकिन मनीष कश्यप जी देखिए, सब घूम फिर कर आप ही पर आ रहा है, और ये सच है, कई लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है, जिस तरह से उन्होंने चींटियां दिखा दी, मतलब इसमें जो रेसिडुअल शुगर्स होते हैं जो चीनी का मात्र, वो सब हटा दिया जाता है ये सब, लेकिन ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है। वो सीधा कह रहे हैं कि आपने पब्लिसिटी के लिए किया है, आपका जवाब इस पर।
8: देखिए, चींटी वाला जो न्यूज था वो तो एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले से चल रहा है, और चींटी को तो मैं भी नहीं मानता हूं कि चींटी लगेगा इस पे। लेकिन ये जो पटेल जी कह रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पहले अपने गिरेबान में झांक ले और उसके बाद से दूसरे पे उंगली उठाएं। ये एनवायरमेंट को इको फ्रेंडली और भी बहुत सारी चीजें ये बातें कह रहे हैं, जहां पे एथेनॉल का प्लांट लगाया जाता है वहां के लोगों की स्थिति क्या है पहले ये बता दे। मेरे मझवलिया में एक एथेनॉल का प्लांट लगा हुआ है, वहां पे लोग कितने परेशान हैं, ग्राउंड वाटर लेवल कितना प्रदूषित हो जा रहा है, और अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया भी कहीं का एक एथेनॉल प्लांट था और वहां के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एथेनॉल तो इको फ्रेंडली है नहीं, वर्तमान समय में जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। दूसरा चीज, एथेनॉल से माइलेज डाउन हो रहा है ये देश के लोग जवाब दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं। जर्मनी सबसे हाईटेक गाड़ी बनाता है, जापान सबसे रिलायबल गाड़ी बनाता है, चाइना सबसे कम दाम में सबसे अच्छा गाड़ी बनाने का दावा करता है, और अमेरिका में गाड़ी सबसे महंगा बनता है। ये चारों देश में एथेनॉल कितना परसेंट पेट्रोल में मिलाया जाता है जरा ये बता दे। दूसरा चीज, जब 2030 में एथेनॉल 20% आने वाला था तो उसे 2026 में क्यों लाया गया, तो ये सारी चीजें ये लोग बता दे। और 2023 के पहले की गाड़ियों का क्या होगा, ईमानदारी से ये लोग बता दे।
1: ठीक है, मिस्टर पटेल जल्दी से जवाब, फिर प्रदीप भंडारी जवाब देंगे।
8: के चैनल पे कह रहा हूँ
7: EBP20 प्रोग्राम आने से पहले गाड़ियों को एक लिमिटेड किलोमीटर पे टेस्ट किया गया है, वो टेस्ट का रिपोर्ट भी ये लोग चाहेंगे तो 100 रुपया का एक वो बनता है और उस पे डाउनलोड करके उनको मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा कि EBP20 प्रोग्राम क्या है, उसको पूरा केयरफुली कोई स्टडी करेगा, उसके बाद अगर बात करें, उससे बहस करेंगे तो दोनों को थोड़ा एक लेवल लगेगा।
1: ठीक है, प्रदीप भंडारी जी अब बॉल आपके कोर्ट में, वो सीधा सीधा कह रहे हैं मनीष कश्यप की आप लोग इसको भी वापस लेंगे।
3: देखिए, मैं वापस से तथ्यात्मक बात करूंगा। इनने जो वीडियो डाला था, ये वीडियो से तो सामने आ गया था कि इनने झूठा वीडियो डाला था। इनने खुद ने पेट्रोल के अंदर अडल्ट्रेटेड पेट्रोल को आप सामने दिखाया था, दिखाते हुए कि भाई ये E20 पेट्रोल है, जो सब सामने एक्सपोज हुआ, पूरी तरीके से झूठ हुआ। तो इन्होंने तो देश के किसान का नुकसान किया, बिहार का नुकसान किया, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो बिहार के किसान को हो रहा है, क्योंकि मक्का में बिहार तो सबसे आगे टॉप मोस्ट राज्य है। तो आज बिहार के किसान को 1200 रुपए के बजाय 2400 रुपए मिल रहा है, तो पता नहीं ये जो लोग बैठे हुए इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो किसान का। दूसरा बोला गया 2030 क्यों नहीं 2000 अभी, भाई जब देश के किसान का जो पिलफरेज है उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, अगर वो चीज हो गई तो उसमें दिक्कत क्या है। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट की फाइनल रिकमेंडेशन है कि 2025 अप्रैल तक आपको E20 करना चाहिए। तीसरी चीज, अंजना जी, मैं वापस से साइंटिफिक बात करूंगा, आज नहीं आया E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, इनफैक्ट E15 पे गाड़ी पिछले 3 साल से चल रही है। तो आज ही हम डिबेट 2026 में कर रहे हैं, मतलब 2023, 2024, 2025, 2026 तब से लेके आपका जो पेट्रोल है वो ऑटोमेटिकली E15 ब्लेंडेड है, E19 ब्लेंडेड है, E20 ब्लेंडेड है। मतलब पिछले 3 साल में देश पे 60 करोड़ टू व्हीलर जो है वो सड़क पर चल चुके हैं, 60 लाख से ज्यादा 4-व्हीलर इसको यूज कर चुके हैं, कहां किसी को कोई दिक्कत आई है, 0.00001% भी फेलियर रेट नहीं है। तो ये कहना कि सबकी गाड़ी खराब हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा रॉन्ग एजेंडा है, इससे हमारे देश को ना, देश के किसान को ना, मिडिल क्लास को फायदा होगा। अब ARAI की रिपोर्ट की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं अनपब्लिश रिपोर्ट को कोई दिखा दे, उसकी कोई वेरासिटी
0: नहीं है, जो आज ऑन रिकॉर्ड पब्लिक स्टेटमेंट है वो एआरआई चीफ का है। और कोई भी अंजना जी गाड़ी आती है वो कोई एक टेस्टिंग से थोड़ी जाती है, उसकी ब्रेक टेस्ट होता है, उसका क्रैश टेस्ट होता है, उसकी तमाम टेस्टिंग होती है और वो टेस्ट की रिपोर्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट की जाती है और उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। तो किसी गाड़ी का अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसकी माइलेज पर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी गाड़ी के अंदर 40% कार्बन एमिशन कम होंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह कहना कि अलग से इंजन को बनाना पड़ेगा यह सरेआम झूठ है। मैं वापस से कहूंगा, क्या टोयोटा, ह्यूंडई, जितनी भी तमाम देश की टॉप कंपनीज हैं, क्या उनने 40 लाख 50 लाख 2-2.5 करोड़ गाड़ियों पे जब टेस्टिंग करी, जिसमें अधिकतर गाड़ी पुरानी गाड़ी है, उसके बाद ये फ्यूल को ब्लेंड किया, आज नहीं एक साल पहले, तो क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? और वो सब अपना खुद का नुकसान करना चाहेंगे, लाखों गाड़ी मार्केट में ला के, जिससे चीज हो
2: कोरिया की है, टोयोटा जापान की है।
0: अरे भैया सब में तुमको नहीं पता कुछ, ह्यूंडई टू व्हीलर के अंदर है। अरे भाई तुम जाके मेरे भाई तुम पहले बताओ 30% माइलेज की रिपोर्ट की वेरासिटी बताओ। इसी बात आज तक के चैनल पे तुम अपने सोचने नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। अरे भैया तुम मेरे छोटे उम्र के हो, तुमको तुम बोलूंगा। चलो आप मनीष कश्यप जी जरा मुझे आप बताइए, आपने जो 20% माइलेज कम की रिपोर्ट है जरा दिखाइए, किसने कोर्ट करनी, वरना माफी मांगिए। आप या तो झूठ नहीं फैला सकते, आप बताइए 20% माइलेज कम की रिपोर्ट कोर्ट करिए, किसकी आपने कोर्ट करी, या तो
2: मेरी गाड़ी को देश के नाम से टेस्ट कर लीजिए, मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है।
0: गाड़ी में तुम अगर घासलेट नहीं लोगे और
2: मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है,
0: थोड़ी E20 हो जाएगा।
2: मेरी एक गाड़ी को लेके जाइए देश के नाम पे टेस्ट कर लीजिए, एक महीना टेस्ट कीजिए और उसके बाद से कह दीजिएगा मनीष कश्यप झूठा था।
1: ऐसे टीवी और ड्रामा और सोशल मीडिया वीडियो से तो तय नहीं होगा ना। ऑटो टुडे की तरफ से योगेंद्र प्रताप ने भी रखा, लेकिन फैक्ट्स रखा उन्होंने, कुछ भी सेल्फ वेरीफाइड, हम चैलेंज करते हैं 30 दिन का कर लीजिए और ऐसे ऐसे। मेरा आपसे ये सवाल है कि अल्टीमेटली ये 30% फ्यूल एफिशिएंसी में डिक्रीज है माइलेज में, इसका आधार क्या है?
2: अरे हो रहा है, रियल आधार यही है, रियल आधार यही। अब ये लोग चैलेंज कर रहे हैं कि भाई
0: इनको
2: AI ने बोला है क्या 2-6% डाउन हो रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में 20-30% एवरेज डाउन हो रहा है।
1: योगेंद्र प्रताप क्या इसका कोई आधार है? 30%
5: बिल्कुल, तो एग्जैक्टली 30% या कितना, ठीक है जैसे दिलीप पटेल ने बोला कि खाली हम लोग E10 में 10% एथेनॉल था, 20 में 20% है, बाकी तो सारा 80% है। पर इफ द कार्स आर नॉट ट्यून्ड फॉर दैट E20, देन द कार्स आर नॉट गोइंग टू रन वेल, राइट? इफ यू आर रनिंग अ E10 कार ऑन E20 एंड ब्राजील का
1: पूरी लड़ाई, तो बहुत ही ओवरऑल पूरी लड़ाई पेट्रोल की माइलेज पर है। वो कह रहे हैं कि ARAI की अब रिपोर्ट कह रही है कि E10 के लिए जो गाड़ियां तैयार थी वो अगर E20 पर चल रही है तो 2-6% की डेफिशिएंसी का अनपब्लिश रिपोर्ट कोट हो रहा है, लेकिन 30% रिडक्शन माइलेज में, ये कहां से आया?
5: E10 से E20 में 30% नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए रिडक्शन, बट ओवरऑल रिडक्शन तो होगा ही। अगर गैसोलीन से आप पेट्रोल से आप एथेनॉल पे जाएंगे, रिडक्शन होगा ही। सो E85 पे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 80 रुपीज 82 पे बेच रहे हैं E85, एंड उस पे भी जो हम लोगों ने टेस्टिंग करी, इट डजंट मेक सेंस टू स्विच टू
0: E85।
5: हमारी मैगजीन
0: E85 इज नॉट इवन गॉन इन द टेक्निकल इवोल्यूशन,
5: E85 का
0: पेट्रोल डिफरेंसिंग है। अरे व्हाई आर यू स्प्रेडिंग अ फेक न्यूज़? E85 रिक्वायर्स अ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, इट इज नॉट इवन गॉन टू टेस्टिंग।
1: अच्छा बारी-बारी हिंदी में गुस्से में अंग्रेजी में ना बोले। हाँ योगेंद्र,
5: दिल्ली में पेट्रोल पंप है जो E85 डिस्पेंस कर रहा है, हमने मोटरसाइकिल पे E85 डालकर फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल पर हमने टेस्टिंग करी और जो हमारी,
1: लेकिन वो जाहिर तौर पर योगेंद्र जी, वो जाहिर तौर पर योगेंद्र, वो फ्लेक्सी फ्यूअल कार्स के लिए है और अभी जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं उसी पर रहे तो सीमित तो ठीक होगा, क्योंकि अब E85 कोट करके अचानक से फिर ऐसा लगेगा कि E85 ही मिलेगा पेट्रोल पंप्स में, वो फ्लेक्सी फ्यूअल कार्स के लिए है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी एक सिंपल चीज है, E10 पेट्रोल फॉर E10 रेडी कार्स, E20 पेट्रोल फॉर E20 रेडी कार्स, ये सिंपल चीज है या नहीं है? मतलब इसमें कोई कैसे मिर्च मसाला या कैसे कोई सोशल मीडिया ड्रामा कर सकता है? ये सिंपल चीज है कि क्या हमारी गाड़ियां E20 के लिए तैयार है, नहीं है, और क्या सरकार ये कह रही है कार कंपनीज को कि आप E20 के लिए तैयार कीजिए? हाँ कह रही है, तो फिर क्यों कह रही है? इसीलिए कह रही है ना क्योंकि लॉजिक है, हम E20 रोल आउट कर दे रहे हैं और E20 के लिए रेडी नहीं है कार्स, क्या ये गलत है प्रदीप जी? सिंपल क्वेश्चन है।
3: हाँ अंजना जी, क्योंकि पिछले 3 सालों से देश में E15, E19 या E20 ब्लेंडेड पेट्रोल ऑलरेडी यूज हो रहा है। मतलब पिछले 3 साल से जितनी भी गाड़ी इस वक्त आपके मार्केट में सड़क पर चल रही है वो ऑटोमेटिकली E10 से ऊपर है। तो अगर ये इंजन कंपैटिबल नहीं होते तो फिर आपको एक मैसिव फेलियर रेट ऑफ मोर देन 10% दिखता। आज आप और मैं इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जाकर यहाँ पे कुछ भ्रांतियां फैलाई गई है, पर गवर्नमेंट ने तो कुछ पॉलिसी चेंज किया ही नहीं है। गवर्नमेंट तो E20 पे पिछले 1 साल से है और उसके पहले E15 पे, और उसके पहले E19 पे और उसके पहले E15 पे। तो E10 तो कब से पीछे चला गया है। हम तो पिछले 3 साल में 60 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां ऑलरेडी E20 के ऊपर हो चुकी हैं, E15 के ऊपर हो चुकी हैं। तो अगर ये कुछ दिक्कत होती इंजन के अंदर तो फिर ये रिपोर्ट होता, और एक स्टडी नहीं, मतलब 21 के बाद में 22, 23, 24 इतनी स्टडीज हो चुकी है। और नीति आयोग की रिपोर्ट जिसका एक उनने पार्ट चैलेंजेस का कोट किया, उसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या कहती है? उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन ये कहती है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग April 2025 तक करना चाहिए। और इसमें हमारा कुछ नहीं है, तो देश का फ्यूल है। मतलब जितना मक्का हो गया, चावल हो गया, शुगरकेन हो गया, उसका जितना भी बचा रेसिड्यू है जो कहीं वेस्टेज चले जाता था, उसको जाकर हम मार्केट के अंदर उससे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बना रहे हैं, जिसका पैसा किसान को मिल रहा है। तो किसान की आय बढ़ रही है, और गाड़ी का एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा तो फिर माइलेज कैसे कम होगी? तो माइलेज एक कॉन्टेक्स्चुअल चीज है जो ट्रैफिक पे डिपेंड करेगी, सड़क पे डिपेंड करेगी, बाकी चीजों पे डिपेंड करेगी। तो मेरा वापस से निवेदन है, अगर किसी के पास 30% माइलेज की रिपोर्ट है जरा दिखाएं, मैं खुद अपने आप को जो है देखना चाहता हूं, वरना झूठ मत फैलाएं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं।
2: अंजना जी, अभय जी, ये रिपोर्ट दिलवाई है इनसे। अंजना जी, कितनी शर्मनाक बात है, ARAI ने कहा कि RTI एक्ट के सेक्शन 81D के दायरे में नहीं आती, हम ये जानकारी नहीं देंगे कि किन व्हीकल पर टेस्ट किया। ये महाशय कह रहे हैं लाखों गाड़ियों पर, 8, 10, 80 लाख गाड़ी बता दी इन्होंने। अरे एक गाड़ी का नंबर दिलवा दीजिए जहां पर ये टेस्ट किया आपने। हाँ। शर्मनाक बात है, योगेंद्र जी ने पूरा खुलासा कर दिया, इनका पर्दाफाश कर दिया।
3: भाई,
2: जो गाड़ी टेस्टिंग डिजाइन नहीं है, आज 5 करोड़ वोट मोदी जी के अकेले भंडारी जी ने कम करा दिए, 5 करोड़ वोट, बाकी तो नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी ने बंटा
3: डाला।
2: भुगत रहे हैं साहब, एक बार जाइए सड़कों पर, कोई एक देश का उदाहरण दीजिए। देखिए घबरा जाते हैं तो बीच में बोलने लगते हैं, एक देश का, किसी एक देश का उदाहरण दीजिए। अमेरिका, अरे साहब बहुत घबराए हुए हो, देखो आपके जैसे प्रवक्ताओं ने बीजेपी को रसातल में डाल दिया है, याद रखिएगा, भुगतेंगे आप सड़कों पे। ये जो एक महोदय कह रहे थे कि RTI में जानकारी चलिए दिलवाइए इनसे, कल मैं अप्लाई करता हूँ, कोई इंडस्ट्री वाले बिहार वाले थे,
3: आप देश के किसान का
2: बेशर्मी से, अरे साहब
1: पेट्रोल में हर एक पॉलिसी का, दोनों पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश की है, दोनों तरफ से प्रश्न किए हैं, सरकार का अपना एक पक्ष है, जो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनका भी एक पक्ष है, दोनों पक्ष आपने सुना है, फैसला करना है। लेकिन ये जरूर है कि E20 के साथ, अब जब तक E20 के लिए गाड़ियां तैयार नहीं होती है, एक प्रश्न इस पर बना रहेगा। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो
3: अरे वाह तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है
4: हाँ क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना
3: गारंटीड रिटर्न्स तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना
4: अर्ज किया है
3: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं
5: वाह वाह वाह
3: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें
6: समझ कर इन्वेस्ट कर
7: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
5: पापा
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: बिलो तो चार्ज हुआ यार।
9: ओ ला बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: We are over, Jimmy.
15: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
16: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
17: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
18: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
20: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
21: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
22: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
23: पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
22: जी,
23: आपको कोई तकलीफ हुई
22: अभी तक?
23: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते हैं आप मुझे?
22: अपना पर्सनल जान पहचान के?
23: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
22: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे।
23: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, दो चार दिन कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई, ये टोयोटा कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह। तो उनने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तुमने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
22: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
23: आप ही बता। कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ। हाँ। अब FIR दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे। और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: गाड़ी कितना माइलेज देती है। भारत में कार मोटरसाइकिल चलाने वालों का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। इस सवाल को गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने विज्ञापनों में खूब भुनाया है, लेकिन अब यही सवाल राजनीति की बहस में है। वजह बना है E20 पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला हुआ गाड़ी का ईंधन। पहले सोशल मीडिया, फिर विपक्ष ने E20 पेट्रोल पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। सवाल गाड़ी की माइलेज पर है, चिंता गाड़ी के इंजन की सेहत पर है, वार पलटवार E20 लागू करने के तरीके पर है, आरोप एथेनॉल के नाम पर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत पर है, और पूछा ये भी जा रहा कि अगर 20% एथेनॉल मिला हुआ है तो पेट्रोल पंप पर कीमतें क्यों नहीं घटी है। सरकार की E20 नीति पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधने की कोशिश की है। दोनों मंत्रियों ने आरोपों और चिंताओं को खारिज किया है।
1: देखिए, देयर आर 20 करोड़ टू व्हीलर्स ऑन द रोड, देयर आर 20 लाख फोर व्हीलर्स यूजिंग दैट फ्यूल ऑन द रोड, देयर आर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, देयर आर द people who service the cars, they all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest?
2: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता, क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
2: जी,
3: आपको कोई तकलीफ हुई
2: अभी तक?
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती आप मुझे?
2: अपना पर्सनल जान पहचान के?
3: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
2: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे।
3: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियाँ, इसमें जो गाड़ियाँ जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा।
0: E20 पेट्रोल पर शुरू हुई बहस पर पेट्रोलियम मंत्रालय फैक्ट शीट जारी कर चुका है। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि E20 से कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही E20 नीति को टेस्टिंग के बाद ही लागू किया गया है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में नहीं चूक रहा। विपक्ष के पास अखबारों में छपी ARAI की एक अप्रकाशित रिपोर्ट भी है, जिसमें माइलेज पर असर पड़ने की बात कही गई है।
4: 30 करोड़ व्हीकल्स इनका कबाड़ा हो जाएगा, 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ, एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो।
5: पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है, बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें पर कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं, पर गड़बड़ी कहां है? ये सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है।
6: सच पे पर्दा डालने का काम तो सिर्फ नेतृत्व करता है, लॉबी से प्लांट करवा रहे हैं, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, कितना झूठ बोलोगे भाई? आम आदमी परेशान है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लीक हो गया परीक्षा में, टंकी लीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, वोट लाने का एक मंत्र आपने डेवलप कर लिया।
0: E20 नीति के विरोधियों का सवाल इस बात पर भी है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। वैसे जब E20 पर सरकार को घेरा जा रहा, तब इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति न तो नई है और न अकेले भारत में लागू की गई है। इसीलिए असली सवाल यही है कि पेट्रोल में एथेनॉल का सच क्या है। आज तक ब्यूरो।
7: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वह आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं,
8: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में है। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे। जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा। लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
9: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
10: जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस कुर्सी पे आप हो, आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो। और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं। कोई
8: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। आईआईटी बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना की बागीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन लिया वापस। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा होंगे नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, कल भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। 20% एथेनॉल नीति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुरानी गाड़ियों के लिए सादे पेट्रोल के विकल्प की मांग, बिना जानकारी मिश्रित पेट्रोल बेचने पर सवाल। और बैंक खातों में करोड़ों की रकम फ्रीज करने के ईडी के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा ममता का गुट, प्रवर्तन निदेशालय पर मनमानी करने का आरोप, सोमवार को सुनवाई संभव। शो की शुरुआत हम इस समय की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी के अभिषेक कुमार ने कल ही नामांकन भरा था, लेकिन अब पारिवारिक कारण से नामांकन वापस लेने की बात कही। सबसे बड़ी बात, कल ही नामांकन से पहले अभिषेक ने अपने परिवार का आशीर्वाद लिया था, जो कि बहुत खुश और भावुक नजर आया। बीजेपी ने अब नीरज सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है, जिससे जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब इस पर जमकर राजनीति हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब नीरज सिन्हा होंगे बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार।
1: पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
2: तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहां तक अभी पहुंच पाऊंगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहां पर उस पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली, तो अभी मैं यहां पर पहुंचा हूं।
3: वहां उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतर कला है, इतना द्वंद है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते कि उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।
0: शशि भूषण हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ हैं। शशि, क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों?
4: देखिए, सवाल का जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं सही जी, कि आखिर क्या हुआ कि कल ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन किया था, और आज उन्होंने अचानक से प्रदेश अध्यक्ष को जाकर के एक चिट्ठी सौंपी और कहा कि पारिवारिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस पहली को सुलझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बीजेपी ने ताबड़तोड़ मतलब फैसला किया। एक तो अभिषेक बंटी ने नाम वापस लिया, और वहीं तैयारी बीजेपी नेतृत्व ने कर रखी थी। चंद मिनटों के बाद ही नीरज सिन्हा का नाम सामने आ गया। नीरज सिन्हा भी एक सामान्य कार्यकर्ता है, जैसे अभिषेक बंटी रहे हैं। फर्क इतना है कि नीरज सिन्हा की उम्र कम है और वो अविवाहित है। दोनों के एजुकेशन में भी थोड़ा अंतर है। जो अभिषेक बंटी थे, उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी संस्कृत सेकेंडरी बोर्ड से, और नीरज सिन्हा ग्रेजुएट हैं। लेकिन इस पहेली के पीछे कोई कारण है जिनका खुलासा धीरे धीरे होगा। जो जानकारी हम तक मिल रही है, संभव है कि जो अभिषेक बंटी है, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको शायद पीछे लेने का फैसला किया। सही जी,
0: बहुत धन्यवाद शशि भूषण हमारे संवाददाता। और अब बिहार के बाद खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की। अयोध्या में चंदा चोरी पर विपक्ष की मोर्चाबंदी पर अब बीजेपी के बड़े पलटवार की तैयारी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इफ्तार पर अखिलेश यादव को घेरा, तो समाजवादी पार्टी के धर्म से जुड़े पुराने चैप्टर पर अब बीजेपी उसे फिर से खंगाल रही है।
5: चढ़ावा चोरी पर जारी हंगामे के बीच आज जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो हनुमानगढ़ी को लेकर एक नया सियासी चैप्टर खोल दिया।
6: इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या?
5: ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थीं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
7: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है। वो हनुमान जी को राम जी को जानने वाले कौन लोग?
5: अयोध्या कांड को समाजवादी पार्टी आस्था पर चोट का मुद्दा बना रही है और खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है।
8: सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है।
5: लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया है कि सनातन ही समाजवाद है। जवाब में बीजेपी सोशल मीडिया पर समाजवादी सनातन के इतिहास के पन्ने दिखा रही है।
9: बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता।

0: 대답을 할까 미약수 다 얻어라 라해라.
1: इन बयानों और इतिहास की घटनाओं का हवाला देकर सीएम योगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी को हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐन चुनाव से पहले चाहवा चोरी के कांड पर बीजेपी बैकफुट पर नहीं आ पाए। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया जा रहा था।

राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और

0: हमारे तीन जनरेशन बर्बाद हो गया है बंगाल का, तीन जनरेशन बर्बाद हो गया जिनके पास कुछ उनका अपॉर्चुनिटी था वो बंगाल से भाग के बाहर चले गए, ये वृद्धाश्रम बन गए हमारा सारे राज्य।
1: एक पार्टी एक टाइम कुछ दिन के लिए थोड़ा अपोजिशन में चला आया, इसके लिए अगर सीनियर लोगों को ऐसा सब चेंज, अभी ये खराब है वो खराब है, अरे जब चीफ मिनिस्टर थे ममता बनर्जी तब अब कुछ छोड़ा नहीं।
2: संसदीय नियमों के मुताबिक सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बड़ाइक का कार्यकाल सितंबर 2029 तक था, जबकि सुष्मिता देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक चलना था। अब इन खाली सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और टीएमसी छोड़ने वाले यही तीन नेता उम्मीदवार हैं।
3: अब होते ही ये लोग ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, ठीक है विश्वासघात तो लोग देख रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं नायक क्या बोलना चाह रहा है।
2: उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो नंबर गेम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 208 विधायक हैं। तीन सीटों वाले इस उपचुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए लगभग 70 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो बिना किसी बाहरी समर्थन के अपने तीनों उम्मीदवारों को आसानी से 70, 69 और 69 वोट दिला सकती है। इस गणित के हिसाब से बीजेपी की तीनों सीटों पर जीत पूरी तरह पक्की मानी जा रही है। साफ है कि इस कदम के साथ बीजेपी ने ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका दे दिया है। आज तक ब्यूरो।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में आज प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचे, लेकिन कूटनीति के गलियारों में हलचल अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की ही है, जहां उनकी क्रिकेट डिप्लोमेसी की चर्चा खूब हो रही है।
5: प्रधानमंत्री मोदी और पीएम अल्बनीज ने ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग के इतिहास का पहला विदेशी मुकाबला अब भारत की धरती पर खेला जाएगा। आगामी 12 दिसंबर को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न रेनगेट्स के बीच बीबीएल सीजन का ओपनिंग मैच होगा।
6: मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। इस वर्ष भारत में मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता और ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना।
5: मेलबर्न की धरती पर दोनों देशों के रिश्तों को क्रिकेट की भाषा में समझाते हुए पीएम मोदी ने जो कहा वो इस पूरे दौरे का निचोड़ बन गया।
6: डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी, आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे।
5: ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट डिप्लोमेसी के बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे। ऑकलैंड में खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। ये 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम की न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहीं कई डील को हरी झंडी दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
4: बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं और इस अवसर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,00,000 के खातों में ट्रांसफर कर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हम आपको ये बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को अब 1100 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेज दी जाती है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन

0: का भुगतान अब हर महीने की 10 तारीख को कर दिया जाएगा।
1: एक एक व्यक्ति को चिन्हित करे, सैनिटाइज करे, पंचायत में जो बैठक हो उसमें भी लोगों से पूछे कि कौन लोग छूट गए हैं, जिनको पेंशन देने की जरूरत है, सबको जोड़कर, सबके बैंक अकाउंट को जोड़कर उनके खाते में 1100 रुपया प्रत्येक माह जाए, इसको इंश्योर करना है। मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आज लगातार 10 तारीख एकदम डेट फिक्स करके सभी दिव्यांगजन, विधवा बहने और हमारे जो वृद्धजन हैं, 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है, ये सरकार के तरफ से तय है।
0: फिल्म अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में दोबारा जेल जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दोष सिद्धि को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के सभी 7 मामलों में 3-3 महीने के साधारण कारावास की राजपाल यादव को सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल 3 महीने की ही सजा भुगतनी होगी। अदालत ने हर मामले में 1,05,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह 7 मामलों में कुल जुर्माना होता है 7,35,00,000 रुपए। अदालत के आदेश के अनुसार प्रत्येक मामले में 1,04,75,000 रुपए शिकायतकर्ता को और 25,000 रुपए राज्य को अदा किए जाएंगे। राजपाल यादव ने 2010 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम तो पता नहीं लेकिन फिल्म का नाम था लापता, जिसके लिए राजपाल यादव ने 5,00,00,000 रुपए का लोन लिया था। हालांकि राजपाल यादव का कहना था कि ये एक इन्वेस्टमेंट था। राजपाल यादव ये लोन चुका नहीं पाए और ये बढ़कर 9,00,00,000 रुपए हो गया। इसी केस में राजपाल यादव 5 फरवरी 2026 में तिहाड़ जेल गए थे, उन्होंने सरेंडर किया था। खैर आगे बढ़ते हैं, ये खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है जहां एक एनकाउंटर हुआ। गुरुग्राम पुलिस ने विदेश में बैठे दीपक नांदल गैंग के 4 गुर्गों को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में 17 वर्षीय एक लड़के की मौत ने पुलिस पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
2: सादी वर्दी में आधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रही हरियाणा पुलिस की टीम ने एनकाउंटर में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया, वहीं एक बदमाश घायल है। दीपक नांदल गैंग की ओर से विदेश से रियल एस्टेट कारोबारी को धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद गैंग के लोग कारोबारी के घर पे हमला करने पहुंचे। कारोबारी की तरफ से तुरंत पुलिस को कॉल कर दी गई और पुलिस टीम ने पौश इलाके सुशांत लोक की घेराबंदी कर दी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई।
3: क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको रोकने के लिए उनको बोला, लेकिन उन लोगों ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई।
2: हमलावरों के पास आधुनिक
0: व्यापार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 828 अंक मजबूत होकर 77,569 और निफ्टी 244 अंक चढ़कर 24,207 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेत के चलते देखने को मिली है। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में भी आज बढ़त देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 95.31 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। रुपए में बढ़त डॉलर की कमजोरी और घरेलू कारण के चलते हुई है। वहीं सराफा बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। सोना 159 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,43,815 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,780 रुपए टूटकर 2,22,014 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोने चांदी में मिश्रित रुख वैश्विक दाम के उतार चढ़ाव के चलते हमें देखने को मिल रहा है। और अब खबर स्पोर्ट्स की, जहां टीम इंडिया के प्रदर्शन ने हर किसी को हैरान कर दिया। लगातार हार के बाद अब बीसीसीआई टीम इंडिया के खेल की समीक्षा करने जा रही है, जिसमें कोच से लेकर कप्तान तक सभी पर मंथन होगा।
4: पिछले 6 मैच में एक भी टी20 मुकाबला नहीं जीता। आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारे। इंग्लैंड ने 3-0 से अजेय बढ़त बनाई। तीसरा टी20 125 रन से हारे। चौथा टी20 9 विकेट से हारे। आखिर टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया को हो क्या गया है? 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने भारत को टी20 सीरीज में हरा दिया। इससे पहले टीम इंडिया आयरलैंड से भी पहली बार हारी थी। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों सीरीज में हार तब मिली जब बीसीसीआई ने एक बड़ा बदलाव करते हुए अनुभवी खिलाड़ी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। अब बीसीसीआई भी इस सवाल का जवाब तलाश रही है। सूत्रों की माने तो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई भारतीय टीम के परफॉर्मेंस का रिव्यू करने जा रहा है। हेड कोच गौतम गंभीर का रोल और टीम की रणनीति भी रिव्यू का हिस्सा होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी समीक्षा के दायरे में आएगी। रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ये समझना चाहती है कि रणनीति और टीम चयन के स्तर पर कहां कमी रही।
0: उधर फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए युद्ध जारी है। फ्रांस ने लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी। पहले हाफ में पेनल्टी किक मिस करने के बाद किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में गोल किया और फिर 6 मिनट बाद उस्मान डेम्बेले को असिस्ट करके फ्रांस को वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में मोरक्को के खिलाफ 2-0 से जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही फ्रांस जारी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। एम्बाप्पे ने फ्रांस के सेमीफाइनल तक के सफर में खेले गए 6 मैचों में से 5 मुकाबलों में गोल किए हैं। वहीं फिलहाल एडिडास गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
9: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now. Sokudo.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया
11: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
12: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
11: बिलो तो चार्ज हुआ यार।
12: ओ ला बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।
14: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
15: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
18: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
17: ओ, अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था। पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह।
5: समझ कर, इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: In association with
13: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
15: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से, जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
16: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है। लेकिन अब ये हाथ जो है, जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में, खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
17: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
18: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं।
19: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा, ऐसे दिखते हैं। लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा। लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
4: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
10: जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस कुर्सी पे आप हो, आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो। और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं। कोई
19: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। आईआईटी बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज हम बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही भीषण बारिश की। दो दिनों से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है और परेशानी यह है कि आने वाले दो दिनों के लिए भी मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। पूरे उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी अगले 24 घंटे बहुत अधिक बारिश की संभावना है। इसका असर पहाड़ों पर दिख रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, सड़कें रास्ते टूट रहे हैं।

0: मैदानी इलाकों को डुबोने के बाद भारी बारिश अब पहाड़ों पर कहर बरपा रही है। खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह सड़कें टूट गई, पेड़ उखड़ गए, फ्लैश फ्लड आ रहा है। उत्तराखंड में तो चारधाम यात्रा को कई जगह रोका भी गया है। इस वक्त उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही धार्मिक यात्राओं पर असर पड़ा है। यमुनोत्री में यमुना नदी के वेग को आप महसूस कर पा रहे होंगे। भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें यमुनोत्री मंदिर के पास की हैं, जहां कल रात से जलस्तर बढ़ा हुआ है। यमुना नदी के वेग ने पैदल पुल को छू लिया है, अब इस पुल के बहने का खतरा बढ़ गया है। उधर यमुनोत्री धाम में शाम ढलते ही यमुना नदी अपने उद्गम क्षेत्र से विकराल रूप से बह रही है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों में दहशत का माहौल है। सियाना चट्टी कस्बे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई होटलों की निचली मंजिलें पानी की चपेट में आ गई।
1: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है, यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स, और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी, वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अधिक नुकसान सियाना चट्टी क्षेत्र में हुआ है, जहां करीब 100 मीटर सड़क वॉशआउट हो गई है। इसके अलावा हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी लगातार भूस्खलन होने से कई बार सड़क बंद हो रही है।
1: एक बार दोबारा से मकान डूब गए।
2: जी जी, बहुत बड़ी दिक्कत है सर यहाँ पे।
1: हाँ।
2: पिछले बार सिंचाई विभाग द्वारा जो काम किया गया था यहाँ पे,
1: हाँ।
2: अगर उसका मुहाना खोल देते तो आज ये स्थिति नहीं आनी थी।
1: हाँ।
2: तो इसलिए जो है बड़ी समस्या हो रही है, और या फिर डूबने की कगार में आ रखे हैं यहाँ के होटल। थोड़ा मैं समझता हूँ कि सारी जो है ये सिंचाई विभाग की कमी है। अगर उस टाइम मुहाना खुला होता तो आज जो है नदी का प्रवाह जैसा चल रहा तो आज सुरक्षित महसूस।
3: बहुत बुरी स्थिति है सर हम लोगों के लिए। एक तो यमुना जी का भी है और ऊपर से NH का भी है, जो तो उन्होंने कटिंग की थी उसके चक्कर से भी हम लोगों को बहुत भारी सामना करना पड़ रहा है।
1: इसका तीर्थयात्रियों पर भी असर पड़ रहा है, उनको रोका गया है
3: बहुत ही ज्यादा हो रहा है सर। और हम लोगों के जो आगामी के जो ग्रुप है वो भी कैंसिल होने जा रहे हैं सर। हमको इतना डर भाई बैठ गया है लोगों के अंदर।
0: गंगोत्री नेशनल हाईवे भी नालूपानी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण प्रभावित है। यहाँ मार्ग खुलने और बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन और BRO की टीम मलबा हटाने में जुटी है। एहतियातन यात्री वाहनों को बहुत संभाल कर आगे भेजा जा रहा है। यात्रा रुक रही है, फिर शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर हालात बहुत कठिन बने हुए हैं।
4: तो ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से गंगोत्री हाईवे में हमारा नालूपानी और नगुन और नेताला, ये तीन जगह पे दिक्कत आई है। लेकिन मशीन होने की वजह से वो ऐसा नहीं आया कि कंटिन्यूस बंद है। आधा घंटा पौन घंटे का एक गैप आ जा रहा है, जब भी स्लाइड आ रहा है तो हम ट्रैफिक नहीं चला रहे हैं, उसके बाद उसको खोल के वापस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात आती है यमुनोत्री वैली की। यमुनोत्री में सारी गाड़ में थोड़ा दिक्कत है, पर लेकिन वो रोड ओपन हो जा रही है। मेन इश्यू इस समय सियाना चट्टी के ऊपर गाँव के करीब 500 मीटर ऊपर जो बैंक पे बड़ा स्लाइड आया है, उस वजह से वो बाईपास बनाने के लिए अब हम लोग प्रोसेस कर दिए हैं। और NH से जो मेरा अभी सुबह डिस्कस हुआ था तो मैं कल वहाँ विजिट भी करूँगा, तो उसमें मेन ये है कि एक बाईपास उन्होंने बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी है कि बाईपास लगभग 250 मीटर का बना के उस स्लाइड जोन को बाईपास ही कर दें।
0: पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी तस्वीरें अब दिखने लगी। ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी का वीडियो है, जहां लगातार बारिश के बाद बिलजू पागल नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है। गांव वालों के लिए ये नाला पार करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए लोगों ने लकड़ी के दो डंडों के सहारे से एक अस्थायी पुल बना दिया और इसी के सहारे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे आर पार कर रहे हैं। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, हाथ फिसला या पैर फिसला तो सीधे इस नाले के वेग में लोग बह सकते हैं। हालात हिमाचल के भी खराब होने शुरू हो गए हैं। यह हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है, देखिए किस तरह से अचानक से ये फ्लैश फ्लड आ गया। ये किन्नौर के लिप्पा पंचायत का पेजर नाला है जिसमें भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। पानी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ था कि 100 फुट लंबे लोहे के पुल के ऊपर पानी आ गया। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह से कट गया। बाढ़ के साथ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा भी आया है। ये पूरा मलबा आसपास के रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर घुस गया। शिमला में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है जिसकी वजह से यहाँ काफी नुकसान हुआ है। यहाँ शिमला में बानमोर इलाके में भारी बारिश के बाद एक पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया जिससे पूरी सड़क ही ब्लॉक हो गई। ये बहुत बड़ा पेड़ है जो अपने साथ बिजली के तारों को भी तोड़ता चला गया।
5: शिमला शहर में काफी अब नुकसान देखने को मिला है, काफी जब लक्कड़ बाजार में भी काफी नुकसान हुआ है, डंगे वगैरह काफी गिरे हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ सब डिवीजन 2 बैनमोर में भी एक पेड़ से काफी क्षति पहुंची है, जैसे कि यहाँ पे एक डंगा गिर चुका है और पेड़ भी गिर चुका है। और नीचे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कन्वे कर दिया, पुलिस ऑफिशियल्स को भी कन्वे कर दिया कि यहाँ पे गाड़ी की आवाजाही थोड़ी रोकी जाए ताकि हम पेड़ को प्रॉपर वे में काट के इसको रिमूव कर सकें। यहाँ से
0: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। राज्य भर में 250 से ज्यादा सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हो गई, 200 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए जिन्हें दुरुस्त करने का काम भी जोरों से चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 12 से 18 घंटों के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है।
6: पहाड़ों पर मॉनसून की सक्रियता देखी जा रही है लगातार, और पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय ऐसा है जिसमें मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में देखी जा रही है। मेरी इस समय मौजूदगी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर है, आप तस्वीरें जरा देखिए। ये हल्की इस समय बारिश जरूर यहाँ पर हुई है, दिन का समय है और ऐसे में अब लोगों की चहल पहल जो है वो दिखाई दे रही है। ताज़ा बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है और बावजूद इसके इस समय मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 12 से 18 घंटे तक इसी तरह का मौसम राज्य के कई जिलों में बना रहेगा। खास तौर पर जो पूर्वी हिमाचल का हिस्सा है जिसमें जिला सिरमौर, जिला शिमला और सोलन के कुछ एक इलाके जहां पर भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है।
0: पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहाँ गंगा नदी बहुत आवेग में नजर आ रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है और इसी बढ़े हुए जलस्तर में थार वाले अपनी गाड़ियों का इंजन भी टेस्ट कर रहे हैं। यह हरिद्वार के कनखल में बैरागी कैंप की तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ युवकों ने थार कार के इंजन की क्षमता जांचने के लिए गाड़ी को गंगा की मुख्य धारा में उतार दिया। अब कार उतार तो दी मगर नदी के बीच में जाकर कार फंस गई और गाड़ी को गंगा से बाहर निकालना मुश्किल हो गया। जब थार गंगा में डूबने लगी तो युवकों के हाथ पैर फूल गए, उन्होंने मदद की गुहार लगाई जिस पर काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और पुलिस भी पहुंच गई। उसके बाद जेसीबी बुलाकर थार को बड़ी मुश्किल से गंगा की धारा से बाहर निकाला गया। और
7: अभी तो फिलहाल पहाड़ों पर चारधाम यात्रा रुक रुक कर चल रही है, कई जगह सड़कें टूट रही हैं, यात्रा रुक रही है फिर शुरू होती है। लेकिन अब डर यह है कि अगले 2 दिनों में जो भीषण बारिश होगी उसके बाद स्थिति क्या होगी, क्योंकि कई जगहों पर नदियां रिहायशी इलाकों में घुस गई हैं और तो और बारिश अगर और होती है तो फिर हाल और बुरा होगा।
0: हिंदुस्तान का यह नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मानसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। यह नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होनी बाकी है। लेकिन उत्तर भारत में मानसून पूरी स्पीड से बरस रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आ गई है। यहां बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये नदी सामान्य तौर पर काफी नीचे बहती है, लेकिन अभी बहुत ऊपर है, एकदम धाम की सीढ़ियों के पास तक पानी आ रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हर साल लामबगड़ नाला परेशानी का सबब बनता है। बरसात के दौरान यहां पर हमेशा सड़क टूट जाती थी, रास्ता बाधित होता था, जिसकी वजह से कई कई दिनों तक यात्रा बाधित रहती थी। लेकिन अब यहां पर पुल बनकर तैयार हो चुका है। अभी भी रास्ता बाधित है, लेकिन पुल से फिलहाल यात्री जा रहे हैं।
7: विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए आज

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग।
1: और वो कुल 8 लोग थे, रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। बस इन्हीं 8 लोगों की करतूत का अंजाम अब अयोध्या के राम मंदिर में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नई व्यवस्था में सुधार के नाम पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कर्मचारियों पर भारी पड़ रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़कर 9 घंटे कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया और खबर है कि SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए हैं। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण इसमें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है और नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी कराए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि दिनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा, प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इनके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों के सुझाव लिए जा रहे हैं। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला हो जाए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने संकेत दिए हैं कि संत समाज के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
8: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: वी आर ओवर जिमी।
13: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
14: अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, तो ये खबर आपके लिए है। अब न बैंक की भारी गारंटी, न जमीन गिरवी और न ही ब्याज का बोझ। यूपी सरकार ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें 5 लाख तक का लोन बिना गारंटी और ब्याज मुक्त मिलेगा। सवाल है, कौन ले सकता है इसका फायदा और कैसे? उत्तर प्रदेश ने अब सिर्फ नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी देने वाले युवा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यानी युवाओं को उद्यमी बनाने का मिशन शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य है हर साल 1 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करना और अगले 10 साल में 10 लाख आत्मनिर्भर उद्यमियों की नई फौज खड़ी करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यही से शुरू होती है MY युवा योजना की कहानी। अक्सर नए उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है बैंक की गारंटी, जमीन गिरवी रखने की शर्त और महंगे ब्याज का बोझ। अब सरकार कह रही है अगर आपका आइडिया अच्छा है तो पूंजी की चिंता सरकार करेगी और इस योजना के तहत 21 से 40 साल के उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी वाला लोन वो देगी, यानी न किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी, न कोई संपत्ति गिरवी। इतना ही नहीं, सरकार पर योजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी देगी ताकि बिजनेस की शुरुआत आसान हो सके। योजना सिर्फ लोन देकर खत्म नहीं होती, अगर आप समय पर पहली राशि चुका देते हैं तो दूसरे चरण में 10 लाख से 20 लाख तक का लोन भी मिल सकता है, जिस पर सरकार तय सीमा का 50% ब्याज सब्सिडी भी देगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। आवेदन उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो सकती है, कम से कम 8वीं पास हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा, ITI और सरकारी कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। युवा UPMSME पोर्टल और आधिकारिक MY UVA पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकों को भी साफ निर्देश दिए हैं कि ऋण स्वीकृति में देरी ना हो ताकि युवाओं को समय पर पैसा मिल सके। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं, नौकरी ढूंढने के बजाय अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और सिर्फ पैसों की कमी आपको रोक रही है, तो MYUVA योजना आपके लिए बड़ा मौका बन सकती है। अब देखना होगा कि सरकार का 10 लाख नए उद्यमियों का सपना जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है।
11: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।
15: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
16: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में खबरदार लेकर हमारी साथी श्वेता होंगी आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया, कहा पारिवारिक वजहों से फैसला, नीरज सिन्हा होंगे नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात, अखिलेश का पोस्ट पराजय काल विपरीत बुद्धि। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, कल भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। प्रतिशत इथेनॉल नीति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुरानी गाड़ियों के लिए सादे पेट्रोल के विकल्प की मांग, बिना जानकारी मिश्रित पेट्रोल बेचने पर सवाल। लखनऊ में 15 मौतों वाली बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, एलडीए कोर्ट ने दिया इमारत गिराने का आदेश, 22 जून को हुआ था अग्निकांड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। मानसून की रफ्तार पर क्या आज ब्रेक लगी है? थार सवार जब नदी में फंसे तो क्यों लोग कहने लगे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? और क्यों कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है? 3 खबरें बताएंगे तो आप इस बात को आज मान भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की हिंदुत्व वाली राजनीति की, जहां हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का सियासी युद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच चल रहा है, जिसमें आज नया अध्याय भी हनुमानगढ़ी का योगी आदित्यनाथ ने जोड़ दिया है। चर्चा चलने लगी कि क्या बीजेपी की पिच पर सनातन वाली बैटिंग समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है, जहां सामने हिंदुत्व पर हार्डकोर राजनीति करने वाले योगी हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि सनातन ही समाजवाद है, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यही तो सनातन की ताकत है कि अखिलेश यादव को भी आस्था की बात करनी पड़ रही है।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था।
2: सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी है, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की।
2: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन।
1: राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया।
2: चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है।
3: आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है,
4: वो तो कह रहे हैं
2: बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। वो तो सोचिए महापाप किया है।
5: दो हजार 2027 का चुनाव हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर आटिका, जिसकी जमीन अयोध्या के विवाद से तय हुई। इस वक्त अखिलेश यादव जब कहते हैं जो सनातन है वही समाजवाद है, तब योगी आदित्यनाथ का जवाब आता है हनुमानगढ़ी में समाजवादियों ने नमाज कराई थी। अखिलेश यादव कहते हैं पराजय काल विपरीत बुद्धि, योगी आदित्यनाथ कहते हैं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की बात ना करें। अखिलेश यादव कहते हैं चढ़ावा चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं, योगी आदित्यनाथ का जवाब है बाबर को समाजवादी अपना आदर्श मानते। भगवा वेशधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदू और हिंदुत्व पर बढ़कर और चढ़कर बोलना चलना तो लंबे वक्त से राजनीति में देखा गया, लेकिन क्या इस वक्त बहुसंख्यक वोट साधने के लिए अखिलेश यादव भी सनातन वाली सटीक राह पर चल पड़े हैं? जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठकर कहते हैं जो सनातन है वही समाजवाद है।
2: सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन धर्म समाजवादी
6: अध्ययन किया गया होता हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है उसका पूर्ण
2: हम सब
6: लेकिन उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया।
5: क्या यही अखिलेश यादव का वो दांव जिसे वो अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद के बाद पकड़ कर चलना चाहते हैं, ताकि जब मुख्यमंत्री उन्हें 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के राज में अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली पर घेरे तो वो सनातन की धार बना सके?
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया।
2: पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं कि जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने मर्यादा
7: हमें कर लो ना यार आप लोग,
2: उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है।
5: शुक्रवार को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं। चढ़ावा कांड के बीच ये दूसरा अयोध्या दौरा रहा। इस बार बीकापुर में 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने के साथ मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जाते सवालों पर इतिहास याद कराया है।
1: आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
5: 19 जून को जब पहली बार योगी आदित्यनाथ चढ़ावा विवाद के बीच में अयोध्या पहुंचे, तब राम मंदिर में दर्शन करके भरोसा पूरे देश को दिलाया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब से अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छापेमारी करके चढ़ावे की रकम और चुराए गए चढ़ावे से खरीदी गई संपत्ति का पता चल रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, राम मंदिर ट्रस्ट से ये अलग हो चुके। इस वक्त SIT की 15 दिन वाली दूसरे राउंड की जांच जारी। इन सब के बीच सवाल आता है, क्या 19% मुस्लिम और 10% यादव, यानी 29% वोट का सीधे 85% हिस्सा तक पाने वाली समाजवादी पार्टी अब बाकी 70% बहुसंख्यक वोट में पहले से पाते हिस्से को बढ़ाने के लिए सनातन की राह पर मजबूती से चलने लगी है।
1: आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है।
0: अयोध्या में राम मंदिर के साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन करने वाले हिंदू भक्त जानते हैं कि हनुमानगढ़ी का महत्व क्या है। आज उसी महत्व को समझकर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के आस्था वाले दांव को घेरा है। ये दांव आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्या शंकराचार्य के साथ केमिस्ट्री बिठाकर हिंदू वोट अखिलेश यादव बांट सकते हैं।
5: 19 जून को जब पहली बार योगी आदित्यनाथ चढ़ावा विवाद के बीच में अयोध्या पहुंचे, तब राम मंदिर में दर्शन करके भरोसा पूरे देश को दिलाया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब से अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छापेमारी करके चढ़ावे की रकम और चुराए गए चढ़ावे से खरीदी गई संपत्ति का पता चल रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, राम मंदिर ट्रस्ट से ये अलग हो चुके। इस वक्त SIT की 15 दिन वाली दूसरे राउंड की जांच जारी। इन सब के बीच सवाल आता है, क्या 19% मुस्लिम और 10% यादव, यानी 29% वोट का सीधे 85% हिस्सा तक पाने वाली समाजवादी पार्टी अब बाकी 70% बहुसंख्यक वोट में पहले से पाते हिस्से को बढ़ाने के लिए सनातन की राह पर मजबूती से चलने लगी है।
1: आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत

0: तब सनातन की राह पर सॉफ्टली बढ़ते समाजवादियों की सियासत की तुलना कालनेमी से आक्रामक होकर मुख्यमंत्री करते हैं।
1: प्रभु राम तो जग नियंता है, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है।
2: जितना भूगोल हिंदू वोट का सनातन की लकीर खींचकर अखिलेश यादव बदलना चाहते हैं, उतना इतिहास समाजवादी पार्टी का योगी आदित्यनाथ याद कराते हैं। 90 से लेकर अब तक का, जहां ये मुद्दा बाबर औरंगजेब से लेकर वक्फ कब्रिस्तान के रास्ते अब नमाज इफ्तार तक पहुंच चुका है, क्योंकि आज ही अयोध्या के बीकापुर की रैली में सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में अयोध्या की हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ा दी गई थी। सीएम ने चुनौती दी है कि क्या एसपी कांग्रेस की सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ करा सकती हैं। दरअसल सीएम योगी ने 2003 की एक घटना का जिक्र किया है, जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और हनुमानगढ़ी के ही महंत ज्ञान दास ने बाबरी केस के पक्षकार हाशिम अंसारी समेत बाकी लोगों के लिए हनुमानगढ़ी परिसर में इफ्तार का आयोजन कर दिया था।
1: इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था।
0: पिछले एक हफ्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जितने हमले किए, उनमें नया अध्याय अब हनुमानगढ़ी का खोला है।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये?
0: अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन को हनुमान जी की आज्ञा या अनुमति लेना कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा कोतवाल नियुक्त किया और बिना उनकी आज्ञा के रामलला के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। यही वजह है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जब भी ये अयोध्या आते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं और फिर रामलला के दर्शन करने राम जन्मभूमि मंदिर में जाते हैं। अब चढ़ावा विवाद बनाम झूठी आस्था के बीच होती सियासत में मुख्यमंत्री ने जब हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर समाजवादी राज में नमाज कराने का किस्सा बताया तो जानते चलिए ये मामला कब का है। इस बारे में हमने पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी से मौजूदा राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल से बात की, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये नमाज वाली बात बताई।
3: 29 अगस्त 2003 को माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन चुके थे। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था। उस समय एसएसपी फैजाबाद थे राजू सबरवाल और यहाँ के वीएन राय साहब थे आईजी जोन लखनऊ। और उस समय ये हुआ, दबाव डाला गया

0: कि हनुमान गढ़ी के ठीक सामने जहाँ सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पर रोज़ा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था प्रदेश का, मैं लगातार अपने आईजी अपने एसएसपी राजू सबरवाल के संपर्क में था। उसके बाद वो मना किया गया कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीधे माननीय मुलायम सिंह जी के टच में थे और एक पराकाष्ठा थी, एक संदेश देना था कि हनुमान गढ़ी के सामने नमाज पढ़ाई गई और वहां पर रोजा इफ्तार हुआ।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमान गढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित की गई और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया, फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराई गई।
2: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था कि क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए। तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: हनुमान गढ़ी की दूसरी उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की तरफ से ये मामला कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इसके बाद इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद बढ़ता है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिलाते हैं।
3: ये लोग राम के विरोधी हैं और हनुमान के विरोधी हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है, वो हनुमान जी को राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। हनुमान जी का नाम उन्होंने कब लिया, कब की बात बता रहे हैं आप? हनुमान जी के विषय में उन्होंने कब रामायण हनुमान चालीसा बात नहीं कही?
4: अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी।
5: उत्तर प्रदेश में दलित वोट भी 2024 में बटा, जिस पर पहले एकमुश्त बीएसपी का अधिकार रहा, लेकिन अभी मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड पर शुरू हुई सियासत ने दलित वोट को लेकर खींचतान तेज कर दी है। जहां पहले अखिलेश यादव सवाल करते हैं, फिर चंद्रशेखर आज मेरठ पहुंचते हैं और तब आज ही मायावती दलितों के वोट पर विरोधियों को मगरमच्छ के आंसू बहाने से रोकने का बयान देती है।
6: मेरठ में दो दिन पहले कचहरी रोड पर हुए इस लाठीचार्ज की घटना ने यूपी में दलित वोट की सियासत को सुलगा दी है। दरअसल ये प्रदर्शन 15 मई को हुई एक दलित युवती की हत्या के बचे हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग पर किया जा रहा था, जिसमें प्रदर्शनकारियों को उकसाकर पुलिस पर हमले की कोशिश की गई। उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ और महिला पुलिसकर्मी समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी दौरान मौके पर मौजूद एसएसपी अविनाश पांडे ने पकड़े गए प्रदर्शनकारियों में से एक नेता को कैदी वाहन में जाकर थप्पड़ भी मारा था और उसके बाद 13 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। दरअसल चुनावी सीजन में मुद्दा सूंघते फिर रहे सियासी दलों को इस मामले में सियासत का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट करके पुलिस अन्याय और प्रदेश प्रमुख पर सवाल उठा दिए। तो नए दलित नेता बने चंद्रशेखर ने बीजेपी को दलित विरोधी दमनकारी बता दिया, जिसके दो दिन बाद मायावती ने ऐसे सियासतदानों से दलितों को सतर्क किया है।
7: लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। जो भी ऐसे संगठन वे पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है।
8: ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की किस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे, किस तरह कार्रवाई करी आप जानते हैं ना, तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। और सब तो ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट कर रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और एक
6: दरअसल मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़े तथ्य हैं कि मेरठ के टोपी नगर इलाके में 15 मई को ललिता गौतम नाम की युवती लापता हुई थी, जिसका शव 17 मई को रोहटा इलाके से मिला था। पुलिस ने 24 घंटे में मुख्य आरोपी पूर्व परिचित युवक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके साथ युवती बाइक पर गई थी और बाद में दो सह आरोपी भी गिरफ्तार हुए। लेकिन पीड़ित परिवार और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, जिसके बाद तीन पुलिस महिला अधिकारियों ने विवेचना की जानकारी पीड़ित परिवार को देकर संतुष्ट किया था, जिसके सबूत पुलिस के पास हैं। पुलिस का आरोप है कि उसके बाद दूसरे जिलों के जिला बदर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने मिलकर पीड़ित परिवार को पैसों का लालच दिया और इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: सियासत में कुछ भी संभव है, ये सुना होगा, तो आज इसके तीन उदाहरण देखिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़कर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तीन नेता इधर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उधर तुरंत उन्हें उन्हीं की खाली सीट पर बीजेपी से उम्मीदवार बना दिया जाता है। ये इंस्टेंट सियासत का उदाहरण है। दूसरी तरफ बिहार है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को नामांकन के अगले ही दिन अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। पहले घोषित कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा ने पारिवारिक वजह कहकर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने उनकी जगह नीरज सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पहले दतिया में हार का सामना करना पड़ा, फिर वहां कांग्रेस उम्मीदवार की सदस्यता रद्द हुई तो उपचुनाव होना है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की सक्रिय राजनीति में वापसी नहीं हो पा रही है, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब बात मानसून की। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि बारिश की कमी सिर्फ 14% रह गई, लेकिन एक तूफान की वजह से मानसून पर ब्रेक लगने की आशंका है। ये तूफान भारत में नहीं आ रहा बल्कि भारत से 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन इसका सीधा असर चीन, ताइवान और जापान पर पड़ने की आशंका है। लेकिन आशंका है कि इसका असर भारत के मानसून पर भी दिखाई दे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है, लेकिन मौसम विभाग की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें चिंताजनक संकेत दे रही हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में मानसून काफी सक्रिय है और इन क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बादलों की गतिविधि कमजोर बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की के आसार कम है।
1: पश्चिमी प्रशांत महासागर में बने सुपर टाइफून बाबी की वजह से क्या भारत में मानसून पर ब्रेक लगा? सुपर टाइफून बाबी की वजह से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ताइवान में एक कहर मचा रहा है। ये तूफान भले ही भारत से करीब 1000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन सवाल है कि क्या सुपर टाइफून बाबी की वजह से मानसून ने यू टर्न ले लिया? गुरुवार को मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया, जिसने जून में बारिश में 40% की कमी को एक झटके में घटाकर 14% कर दिया। मानसून में अचानक आई तेजी ने सबको राहत पहुंचाई। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का मानसून की राह देखते बड़ा इलाका गुरुवार को दिन भर बारिश से भीगता रहा, लेकिन शुक्रवार को लगा कि मानो मानसून ने यू टर्न ले लिया, जिसके बाद सवाल उठा कि ताइवान में कहर मचा रहा तूफान बादलों का मन बदलने के लिए जिम्मेदार है। मौसम विभाग की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीर ने परेशानी बढ़ाई। मौसम विभाग की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीर में मध्य भारत में मानसून ज्यादा सक्रिय दिखा। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक बादल है। वहीं दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी हिस्सों में बादल कम है। यहाँ आने वाले दिनों में बारिश की कम संभावना दिखती है,
9: क्योंकि जो जुलाई का अभी तक का जो समय था, यानी 2 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक का, इवन 10 जुलाई भी देखें तो वर्षा अच्छी प्राप्त हुई, इसलिए बाकी सब डिविजन्स जो है सामान्य या सामान्य से ज़्यादा दर्ज कर रहे हैं। और अगर हम आने वाले दो दिनों की बात करें तो अभी हमारी जो मानसून ट्रफ होती है सीजन की, वो या तो सामान्य रहेगी या सामान्य से उत्तर की तरफ वो देखी जाएगी। उसकी वजह से जो हमारा इंडोगैंट्रिक प्लेन्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, उपमैली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर वर्षा का दौर सप्ताह में आपको देखने को मिलता रहेगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का स्पेल बना रहेगा।
1: देश के मानसून के लिए बुरी खबर की वजह फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में आया सुपर टाइफून बाबी बताया जाता है। ये ताइवान और चीन की ओर बढ़ रहा है। इसका असर 3,000 से 4,000 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी तक पड़ रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि जब तक ये तूफान चीन नहीं पहुंचता, तब तक बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद नहीं। ऐसे में दो दिन बाद देश के कई हिस्सों में बारिश कम हो सकती है। अच्छी बारिश के लिए अगले करीब एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। सुपर टाइफून बाबी शनिवार को चीन के फुजियान प्रांत में लैंडफॉल कर सकता है। इससे पहले ये उत्तरी ताइवान के बेहद करीब से गुजरेगा। ताइवान के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये 1987 के बाद सबसे बड़े आकार का टाइफून हो सकता है। राजधानी ताइपे के आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में 1 मीटर तक बारिश की आशंका है। आपदा से निपटने के लिए 29,000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया। समुद्री शहरों में मछुआरों ने अपनी नौकाएं सुरक्षित बंदरगाहों में पहुंचा दी, जबकि लोग घरों की सुरक्षा के लिए रेत की बोरियां जमा कर रहे हैं और किसान समय से पहले फसल काटने में जुट गए हैं। तो सुपर टाइफून बाबी का भले ही भारत पर सीधा प्रभाव न पड़े, लेकिन इसका असर मानसून की रफ्तार धीमा कर सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी में नया मौसम तंत्र बनने में देरी हुई तो उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में कुछ दिनों के लिए बारिश कमजोर रह सकती है। हालांकि इसके बाद नया सिस्टम बनने पर मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है।
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी हिस्से में भले ही मानसून कमजोर दिख रहा हो, लेकिन पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है। इस वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहा है। कब कहां पहाड़ टूटकर गिर जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होने से कैलाश मानसरोवर और चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है।
1: पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश अब आफत बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं और सांगला के पास बना मुख्य बैली ब्रिज भी खतरे की जद में आ गया है। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले पेजर नाले में भीषण बाढ़ से गांव का संपर्क कट गया। रिहायशी इलाकों में घुसा मलबा और पुल खतरे में आ गया। ये देखिए, फ्लैश फ्लड कितनी तेज रफ्तार से पुल से टकरा कर डरा था। वीडियो बना रहे लोग कह रहे हैं कि ये पुल अब नहीं बचेगा। इससे आगे का वीडियो तो और भी डराने वाला है। फ्लैश फ्लड की रफ्तार डराती है। इंसानी जान खतरे में, क्योंकि कब कहां कितनी तेजी से मलबा आकर किसे अपने साथ बहा ले जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता। आप ही सोचिए जिन घरों के पास ये फ्लैश फ्लड पहुंचती वहां लोगों की क्या हालत होगी। पुल पर आवाजाही रोक दी गई जिससे लिप्पा गांव का आसपास के इलाके से संपर्क कट गया। बाढ़ के साथ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा भी आया। ये पूरा मलबा आसपास के रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर घुस गया। अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तरकाशी बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही धार्मिक यात्राओं पर बिगड़े मौसम का असर पड़ा। यमुनोत्री में यमुना नदी की रफ्तार किसी को भी कपकपा दे। भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें यमुनोत्री मंदिर के पास की हैं, जहां कल रात से जलस्तर बढ़ा हुआ है। यमुना नदी के वेग ने पैदल पुल को छू लिया, अब इस पुल के बहने का खतरा बढ़ गया। यमुनोत्री धाम में शाम ढलने के साथ लोगों और यात्रियों का दिल बैठना शुरू हो जाता है। स्याना चट्टी कस्बे में यमुना नदी का जलस्तर उफान मार रहा है। कई होटल की निचली मंजिलें पानी की चपेट में आ गई। बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अधिक नुकसान स्याना चट्टी क्षेत्र में हुआ है, जहां करीब 100 मीटर सड़क बह गई है। इसके अलावा हनुमान चट्टी और पुल चट्टी के पास भी लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बार बार बंद हो रहा है। एक बार दोबारा से मकान डूब गए।
10: जी, बहुत बड़ी दिक्कत है सर यहाँ पे।
1: हाँ।
10: पिछले बार सिंचाई विभाग द्वारा जो काम किया गया था यहाँ पे,
1: हाँ।
10: अगर उसका मुहाना खोल देते तो आज स्थिति नहीं आनी थी।
1: हाँ।
10: तो इसलिए जो है बड़ी समस्या हो रही है, और या फिर डूबने के कगार में आ रखे हैं यहाँ के होटल। थोड़ा मैं समझता हूँ कि सारी जो है ये सिंचाई विभाग की कमी है। अगर उस टाइम मुहाना खुला होता तो आज जो है नदी का प्रभाव जैसा चल रहा तो आज सुरक्षित महसूस।
11: बहुत बुरी स्थिति है सर हम लोगों के लिए। एक तो यमुना जी का भी है और ऊपर से NH का भी है, जो तो उन्होंने कटिंग की थी उसके चक्कर से भी हम लोगों को बहुत भारी सामना करना पड़ रहा है।
1: इसका तीर्थ यात्रियों पर भी असर पड़ रहा है, उनको रोका गया है यहाँ पे?
11: बहुत ही ज्यादा हो रहा है सर, और हम लोगों के जो आगामी के जो ग्रुप हैं वो भी कैंसिल होने जा रहे हैं सर। हम इतना डर भाई बैठ गया है लोगों के अंदर।
1: उत्तरकाशी में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गए। चार धाम यात्रा के हजारों यात्री फंस गए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी नालू पानी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण प्रभावित है। यहाँ मार्ग खुलने और बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन और BRO की टीम मलबा हटाने में जुटी है। एहतियात के तौर पर यात्री वाहनों को बहुत संभाल कर आगे भेजा जा रहा है। यात्रा रुक रही है फिर शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर हालात बहुत कठिन बने हुए हैं।
12: ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से गंगोत्री हाईवे में हमारा नालू पानी और नगुन और नैताला ये तीन जगह पे दिक्कत आई है, लेकिन मशीन होने की वजह से वो ऐसा नहीं आया कि कंटिन्यूस बंद है। आधा घंटा पौन घंटे का एक गैप आ जा रहा है, जब भी स्लाइड आ रहा है तो हम ट्रैफिक नहीं चला रहे हैं, उसके बाद उसको खोल के वापस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात आती है यमुनोत्री वैली की। यमुनोत्री में सारी गाड़ में थोड़ा दिक्कत है, पर लेकिन वो रोड ओपन हो जा रही है। मेन इश्यू इस समय स्याना चट्टी के ऊपर गाँव के करीब 500 मीटर ऊपर जो बैंक पे बड़ा स्लाइड आया है, उस वजह से वो बाईपास बनाने के लिए अब हम लोग प्रोसेस कर दिए हैं। और NH से जो मेरा अभी सुबह डिस्कस हुआ था तो मैं कल वहाँ विजिट भी करूँगा, तो उसमें मेन ये है कि एक बाईपास उन्होंने बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी है कि बाईपास लगभग 250 मीटर का बना के उस स्लाइड जोन को बाईपास ही कर दें।
5: बारिश में सफर करना पहाड़ों पर ही नहीं मैदानी इलाकों में भी खतरनाक हो चुका है। कौन सा रास्ता कब गड्ढे में बदल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। अचानक जमीन धंसने से गाड़ी समेत गड्ढे में दादा और पोता गिर गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से दोनों की जान बचाई।
13: पकड़ लिए, बच्चे घुस गए।
5: उधर सूरत में हुई भारी बारिश और बाढ़ से अब तक कुल 47 लोगों की मौत की पुष्टि सूरत कलेक्टर ऑफिस के नायब तहसीलदार साजिद खान ने आज तक से की है। 47 में से 43 मौत सूरत शहर में, जबकि 4 मौतें सूरत ग्रामीण में हुई। अब वो खबर जिसे आज ध्यान से समझिए। भारत में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 106 नेशनल पार्क हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, फिर भी भारत में केवल 90 लाख विदेशी सैलानी आते हैं। सवाल है क्यों, जबकि छोटे से देश थाईलैंड में 3 गुना विदेशी सैलानी आते हैं, तुर्की में हमारे मुकाबले 6 गुना से ज्यादा, सऊदी अरब में 3 गुना, मलेशिया में 2.5 गुना, वियतनाम में 2 गुना, मिस्र में भी करीब 2 गुना। अब आप कहेंगे अगर भारत में विदेशी पर्यटक नहीं आते तो इससे रोजगार का क्या रिश्ता है, तो जवाब यह है कि टूरिज्म सेक्टर में रोजगार सृजन की सबसे ज्यादा संभावना होती है। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार साल 2023-24 में 8,46,00,000 रोजगार पर्यटन उद्योग से पैदा हुए। इतनी अहमियत के बावजूद भारत में विदेशी पर्यटकों से ठगी और लूट होती है।
13: I wanted to keep this brief because it's hot. It's hot. It's although it's not humid. Like I'm from Miami. There's a humid hot and then there's this hot. But it's like, what time is it? It should be getting cooling off by now.
1: दिल्ली में गर्मी से परेशान होने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री को 44 डिग्री की प्रचंड गर्मी भी ताजमहल का दीदार करने से नहीं रोक पाई। मार्को रूबियो और जीनेट ने डायना बेंच पर भी फोटो खिंचवाई और ताजमहल को दुनिया के सच्चे खजानों में से एक बताया। फ्रांस की जूलियट ईवा और वेरोनिका को भी आगरा का ताजमहल भारत खींच लाया, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो हर भारतवासी को शर्मसार करने वाला है। अतिथि देवो भाव की संस्कृति वाले देश में दोनों फ्रांसीसी पर्यटकों से ठगी हो गई। इनसे 500 रुपए की जगह 5,000 रुपए वसूले गए। राहत की बात ये कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई, जिसने भारत को बदनामी से बचा लिया।
14: The cops are really good with tourists in India, so we are safe now and it's okay. They help us for a problem, so you can go in.
1: भारत में यूनेस्को की ओर से घोषित 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, लेकिन ताजमहल विदेशी सैलानियों की सूची में पहले नंबर पर होता है। प्रेम के प्रतीक की इस अद्वितीय इमारत को निहारना हर विदेशी सैलानी का सपना होता है। मंगलवार को फ्रांस से आगरा घूमने आई जूलियट ईवा और वेरोनिका ने सपने में नहीं सोचा कि ताजमहल देखने का जुनून उन्हें धोखेबाजी का शिकार होने को मजबूर कर देगा। मंगलवार को दिल्ली उतरते ही इन्होंने आगरा के लिए ऑनलाइन कैब बुक की और पैसा पहले ही चुका दिया, लेकिन आरोप है कि अजहरुद्दीन नाम के कैब ड्राइवर ने एयरपोर्ट पार्किंग फीस और फ्लाइट लेट होने का हवाला देकर एक्स्ट्रा पैसे मांगे। यही नहीं, इसने दोनों विदेशी सैलानियों को ताजमहल के पूर्वी गेट की बजाय पुरानी मंडी क्षेत्र में उतार दिया और 500 रुपए अतिरिक्त मांगे। भारतीय मुद्रा की जानकारी न होने के कारण फ्रांसीसी सैलानियों ने 500 की जगह 50 यूरो ड्राइवर को दे दिया, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए के बराबर थी। अच्छी बात यह रही कि एक गाइड ने जब पर्यटकों को यूरो देते देखा तो उसे शक हुआ। उसने फौरन पुलिस को बताया, जिसने ड्राइवर से 50 यूरो वापस करवाए। ठगी का एहसास होते ही महिला पर्यटक भावुक होकर रोने लगी और उन्होंने पुलिस का शुक्रिया किया।
14: The cops are really good with tourists in India, so we are safe now and it's okay. They help us for a problem, so you can go in.
1: होटल बुकिंग, खरीदारी, फर्जी गाइड, ऐसे ढेरों तरीकों से देशी विदेशी पर्यटकों को हमारे देश में निशाना बनाया जाता है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते, जिससे दुनिया भर में यह संदेश जाता है कि भारत विदेशी पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं, जिससे भारत को बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है और थाईलैंड जैसे छोटे पड़ोसी देश में भी भारत से 3 गुना ज्यादा विदेशी सैलानी पहुंच जाते हैं। जबकि साल 2022 में भारत को विदेशी पर्यटकों से 1,39,935 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली। PLFS यानी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 8,46,00,000 रोजगार पर्यटन उद्योग से पैदा हुआ, जिसने देश की GDP में 15.73 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो कुल अर्थव्यवस्था का 5.22% है। इसीलिए फ्रांस की जूलियट ईवा और वेरोनिका जैसी विदेशी सैलानियों से की गई ठगी सिर्फ भारत की छवि पर ही दाग नहीं लगाती, भारत के करोड़ों नौजवानों से रोजगार भी छीनती है। इसीलिए अगर आपके सामने किसी विदेशी मेहमान से ठगी हो तो चुप ना रहे, ताकि जूलियट ईवा और वैरानिका की तरह सभी विदेशी पर्यटक भारत से जुड़ी अच्छी यादों के साथ घर लौटें।
5: अब बात मध्य प्रदेश की, जहां का हेल्थ सिस्टम खुद कितना बीमार है, इसके चार लक्षण जुलाई महीने के 10 दिन के भीतर सामने आ चुके हैं। चार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहले इंदौर में पता चला कि वर्षों से बंद पड़े मेडिकल उपकरण के मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लाखों रुपया डकारा जा रहा था। फिर हमने आपको दिखाया कैसे इंदौर के खजराना में सरकारी अस्पताल के नाम पर, जहां एक ईंट नहीं रखी गई, उस कागजी अस्पताल के नाम पर 87 लोग भर्ती करके सैलरी भी पा रहे हैं। और अब दो और खुलासों ने बता दिया है कि अगर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जागे नहीं तो जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा भगवान भरोसे है। क्योंकि शहडोल में रिश्वत लेता डॉक्टर पकड़ा गया तो पता चला ये तो तीन तीन जगह से सैलरी ले रहा है। और तो और, दमोह से लेकर भोपाल तक फर्जी एमबीबीएस डिग्री के सहारे सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने वाले पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है।
1: नाम है डॉक्टर साहब का महेश शर्मा, शहडोल में संविदा पर नियुक्त डॉक्टर हैं। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा, लेकिन खेल और बड़ा मिला। पता चला शहडोल के सरकारी डॉक्टर महेश शर्मा तीन तीन जगह से तैनाती की सैलरी पा रहे हैं। शहडोल खरगोन और श्योपुर से एक ही डॉक्टर तीन जगह वेतन उठा रहा है।
15: लाभावित भी है, लेकिन ये जो है ये श्योपुर कला और शहडोल से भी में भी वेतन आ गया, अपनी न्यूज से पता चला है। अब ये हमारे यहाँ पे फरवरी 2023 से पदस्थ है, संविदा चिकित्सक है। तो इसकी अब यथास्थिति के लिए अभी हम पत्र जारी किए हैं कि क्या है बीएमओ को।
1: फर्जीवाड़ा यहाँ तक मध्य प्रदेश में चल रहा कि मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में पता चला फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर बनकर जनता का इलाज कर रहे हैं। दमोह से भोपाल तक एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के साथ नौकरी करते डॉक्टर मिले हैं। 5 लाख में एमबीबीएस की फर्जी डिग्री तैयार कराई, जिन्हें एनआरएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल में तैनात डेटा क्लर्क आदिल सिद्दीकी और हीरा सिंह मिलकर फर्जी डॉक्टर के तौर पर रखवा देते थे। भोपाल में 9 डॉक्टर की डिग्री फर्जी मिली है।
16: जो आदिल है उसका कहना है कि ये पूरा मामला जो है सिर्फ दमोह और भोपाल तक नहीं, बल्कि इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस को ऐसा शक है कि आदिल जो आईटी असिस्टेंट के तौर पे काम करता था, उसके पास आईटी से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारियां पहुंच जाती थी जिसका वो फायदा इस तरीके के घोटालों को अंजाम देने में कर रहा था।
17: तत्संबंध में जब हमने इसकी पुष्टि कराई मेडिकल काउंसिल से, और ये ज्ञात हुआ कि इनका रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने लगाया है वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन की रेप्लिका, मतलब एकदम हूबहू उसका कॉपी लगाया है, जिसमें इनका नाम बस अलग था। वो रजिस्ट्रेशन कुछ में कुछ के रजिस्ट्रेशन नंबर्स किसी और के नाम पर दर्ज हैं। तब इनके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है और इनको नौकरी से भी हमने टर्मिनेट किया है।
1: अब विपक्ष पूछ रहा है क्या मध्य प्रदेश में हेल्थ सिस्टम भगवान भरोसे है। सरकार का जवाब है कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं।
18: शासन की हॉस्पिटल और चिकित्सा सुविधाओं पर कोई साइकोलॉजिकल प्रेजेंस है ही नहीं। मंत्री 20 दिन रीवा में रहते हैं, कभी अस्पताल में जाके निरीक्षण नहीं करते हैं। अधिकारी कभी अस्पताल नहीं जाते हैं, कोई निरीक्षण नहीं करते हैं। इतना फैलाव और विस्तार है चिकित्सा सुविधाओं का, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है।
19: इसी और डिटेल छानबीन होगी और उसके निष्कर्ष जैसे ही आएंगे, तो चूंकि हमारे सिस्टम ने उसको पकड़ा भी है, तो इसलिए कोई भी कार्रवाई ऐसी होगी कि भविष्य में इस प्रकार के लैप्सेस होने की गुंजाइश भी न रहे और कोई ऐसा करने का।
1: पकड़ तो रहे हैं सरकार, लेकिन पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या चरमराई हुई है? जहां इंदौर में पहले मशीनों के नाम पर फर्जी मेंटेनेंस का घपला पकड़ा गया, फिर इंदौर के हवाई अस्पताल के नाम पर लोगों को नियुक्त कर सैलरी दी जाती रही, और अब डॉक्टरों के फर्जीवाड़े से फर्जी डॉक्टर तक। इन सब के बीच खड़ा है आम आदमी, जिसका इलाज कैसे होता है वही जानता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक हाईवे के पुल का हिस्सा गिर गया। यह घटना कल सुबह हुई। जहां हादसा हुआ वो नेशनल हाईवे 361 में आता है, नांदेड़ लातूर हाईवे पर। इस फ्लाईओवर का काम 1 साल पहले पूरा हुआ था। इस हाईवे पर 1100 करोड़ की लागत से काम हुआ है। कुछ जगहों पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन पुल का हिस्सा अचानक गिर जाने से 2 लोग जख्मी हो गए। अब दिल्ली की एनएचआई की टीम पुल गिरने की जांच करेगी। आखिर में आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंचे और 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का दौरा हुआ है। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।

0: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
1: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
0: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
2: Williams keeps it. First down. Touchdown.
0: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
5: गहरी सफाई,
4: हाँ, पावर वॉश का कमाल,
5: गहरी खुशबू
4: और प्यार भरी भी।
5: कैसे?
4: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
6: इसीलिए फेना ही लेना।
7: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओ ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: अभी तो चार्ज हुआ यार।
7: ओ ला बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
11: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
12: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
13: वाह वाह वाह वाह।
12: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
14: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
15: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
21: वी आर ओवर जिमी।
22: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
23: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
24: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
25: In association with
26: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विरोधियों को मंदिर के विकास, मंदिर के सौंदर्यीकरण पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं आता। वो अक्सर विरोधियों पर मंदिर बनाम कब्रिस्तान का सवाल उठाकर हमले करते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद तस्वीर बदली बदली दिखने लगी है। जिस राम मंदिर के निर्माण में अकूत पैसे खर्च किए गए, उसी राम मंदिर के भीतर चढ़ावे में सेंधमारी को लेकर हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। अब ये पता चला है कि कैसे चढ़ावे की चोरी करने वाले एक को 11 बनाने में लगे थे। पता चला है कि राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंकों और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। मशहूर कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। चढ़ावा चोरों को लगता था कि हुकूमत में अपने लोग बैठे हैं तो उनका बाल बांका नहीं हो सकता। उन्हें ये भी लगता है कि बड़े लोगों से नजदीकियां उन्हें किसी भी संकट से बचा लेंगी, लेकिन वो गलत थे, गफलत पे थे। जब पाप का घड़ा फूटा तो जेल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जांच एजेंसी ने करीब 30 खातों को फ्रीज कर दिया है और पैसों की धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल लूटकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अपराध की कलई खुलती जा रही है। पता चल रहा है कि कैसे चोरी के धन से आरोपी धन्ना सेठ बनने में लगे थे। चोरी के पैसे से जमीन, चोरी के पैसे से जेवरात, चोरी के पैसे से कार, चोरी के पैसे से शेयर खरीदे जा रहे थे। यानी कि आरोपियों के जबरदस्त वारे न्यारे हो रहे थे। अनुकल्प मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान करीब 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन करीब 6,70,000 रुपए में खरीदी गई थी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। यानी आरोपी अपनी मर्जी और बेफिक्री से चढ़ावे की चोरी करते, जायदाद बनाते रहे और ट्रस्ट के पदाधिकारी चैन की नींद सोते रहे। वैसे उन्हें इतने बड़े सिंडिकेट का पता नहीं चला, उन्हें कोई भनक नहीं लगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की जान संकट में बताई जा रही है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी जान पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ ने ट्रंप को खत्म करने की कसम खाई है। तेहरान से लेकर मशहद बाकायदा ट्रंप की हत्या की कस्में खाई और खिलवाई जा रही है। इसी बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिकी CIA को एक बेहद खतरनाक इनपुट दिया है, जिसके अनुसार ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बहुत बड़ी और नई साजिश रच रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के परिसर में नमाज हुई थी। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में यह सवाल जोर शोर से गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक दावे ने 23 साल पुराने पन्नों को खोल कर रख दिया है, जिसमें आरोप है कि साल 2003 में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी। आज आपको ऐतिहासिक तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए बताएंगे कि आखिर इस दावे का सच क्या है और क्या हमारे देश के पुरुष महिलाओं की ना का मतलब समझते हैं। इंडिया टुडे के ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे में जब यही सवाल देश की महिलाओं के सामने रखा गया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे के अनुसार करीब 25% पुरुष अब भी ना सुनने के बाद महिलाओं पर अपनी मर्जी थोपते हैं या नाराज हो जाते हैं। आखिर में वो खबर जो हर माता पिता को देखनी चाहिए, डराना, धमकाना, मजाक उड़ाना, जिसे हम बच्चों की आपसी लड़ाई कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो क्लासरूम बुलिंग आज हमारे बच्चों की जान ले रही है। जयपुर का अमायरा खुदकुशी केस इसका वो खौफनाक सच है, जिसने स्कूल प्रशासन, टीचर्स और पेरेंट्स की संवेदनशीलता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर बच्चे की किसी बात को आप हल्के में लेते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति पर मंडराते खतरे से जुड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के असासिनेशन की एक बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश का सूत्रधार ईरान है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों की संख्या 10-20 नहीं बल्कि करोड़ों में कर दी है। वैसे इस वक्त जो हालात हैं उसमें ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश के आरोप लगना हैरानी की बात नहीं है। कल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को ईरानी शहर मशहद के इमाम रजा कॉम्प्लेक्स में सुपुर्दे खाक किया गया। सबको लग रहा था कि अली खामेनेई के अंतिम क्रिया की सारी जिम्मेदारियां मुज्तबा खामेनेई निभाएंगे और शायद वो पहली बार दुनिया के सामने आएंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमलों के डर से ऐसा नहीं हुआ। कल अली खामेनेई के दूसरे बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने सारी जिम्मेदारियां निभाई। अली खामेनेई के इस अंतिम क्रिया कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सबकी आंखों में नमी थी और दिलों में अमेरिका और इसराइल के प्रति गुस्सा था। सबको पता है ईरान वॉर के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल हमले में अली खामेनेई मारे गए थे और इस बात का दर्द आज तक ईरानियों के दिलों को सता रहा है। इस दर्द को हाल ही में आए एक वीडियो ने ज्वालामुखी में बदल दिया। ये वीडियो उस जगह का था जहां पर हुए हमले में अली खामेनेई मारे गए थे। इस वीडियो में इमारत की हाल दिख रहा था। वीडियो से लगा कि हमला इतना भयानक रहा होगा कि लोगों के बचने की उम्मीद न के बराबर थी। कल आंखों में आंसू लिए ईरान के लोगों ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम दर्शन किए और केवल आप ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस बात से हैरान होंगे कि अली खामेनेई के 6 दिनों के अंतिम विदाई कार्यक्रम में 4,30,00,000 लोग शामिल हुए थे। इनमें 3,30,00,000 लोग ईरान के नागरिक थे और 1,00,00,000 लोग इराक में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। यानी देखा जाए तो ईरान का हर 3 में से 1 नागरिक अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जुड़ने वाली भीड़ को देखकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत हैरान हुए थे। एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि ईरान के लोग खामेनेई से नफरत करते हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने बाद में यह भी कहा कि हो सकता है कि ईरान के लोगों के ये आंसू नकली हों, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि शायद ऐसा नहीं है।

अपने धार्मिक नेता को खोने का दुख गुस्से का चरम रूप था और यह गुस्सा अमेरिका और इजराइल के नेताओं के ऊपर था। मशहद ही नहीं, अली खामनेई की अंतिम यात्रा का कारवां जहां जहां पहुंचा वहां लोगों ने डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए। कई पोस्टर्स में वी विल किल ट्रंप या किल बीबी लिखा हुआ था। बीबी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निकनेम है, यानी ईरान के लोग अपने धार्मिक नेता की मौत का बदला अमेरिका और इजराइल के नेताओं की मौत से लेना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अली खामनेई की अंतिम विदाई यात्रा के दौरान तेहरान में ईरान की आम जनता को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए भड़काया जा रहा था। यह एक तरह की शपथ दिलाने जैसा था। तेहरान में इस्लामिक कविताएं लिखने वाले मोहम्मद रसूली ने लाखों लोगों की भीड़ से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने का आह्वान किया था। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कस्में खाई और खिलवाई गई थी।

ईरान पर हमला और अली खामेनेई की मौत, इसने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। अभी कल ही उन्होंने कहा कि ईरान की हिटलिस्ट में सबसे पहला नाम उन्हीं का है। हालांकि तब उन्होंने ये बात बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, लेकिन अब इसराइल की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को एक ऐसी साजिश के बारे में बताया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी होगी। इसराइल की मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी में से एक माना जाता है, उसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को बताया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारने की एक नई साजिश रच रहा है। वो नए सिरे से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए योजनाएं बना रहा है और लोग तैयार कर रहा है। मोसाद को हाल ही में अपने एजेंट्स के जरिए यह जानकारी मिली थी, जिसे बिना देर किए उसने अमेरिका को दे दी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अगर ईरान द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची जा रही है तो इससे सीजफायर और शांति प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है। इसराइल की ओर से मिली इस नई खुफिया जानकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को सतर्क कर दिया। ईरान में वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को अब इस्लाम के दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है, जिसने उनके सबसे बड़े धर्म गुरु को मार दिया। इसीलिए ईरान और ईरान के लोगों से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी ईरान के पुराने दुश्मन हैं, इसीलिए ईरान की हुकूमत खुले तौर पर कहती रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेगी। मामला केवल अली खामेनेई को मारने का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में IRGC के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था। अली खामेनेई के बाद कासिम सुलेमानी एक ऐसा व्यक्ति था जो ईरान में काफी लोकप्रिय था। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी को बगदाद में एक ड्रोन अटैक में मार दिया गया था, और कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था। कासिम सुलेमानी ईरान की कुर्द्स फोर्स के चीफ थे, जो चाहते थे कि बगदाद में सैन्य शासन हो, जबकि अमेरिका वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहता था। हालांकि दोनों ही ISIS के खिलाफ लड़ रहे थे। इस जंग के दौरान एक दिन अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की कुद्स फोर्स पर आरोप लगाया कि वो इराक में अमेरिकी सेना और राजनयिकों पर हमले की योजना बना रही थी, और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर कासिम सुलेमानी हंट शुरू हो गया, जो 3 जनवरी 2020 को उनकी मौत के साथ खत्म हो गया। यानी ईरान के लोगों के दो सबसे चहेते लोगों की मौत की वजह डोनाल्ड ट्रंप है, और शायद इसी वजह से डेथ टू अमेरिका और वी विल किल ट्रंप जैसे नारे लगाए जाते हैं और ट्रंप की हत्या करवाने से जुड़ी खुफिया जानकारियां आती हैं।

ट्रंप के खिलाफ ईरानियों के गुस्से की एक वजह अली खामनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान हुए अमेरिकी हमले भी हैं। अली खामनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम 3 जुलाई से शुरू हुआ था जो 9 जुलाई तक चला, लेकिन इसके आखिरी चरणों में अमेरिका ने ईरान पर सीजफायर के बाद सबसे बड़े हमले कर दिए। 7 और 8 जुलाई को 170 ठिकानों पर हमले किए गए थे। माना जा रहा था कि 9 जुलाई को जब खामनेई के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा तब शायद अमेरिका हमला न करे, लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिकी सेना ने इस दिन भी हमला किया। दावा है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के बुशहर, चोगादक, कोनारक और बंदर अब्बास में हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इन हमलों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हालांकि अमेरिकी

आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में इन भारतीयों का योगदान 6 साल पहले 10 अरब डॉलर था, जो आज 37 अरब डॉलर हो चुका है, यानी 6 साल में करीब 4 गुना तरक्की। इस बात को न्यूजीलैंड भी समझता है और भारत भी। तमाम लोग न्यूजीलैंड से सिर्फ क्रिकेट का कनेक्शन समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच क्रिकेट का नहीं बल्कि हॉकी का हुआ था। यह मैच 1926 में हुआ था, जिसे 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी का यह पूरा दौरा एक बहुत ही सॉलिड प्लानिंग के तहत हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, यूरेनियम से जुड़े समझौते किए। न्यूजीलैंड में वो भारतीय किसानों और खेती की बेहतरी के लिए खास समझौते करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उसकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान खेती के सफल और आधुनिक तरीकों का है। सोचिए, भारत में खेत से निकलकर मंडियों तक पहुंचते पहुंचते करीब 30% फसल सड़ जाती है या बर्बाद हो जाती है, जिसका सीधा नुकसान किसान झेलता है। लेकिन न्यूजीलैंड की तकनीक ऐसी है कि वहां यह नुकसान केवल 6% है। पीएम मोदी न्यूजीलैंड से वही जादुई कोल्ड स्टोरेज, कल्टीवेशन तकनीक और फसल को बीमारी से बचाने की दवाई भारत लाने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि मामलों में बहुत आगे माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने न्यूजीलैंड से ही डेयरी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अमूल का आइडिया न्यूजीलैंड से ही मिला था। उन्होंने न्यूजीलैंड के कम्युनिटी डेयरी मॉडल फोंटेरा से ही सीखकर दूध का साम्राज्य खड़ा किया था। न्यूजीलैंड दूध, फल और कैश क्रॉप्स का राजा है। वहां की तकनीक और तरीके भारत के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सीधे किसानों के हित से जुड़ा है। इस दौरान भारत ने बहुत स्मार्ट कूटनीति खेली है। भारत ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड डील कर ली। इसे देखकर न्यूजीलैंड को लगा कि भारत का बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू की। अब वहां चुनाव होने वाले हैं, तो लक्सन चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इस डील को और बड़ा कर लिया जाए। इसीलिए पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचते ही उन्होंने 57% एक्सपोर्ट पहले दिन से ही हो जाएंगे टैरिफ फ्री करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है चीन। न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 54 लाख, जो भारत के एक बड़े शहर जितनी है, और यह छोटा सा देश पूरी तरह से व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हो गया, जिससे दिक्कतें होने लगी। तब न्यूजीलैंड को समझ आया कि एक पर निर्भर होना ठीक नहीं है, और न्यूजीलैंड ने भारत का हाथ थामना भी जरूरी समझा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ही हाथ नहीं मिला रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के उन 18 देशों को साथ लेकर चल रहा है जो चीन की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। इसीलिए यह दौरा चीन को घेरने और हमारे किसानों की जेब भरने की रणनीति से जुड़ा हुआ है।

और न्यूजीलैंड जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेलबर्न में होना हमेशा खास होता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट संबंध बेहद गहरे हैं। यहां बात सिर्फ मुलाकातों की नहीं है बल्कि पीएम मोदी ने इस दौरे में क्रिकेट डिप्लोमेसी का वो बड़ा छक्का भी जड़ा जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। आज जिस फटाफट क्रिकेट यानी T20 को देखकर पूरी दुनिया झूम उठती है उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2003 में पहली बार इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में 2020 का जन्म हुआ, लेकिन इस फॉर्मेट को असली ग्लैमर और लीग का रूप दिया ऑस्ट्रेलिया ने जब वहां 2005-06 में KFC 2020 बिग बैश शुरू हुआ। सिर्फ 6 राज्यों की 6 टीमें और 6 जनवरी 2006 को पहला मैच खेला गया और देखते ही देखते ये टूर्नामेंट सुपर हिट हो गया था। फिर आया सितंबर 2007 का वो महीना, जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप जीत लिया। इस मैच को दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। इस वर्ल्ड कप के दौरान ही BCCI ने

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का ऐलान कर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना बिग बैश लीग था उसी से प्रेरणा लेकर आईपीएल का विशाल ढांचा तैयार किया गया था और अब इतिहास का पहिया घूमकर वापस वहीं आ गया है। जिस लीग से प्रेरणा लेकर भारत ने आईपीएल शुरू किया आज उसी बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में होगा और इसके लिए चेन्नई के चिपॉक मैदान को चुना गया है। हालांकि इस साल दिसंबर के महीने में चेन्नई के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मेलबर्न यात्रा ने खेल की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला है जिसने क्रिकेट और कूटनीति दोनों को साथ ला दिया है।

0: अब आपको बताएंगे कि क्या आज से 23 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार और नमाज हुई। ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों के बाद खड़ा हुआ। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे ब्रजलाल ने यहां तक कहा कि 2003 में समाजवादी पार्टी के करीबी पुलिस अधिकारी ने हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़ाने की कोशिश की थी। आज आपको इसका पूरा सच तस्वीरों के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर खुलकर बोले हैं। जिस वक्त हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार की कोशिश हुई उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। यहां तक कि उन्होंने हनुमानगढ़ी में इसके विरोध में रैली भी की थी। लेकिन सवाल यह है कि आज योगी आदित्यनाथ को इतिहास की परतें खोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक हिंदुत्व की पिच पर बैकफुट पर खेलने वाला विपक्ष खुद को सबसे बड़ा सनातनी साबित करने की होड़ में जुटा हुआ है। कभी मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप झेलने वाली समाजवादी पार्टी अब जो सनातन है वही समाजवाद है के नारे लगा रही है। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए इतिहास का पन्ना खोल दिया। उन्होंने वर्तमान के दावों को 2003 के हनुमानगढ़ी इफ्तार विवाद के आईने में खड़ा कर समाजवादी पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की है और कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
0: आज हम इतिहास को खंगालते हुए इन आरोपों का पूरा सच आपको बताएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। पूरा घटनाक्रम साल 2003 का है, जब मायावती की सरकार गिरने के बाद 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इससे ठीक एक हफ्ते पहले 22 अगस्त 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दी थी, जिसमें बताया गया कि विवादित ढांचे के नीचे 12वीं सदी के प्राचीन मंदिर के अवशेष और स्तंभ मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में 17 अक्टूबर को संकल्प दिवस और कार सेवा का बड़ा आह्वान किया था, जिसकी वजह से अयोध्या में माहौल तनावपूर्ण था। सरकार के सामने कानून व्यवस्था को संभालने के साथ अपने कोर वोटर को भी भरोसा दिलाने की चुनौती थी। यहीं से शुरुआत हुई एक सॉफ्ट काउंटर की, जिसके मुख्य केंद्र बने हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत ज्ञानदास। उस समय वो हनुमानगढ़ी के सबसे ताकतवर संतों में से एक थे और विश्व हिंदू परिषद की उग्र हिंदुत्व की राजनीति के धुर विरोधी थे। महंत ज्ञानदास मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। पिछले साल का उनका बयान भी चर्चाओं में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया में मुलायम सिंह से अच्छा नेता कोई नहीं। 2003 में महंत ज्ञानदास की उदारवादी छवि और उनके रसूख का इस्तेमाल करके अयोध्या का माहौल शांत करने और वीएचपी के आंदोलन को कुंद करने के लिए योजना बनाई गई। ये तारीख थी 20 नवंबर 2003 की और तब मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा था। उस दौरान महंत ज्ञानदास ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के नाम पर एक जोरदार पहल की। उन्होंने हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के विशाल परिसर के भीतर स्थित अपने आधिकारिक निवास पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक लेकिन विवादित इफ्तार में अयोध्या के बड़े मुस्लिम चेहरे शामिल हुए। इसमें बाबरी मस्जिद के तत्कालीन पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली उर्फ बाबू टेलर भी थे। इसके अलावा करीब 500 मुसलमान इस रोजा इफ्तार के लिए पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान लखनऊ जोन के तत्कालीन आईजी सरकार को खुश करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के नियमों को ताक पर रखने के लिए तैयार थे। वो देश भर में बड़ा संदेश देने के लिए इस आयोजन को हनुमानगढ़ी की छत पर या मंदिर के ठीक सामने मुख्य सड़क पर सार्वजनिक रूप से करवाना चाहते थे, लेकिन जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी ने इस कथित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि हनुमानगढ़ी के मुख्य परिसर या सार्वजनिक सड़क पर ऐसी नई परंपरा की शुरुआत से हिंदू संगठन भड़क सकते हैं और अयोध्या में माहौल बिगड़ सकता है। जब सड़क पर अनुमति नहीं मिली तो यह कार्यक्रम हनुमानगढ़ी परिसर में ही महंत ज्ञानदास के घर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन रोजा इफ्तार के बाद नमाज के लिए ज्यादा जगह की जरूरत महसूस हुई तो महंत ज्ञानदास के आवास की बाहरी सीढ़ियों पर चटाई बिछाई जाने लगी। ये सीढ़ियां हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य रास्ते से भी सटती थी। तब सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें तुरंत वहां से हटवा दिया ताकि कोई कानूनी या धार्मिक मर्यादा न टूटे, जिसके बाद आवास के अंदर ही नमाज हुई और इसके लिए दीवारों पर बने देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक प्रतीक भी ढक दिए गए, जो तस्वीरों में साफ नजर आता है। हनुमानगढ़ी परिसर में हुई इस रोजा इफ्तार और नमाज का दूसरे हिंदू संतों और संगठनों ने जोरदार विरोध किया। हनुमानगढ़ी के ही महंत धर्मदास और महंत मधुसूदन दास ने विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से फैजाबाद की सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि मंदिर के उपनियमों के अनुसार 52 बीघे के इस पवित्र परिसर के भीतर किसी भी गैर सनातन धार्मिक गतिविधि या नमाज की अनुमति नहीं दी जा सकती। उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार का जोरदार विरोध किया था और इसके विरोध में रैली भी की थी, जिसका दावा महंत धर्मदास ने भी किया है। 2005 में जब रमजान के दौरान तीसरे साल भी हनुमानगढ़ी में इफ्तार की तैयारी चल रही थी, तब विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के बाहर 10 दिनों का उग्र धरना शुरू कर दिया। इसी बीच 1 अक्टूबर 2005 को कोर्ट ने यहां रोजा इफ्तार पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसकी वजह से 2005 में हनुमानगढ़ी में इफ्तार नहीं हो सका और विश्व हिंदू परिषद और तमाम संतों ने हनुमानगढ़ी में घी के दिए जलाकर दिवाली से पहले दीपावली मनाई। लेकिन जनवरी 2006 में कोर्ट ने महंत धर्मदास की मुख्य याचिका को ही खारिज कर दिया और पूर्व में लगाए गए स्टे को हटा लिया, यानी कानूनी रूप से इफ्तार के आयोजन को गलत नहीं माना गया। हालांकि अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद भी 2006 के बाद हनुमानगढ़ी में फिर कभी इफ्तार नहीं हुआ। इसके पीछे आंतरिक दबाव और कानून व्यवस्था से जुड़ी वजह रही, क्योंकि अखाड़ों के भीतर महंत ज्ञानदास का तीव्र विरोध शुरू हो गया था। उन्हें अखाड़े से निष्कासित करने की भी चेतावनी दी गई। एक दूसरे मामले को लेकर महंत ज्ञानदास और महंत धर्मदास के समर्थकों में झड़प भी हुई थी। चौतरफा घिरे महंत ज्ञानदास ने आखिरकार हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार से तौबा कर ली।
2: हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाई। तब हम लोग कोर्ट में गए और वहां पर हनुमान जी की दया से आपके पक्ष में आर्डर भेजा कि हनुमानगढ़ी एरिया में, जितने दूर में हनुमानगढ़ी के एरिया है, उसमें कोई भी अवैधानिक का नाम है हिंदू परंपरा के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, करता है तो उसको रोका जाए और दंड दिया जाए। लेकिन इन लोगों को कोई दंड नहीं किया गया, माफी मांग लिए कि हमसे गलती हो गया, वो इनको छोड़ दिए।
0: उस समय भी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के मुद्दे का सियासी इस्तेमाल हुआ और धार्मिक मुद्दे को सियासी अखाड़े में बदल दिया गया। और आज जब उत्तर प्रदेश एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो सियासी दल धार्मिक पिच पर सियासी पारी खेलने उतर चुके हैं। अखिलेश यादव का सनातन प्रेम और योगी आदित्यनाथ का इतिहास टटोलना दिखा रहा है कि सनातन फिर से सियासत का हिस्सा बन चुका है। इसलिए जब अखिलेश यादव सनातन ही समाजवाद है का नारा दे रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ कार सेवकों पर गोली चलाने से लेकर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की कोशिशों का रीप्ले कर रहे हैं। हमारी अगली रिपोर्ट पारिवारिक संबंधों के एक ऐसे पहलू पर है जिसकी चर्चा खुले मंचों पर अक्सर नहीं होती। दरअसल ये चर्चा एक सवाल के तौर पर उठती है। सवाल ये कि क्या हमारे देश के पुरुष नो मीन्स नो का मतलब समझते हैं? हालांकि ये सवाल पुरुषों से नहीं बल्कि महिलाओं से पूछा जाना चाहिए। इंडिया टुडे के ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे में हमने यही किया। हमने इसी तरह के कुछ अनछुए सवालों को देश की महिलाओं के सामने रखा। हमें इन सवालों के जो जवाब मिले वो हमारे भारतीय समाज का सच है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि समाज की कितनी महिलाएं संबंधों में कंसेंट यानी सहमति का असली मतलब समझती हैं। इस सवाल का जो जवाब हमें मिला उससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे देश की 62.5% उच्च शिक्षित महिलाएं संबंधों में सहमति का मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाओं की तुलना में बेहतर समझती हैं। यानी महिलाएं जितना शिक्षित हो रही हैं वो अपने अधिकारों के प्रति और संबंधों में ना कहने को लेकर जागरूक होती हैं। इसके बाद सर्वे में एक बड़ा सवाल पूछा गया। महिलाओं से पूछा गया किसी काम को करने का उनका मन नहीं होता तो वो अपने पार्टनर को ना कैसे कहती हैं। इसके जवाब में 56% महिलाओं ने बताया कि वो सीधे ना कह देती हैं। 21% ने कहा कि उन्हें ना कहने में दिक्कत आती है और वो बहाने बनाती हैं। 20% महिलाओं ने कहा वो चाह कर भी ना नहीं कह पाती। यानी महिलाओं में अपनी इच्छा के प्रति जागरूकता तो आई है लेकिन अभी भी कुछ महिलाओं में ना कहने को लेकर हिचक है। लेकिन सर्वे में एक और बात पता चली है। देश की 79% महिलाएं किसी भी तरह की परिस्थितियों में नो मीन्स नो के विचार का समर्थन करती हैं। यानी वो मानती हैं कि महिलाओं की ना का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हमारा अगला सवाल यही था कि संबंधों में महिलाओं द्वारा ना कहने पर उनके साथी उन्हें कितना समझते हैं, यानी पुरुष नो मीन्स नो को कितना सम्मान देते हैं। 56% महिलाओं ने कहा कि उनके साथी ना कहने पर तुरंत समझ जाते हैं और फैसले को पूरा सम्मान देते हैं। 13% महिलाओं ने कहा कि उनके साथी उनकी ना सुनने के बाद विचार बदलने का दबाव डालते हैं। 12% महिलाओं ने कहा कि ना सुनने के बाद उनके पार्टनर उन पर ज्यादती का आरोप लगाते हैं और नाराज हो जाते हैं। 10% महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने साथी को मना करने की या किसी तरह सीमा तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति और इच्छाओं को सम्मान दिया जाता है? हमारा अगला सवाल यही था। सर्वे में महिलाओं से पूछा गया कि क्या भारतीय समाज में उनकी सहमति और इच्छाओं को सम्मान मिलता है। 29% महिलाओं ने इस सवाल का जवाब हां में दिया। 47% महिलाओं ने कहा ऐसा कभी कभी होता है। 21% महिलाओं ने सीधे सीधे इनकार किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति और इच्छा को सम्मान नहीं दिया जाता। माना जाता है कि कई बार महिलाओं की इच्छाओं और सहमति को स्वीकार करना उनके परिवार के पुरुषों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस सर्वे में महिलाओं से पूछा कि क्या भारतीय पुरुष जैसे पिता, भाई, पति या अन्य परिजन महिलाओं की सहमति के अधिकार को समझते या उसका सम्मान करते हैं। 62% महिलाओं ने इसका जवाब हां में दिया और 26% महिलाओं ने कहा कुछ समझते हैं कुछ नहीं। केवल 7% ने जवाब ना में दिया। यानी भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव तो आ रहा है जिसमें महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। हालांकि अभी भी महिलाओं और पुरुषों में इस तरह की सहमति और इच्छाओं को लेकर कुछ संकोच है लेकिन स्थिति फिर भी बेहतर हुई है। भारत के कॉलेजों में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद देश भर के कॉलेजों के लिए रैगिंग के खिलाफ कड़ा कानून है। कॉलेजों में रैगिंग के खिलाफ समाज में जरूरी जागरूकता भी दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूलों में 4th, 5th, or 8th तक की छोटी क्लासेस में भी क्लासरूम बुली यानी किसी बच्चे को किसी साथी बच्चे से परेशान किया जाना देश के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है? क्या क्लासरूम बुली पर टीचर्स, स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और सरकार को और ज्यादा संवेदनशील और सतर्क होने की जरूरत नहीं है? यह सवाल जयपुर के बहुचर्चित अमायरा खुदकुशी केस के नए तथ्यों से सामने आया है। क्लास 4 में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा ने 1 नवंबर 2025 को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस की जांच में घटना वाले दिन क्लासरूम में क्या हुआ इसका सिलसिलेवार ब्यौरा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह साबित करने की कोशिश की कि क्लासरूम में अमायरा और दूसरे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान अमायरा ने अपनी बात क्लास में मौजूद टीचर पुनीता शर्मा को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अमायरा की बात पर तवज्जो नहीं दिया। इसी के बाद बच्ची क्लासरूम में तेजी से निकली और फिर चौथे मंजिल पर चली गई। पुलिस से हासिल इसी सीसीटीवी और जांच के इसी पहलू के आधार पर अमायरा के परिवार ने एक वीडियो जारी किया है। परिवार द्वारा जारी सीसीटीवी वीडियो पर वॉइस ओवर है, जिसे पुलिस की जांच के निष्कर्ष के आधार पर अमायरा के परिवार ने तैयार किया है। आप भी उसी वीडियो के आधार पर तैयार हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
3: अभी भी सही सेक्शंस नहीं लगे हैं। JJ 75 लगा है, जो कि पुनीता शर्मा क्लास टीचर पे लगा है। सिर्फ वो इंदु दुबे और सौरभ मोदी पे नहीं लगा। अबेटमेंट टू सुसाइड लगना चाहिए, बिल्कुल। आप वीडियो देखेंगे आप देख पाएंगे कि उसको किस तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया गया है। वो एकदम खुश स्टेट ऑफ माइंड में आपको डांस करते हुए दिखेगी, और उससे उसकी कैसी हालत कर दी कि वो जाके चौथी मंजिल से कूद गई।
4: अमायरा सबसे पहले क्लासरूम में आती है और बिल्कुल सामान्य दिखती है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड क्लासरूम में आती है। अमायरा उससे मिलती है। दोनों के बीच एक नॉर्मल स्कूल इंटरेक्शन जैसा दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद अमायरा डांस क्लास में जाती है। वो बाकी बच्चों के साथ एक्टिविटी में शामिल होती है। वो पार्टिसिपेट करती है, डांस करती है और पूरे समय एक नॉर्मल एक्टिव चाइल्ड की तरह दिखाई देती है। फिर अमायरा वापस क्लासरूम में आती है। ये वही डिजिटल स्लेट है जो क्लासरूम में अलाउड नहीं होनी चाहिए थी। क्लासरूम के अंदर टीचर की मौजूदगी में बच्चे उसे निकालते हैं और उस पर कुछ लिखते दिखाई देते हैं। फिर वही डिजिटल स्लेट बार बार अमायरा को दिखाई जाती है। यहीं से अमायरा की बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू होती है। जो बच्ची कुछ देर पहले नॉर्मल थी, वही अब असहज दिखाई देने लगती है। जिस डिजिटल स्लेट पर बार बार कुछ लिखकर उसे दिखाया जा रहा था, जिस वजह से वो परेशान और एम्बेरस दिखाई दे रही थी, इस समय अमायरा की बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाती है कि वो हेल्प चाहती है। वो चाहती है कि टीचर इस बात को रोके। लेकिन तभी अमायरा के आगे बैठा बच्चा भी टीचर के पास आ जाता है। वो अमायरा की तरफ इशारा करता है और क्लास टीचर से कुछ कहता दिखाई देता है। अब जिस बच्ची ने खुद कंप्लेन करने के लिए टीचर के पास कदम बढ़ाया था, उसी मोमेंट में बात फिर उसके ऊपर घूमती हुई दिखाई देती है। क्लास टीचर कुछ बच्चों के पास जाती हैं। वो बच्चों से बात करती दिखाई देती हैं और उसी दौरान अमायरा की तरफ इशारा करके कुछ कहती हुई नजर आती हैं। यही वो मोमेंट है जहां अमायरा की बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा हिला देने वाली दिखाई देती है। और फिर अमायरा एक आखिरी बार क्लास टीचर के पास जाती है, लेकिन टीचर की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रिक्ट दिखाई देती है, जैसे अमायरा को फिर किसी सीरियस कॉन्सिक्वेंस या एक्शन जैसी बात से डराया जा रहा हो। और फिर बातचीत के बीच ही अमायरा अचानक क्लास से बाहर निकल जाती है। और अब वही 9 साल की बच्ची स्कूल बिल्डिंग में अकेली भाग रही है, लेकिन कोई फ्लोर अटेंडेंट उसे रोकता हुआ नहीं दिखता। कोई टीचर तुरंत उसके पीछे जाती हुई दिखाई नहीं देती। क्लासरूम में एंटी बुलिंग रिस्पॉन्स नहीं दिखा, काउंसलिंग सपोर्ट नहीं दिखा,
5: और पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई कि क्लासरूम के अंदर अमायरा से ऐसा क्या कहा गया जिसने एक 9 साल की बच्ची को इतना डरा दिया कि वो इतना गंभीर कदम उठा बैठी।
0: आप सोचिए, अगर अमायरा मामले में पुलिस की जांच का यह पहलू सही है तो कितनी गंभीर बात है। 2017 में टीचर फाउंडेशन और विप्रो अप्लाइंग थॉट इन स्कूल्स नाम की संस्था ने 5 साल के शोध के बाद एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार क्लास 4 से क्लास 8 के 42% बच्चे और क्लास 9 से क्लास 12 के 36% बच्चे स्कूल में दूसरे साथी बच्चों से परेशान किए जाने के शिकार होते हैं। डराया जाना, तंग किया जाना, अपमानित किया जाना, मजाक उड़ाया जाना और लड़ाई झगड़े इसका हिस्सा है। स्कूल में जो बच्चे दूसरे बच्चों की प्रताड़ना करते हैं वो भी उतने ही वल्नरेबल हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद इतनी समझ नहीं होती। पर सवाल है कि स्कूलों में इस समस्या से निजात पाने का उपाय क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 साफ कहता है कि बच्चों की जिस पर जिम्मेदारी है या जिसका नियंत्रण है, वो अगर खुद बच्चों की प्रताड़ना करता है या प्रताड़ना को नजरअंदाज करता है, उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अमायरा के मामले में क्लास में मौजूद टीचर पुनीता शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अमायरा का पक्ष सुनती और उसे साथी बच्चों से बचाती, लेकिन पुलिस चार्जशीट के अनुसार उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया। पुलिस चार्जशीट में पुनीता शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत आरोप दाखिल किए गए हैं, लेकिन अमायरा का परिवार चार्जशीट में स्कूल की प्रिंसिपल इंदु दुबे और स्कूल चेयरमैन सौरभ मोदी पर जेजे एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर सवाल उठा रहा है।
3: अभी भी सही सेक्शंस नहीं लगे हैं, जेजे 75 लगा है जो कि पुनीता शर्मा क्लास टीचर पे लगा है, सिर्फ वो इंदु दुबे और सौरभ मोदी पे नहीं लगा। अबेटमेंट टू सुसाइड लगना चाहिए बिल्कुल। आप वीडियो देखेंगे, आप देख पाएंगे कि उसको किस तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया गया है। वो एकदम खुश स्टेट ऑफ माइंड में आपको डांस करते हुए दिखेगी और उससे उसकी कैसी हालत कर दी कि वो जाके चौथी मंजिल से कूद गई।
0: अमायरा के परिवार ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक अलग केस दाखिल किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में नीरजा मोदी स्कूल पर सीबीएसई जांच रिकॉर्ड रखा गया है। 2024 से 2026 तक स्कूल में 102 नई टीचर भर्तियों में सिर्फ 17 ऐसे टीचर्स की भर्ती हुई जिनके पास जरूरी योग्यता थी, जबकि 85 टीचर्स के पास जरूरी योग्यता नहीं थी। प्राइमरी टीचर कैटेगरी में सभी 52 टीचर्स की योग्यता मानकों के अनुसार नहीं थी। यहां हम साफ करना चाहते हैं कि यह मसला किसी एक खास स्कूल का नहीं है, सवाल है व्यवस्था का, जहां बच्चों को बुली होने से बचाने का इंतजाम नहीं है। इसकी बड़ी वजह क्वालिफाइड शिक्षकों की कमी साफ नजर आती है। और अब हम आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के तनाव के ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। पाकिस्तान की फौज और अफगान तालिबान पिछले साल अक्टूबर से आमने सामने हैं। जून के आखिर में पाकिस्तान की वायुसेना ने आधी रात को डूरन लाइन के पास अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार में हमले किए। हमले में 35 से ज्यादा अफगानी नागरिक मारे गए। मृतकों में 4 से 9 साल के बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। 100 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए। अक्टूबर 2025 से यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बच्चों और बुजुर्गों समेत आम नागरिकों को निशाना बनाया। 16 मार्च को पाकिस्तान ने काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसमें 269 आम नागरिकों की जान चली गई थी। पिछले साल के आखिर में कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच अस्थायी युद्ध विराम कराया और इस साल मार्च में ईद के समय 3 दिनों का युद्ध विराम हुआ, लेकिन हर बार पाकिस्तान की बदनीयती से संघर्ष दोबारा शुरू हो गया। इसी हफ्ते पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स के साथ बैठक की थी। इसके बाद ISPR के बयान में तालिबान पर भारत की मदद से आतंकवाद को बढ़ावा देने का मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि POJK में हाल ही में हुए पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव को जिंदा रखना चाहता है। उधर अफगानिस्तान, जो 1893 में अंग्रेजों द्वारा तय की गई डूरन लाइन को कभी स्वीकार नहीं कर सका है, उसके लिए वहां सुरक्षा को मुस्तैद रखना बेहद जरूरी है। आज तक संवाददाता मीर फरीद तालिबान के नियंत्रण वाले इसी डूरन लाइन के इलाके में पहुंचे। वहां तालिबान किस तरह सुरक्षा का घेरा बनाए हुए है अफगानिस्तान के पक्तिका से, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।

0: आज तक की टीम पहुंची है ड्यूरेंट लाइन पे। ड्यूरेंट लाइन नाम आपने बहुत सुना होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ और हर कोई ड्यूरेंट लाइन की बात करता है। आज हम आपको दिखाएंगे ड्यूरेंट लाइन और इस वक्त हम हैं शमखनी जो कि ड्यूरेंट लाइन का ही इलाका है और मेरे आसपास जैसे आप देख रहे होंगे तालिबान के जो जवान हैं यहाँ पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जो कन्फ्लिक्ट हुआ है और जो लगातार एरियल स्ट्राइक्स हैं बॉर्डर पे, जो पाकिस्तानी आर्मी ने गोलीबारी की है, तालिबान ने उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है और काफ़ी टेंशन है। लेकिन तालिबान के जवान जो हैं जिसको आप कहेंगे लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी कि तैयार हैं अगर कोई भी एग्रेशन होता है उसका जवाब देने को। लेकिन बात हम फिर से करेंगे ड्यूरेंट लाइन की और आपको इन दृश्यों के साथ रखेंगे। पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है लेकिन तालिबान सरकार जो है इस लाइन को नहीं मानती। हालात जो हैं अभी भी एज पे हैं, तालिबान के जो जवान हैं पूरी नज़र बनाए हुए हैं, जो भी उनकी पोजीशनिंग है और ज़्यादा जो है उसको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। जैसे मैंने कहा कि अफगान जो जवान हैं उनको लड़ने के लिए दूसरा बहाना नहीं चाहिए, यही वो सीख के पले बड़े हैं और यही बात वो पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि हम जो हैं पैदा ही हुए हैं लड़ाई के लिए और वॉर मशीन्स हैं। तो वो भी एक चीज़ है अगर आप इस पूरे जो बैलेंस है इसमें, जहां साफ तौर पे एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान के पास है लेकिन जो गुरीला वॉर टेक्टिक है, जो लड़ने की जो क्षमता है, जो एक अनएंडिंग जो एग्जॉस्ट ना होने वाली क्षमता है, वो तालिबान और अफगानिस्तान के सोल्जर्स के पास है। छापेमारी उनका जो है स्पेशलिटी है और वो पाकिस्तान जो है बखूबी जानता है। तो साफ तौर पर ये जो मुद्दा है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसका हल होना अभी दिख नहीं रहा। जहां फ्रेजाइल सीज फायर चलता है वहीं पूरी जो है आशंका है कि दोबारा फ्लेयर अप हो सकता है किसी मुद्दे पे और मेरे पीछे जो ड्यूरेंट लाइन है ये फिर से जो है हॉट हो सकती है। तो साफ तौर पे फिर एक बार आपको दिखाएंगे ये जो यहाँ से ही तालिबान की पोजीशनिंग जो है शुरू होती है। मल्टी टेयर उन्होंने जो है यहाँ सिक्योरिटी अपनी लगाई हुई है, उनकी गाड़ियां हैं और चप्पे चप्पे पे जो है उन्होंने नजर रखी हुई है। ये मैसेज साफ है कि हम यहां से कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने हमसे छेड़ा तो फिर हम जो है कोई लिहाज भी नहीं देखेंगे। मीर फरीद, ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान, आज तक।
1: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
7: गहरी सफाई,
6: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
7: गहरी खुशबू
6: और प्यार भरी भी।
7: कैसे?
6: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
8: इसीलिए फेना ही लेना।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey! लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
13: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
12: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी है।

गलती किसकी थी, दोषी कौन, जिम्मेदारी किसकी, लापरवाह कौन कि राम के धाम में चोरी का कलंक लग गया। ट्रस्ट कहता है कि 6 जुलाई की बैठक के बाद व्यवस्था में तेजी से सुधार किया जा रहा है। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बन गए। अब बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। जहां दान की गिनती होगी वहां 43 लोग रहेंगे। 13 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लग गए। दान पेटी को कक्ष तक पहुंचाने के लिए 27 निजी सुरक्षा कर्मी रखे गए। दान पेटियों के पास अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए। बाकी आगे का काम संभालने के लिए ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए सर्च कमेटी बन चुकी है। सीईओ आते ही सारा मामला पटरी पर आ जाएगा, वरना सरकार से लेकर अदालत तक तमाम रास्ते खुले हुए हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
3: गहरी सफाई।
4: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
3: गहरी खुशबू
4: और प्यार भरी भी।
3: कैसे?
4: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
5: इसीलिए फेना ही लेना।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं, कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते, और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन लिया वापस, कहा पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात, अखिलेश का पोस्ट पराजय काल विपरीत बुद्धि। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, कल भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। 20% एथेनॉल नीति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुरानी गाड़ियों के लिए सादे पेट्रोल के विकल्प की मांग, बिना जानकारी मिश्रित पेट्रोल बेचने पर प्रश्न। और खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया अपना ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत रहेगी जारी लेकिन खत्म हो गया है युद्ध विराम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है। और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है, पकड़ा है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चढ़ावा चोरी की गांठ खोजने में जुट गए हैं, क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पहुंचते हैं। सबको लगा कि आज योगी चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की नई पॉलिटिक्स उन्होंने खेल दी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं चढ़ावा चोरी की लड़ाई कैसे नमाज तक आई।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की गांठ ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की SIT रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की गांठ हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर BJP, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं। अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया, उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, कहा था उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए। तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो उसके पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे। तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जमकर घेर रहे हैं और आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी और संघ श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार्ड हिंदुत्व से विपक्ष को घेर रहे हैं।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए, यह मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहां आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: सिर पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापिस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
12: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेट

0: और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
1: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
2: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
3: और अब खबर कुदरत के कोहराम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा कर रख दिया। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। क्या सड़कें, क्या घर, हर तरफ बाढ़ का कब्जा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि हमारे देश के 18 राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के साथ साथ आधी तूफान चलने की आशंका है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: आप पानी देख रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांग है कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप

0: समझ सकते हो क्या हाल होगा।
1: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी।
0: नाला बना दिया,
1: हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
2: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। श्यानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है, तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
3: ये स्याना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है, तो ये वो स्थान है स्याना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। स्याना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
2: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी स्याना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी स्याना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
3: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है, यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स, और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी, वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
2: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है, और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है।
4: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए दशक में हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ट्रंप के पीछे मुश्तबा की मुख्तार यूनिट, क्या है ट्रंप की हत्या का प्लान। आप देखते रहिए दस्तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Bueno,
6: ESPN Radio.
9: How they looked after game one.
10: I mean, they were frustrated.
6: The Daily.
11: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
12: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
3: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
3: अर्ज किया है,
2: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
4: वाँ वाँ वाँ वाँ।
2: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
5: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
6: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: पापा,
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
12: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU,
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: वी आर ओवर जिमी।
17: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
18: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
19: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
22: In association with
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
23: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
24: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: क्या दुनिया इतिहास के सबसे बड़े तेल संकट की ओर बढ़ रही है? ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने हुआ शांति समझौता महज चंद दिनों में बारूद की तरह उड़ गया। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। तेहरान का एक ही सूर हॉर्मुज पर अब ईरान का नया नियम मानना ही होगा। बीते 4-5 दिनों के भीतर हॉर्मुज की लहरें खून से लाल हो चुकी हैं। तेहरान की मर्जी के बिना गुजर रहे जहाजों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरान ने सीधे गोलियां बरसाई। इसके बाद एक और तेल टैंकर को ईरानी नौसेना ने घेर कर निशाना बनाया। जवाब में अमेरिकी सेना ने जवाबी गोलीबारी की तो ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय अमेरिकी युद्ध पोतों पर मिसाइलें तान दी। दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों तक और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। साफ है कि जो परमाणु मुद्दा पिछले जंग की वजह था वो अब पीछे छूट चुका है। हॉर्मुज ही इस महायुद्ध का ग्राउंड जीरो बन गया है। ईरान इस गोल्डन वेपन से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका इसे ईरान के नियंत्रण में जाने नहीं देगा। ईरान ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिकी आक्रमण नहीं थमे तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का ठप होना और महाविनाश तय है। आज तक ब्यूरो।
1: मेरठ में 2 दिन पहले कचहरी रोड पर हुए इस लाठीचार्ज की घटना ने यूपी में दलित वोट की सियासत को सुलगा दी है। दरअसल ये प्रदर्शन 15 मई को हुई एक दलित युवती की हत्या के बचे हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग पर किया जा रहा था, जिसमें प्रदर्शनकारियों को उकसाकर पुलिस पर हमले की कोशिश की गई। उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ और महिला पुलिसकर्मी समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी दौरान मौके पर मौजूद एसएसपी अविनाश पांडे ने पकड़े गए प्रदर्शनकारियों में से एक नेता को कैदी वाहन में जाकर थप्पड़ भी मारा था और उसके बाद 13 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। दरअसल चुनावी सीजन में मुद्दा सूंघते फिर रहे सियासी दलों को इस मामले में सियासत का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट करके पुलिस अन्याय और प्रदेश प्रमुख पर सवाल उठा दिए तो नए दलित नेता बने चंद्रशेखर ने बीजेपी को दलित विरोधी दमनकारी बता दिया, जिसके 2 दिन बाद मायावती ने ऐसे सियासतदानों से दलितों को सतर्क किया है।
2: लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है।
1: दरअसल मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़े तथ्य हैं कि मेरठ के टोपी नगर इलाके में 15 मई को ललिता गौतम नाम की युवती लापता हुई थी, जिसका शव 17 मई को रोहटा इलाके से मिला था। पुलिस ने 24 घंटे में मुख्य आरोपी पूर्व परिचित युवक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके साथ युवती बाइक पर गई थी और बाद में 2 सह आरोपी भी गिरफ्तार हुए। लेकिन पीड़ित परिवार और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, जिसके बाद 3 पुलिस महिला अधिकारियों ने विवेचना की जानकारी पीड़ित परिवार को देकर संतुष्ट किया था, जिसके सबूत पुलिस के पास हैं। पुलिस का आरोप है कि उसके बाद दूसरे जिलों के जिला बदर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने मिलकर पीड़ित परिवार को पैसों का लालच दिया और इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: हुर्मुज पर कब्जे की जंग, ईरान अड़ा है, अमेरिका तैयार खड़ा है। ईरान ने हुर्मुज को बनाया ब्रह्मास्त्र, अमेरिका ने भी तान दिए हथियार। दुनिया के तेल गैस पर कब्जे का ईरानी प्लान, ट्रंप बोले करेंगे नाकाम। अब हुर्मुज पर छेड़ेगा महायुद्ध, अमेरिका इजराइल फिर करेंगे अटैक। आईआरजीसी को मुश्तबा का ऑर्डर, मुश्तबा के दिमाग से निकला डर। आयतुल्ला अली खामिनेई की 6 दिनों की अंतिम यात्रा के दौरान ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ साथ दुनिया के सामने 3 मैसेज क्लियर कर दिए हैं। पहला तो ईरान आगे भी जंग का सामना करने के लिए पूरी तरह से एकजुट है। दूसरा, हुर्मुज पर ईरान सिर्फ और सिर्फ अपना कब्जा चाहता है। तभी उसने खामिनेई की अंतिम यात्रा के दौरान कतर के एलएनजी टैंकरों को उड़ा दिया, वो कतर जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवा रहा है। और तीसरा, ईरान में खामिनेई के बदले की आग धधक रही है और वो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या भी करवा सकता है। पहले बात स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की करते हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जिसने इस जंग में दुनिया को चपेट में ले लिया, वो हुर्मुज जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापार मार्ग है, जहां से वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई, युद्ध भी रुक गया, लेकिन ईरान ने हुर्मुज पर अपना लालच नहीं छोड़ा। दुनिया उस वक्त एक बार फिर से हिल गई जब ईरान ने हुर्मुज में कतर के जहाजों पर हमला बोल दिया और जवाब में अमेरिका को ईरान पर हमले करने पड़े। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इतिहास के सबसे बड़े तेल संकट की ओर बढ़ रही है? ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने हुआ शांति समझौता महज चंद दिनों में बारूद की तरह उड़ गया है। वजह है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जिसे ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। तेहरान का एक ही सुर है, हुर्मुज पर अब ईरान का नया नियम मानना ही होगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर ईरान क्या चाहता है? जब आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी ने तेहरान के डिप्टी मेयर का इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ईरान हुर्मुज में टैक्स वसूलना चाहता है।
1: There is a very simple line in Strait of Hormuz. Either you coordinate with the Iranian officials to pass through the Strait of Hormuz, or there would be some attacks or some, let's say, measures taken against allowing ships to pass. Or you would be considered a threat, and a threat is simply dealt with missiles or drones or whatsoever in order to prevent any threat to happen and occur in.
0: व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हुर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हुर्मुज पर ईरान के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के तय हुए रास्ते से ही जहाज गुजर सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि ये सच नहीं है। सच ये है कि मई के महीने में ही अमेरिकी सेना ने 800 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को हुर्मुज से आने जाने में मदद की है और इस बेहद अहम व्यापार रूट से 380 बिलियन बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल निकला है। उधर ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका ने हमला जारी रखा तो हुर्मुज सामान्य नहीं हो पाएगा और कई देशों को आर्थिक नुकसान होगा। आईआरजीसी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो हुर्मुज स्ट्रेट और आसपास के इलाकों में जहाजों की आवाजाही में दखल ना दे। आईआरजीसी ने कहा है कि इस अहम समुद्री रास्ते पर दूसरे देशों का कोई अधिकार नहीं है। अब एक तरफ तो सुप्रीम लीडर मुश्तबा के ऑर्डर पर हुर्मुज में अमेरिका से नई जंग लड़ने के लिए भी चैलेंज हो रहा है तो दूसरी तरफ खबर ये है कि अब मुश्तबा खामिनेई के दिमाग से अमेरिका और इसराइल का डर निकल रहा है। पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते हैं मुश्तबा, आयतुल्ला खामिनेई की शोक सभा में नजर आ सकते हैं मुश्तबा। मुश्तबा पर अमेरिका ने रखा 92 करोड़ का इनाम, अब क्या होगा? जी हां, ईरान की तस्नीम न्यूज के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा अपने पिता आयतुल्ला अली खामिनेई के लिए सार्वजनिक शोक सभा की अगुवाई कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 11 जुलाई को फातिमा मासूम बेग की मजार में स्थित इमाम खुमैनी प्रार्थना हॉल में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुश्तबा के सिर पर अमेरिकी इनाम के चलते वो 6 दिनों तक चली आयतुल्ला अली खामिनेई की अंतिम यात्रा में कहीं भी नजर नहीं आए। कहा गया कि मुश्तबा किसी सीक्रेट बंकर में अंडरग्राउंड हैं। आपको ये भी बता दें कि आयतुल्ला खामिनेई की मौत के लगभग 10 दिन बाद 8 मार्च को मुश्तबा खामिनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। 12 मार्च को मुश्तबा ने अपना पहला लिखित संदेश जारी किया था। उनके संदेश को एक टीवी एंकर ने पढ़ा था जिसमें मुश्तबा ने बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद से मुश्तबा खामिनेई दर्जनों संदेश जारी कर चुके हैं। हालांकि उनके सभी संदेश लिखे हुए रहते हैं जिन्हें सरकारी टीवी पर पढ़ा जाता है। हाल ही में 18 जून को उनका एक अहम बयान सामने आया था जिसमें मुश्तबा ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत को उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है, भले ही उनकी राय अलग थी। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां 56 साल के मुश्तबा खामिनेई को लगातार टारगेट कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुश्तबा के दिमाग से अमेरिका और इजरायल का खौफ निकल चुका है और अब वो ईरान को नया मैसेज देना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: दर्शक मैं आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विरोधियों को मंदिर के विकास, मंदिर के सौंदर्यीकरण पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं आता। वो अक्सर विरोधियों पर मंदिर बनाम कब्रिस्तान का सवाल उठाकर हमले करते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद तस्वीर बदली बदली दिखने लगी है। जिस राम मंदिर के निर्माण में अकूत पैसे खर्च किए गए, उसी राम मंदिर के भीतर चढ़ावे में सेंधमारी को लेकर हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। अब ये पता चला है कि कैसे चढ़ावे की चोरी करने वाले एक को 11 बनाने में लगे थे। पता चला है कि राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंकों और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। मशहूर कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। चढ़ावा चोरों को लगता था कि हुकूमत में अपने लोग बैठे हैं तो उनका बाल बांका नहीं हो सकता। उन्हें ये भी लगता है कि बड़े लोगों से नजदीकियां उन्हें किसी भी संकट से बचा लेंगी, लेकिन वो गलत थे, गफलत में थे। जब पाप का घड़ा फूटा तो जेल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जांच एजेंसी ने करीब 30 खातों को फ्रीज कर दिया है और पैसों की धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल लूटकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अपराध की कलई खुलती जा रही है। पता चल रहा है कि कैसे चोरी के धन से आरोपी धन्ना सेठ बनने में लगे थे। चोरी के पैसे से जमीन, चोरी के पैसे से जेवरात, चोरी के पैसे से कार, चोरी के पैसे से शेयर खरीदे जा रहे थे। यानी कि आरोपियों के जबरदस्त वारे न्यारे हो रहे थे। अनुकल्प मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान करीब 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन करीब 6,70,000 रुपए में खरीदी गई थी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। यानी आरोपी अपनी मर्जी और बेफिक्री से चढ़ावे की चोरी करते, जायदाद बनाते रहे और ट्रस्ट के पदाधिकारी चैन की नींद सोते रहे। वैसे उन्हें इतने बड़े सिंडिकेट का पता नहीं चला, उन्हें कोई भनक नहीं लगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TalkSport presents The S-Word
3: with Will Gavin and Master Tesfacion.
4: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
5: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
4: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
5: Remember, around here, we use the F-Word.
4: Never The S-Word.
2: The S-Word, available now on TuneIn,
3: wherever you get your podcasts,
2: and on the S-Word YouTube channel.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
7: गाड़ी कितना माइलेज देती है. भारत में कार मोटरसाइकिल चलाने वालों का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है. इस सवाल को गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने विज्ञापनों में खूब भुनाया है. लेकिन अब यही सवाल राजनीति की बहस में है. वजह बना है E20 पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला हुआ गाड़ी का ईंधन. पहले सोशल मीडिया, फिर विपक्ष ने E20 पेट्रोल पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है. सवाल गाड़ी की माइलेज पर है, चिंता गाड़ी के इंजन की सेहत पर है, वार पलटवार E20 लागू करने के तरीके पर है, आरोप एथेनॉल के नाम पर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत पर है, और पूछा ये भी जा रहा कि अगर 20% एथेनॉल मिला हुआ है तो पेट्रोल पंप पर कीमतें क्यों नहीं घटी हैं. सरकार की E20 नीति पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधने की कोशिश की है. दोनों मंत्रियों ने आरोपों और चिंताओं को खारिज किया है.
8: देखिए, there are 20 crore two wheelers on the road. There are 20 lakh four wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers, there are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest?
9: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
10: पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ. क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
9: जी,
10: आपको कोई तकलीफ हुई
9: अभी तक?
10: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते हैं आप मुझे?
9: अपना पर्सनल जान पहचान के?
10: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ.
9: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे.
10: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है. टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है. अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है. दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है.
9: हाँ.
10: गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा.
7: E20 पेट्रोल पर शुरू हुई बहस पर पेट्रोलियम मंत्रालय फैक्ट शीट जारी कर चुका है. सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि E20 से कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है. साथ ही E20 नीति को टेस्टिंग के बाद ही लागू किया गया है. लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में नहीं चूक रहा. विपक्ष के पास अखबारों में छपी ARAI की एक अप्रकाशित रिपोर्ट भी है, जिसमें माइलेज पर असर पड़ने की बात कही गई है.
11: 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का. मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ. एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो.
12: पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है. बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें बर्बाद, कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं. पर गड़बड़ी कहां है? ये सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है.
13: सच पे पर्दा डालने का काम तो सिर्फ नेतृत्व करता है. लॉबी से प्लांट करवा रहे हैं, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं. कितना झूठ बोलोगे भाई? आम आदमी परेशान है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. लीक हो गया परीक्षा में, टंकी लीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वोट लाने का एक मंत्र आपने डेवलप कर लिया।
7: E20 नीति के विरोधियों का सवाल इस बात पर भी है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। वैसे जब E20 पर सरकार को घेरा जा रहा, तब इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति न तो नई है और न अकेले भारत में लागू की गई है। इसीलिए असली सवाल यही है कि पेट्रोल में एथेनॉल का सच क्या है। आज तक ब्यूरो।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: आज तक मेरे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन लिया वापस, कहा पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात, अखिलेश का पोस्ट पराजय काल विपरीत बुद्धि। एमपी के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, पार्टी के सभी पार्षदों ने भी छोड़ा पद। और ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, कल भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। और खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया अपना ऐलान, ईरान के साथ बातचीत रहेगी जारी लेकिन खत्म हुआ युद्ध विराम, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दो दिन पहले हमने इसी वारदात में आपको जयपुर की 24 साल की आयुषी की कहानी सुनाई थी। वही आयुषी जिसने एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी मां का कत्ल कर दिया था। अब दो दिन बाद ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि मां से एक साल पहले इसी आयुषी ने अपने पिता का भी कत्ल कर दिया था, पिता की सरकारी नौकरी पाने के लिए। ये इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद आयुषी के मामा ने लगाया। इस सिलसिले में उन्होंने जयपुर पुलिस को एक शिकायत भी दी है। ये तस्वीर याद है ना आपको, अभी दो दिन पहले ही इसी वारदात में दिखाई थी। ये 24 साल की आयुषी है। तस्वीर जयपुर के एक पुलिस स्टेशन की है। इस तस्वीर को हजार बार देख लीजिए पर आयुषी के दिल दिमाग को कभी पढ़ नहीं पाएंगे। अगर जरा सा भी कोई पढ़ पाता तो दो दिन पहले ही पता चल चुका होता कि आयुषी ने सिर्फ अपनी मां का कत्ल नहीं किया है बल्कि मां से पहले पिता का भी कत्ल कर चुकी है। यकीन नहीं आता ना, हमें क्या, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। एक बेटी एक साल के अंदर अपने माँ बाप दोनों का कत्ल कर दे, कोई यकीन करे भी तो कैसे।
1: आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी माँ की हत्या की है।
2: पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा।
0: अगर ये सच है तो सचमुच ये सच डरावना है। अभी तक तो दिल दिमाग यही मानने को तैयार नहीं हुआ कि 24 साल की ये बेटी सिर्फ एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी मां का कत्ल कर सकती है। अब ऊपर से कोई कैसे यकीन करे कि 24 साल की यही बेटी मां से पहले अपने बाप का भी कत्ल कर चुकी है। यानी ये सच अगर सच है तो ये वो बेटी है जिसने एक साल के अंदर अपने माँ बाप दोनों को मार डाला। ये उसी आयुषी के मामा है राकेश कुमार शर्मा। राकेश कुमार शर्मा ने जयपुर पुलिस को एक ऐसी शिकायत सौंपी है जो झकझोर देने वाली है। राकेश कुमार ने जयपुर पुलिस से कहा है कि उनकी भांजी ने अपनी मां से पहले अपने पिता का भी कत्ल किया है। अगर पुलिस इसकी जांच करेगी तो सच सामने आ जाएगा।
2: तो जो मेरे जीजाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजिशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए, 90% आपके जीजाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में। अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है।
0: तो सुना आपने, बकौल आयुषी के मामा एक साल पहले आयुषी ने अपने पिता विजय शर्मा को मार डाला था। दरअसल विजय शर्मा की मौत 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। 2024 में विजय शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तब उन्हें जयपुर के नामचीन सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिसंबर 2024 में विजय शर्मा ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आए लेकिन तब भी वो बेड रेस्ट पर ही थे। इसी बीच दिसंबर 2024 में ही घर आने के कुछ दिन बाद ही आयुषी और उसका कजन बलराम विजय शर्मा को ये कहकर घर से ले गए कि किसी अच्छे अस्पताल में उन्हें भर्ती करेंगे और वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगले 3 महीने तक विजय शर्मा का कुछ पता नहीं चला। जब भी आयुषी की माँ नीरज शर्मा उससे पूछती तो वो कहती कि उसने उन्हें एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कर रखा है और वो ठीक हो रहे हैं। चूंकि आयुषी का छोटा भाई मानसिक रूप से बीमार है और हर वक्त किसी न किसी एक को उसके साथ रहना जरूरी है, इसीलिए नीरज शर्मा बेटे को अकेला छोड़ बाहर जा भी नहीं सकती थी। पर कई बार टोकने पर आयुषी ने एक दिन माँ से कहा कि उसने पापा को दिल्ली रोड पर नीम्स अस्पताल में भर्ती कर रखा है।
3: पुलिस अब तक यह जांच कर रही थी कि आयुषी ने अपने माँ नीरज शर्मा को क्यों और कैसे मारा, मगर अब जांच ये हो रही है कि आयुषी ने क्या अपने पिता विजय वशिष्ठ को भी मारा है। मामा राकेश शर्मा ने कहा कि माँ नीरज शर्मा जब जिंदा थी तो अक्सर बेटी के साथ झगड़ा होता था कि पिता को लेकर कहाँ गई थी जब वो बीमार थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और इस बात को हमेशा बेटी आयुषी दबाना चाहती थी, इस पर बात करने से परहेज करती थी, जिसकी वजह से माँ बेटी में हमेशा झगड़ा होते रहता था।
0: बार बार माँ नीरज शर्मा के पूछने पर फिर एक दिन आयुषी ने कहा कि पापा निविक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। यह सुनकर जब आयुषी की माँ और मामा अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर दोनों सन्न रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक विजय शर्मा के फेफड़े में पानी भर चुका था और 90% ऑर्गन फेल हो चुके थे।
1: उसके पिताजी जो थे पहले निविक अस्पताल में एडमिट थे, जिनको ब्रेन ट्यूमर था, और हॉस्पिटल में लगभग 90% पिताजी उसके बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन उस लड़की ने, आयुषी ने जो है, ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर उसको किसी अन्य जगह पे किराए का कमरा लेके रखा था और उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी माँ कई बार उससे पूछताछ करती थी कि मेरी कि कहाँ पर है फादर, किस तरह की तबीयत है, क्या है, वो कुछ भी नहीं बताती थी। और एक दिन अचानक से जो है उसके मामा को और उसके मदर को फ़ोन करके बोलते हैं कि पिताजी जो है वो आईसीयू में एडमिट हैं। जब हम लोग आईसीयू में गए और वहाँ जाके पता लगा तो निविक हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि साहब इनकी बॉडी जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। जब यहाँ से पर हम लोगों ने इनको रिकवर कर दिया था, फिर अचानक से इनकी तबीयत एकदम से ख़राब कैसे हो गई और उसके

0: साजिश थी।
1: 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में, और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है।
2: तो बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में इनकी डेथ हुई थी, तो ना तो इनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया गया, हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ बताई गई थी, जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी, वो दवाइयाँ, वो ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया, और इस वजह से जो उनकी जो है डेथ हो गई। तो इन सबकी जिम्मेदार जो है वो आयुषी है।
3: आयुषी के मामा के मुताबिक जब अप्रैल 2025 में आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत हुई, तब उसी वक्त आयुषी ने पिता की जगह अनुकंपा पर राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी के लिए अपने आप ही फॉर्म भर दिया था। लेकिन जब मामा के कहने पर आयुषी की मां ने अपने पति की जगह नौकरी कर ली, तब आयुषी नाराज हो गई। बाद में वो मां से जयपुर के दोनों मकान और 5 बीघा जमीन उसके नाम करने की जिद करने लगी।
4: मामा राकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि भतीजा बलराम ही आयुषी को समझाता था कि अगर अपने पिता को मार देती है तो उनकी जगह पर अनुकंपा पर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, मगर जब माँ की नौकरी लग गई तो फिर बलराम ने समझाया कि माँ को भी मारना पड़ेगा और फिर नौकरी लगेगी। आयुषी ने पूछताछ में बताया है कि सुबह से शाम तक बलराम के साथ वो एक ही मुद्दे पर बात करती थी कि कैसे इन्हें मारना है, माँ को कैसे रास्ते से हटाना है, जिसकी वजह से ये सोच ही नहीं पाई कि इस अपराध का क्या परिणाम होगा।
3: आयुषी के मामा का दावा है कि उनकी बहन नीरज शर्मा की मौत से 2 दिन पहले आयुषी और उसकी माँ के बीच झगड़ा हुआ था। तब आयुषी ने अपनी माँ को धमकी दी थी कि अगर मैं अपने बाप के फूड पाइप यानी खाने की नली को निकाल कर उसे मार सकती हूँ तो तुम क्या हो। नीरज शर्मा ने ये बात अपने भाई को बताई थी। असल में विजय शर्मा और नीरज शर्मा अपने पीछे जयपुर में 2 घर के अलावा कुल 14 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए। यानी आयुषी बाप की जगह सरकारी नौकरी तो चाहती ही थी, बाप की सारी दौलत पर भी उसकी नजर थी।
2: आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी माँ की हत्या की है, और टोटल जो संपत्ति थी लगभग 14 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 5 बीघा खेत है और 2 प्लॉट हैं। इसको हथियाने के लिए और उसके अलावा जो अनुकंपा पर जो उसकी माँ को पिताजी की जगह जो उसकी माँ की नौकरी मिली थी, उस नौकरी को हथियाना वो चाहती थी, और वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से नौकरी जो है उसको मिल जाए, और लेकिन वो किसी भी ये नहीं चाहती थी कि माँ जो है वो नौकरी करे।
4: मामा राकेश शर्मा ने कहा कि आयुषी ने अपनी माँ नीरज शर्मा से मौत से 2 दिन पहले कहा था कि जब अपने पिता विजय वशिष्ठ की भोजन नली निकाल कर उसे मार सकती हूँ तो तुम क्या चीज हो। उसके बाद माँ नीरज शर्मा डर गई थी और उसी के बाद घर में किलाबंदी की गई, और नीरज शर्मा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया था कि बस अब मैं 2 दिनों के मेहमान हूँ, 2 दिन ही मेरी जिंदगी में बचे हैं।
3: माँ से पहले पिता को मार डालने की शिकायत मिलने के बाद जयपुर पुलिस ने भी कहा है कि वो इसकी जांच करेगी। हालांकि नीरज शर्मा के मर्डर केस में आयुषी के साथ शामिल उसका कजन बलराम अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और ये वही बलराम है जिस पर आयुषी के साथ मिलकर माँ से पहले आयुषी के पिता के भी कत्ल का इल्जाम है।
5: परिवादी पक्ष ने निश्चित ही एक परिवाद अभी उपस्थित होकर पेश किया है, जिसमें उस परिवाद के बिंदु हैं, उन पर गहन जांच हम सुनिश्चित करेंगे, और इसमें भी जो अनुसंधान है वो जारी है, जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
6: ये क्या परिवाद दिया है, किस
5: जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध में, जो बलराम आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिवाद आया है।
6: नहीं, कह रहे हैं कि उसके पिता की जो मौत हुई उसकी भी जांच कराई जाए,
5: उसके संबंध में परिवाद में जो भी बिंदु है वो सक्षम अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी।
6: वही पूछ रहा हूं, क्या चाहते हैं
5: वो? यही चाहते हैं, उनके मुख्य बिंदु यही है कि एक तो मुख्य आरोपी जो है उसमें उसकी गिरफ्तारी हो जाए, और कुछ एक नाम उन्होंने खुलासा किया है कि इन नाम जो ये व्यक्ति हैं इनके संबंध में भी जांच हो, ताकि उनकी जो भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में उसकी जो खुलासा हो सके।
6: पूछताछ उसने कुछ बताया उनकी, ऐसा क्यों दिमाग में आया?

0: जैसा कि आपको विदित है कि इसमें जो संपत्ति है उसके संबंध में लगातार ही विवाद था परिवार में, और नौकरी के संबंध में भी लगातार ही जो है एक कलह की स्थिति बनी हुई थी, और इसी के चलते जो ये पूरा षड्यंत्र है उसको रचा गया।
1: मां से नफरत की कोई वजह?
0: रिश्तों में अनबन ही सामने आ रही है।
2: आयुषी बार बार पूछताछ में कह रही है कि उसका बचपन बहुत बुरा गुजरा है। हालांकि जब भी पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या बुरा गुजरा है, वो खामोश हो जाती है। पता करने के लिए अब मनोचिकित्सकों का भी सहारा लिया जाएगा। हालांकि वो ये कह रही है कि उसे अपने भाई से बहुत प्यार था और प्यार है, मगर माँ उसके भाई को ज्यादा प्यार करती थी और कभी भी उसके साथ माँ का रिश्ता अच्छा नहीं रहा।
3: अब आइए आपको बताता हूँ कि एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए 3 जुलाई को आयुषी ने 7 लाख की सुपारी देकर अपनी माँ नीरज शर्मा का कत्ल कैसे करवाया था। भरतपुर से सुरेश फौजदार और विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। पिता के बाद माँ को मारने के लिए आयुषी ने दूसरा तरीका अपनाया। वो चाहती थी कि जैसे पिता की मौत पर किसी को शक नहीं हुआ, ठीक वैसे ही उसकी माँ की मौत भी एक हादसा नजर आए, और बस इसीलिए उसने अपने ताऊ और कजन के साथ मिलकर अपनी माँ की मौत को सड़क हादसा दिखाने की साजिश रची। लेकिन सीसीटीवी के एक कैमरे ने सारी साजिश खोल कर रख दी। ये 24 साल की आयुषी है, इस वक्त जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी माँ की सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी उसी माँ का कत्ल करवा दिया। हमारे रिपोर्टर शरद कुमार से थाने में आयुषी का आमना सामना हो गया। शरद ने आयुषी से ये पूछा कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसी को क्यों मार डाला, क्या माँ को मारने का कोई अफसोस है। शरद सवाल पूछते गए लेकिन आयुषी ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, बाकी पूरे वक्त वो यूं ही इसी तरह बस देखती रही, बुत बनकर खड़ी रही।
4: कितना पढ़ाई किए हो?
5: लास्ट ईयर किए।
4: थोड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप? माँ से मिलती थी आप? खर्चा वर्चा कौन देता था? माही देती थी ना। सर ठीक ठीक ठीक ले जाओ। हार्ट को रही।
3: जो जवाब आयुषी ने नहीं दिए, चलिए वो हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। बात 3 जुलाई की है, शाम के करीब 4:46 हुए थे। आयुषी की मां नीरज शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट में LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क है, मानसिक रूप से बीमार अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक गई थी। बेटे को क्लिनिक में छोड़कर वो वापस घर लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिल्कुल सड़क के किनारे किनारे चल रही नीरज शर्मा को जोर का टक्कर मारते हुए निकल जाती है। नीरज शर्मा हवा में उछलते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरती है। लगभग मौके पर ही वो दम तोड़ चुकी थी। इस हादसे के फौरन बाद नीरज शर्मा की बेटी आयुषी को जैसे ही माँ की मौत की खबर मिली, उसने अपने मामा को रोते हुए सड़क हादसे की बात बताई। बाद में परिवार वाले नीरज की लाश उनके गांव रूपावास ले गए और वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन गांव में आयुषी के हाव भाव को देखकर आयुषी के मामा को कुछ शक हुआ। उन्होंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा कि एक बार एक्सीडेंट की जांच करवा लीजिए। मामला राजस्थान हाई कोर्ट के एक सरकारी कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत का था, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस तफ्तीश के दौरान सबसे पहले पुलिस के हाथ सीसीटीवी कैमरे की यही तस्वीर लगी। जहां पर यह हादसा हुआ था उसके बाईं तरफ इसी घर में यही वो सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर देखकर पुलिस भी हैरान थी। सड़क चौड़ी थी, खाली थी। नीरज शर्मा सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे चल रही थी, तो फिर स्कॉर्पियो ने बिल्कुल किनारे जाकर उन्हें टक्कर क्यों मारी?
5: लेकिन उसके बाद जब मौका देखा घटना स्थल पे, तो मौके में एक फुटेज में ये इंसिडेंट मिल गया हमें, जो किसी के घर लगा हुआ था सीसीटीवी, और उसको देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त और कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। काफी चौड़ी सड़क थी, महिला बिल्कुल एक तरफ चल रही थी और पीछे से गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में आकर के उसको टक्कर मारी, जिससे साफ क्लियर था कि ये इंटेंशनली टक्कर मारी गई है।
3: अब पुलिस ने आसपास के और भी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस बीच एक कैमरे में नजर आया कि जिस सफेद स्कॉर्पियो से नीरज को टक्कर मारी गई थी, वो कुछ दूरी पर काफी पहले से खड़ी थी। एक और सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर उसी जगह पहले से खड़े थे। इसके बाद जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, वो दोनों लड़के बिना नीरज की तरफ देखे ही वहां से फौरन निकल गए। बाद में कुछ आगे वही स्कॉर्पियो भी सड़क किनारे लावारिस मिली। सीसीटीवी कैमरे से यह साफ हो गया था कि मामला एक्सीडेंट का नहीं है। स्कॉर्पियो से यह भी खुलासा हो गया कि इसे किसने किराए पर लिया था। भरतपुर से सुरेश फौजदार और विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
8: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
9: I have no idea how this election is going to play out,
8: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
10: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है। लेकिन अब ये हाथ जो है, जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में, खासतौर पर तेहरान के इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: फ्रेंड्स, ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: मैदानों के साथ साथ अब पहाड़ों पर हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरे, जिसके बाद से यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को रोकना पड़ा। इसके बाद लंबा जाम लग गया। पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने यात्रियों से जहां है वहीं रहने की अपील की गई है।
6: लगातार हो रही बारिश के चलते जो गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे है वो जगह जगह पर बंद हो गया है। लगातार 14 घंटे से बारिश लगी हुई है और इसके चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे की यदि बात की जाए तो सिलाई बैंड और स्याना चट्टी के पास पूरी तरह से बंद हुआ है। एहतियातन प्रशासन के द्वारा यात्रियों के वाहन को रोका जा रहा है, यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी आवाजाही के लिए मना किया गया है।
5: वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से पानी झरनों की तरह बह रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक को रोक रोक कर आगे बढ़ाया जा रहा है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे ही नहीं, आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर भी लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ से गिरे बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं, जिसके बाद रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, साथ ही कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और टीना साहू के साथ आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एक बड़ी खबर इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति से आ रही है, मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के विरोध में उनके समर्थक जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं और ये हंगामा काफी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है और इसी से नाराज हैं, कई सारे इस्तीफे हो चुके हैं और पार्षद, दतिया के पार्षद ने भी इस्तीफा दे दिया है, दतिया के नगर अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो जबरदस्त इस्तीफों की झड़ी लग गई है। दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को तगड़ा झटका देते हुए आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, कितना दबाव पार्टी संगठन पर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक बना पाए हैं अभी तक या बना पा रहे हैं?
2: देखिए सही जी, दबाव की राजनीति तो लगता नहीं कि शायद नरोत्तम समर्थक बना पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि आशुतोष तिवारी ही वहां से अब उम्मीदवार होंगे और इस बात की उम्मीद कम ही है कि इसको इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी पलटेगी, क्योंकि 13 तारीख आखिरी दिन है नामांकन की और उससे ठीक पहले टिकट देकर के भाजपा ने स्पष्ट
1: किया। अच्छा रवीश, ये बताइए, बड़े नेता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री रह चुके हैं और हिंदुत्व का मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा रहे हैं, आपने खूब कवर किया है उन्हें और एक समय तो ये भी हो रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी लगातार किनारा कर रही है नरोत्तम मिश्रा से?
2: देखिए सही जी, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के मध्य प्रदेश में और ऐसे समय पे उपचुनाव हो रहा है, तो ये सिर्फ एक उपचुनाव ना होकर के माना जा रहा था कि एक लिटमस टेस्ट था भाजपा के लिए कि 2.5 साल के कार्यकाल पे कहीं अगर बाजी उल्टी पड़ जाती तो ये सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं हारती बीजेपी बल्कि जो वर्तमान सरकार है उसके कामकाज पर भी असर पड़ता और ये माना जाता कि जनता ने उसके कामकाज पर
1: तो यही हम समझना चाह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा पे भरोसा क्यों नहीं इतने बड़े नेता।
2: देखिए जो संगठन ने भी सर्वे करवाया था, आपको बताया कि आरएसएस का एक सर्वे हुआ था और एक भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हुआ था और उसमें करीब 90% लोगों ने, जो कि गैर राजनीतिक लोग थे, करीब 300 लोगों का एक पैनल था बताया गया है जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है। इन 300 से ज्यादा लोगों से जब पूछताछ की गई, इनसे बयान लिए गए,
1: तो आशुतोष तिवारी आगे रहे ऐसा ही ना रविश, थोड़े से समय की कमी है।
2: करीब 90% लोगों ने विरोध में कहा था कि नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट मिले,
1: 90% लोगों ने
2: पड़ सकती है, करीब 90% गैर राजनीतिक लोग,
1: ठीक,
2: और इसकी वजह से ही माना जा रहा है कि संघ के सर्वे में भी और भाजपा के सर्वे में।
1: रविश धन्यवाद, समय की कमी है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए टिकट दिया है, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। बारिश में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक को हुए नुकसान को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई। कल फडणवीस ने विधानसभा में विपक्ष पर भाड़े वाला बयान दिया, तो आज देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को सुपारीबाज बता दिया। उधर शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व वाला वार करके सिद्धिविनायक मंदिर के दान में हुई लूट मामले पर निशाना साधा है।

0: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक के बारिश में डैमेज होने पर महाराष्ट्र का सियासी पारा और चढ़ गया है। 9 जुलाई को फडणवीस ने मिसिंग लिंक पर सवाल पूछने पर जोरदार पलटवार किया था।
1: उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं।
0: विपक्ष के हमले के बाद लगा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस बैकफुट पर नजर आएंगे, लेकिन आज सीएम फडणवीस और ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिखे। फडणवीस ने कहा कि मेरे शब्दों से कुछ लोगों को मिर्ची लगी तो मैं अपने शब्दों को बदल देता हूँ।
1: परवा मी विधानसभेमध्ये भाषण केल्यानंतर अनेक लोकांना माझ्या भाषणाची मिर्ची लागली। मी बोलता बोलता त्या ठिकाणी हिंदीमध्ये बोललो, भाडे के टट्टू। काही लोकांना त्याचे दुःख झालं आणि ते म्हणाले मुख्यमंत्र्यांनी सुसंस्कृत बोलायला पाहिजे होतं। म्हणून नानाभाऊ जाऊन मी अभ्यास केला आणि आता मी भाडे के टट्टू हे माझं वाक्य परत घेतो आणि त्याला सुसंस्कृतपणे भाटक गदर्भ म्हणतो। भाडे के टट्टू नाही, भाटक गदर्भ। आणि जर कोणाला समजलं नसेल तर मग सुपारी भास। पण मी तर काही सुपारी बाजांबद्दल बोललो, मी टोपी फेकली होती। अनेकांना का लागली मला समजलं नाही, अनेक लोकांना ती लागली, पर ते जाऊ द्या। आता मी एक वाक्य हिंदीमध्ये बोललो, आता आशिष जी ते ज्यांना समजायला पाहिजे म्हणून बोललो त्यांच्याऐवजी दुसऱ्यालाच मिरची लागली। आणि आमचे मिमिक्री आर्टिस्ट मला म्हणायला लागले हिंदीत का बोलले, पूर्ण भाषण मी मराठीतच केलं। पण मला काही अडचण नाही, ते आमचे मित्र आहेत आणि ते मित्र असल्यामुळे राजकारणात तर त्यांच्यापासून आम्हाला काही धोका नाही, पण आनंद आहे ते राजकारणात आहे। ते जर मिमिक्रीच्या क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँडअप कॉमेडियनला या ठिकाणी मार्केट राहिलं नसतं।
0: सुना आपने कैसे मुख्यमंत्री फडणवीस एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को मिमिक्री आर्टिस्ट बताकर तंज कस रहे हैं। फडणवीस ने राज ठाकरे पर हमला क्यों बोला, उसके लिए आप पहले राज का ये बयान सुनिए।
2: मुख्यमंत्री फडणवीस भाषण विधानसभा मधल कुठला मिसिंग लिंक वरती मने ते काय कोसळला, खांब कोसळला आणि पाणी सगळीकडनं येतंय, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, दुसऱ्यांच्या सरकार जेव्हा होती दुसऱ्यांची त्यावेळेला तुम्ही काय करत होतात? त्यावेळेला जी आंदोलनं झाली ते राजकारण नव्हतं? एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। अरे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी?
0: दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जो मिसिंग लिंक बनवाया था उसे बनाने में 6,700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन ये लिंक इस मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। उद्घाटन के 9 हफ्तों के भीतर ही 6 जुलाई को लैंडस्लाइड से इसका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। किरकिरी के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने इसे दैवीय घटना बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, जिसके बाद आरोपों से नाराज सीएम फडणवीस ने विधानसभा में भाड़े वाला बयान दिया था, जिसकी आलोचना विपक्ष अभी भी कर रहा है।
3: ये सरकार बौखला गई है और इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का संतुलन बिगड़ गया और उस आधार पे उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या, क्योंकि सवाल पूछना ये आम पब्लिक का काम है और वो पूछेंगे, क्योंकि आपको जवाबदारी, आप कोई राजा हो नहीं, आप सेवक हो और सेवक ने लोगों का हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए हम मुख्यमंत्री के जो बयान से उसकी निंदा हम करते हैं।
0: आदित्य ठाकरे भी मुख्यमंत्री फडणवीस के खिलाफ चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं।
4: जो भाषण था फडणवीस साहब का, एक तो बहुत सारी फिक्शनल बातें उन्होंने कही, मुंबई के बारे में हो, विकास के बारे में हो, कौन से राज्य में ये उन्होंने करके दिखाया, हमें एक बार दिखाया, पिक्चर देखने के लिए बुलाए, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो एरोगेंस था, ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चिन्ह है। और ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फडणवीस साहब का मुख्यमंत्री होने के नाते आखिरी सत्र है, इसके बाद वो केंद्र में मंत्री करके बुलाया जाएगा उनको। लेकिन जो उन्होंने कल महाराष्ट्र की जनता को धमकाया कि अगर आप सवाल पूछोगे, सोशल मीडिया पे व्यक्त होगे, तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं इतना ही कहूंगा उन्हें कि साहब भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है, तो गाली भी खानी पड़ेगी। जो बातें हम पूछ रहे हैं, जो बातें सिर्फ हम नहीं महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस कुर्सी पे आप हो, आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
0: वही विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी विपक्ष के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते दिखे। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, आज शिंदे ने विधान परिषद में उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए पूछा कि उनके राज्य में मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में दान में हुई लूट पर ठाकरे चुप क्यों थे।
5: अयोध्या राम मंदिरामध्ये जे झालं त्याचं कोणी समर्थन करू शकत नाही। राम भक्तांना अतिशय वेदना झालेल्या आहेत आणि यावर कठोर चौकशी, कठोर कारवाई होते आहे। मोदीजी आणि योगीजी कुणालाही सोडणार नाहीत, ते जेलमध्ये तुरुंगात खडी फोडायला पाठवल्याशिवाय राहणार नाही। परंतु मी आपल्याला आठवण करू देऊ इच्छितोय की जे टीका करतायत त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सिद्धिविनायकाच्या मंदिरामध्ये दानपेटी लुटण्याचं पाप केलं, तेव्हा चौकशीचे आदेश का दिले नाही।
0: एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि उनकी सरकार में पालघर में जब साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तब उद्धव चुप क्यों थे, और क्या यही उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व है।
5: सिद्धिविनायकाच्या दानपेटीवर डल्ला मारणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का? सावरकर यांना माफीवीर म्हणणाऱ्यांच्या मांडीवर बसणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का? बाळासाहेबांचे विचार तोडून मोडून टाकणे हे आपलं हिंदुत्व आहे का? साधूंची हत्या झाली तेव्हा मुख गिळून बसणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का? मतांसाठी दहशतवाद्यांना प्रचार सभेत फिरवणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का? निवडणुकीत पाकिस्तानचे झेंडे नाचवणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का?
0: फिलहाल सरकार ने विपक्ष को अपने तेवर से साफ संदेश दे दिया है कि मिसिंग लिंक और राम मंदिर चोरी मामले पर महायुति सरकार विपक्ष के आरोपों पर झुकने वाली नहीं है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: बीएमसी के नव निर्वाचित चार पार्षद अयोग्य घोषित कर दिए गए। आरोपी के इन पार्षदों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था। अयोग्य ठहराए गए चार पार्षदों में से तीन विपक्षी हैं जबकि एक महायुति का है। खबर है कि दस्तावेज की जांच से जुड़े 89 मामले लंबित हैं जिनमें से 19 मामले जाति प्रमाण पत्र से संबंधित हैं। हालांकि अभी एनसीपी पार्षद बुशरा मलिक के अयोग्य घोषित होने के कारण वजह अभी साफ नहीं हो पाई।

0: देश ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका बीएमसी में सियासी उथल पुथल मच गई है, क्योंकि बीएमसी के नवनिर्वाचित चार पार्षद फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। चार में तीन पार्षद विपक्ष से हैं। AIMIM की नगर सेविका रोशन शेख और समीर रमजान, शिवसेना UBT के पार्षद दीपक सावंत के साथ महायुति से NCP पार्षद बुशरा मलिक की सदस्यता भी रद्द हो गई। दस्तावेजों की जांच से जुड़े कुल 89 मामले लंबित हैं, जिनमें से 19 मामले जाति प्रमाण पत्र से संबंधित हैं। गोवंडी के वार्ड नंबर 138 से निर्वाचित AIMIM की नगर सेविका रोशन शेख अब पार्षद नहीं रही। उनके खिलाफ ये कार्रवाई उनके OBC जाति प्रमाण पत्र को जाति सत्यापन समिति द्वारा अमान्य घोषित किए जाने के बाद की गई। अब रोशन शेख ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
1: बस बताइए तो क्या हुआ, क्या
2: वो भी कोर्ट में मैटर है,
3: आपको बाद में पता चल जाएगा। प्लीज वो आपको कोर्ट की तरफ से जब फैसला आएगा तो।
0: इससे पहले जून में एक और AIMIM कॉरपोरेटर समीर रमजान पटेल ने बीएमसी में अपनी सीट खो दी थी, जब एक जांच समिति ने उनके OBC जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया था। वो गोवंडी के वार्ड नंबर 137 से OBC आरक्षित सीट से चुने गए थे। उससे पहले शिवसेना UBT पार्षद दीपक सावंत को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार की जाति जांच कमेटी ने नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय उनके द्वारा जमा किए गए जाति प्रमाण पत्र को जालसाजी का हवाला देते हुए अमान्य कर दिया था। पार्षदों की अयोग्यता पर मुंबई की पूर्व मेयर और बीएमसी में नेता विपक्ष किशोरी पेडनेकर कह रही हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन महायुति के पार्षदों का नंबर भी आएगा।
1: अपोजिशन को के ही तीन लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट रद्द होते हैं, किसी और के नहीं, ऐसा आपको लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़?
4: नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है, ये कोर्ट है, माननीय है कोर्ट, तो कोर्ट निकाल देते हैं। हमारा एक और MM का दो, लेकिन अभी जो जब भी हमने सबका पूरा हिस्ट्री ली तो भाजपा के भी 10-12 लोग है, लेकिन वो लाइन पे है, फर्स्ट नंबर हमारे आए है। अच्छा। तो ठीक है, अभी MM का दो है जो 8 चुन के आए थे, तो 6 रह गए। हम तो यही तो बोल रहे थे ना कि MM का दो दो तीन तीन करोड़ फंड इसलिए दिया था, उनको पता था दो कुछ बाद होने वाले हैं क्या, मीन्स सब गड़बड़ है। लेकिन माननीय कोर्ट वो अपना निकाल देते है, लेकिन इधर का तो सब गड़बड़ है।
0: लेकिन महायुति कह रही है कि इस मामले को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिनके दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा।
1: लोगों को ये लग रहा है कि क्या ये से इसमें बीएमसी में अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, आपका क्या कहना है?
5: नहीं, ये गलत आरोप है विपक्ष का, क्योंकि मुझे जो माहिती मिली है उसमें 19 जो ऐसे पिटिशन्स है जो कास्ट के ऊपर हर एक ने जो सेकंड आया है किसी भी पार्टी का और जो जीता है उसके अगेंस्ट उन्होंने डाला हुआ है, और बाकी जो पिटिशन है वो एक फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर है, कोई संस्था में मेंबर है या इसे किसी ने अनऑथराइज किया है, ये मुद्दे पे पिटिशन किए हुए हैं। ऐसे टोटल 89 है, इसमें से 19 जो केसेस है उसमें से 3 केसेस में MIM के जो नगर सेवक है उनका रिजल्ट अभी जल्दी आ गया,
1: तो AIMIM और
5: एक UBT का है। कुछ नगर सेवक सत्ता पार्टी में के भी जो है उनके अगेंस्ट में जो विरोधक है जो जिसने सेकंड नंबर पे आए हुए उन्होंने पिटिशन डाली हुए उनके बारे में भी कास्ट वैलिडिटी कमेटी जैसा अपना निर्णय देगी तो वो डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसको स्मॉल कोर्ट में जाने का अधिकार है, हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार।
6: ठाणे के डोंबिवली में महिला डॉक्टर्स पर हमले के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महात्रे ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।
7: डोंबिवली के शास्त्री नगर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे को 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद से सीने में दर्द की शिकायत के बाद से ठाणे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती महात्रे को आज हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और फिर कल्याण कोर्ट में पेशी हुई। महात्रे ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। रमेश महात्रे की ओर से पेश वकील ए वाई पटकी ने कहा कि महात्रे ने सिर्फ एक गर्भवती महिला की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों ने उनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया, जिसके बाद शिवसेना पार्षद आपा खो बैठे।
2: पुलिस ने अर्जी दिया था कि उनको पांच दिन का पुलिस कस्टडी चाहिए। मैंने कहा जरूरत नहीं है, हादसा है, बिल्कुल मामूली है, गुस्से में आदमी बहुत कुछ कर जाता है, बोल जाता है। दोनों की पहचान नहीं थी, कुछ नहीं, दुश्मनी नहीं थी। एक प्रेग्नेंट बाई के लिए, लेडी के लिए वो गया था, हो गया कि जो होती नहीं होना चाहिए था वो हो गया, लेकिन उसके लिए कस्टडी इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने हमारी बात थोड़ी सी मानी, थोड़ी पुलिस की मानी।
8: पुलिस ने क्या ग्राउंड रखे थे सर कस्टडी मांगने के लिए?
2: कि ये किया क्यों, इसलिए
8: इंटेंशन क्या है?
2: इंटेंशन क्या है? रमेश मात्र की उसकी कोई दुश्मनी नहीं है।
8: रमेश सर हाथ उठाना ये भी तो गलत था।
2: हाँ, कुछ उल्टा सीधा बोलना भी गलत है। पब्लिक सर्वेंट आया है और वो खुद के लिए कुछ मांग नहीं रहा है, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए मांग रहा है, जिसकी ट्रीटमेंट वो डॉक्टर ने खुद किया था। वो डॉक्टर की अहमियत नहीं थी, वो डॉक्टर ने भी देखना चाहिए था।
8: तो क्या हुआ, अभी कोर्ट ने क्या डिसाइड किया सर, कब तक की कस्टडी दी?
2: अभी सोमवार तक कस्टडी दी।
7: कल्याण कोर्ट में रमेश महात्रे को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के बाद पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने उनकी 5 दिन की कस्टडी की मांग की। बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि महात्रे की कस्टडी की जरूरत नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। लेकिन डोंबिवली म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में महात्रे ने जिन दो डॉक्टरों असिस्टेंट आरएमओ डॉक्टर वैभव सालुंखे और रेजिडेंट डॉक्टर सृष्टि बाविस्कर से मारपीट की थी, वो दोनों अभी भी छुट्टी पर हैं। उन्होंने उस एजेंसी से कोई बातचीत नहीं की है जिसने उन्हें हायर किया था, और नहीं सीएमओ या केडीएमसी मेडिकल ऑफिसर को बताया है कि वो कब ड्यूटी पर लौटेंगे।
9: वहाँ पे बीएमए डॉक्टर को 6 डॉक्टर काम करते हैं।
10: अभी क्या दिक्कत है, क्या डॉक्टरों का कहना है?
9: अभी दिक्कत कुछ नहीं, हमारे जो डॉक्टर है वो सब रेगुलरली ड्यूटी पे ज्वाइन हो चुके हैं। प्रॉब्लम उनका यही मांगनी है कि 24 आवर्स उनको सिक्योरिटी चाहिए केडीएमसी की तरफ से, बस तो उनकी यही मांगनी है।
10: तो अभी उसमें से 2 डॉक्टर ने कुछ इस्तीफा देने की बात की है कुछ
9: तो उनका जो इस्तीफा है उनका अभी तक आया नहीं इस्तीफा। इस्तीफे का कारण, नहीं आने का कारण ऐसा है कि उनकी जो मानसिक जो घबरा चुके हैं वहाँ पे जो हुआ है उस दिन, तो घबरा के कारण फोन नहीं उठा रहे, मेरा मैसेज करते हैं कि कॉल यू बैक, लेकिन उनका घर से हुआ तो कांटेक्ट, वो बोलते हैं कि 1-2 हफ्ते के बाद में हमारा डिसीजन बताएंगे कि हम रिजाइन करेंगे क्या नहीं करेंगे।
7: इस बीच शास्त्री नगर हॉस्पिटल के म्यूनिसिपल मेडिकल स्टाफ ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, दूसरे डॉक्टर और नर्स भी काम पर लौट आए।
6: कुछ और खबरों के साथ कुछ ही पलों में होते हैं उपस्थित, आप देखते रहिए मुंबई मेट्रो।
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: पुणे के मोशी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हादसे के 50 घंटे बीतने के बाद भी मलबे में 8 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। अभी भी पीड़ित परिजनों को मलबे के नीचे जिंदगी के आस है। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सवाल भी लगातार गहराते जा रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सवाल है, हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन?
2: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था, इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डेपो में हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी, उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। दो दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है। तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, जेसीबी ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन जहाँ मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में है, उनके रिश्तेदार यहाँ पे कई घंटों से है और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो और कुछ चमत्कार हो। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ श्रीकृष्ण पांचाल, आज तक पुणे।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में, इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।

पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार।

तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी. ऑकलैंड में हुआ भव्य स्वागत. 40 वर्ष बाद भारतीय पीएम का दौरा. पीएम ने किया मोदी का स्वागत. द्विपक्षीय वार्ता पर चर्चा. आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित. न्यूजीलैंड में भी पीएम से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब. हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग. लगे मोदी मोदी के नारे. ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक. कलाकारों ने पेश किए भव्य कार्यक्रम. भारत के तिरंगे के रंगों में नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर. पीएम मोदी की यात्रा के सम्मान में रोशनी. ओमान दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर. रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा. मस्कट में भारतीय समुदाय से किया समुदाय. देश में 20% एथेनॉल नीति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका. पुरानी गाड़ियों के लिए सादे पेट्रोल का विकल्प देने की मांग. याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार बिना जानकारी मिश्रित पेट्रोल बेचने को बताया ग्राहकों के अधिकारों का हनन. दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर E20 ईंधन के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन. नितिन गडकरी के खिलाफ विरोध. युवा कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने नितिन गडकरी के चेहरे वाले मास्क पहने. बोले एथेनॉल तो सिर्फ बहाना है. गडकरी जी को अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाना है. राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी. गायन में सही शब्दों उच्चारण का पालन अनिवार्य. विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. नेवल बेस पर नौसेना कर्मियों से बातचीत. INS महेंद्रगिरी की कमिश्निंग कार्यक्रम में होंगे आज शामिल. विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बाड़ाखाना में हुए शामिल. नौसेना कर्मियों के साथ बैठकर खाना खाया. भारतीय नौसेना की शक्ति में बढ़ोतरी. आज स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी भारतीय नौसेना. तमिलनाडु के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री विजय. करूर भगदड़ के पीड़ित 31 परिवारों को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र. पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच पार्टी में राजनीतिक हलचल. राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से चन्नी आज मिलेंगे. मौजूदा अध्यक्ष से है नाराजगी. लखनऊ अग्निकांड में 15 की मौत वाली बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा. LDA को अदालत ने दिया आदेश. कानपुर में श्री राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बयान. बोले इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों. ट्रस्ट प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग. पप्पू यादव का राज्य सरकार पर भी हमला. बोले बीजेपी ने देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया. श्री राम मंदिर चंदा चोरी में बड़ा कौन, बड़ी मछली कौन. जनता मांगती है जवाब. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा घोटाले की निंदा की. बोले जिसने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, भ्रष्टाचार किया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले. बस्ती दौरे पर सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना. SP सरकार कांवड़ यात्रा पर लगाती थी रोक. बीजेपी ने फूल बरसाकर किया स्वागत. अयोध्या दौरे पर सीएम योगी. 432 करोड़ रुपए की लागत की विकास पर योजनाओं का किया लोकार्पण. अयोध्या दौरे पर योगी का विपक्ष पर हमला. कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं श्रीराम जन्मभूमि को बदनाम. हमने बदली अयोध्या की सूरत. सीएम योगी के हनुमानगढ़ी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार. पोस्ट में लिखा पराजय काल विपरीत बुद्धि. वाराणसी में बीचियों के पेड़ों की कटाई पर NGT सख्त. 33 पेड़ काटने के मामले में 2.5 करोड़ से अधिक का जुर्माना. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वसूली के आदेश. पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया. 13 जुलाई को अंतिम दिन. बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा. उम्मीदवार बनने के बाद पहुंचकर आभार व्यक्त किया. मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में सीएम शुभेंदु ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा मुर्शिदाबाद के विकास पर सरकार का पूरा फोकस. रेजी नगर उपचुनाव में वोट देने की अपील. बहरामपुर में हुमायूं कबीर पर गरजे सीएम शुभेंदु. मैं ममता की तरह कमजोर सीएम नहीं. जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा. ईडी की ओर से TMC के बैंक खाते फ्रीज करने पर ममता गुट पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट. 13 जुलाई को होगी सुनवाई. भारत की अध्यक्षता में नागपुर में तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन. इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की. महाराष्ट्र में शिवसेना पार्षद रमेश मात्रे की डॉक्टर से मारपीट में अदालत में पेशी. 13 जुलाई तक कस्टडी में. पुणे प्लांट हादसे के 3 दिन बाद 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी. राजनीति तेज. महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर का सरकार पर हमला. विपक्ष को राजनीतिक रूप से मृत करार. बोले विधानसभा मानसून सत्र में पुणे हादसे पर कोई चर्चा नहीं हुई. प्रकाश आंबेडकर ने घातक गैस प्रबंधन पर उठाए सवाल. ठेकेदार पर केस दर्ज करने. पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की. 1 अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य. 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी. बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं. स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना. एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें. दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस में 7 मामलों में सजा सुनाई. 3 महीने की जेल.
उसके रवैये को बताया संदिग्ध। कर्नाटक के रायचूर में आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मियों को वेतन वृद्धि, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर भोपाल में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर आए लोग, बोले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री सही नहीं। साईं बाबा मंदिर के वीआईपी प्रोटोकॉल, दर्शन शुल्क में अब आपको 100 रुपए नहीं देने होंगे, 300 रुपए बढ़ा दी गई फीस। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का लाखों श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। कई घंटों की मेहनत के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग खुला, लिपु दर्रा पार कर तिब्बत में प्रवेश किया, 48 यात्रियों समेत 52 लोग शामिल। अमरनाथ यात्रा का 9वां दिन श्रद्धालुओं ने सुरक्षित सुगम यात्रा के लिए बालटाल रूट के लिए बीआरओ की तारीफ की। अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलने के लिए एसडी मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, निरीक्षण किया। मॉनसून में रुक रुक कर हो रही बारिश ने भी चारधाम यात्रियों का जोश हाई है, लगातार बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लामबंगगढ़ नाला पार करना हुआ आसान। मॉनसून की बारिश में उफान पर अलकनंदा नदी, यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी। हिमाचल में लगातार हो रही तेज बारिश, मौसम विभाग का आज कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ में बारिश, भूस्खलन के बाद नदी नालों में भारी उफान, जान जोखिम में डाल लकड़ी के लट्ठों के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। देहरादून में भारी बारिश से यमुना उफान पर, विकासनगर में बड़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद, सियाना चट्टी के पास भूस्खलन के कारण गिरे पत्थर मलबा, प्रशासन बीआरओ सतर्क। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर में अचानक बाढ़, कम से कम 25 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालन नदी का पानी आने से रास्ता बंद, कई जिला मुख्यालय कटे कई फीट पानी। जालंधर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नहर का बांध टूटा, रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरा, लोगों ने बोरियां डालकर मरम्मत की। जूनागढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, राहत पुनर्वास की समीक्षा की। जूनागढ़ में पानी भरने से मांडविया की अधिकारियों के साथ बैठक, सरकार ने परियोजना के लिए 1500 करोड़ का पैकेज घोषित किया। गुजरात के अमरेली में खेती की जमीन के लिए वरदान बनी गगड़िया नदी, नदी पर बनी 20 झीलें सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध करा रही हैं। सूरत में भारी बारिश के कारण टेक्सटाइल मार्केट का बेसमेंट जलमग्न, सैकड़ों गाड़ियां डूबी। वडोदरा में बारिश के बाद सड़क धंसी, 20 फीट गहरे गड्ढे में, हादसे का खतरा बढ़ा, रास्ता बंद। नोएडा में पिछले 2 दिनों में बारिश के बीच 2 हादसे, कहीं सड़क धंसी तो कहीं दीवार गिरी, कहीं क्षतिग्रस्त घर हुआ। मिर्जापुर में बारिश के बीच हादसा, चलती सड़क धंसी, बाइक समेत गड्ढे में गिरे 2 लोग, स्थानीय लोगों ने जान बचाई। हरिद्वार में युवकों को गंगा नदी में थार उतार कर स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने क्रेन से गाड़ी बाहर निकाली और सीज कर ली। उधम सिंह नगर के NH 74 पर काली गाड़ियों के काफिले ने हुड़दंग मचाया, वायरल वीडियो के बाद पुलिस कर रही है इन सभी की जांच। झांसी में 7 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म, हाथी दिखाने के बहाने ले गया युवक, लोगों ने जमकर पीटा और पुलिस के हवाले किया। जयपुर में स्कॉर्पियो से सीधे जा टकराई स्कूटी, हवा में उछले व्यक्ति की मौत, 2 घायल। अलवर में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के बहाने पहुंचे चोर, पलक झपकते ही उड़ा दिए 2 मोबाइल, सीसीटीवी में कैद हुए। पाली में क्लास में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा, छात्रों में मची अफरा तफरी, सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। कौशाम्बी के स्कूल में टीसी लेने गए अभिभावक और टीचर के बीच चप्पल जूते चले। मुजफ्फरपुर के टॉप 10 वांछित कुख्यात अपराधी गोलू चौधरी को गिरफ्तार किया गया, 2021 के लूट गोलीकांड का था मुख्य आरोपी। रांची में मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 15 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,70,000 रुपए बरामद। झारखंड के

नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम। पीएम आवास योजना के तहत होम लोन के पहले 8 लाख रुपए पर मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी, 4% सब्सिडी से 1,80,000 रुपए आपके बचेंगे। बारिश और पानी भरने के कारण हफ्ते के मुंबई में 1,150 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित, रिटेल मार्केट, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान। ट्रू कॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स पर सख्ती की तैयारी में ट्राई, आईटी मंत्रालय से मांगी स्वीकृति, फर्जी स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए नियम। यूजर नेम फीचर पर सरकार के नोटिस का व्हाट्सएप ने दिया जवाब, आईटी मंत्रालय कर रहा है जांच, ऑनलाइन फ्रॉड्स को लेकर चिंता। टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल समेत बड़ी कंपनियों में छठी की रफ्तार तेज, एआई के कारण भारत में 35,000 जॉब्स जाने की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान, क्रेमलिन प्रवक्ता बोले यूक्रेन के साथ बातचीत को पुतिन तैयार। अमेरिका ने दक्षिण ईरान के कई इलाकों पर हवाई हमले किया, आईआरजीसी ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया। ईरान के पूर्व नेता खामनेई को किया गया सुपुर्द खाक, 6 दिन तक चली शव यात्रा और श्रद्धांजलि सभा। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने परमाणु शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया, संख्या क्षमता दोनों को बढ़ाने का ऐलान। सऊदी अरब का दौरा पूरा कर जद्दा से रवाना हुए माकानी, पीएम ने सऊदी अरब की यात्रा की सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका की तरह चीन ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट को सफल लॉन्च किया, पहली बार प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित उतारा रॉकेट बूस्टर। पूर्वी एशिया में बाबी तूफान को लेकर हाई अलर्ट, ताइवान में कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को किया गया रद्द, जापान के कई द्वीपों पर चेतावनी। दक्षिण स्पेन में जंगल की भीषण आग से भारी तबाही, 11 की मौत, 4 घायल, 19 अब भी लापता, रेस्क्यू अभियान जारी। पेरिस में ऑटम विंटर और क्यूटर फैशन वीक का शानदार आगाज, अरमानी प्रिवे ने शानदार कलेक्शन पेश किए।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की जान संकट में बताई जा रही है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी जान पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ ने ट्रंप को खत्म करने की कसम खाई। तेहरान से लेकर मशहद बाकायदा ट्रंप की हत्या की कस्में खाई और खिलवाई जा रही है। इसी बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिकी CIA को एक बेहद खतरनाक इनपुट दिया है, जिसके अनुसार ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बहुत बड़ी और नई साजिश रच रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के परिसर में नमाज हुई थी। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में यह सवाल जोर शोर से गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक दावे ने 23 साल पुराने पन्नों को खोल कर रख दिया है, जिसमें आरोप है कि साल 2003 में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी। आज आपको ऐतिहासिक तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए बताएंगे कि आखिर इस दावे का सच क्या है और क्या हमारे देश के पुरुष महिलाओं की ना का मतलब समझते हैं। इंडिया टुडे के ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे में जब यही सवाल देश की महिलाओं के सामने रखा गया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे के अनुसार करीब 25% पुरुष अब भी ना सुनने के बाद महिलाओं पर अपनी मर्जी थोपते हैं या नाराज हो जाते हैं। आखिर में वो खबर जो हर माता पिता को देखनी चाहिए, डराना धमकाना मजाक उड़ाना जिसे हम बच्चों की आपसी लड़ाई कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो क्लासरूम बुलिंग आज हमारे बच्चों की जान ले रही है। जयपुर का अमायरा खुदकुशी केस इसका वो खौफनाक सच है जिसने स्कूल प्रशासन, टीचर्स और पेरेंट्स की संवेदनशीलता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर बच्चे की किसी बात को आप हल्के में लेते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया के सबसे ताकतवर

शक्ति पर मंडराते खतरे से जुड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के असासिनेशन की एक बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश का सूत्रधार ईरान है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों की संख्या 10-20 नहीं बल्कि करोड़ों में कर दी है। वैसे इस वक्त जो हालात हैं उसमें ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश के आरोप लगना हैरानी की बात नहीं है। कल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को ईरानी शहर मशहद के इमाम रजा कॉम्प्लेक्स में सुपुर्द खाक किया गया। सबको लग रहा था कि अली खामेनेई के अंतिम क्रिया की सारी जिम्मेदारियां मुज्तबा खामेनेई निभाएंगे और शायद वो पहली बार दुनिया के सामने आएंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमलों के डर से ऐसा नहीं हुआ। कल अली खामेनेई के दूसरे बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने सारी जिम्मेदारियां निभाई। अली खामेनेई के इस अंतिम क्रिया कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सबकी आंखों में नमी थी और दिलों में अमेरिका और इसराइल के प्रति गुस्सा था। सबको पता है ईरान वॉर के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल हमले में अली खामेनेई मारे गए थे और इस बात का दर्द आज तक ईरानियों के दिलों को सता रहा है। इस दर्द को हाल ही में आए एक वीडियो ने ज्वालामुखी में बदल दिया। ये वीडियो उस जगह का था जहां पर हुए हमले में अली खामेनेई मारे गए थे। इस वीडियो में इमारत की हाल दिख रहा था। वीडियो से लगा कि हमला इतना भयानक रहा होगा कि लोगों के बचने की उम्मीद न के बराबर थी। कल आंखों में आंसू लिए ईरान के लोगों ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम दर्शन किए और केवल आप ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस बात से हैरान होंगे कि अली खामेनेई के 6 दिनों के अंतिम विदाई कार्यक्रम में 4,30,00,000 लोग शामिल हुए थे। इनमें 3,30,00,000 लोग ईरान के नागरिक थे और 1,00,00,000 लोग इराक में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। यानी देखा जाए तो ईरान का हर 3 में से 1 नागरिक अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जुड़ने वाली भीड़ को देखकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत हैरान हुए थे। एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि ईरान के लोग खामेनेई से नफरत करते हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने बाद में यह भी कहा कि हो सकता है कि ईरान के लोगों के ये आंसू नकली हो, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि शायद ऐसा नहीं है।

अपने धार्मिक नेता को खोने का दुख गुस्से का चरम रूप था और यह गुस्सा अमेरिका और इसराइल के नेताओं के ऊपर था। मशहद ही नहीं, अली खामनेई की अंतिम यात्रा का कारवां जहां जहां पहुंचा वहां लोगों ने डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के नारे लगाए। कई पोस्टर्स में वी विल किल ट्रंप या किल बीबी लिखा हुआ था। बीबी इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निकनेम है, यानी ईरान के लोग अपने धार्मिक नेता की मौत का बदला अमेरिका और इसराइल के नेताओं की मौत से लेना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अली खामनेई की अंतिम विदाई यात्रा के दौरान तेहरान में ईरान की आम जनता को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए भड़काया जा रहा था। ये एक तरह की शपथ दिलाने जैसा था। तेहरान में इस्लामिक कविताएं लिखने वाले मोहम्मद रसूली ने लाखों लोगों की भीड़ से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने का आह्वान किया था। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कस्में खाई और खिलवाई गई थी।

ईरान पर हमला और अली खामेनेई की मौत, इसने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। अभी कल ही उन्होंने कहा कि ईरान की हिटलिस्ट में सबसे पहला नाम उन्हीं का है। हालांकि तब उन्होंने ये बात बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, लेकिन अब इसराइल की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को एक ऐसी साजिश के बारे में बताया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी होगी। इसराइल की मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी में से एक माना जाता है, उसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को बताया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारने की एक नई साजिश रच रहा है। वो नए सिरे से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए योजनाएं बना रहा है और लोग तैयार कर रहा है। मोसाद को हाल ही में अपने एजेंट्स के जरिए यह जानकारी मिली थी, जिसे बिना देर किए उसने अमेरिका को दे दी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अगर ईरान द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची जा रही है तो इससे सीज फायर और शांति प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है। इसराइल की ओर से मिली इस नई खुफिया जानकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को सतर्क कर दिया। ईरान में वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को अब इस्लाम के दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है, जिसने उनके सबसे बड़े धर्म गुरु को मार दिया। इसीलिए ईरान और ईरान के लोगों से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी ईरान के पुराने दुश्मन हैं, इसीलिए ईरान की हुकूमत खुले तौर पर कहती रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेगी। मामला केवल अली खामेनेई को मारने का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में IRGC के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था। अली खामेनेई के बाद कासिम सुलेमानी एक ऐसा व्यक्ति था जो ईरान में काफी लोकप्रिय था। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी को बगदाद में एक ड्रोन अटैक में मार दिया गया था, और कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था। कासिम सुलेमानी ईरान की कुर्द्स फोर्स के चीफ थे, जो चाहते थे कि बगदाद में सैन्य शासन हो, जबकि अमेरिका वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहता था। हालांकि दोनों ही ISIS के खिलाफ लड़ रहे थे। इस जंग के दौरान एक दिन अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की कुद्स फोर्स पर आरोप लगाया कि वो इराक में अमेरिकी सेना और राजनयिकों पर हमले की योजना बना रही थी, और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर कासिम सुलेमानी हंट शुरू हो गया, जो 3 जनवरी 2020 को उनकी मौत के साथ खत्म हो गया। यानी ईरान के लोगों के दो सबसे चहेते लोगों की मौत की वजह डोनाल्ड ट्रंप है, और शायद इसी वजह से डेथ टू अमेरिका और वी विल किल ट्रंप जैसे नारे लगाए जाते हैं और ट्रंप की हत्या करवाने से जुड़ी खुफिया जानकारियां आती हैं।

ट्रंप के खिलाफ ईरानियों के गुस्से की एक वजह अली खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान हुए अमेरिकी हमले भी हैं। अली खामेनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम 3 जुलाई से शुरू हुआ था जो 9 जुलाई तक चला, लेकिन इसके आखिरी चरणों में अमेरिका ने ईरान पर सीजफायर के बाद सबसे बड़े हमले कर दिए। 7 और 8 जुलाई को 170 ठिकानों पर हमले किए गए थे। माना जा रहा था कि 9 जुलाई को जब खामेनेई के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा तब शायद अमेरिका हमला न करे, लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिकी सेना ने इस दिन भी हमला किया। दावा है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के बुशहर, चोगादक, कोनारक और बंदर अब्बास में हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इन हमलों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हालांकि अमेरिकी सेना ने किसी भी तरह के नए हमलों से इनकार किया है, लेकिन वो एक बात साफ साफ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है और वो करने की कोशिश भी न करे। अभी हाल ही में ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति उन्हीं को है जो ईरान के बताए रूट से जा रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ट्वीट किया कि मई की शुरुआत से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं बचा है। अमेरिकी सेना ने 800 से ज्यादा जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने में मदद की है। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की जड़ न्यूक्लियर से हटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आकर टिक गई है। ईरान के लिए भी अब न्यूक्लियर हथियार बनाने से ज्यादा जरूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूर्ण नियंत्रण पाना है, क्योंकि इसके जरिए वो टोल वसूली की अपनी मंशा को पूरा कर सकता है और अमेरिका इसी से परेशान है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 18 जुलाई को अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में शांति के लिए अगले दौर की बातचीत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश से जुड़ी खबरें आई हैं उसने हालात को बिगाड़ दिया है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के बारे में हम बताएंगे। पूरे 40 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंचा है। आखिरी बार 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। सोचिए, जब 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे तब वहां भारतीयों की आबादी केवल 20,000 थी, लेकिन आज वहां करीब 3,00,000 भारतवंशी हैं, जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 6% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में इन भारतीयों का योगदान 6 साल पहले $10 अरब था, जो आज $37 अरब हो चुका है, यानी 6 साल में करीब 4 गुना तरक्की। इस बात को न्यूजीलैंड भी समझता है और भारत भी। तमाम लोग न्यूजीलैंड से सिर्फ क्रिकेट का कनेक्शन समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच क्रिकेट का नहीं बल्कि हॉकी का हुआ था। यह मैच 1926 में हुआ था, जिसे 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी का यह पूरा दौरा एक बहुत ही सॉलिड प्लानिंग के तहत हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, यूरेनियम से जुड़े समझौते किए। न्यूजीलैंड में वो भारतीय किसानों और खेती की बेहतरी के लिए खास समझौते करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उसकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान खेती के सफल और आधुनिक तरीकों का है। सोचिए, भारत में खेत से निकलकर मंडियों तक पहुंचते पहुंचते करीब 30% फसल सड़ जाती है या बर्बाद हो जाती है, जिसका सीधा नुकसान किसान झेलता है। लेकिन न्यूजीलैंड की तकनीक ऐसी है कि वहां यह नुकसान केवल 6% है। पीएम मोदी न्यूजीलैंड से वही जादुई कोल्ड स्टोरेज, कल्टीवेशन तकनीक और फसल को बीमारी से बचाने की दवाई भारत लाने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि मामलों में बहुत आगे माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने न्यूजीलैंड से ही डेयरी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अमूल का आइडिया न्यूजीलैंड से ही मिला था। उन्होंने न्यूजीलैंड के कम्युनिटी डेयरी मॉडल फोंटेरा से ही सीखकर दूध का साम्राज्य खड़ा किया था। न्यूजीलैंड दूध, फल और कैश क्रॉप्स का राजा है। वहां की तकनीक और तरीके भारत के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सीधे किसानों के हित से जुड़ा है। इस दौरान भारत ने बहुत स्मार्ट कूटनीति खेली है। भारत ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड डील कर ली। इसे देखकर न्यूजीलैंड को लगा कि भारत का बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू की। अब वहां चुनाव होने वाले हैं तो लक्सन चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इस डील को और बड़ा कर लिया जाए।
इसीलिए पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचते ही उन्होंने 57% एक्सपोर्ट पहले दिन से ही हो जाएंगे टैरिफ फ्री करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है चीन। न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 54 लाख, जो भारत के एक बड़े शहर जितनी है, और यह छोटा सा देश पूरी तरह से व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हो गया, जिससे दिक्कतें होने लगी। तब न्यूजीलैंड को समझ आया कि एक पर निर्भर होना ठीक नहीं है, और न्यूजीलैंड ने भारत का हाथ थामना भी जरूरी समझा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ही हाथ नहीं मिला रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के उन 18 देशों को साथ लेकर चल रहा है जो चीन की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। इसीलिए यह दौरा चीन को घेरने और हमारे किसानों की जेब भरने की रणनीति से जुड़ा हुआ है।

और न्यूजीलैंड जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेलबर्न में होना हमेशा खास होता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट संबंध बेहद गहरे हैं। यहां बात सिर्फ मुलाकातों की नहीं है बल्कि पीएम मोदी ने इस दौरे में क्रिकेट डिप्लोमेसी का वो बड़ा छक्का भी जड़ा जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। आज जिस फटाफट क्रिकेट यानी T20 को देखकर पूरी दुनिया झूम उठती है उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2003 में पहली बार इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में 2020 का जन्म हुआ, लेकिन इस फॉर्मेट को असली ग्लैमर और लीग का रूप दिया ऑस्ट्रेलिया ने जब वहां 2005-06 में KFC 2020 बिग बैश शुरू हुआ। सिर्फ 6 राज्यों की 6 टीमें और 6 जनवरी 2006 को पहला मैच खेला गया और देखते ही देखते ये टूर्नामेंट सुपर हिट हो गया था। फिर आया सितंबर 2007 का वो महीना, जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप जीत लिया। इस मैच को दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। इस वर्ल्ड कप के दौरान ही BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का ऐलान कर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना बिग बैश लीग था उसी से प्रेरणा लेकर IPL का विशाल ढांचा तैयार किया गया था और अब इतिहास का पहिया घूमकर वापस वहीं आ गया है। जिस लीग से प्रेरणा लेकर भारत ने IPL शुरू किया आज उसी बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में होगा और इसके लिए चेन्नई के चिपॉक मैदान को चुना गया है। हालांकि इस साल दिसंबर के महीने में चेन्नई के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मेलबर्न यात्रा ने खेल की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला है जिसने क्रिकेट और कूटनीति दोनों को साथ ला दिया है।

0: अब आपको बताएंगे कि क्या आज से 23 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार और नमाज हुई। ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों के बाद खड़ा हुआ। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे ब्रजलाल ने यहां तक कहा कि 2003 में समाजवादी पार्टी के करीबी पुलिस अधिकारी ने हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़ाने की कोशिश की थी। आज आपको इसका पूरा सच तस्वीरों के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर खुलकर बोले हैं। जिस वक्त हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार की कोशिश हुई उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। यहां तक कि उन्होंने हनुमानगढ़ी में इसके विरोध में रैली भी की थी। लेकिन सवाल यह है कि आज योगी आदित्यनाथ को इतिहास की परतें खोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक हिंदुत्व की पिच पर बैकफुट पर खेलने वाला विपक्ष खुद को सबसे बड़ा सनातनी साबित करने की होड़ में जुटा हुआ है। कभी मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप झेलने वाली समाजवादी पार्टी अब जो सनातन है वही समाजवाद है के नारे लगा रही है। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए इतिहास का पन्ना खोल दिया। उन्होंने वर्तमान के दावों को 2003 के हनुमानगढ़ी इफ्तार विवाद के आईने में खड़ा कर समाजवादी पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की है और कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
0: आज हम इतिहास को खंगालते हुए इन आरोपों का पूरा सच आपको बताएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। पूरा घटनाक्रम साल 2003 का है, जब मायावती की सरकार गिरने के बाद 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इससे ठीक एक हफ्ते पहले 22 अगस्त 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दी थी, जिसमें बताया गया कि विवादित ढांचे के नीचे 12वीं सदी के प्राचीन मंदिर के अवशेष और स्तंभ मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में 17 अक्टूबर को संकल्प दिवस और कार सेवा का बड़ा आह्वान किया था, जिसकी वजह से अयोध्या में माहौल तनावपूर्ण था। सरकार के सामने कानून व्यवस्था को संभालने के साथ अपने कोर वोटर को भी भरोसा दिलाने की चुनौती थी। यहीं से शुरुआत हुई एक सॉफ्ट काउंटर की, जिसके मुख्य केंद्र बने हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत ज्ञानदास। उस समय वो हनुमानगढ़ी के सबसे ताकतवर संतों में से एक थे और विश्व हिंदू परिषद की उग्र हिंदुत्व की राजनीति के धुर विरोधी थे। महंत ज्ञानदास मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। पिछले साल का उनका बयान भी चर्चाओं में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया में मुलायम सिंह से अच्छा नेता कोई नहीं। 2003 में महंत ज्ञानदास की उदारवादी छवि और उनके रसूख का इस्तेमाल करके अयोध्या का माहौल शांत करने और वीएचपी के आंदोलन को कुंद करने के लिए योजना बनाई गई। ये तारीख थी 20 नवंबर 2003 की और तब मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा था। उस दौरान महंत ज्ञानदास ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के नाम पर एक जोरदार पहल की। उन्होंने हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के विशाल परिसर के भीतर स्थित अपने आधिकारिक निवास पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक लेकिन विवादित इफ्तार में अयोध्या के बड़े मुस्लिम चेहरे शामिल हुए। इसमें बाबरी मस्जिद के तत्कालीन पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली उर्फ बाबू टेलर भी थे। इसके अलावा करीब 500 मुसलमान इस रोजा इफ्तार के लिए पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान लखनऊ जोन के तत्कालीन आईजी सरकार को खुश करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के नियमों को ताक पर रखने के लिए तैयार थे। वो देश भर में बड़ा संदेश देने के लिए इस आयोजन को हनुमानगढ़ी की छत पर या मंदिर के ठीक सामने मुख्य सड़क पर सार्वजनिक रूप से करवाना चाहते थे, लेकिन जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी ने इस कथित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि हनुमानगढ़ी के मुख्य परिसर या सार्वजनिक सड़क पर ऐसी नई परंपरा की शुरुआत से हिंदू संगठन भड़क सकते हैं और अयोध्या में माहौल बिगड़ सकता है। जब सड़क पर अनुमति नहीं मिली तो यह कार्यक्रम हनुमानगढ़ी परिसर में ही महंत ज्ञानदास के घर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन रोजा इफ्तार के बाद नमाज के लिए ज्यादा जगह की जरूरत महसूस हुई तो महंत ज्ञानदास के आवास की बाहरी सीढ़ियों पर चटाई बिछाई जाने लगी। ये सीढ़ियां हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य रास्ते से भी सटती थी। तब सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें तुरंत वहां से हटवा दिया ताकि कोई कानूनी या धार्मिक मर्यादा न टूटे, जिसके बाद आवास के अंदर ही नमाज हुई और इसके लिए दीवारों पर बने देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक प्रतीक भी ढक दिए गए, जो तस्वीरों में साफ नजर आता है। हनुमानगढ़ी परिसर में हुई इस रोजा इफ्तार और नमाज का दूसरे हिंदू संतों और संगठनों ने जोरदार विरोध किया। हनुमानगढ़ी के ही महंत धर्मदास और महंत मधुसूदन दास ने विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से फैजाबाद की सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि मंदिर के उपनियमों के अनुसार 52 बीघे के इस पवित्र परिसर के भीतर किसी भी गैर सनातन धार्मिक गतिविधि या नमाज की अनुमति नहीं दी जा सकती। उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार का जोरदार विरोध किया था और इसके विरोध में रैली भी की थी, जिसका दावा महंत धर्मदास ने भी किया है। 2005 में जब रमजान के दौरान तीसरे साल भी हनुमानगढ़ी में इफ्तार की तैयारी चल रही थी, तब विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के बाहर 10 दिनों का उग्र धरना शुरू कर दिया। इसी बीच 1 अक्टूबर 2005 को कोर्ट ने यहां रोजा इफ्तार पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसकी वजह से 2005 में हनुमानगढ़ी में इफ्तार नहीं हो सका और विश्व हिंदू परिषद और तमाम संतों ने हनुमानगढ़ी में घी के दिए जलाकर दिवाली से पहले दीपावली मनाई। लेकिन जनवरी 2006 में कोर्ट ने महंत धर्मदास की मुख्य याचिका को ही खारिज कर दिया और पूर्व में लगाए गए स्टे को हटा लिया, यानी कानूनी रूप से इफ्तार के आयोजन को गलत नहीं माना गया। हालांकि अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद भी 2006 के बाद हनुमानगढ़ी में फिर कभी इफ्तार नहीं हुआ। इसके पीछे आंतरिक दबाव और कानून व्यवस्था से जुड़ी वजह रही, क्योंकि अखाड़ों के भीतर महंत ज्ञानदास का तीव्र विरोध शुरू हो गया था। उन्हें अखाड़े से निष्कासित करने की भी चेतावनी दी गई। एक दूसरे मामले को लेकर महंत ज्ञानदास और महंत धर्मदास के समर्थकों में झड़प भी हुई थी। चौतरफा घिरे महंत ज्ञानदास ने आखिरकार हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार से तौबा कर ली।
2: हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था कि क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए। तब हम लोग कोर्ट में गए और वहां पर हनुमान जी के दया से आपके पक्ष में आर्डर भेजा कि हनुमानगढ़ी एरिया में, जितना दूर में हनुमानगढ़ी के एरिया है, उसमें कोई भी अवैधानिक का नाम है हिंदू परंपरा के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, करता है तो उसको रोका जाए और दंड दिया जाए। लेकिन इन लोगों को कोई दंड नहीं किया गया, माफी मांग लिए कि हमसे गलती हो गया, वो इनको छोड़ दिए सर।
0: उस समय भी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के मुद्दे का सियासी इस्तेमाल हुआ और धार्मिक मुद्दे को सियासी अखाड़े में बदल दिया गया। और आज जब उत्तर प्रदेश एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो सियासी दल धार्मिक पिच पर सियासी पारी खेलने उतर चुके हैं। अखिलेश यादव का सनातन प्रेम और योगी आदित्यनाथ का इतिहास टटोलना दिखा रहा है कि सनातन फिर से सियासत का हिस्सा बन चुका है। इसलिए जब अखिलेश यादव सनातन ही समाजवाद है का नारा दे रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ कार सेवकों पर गोली चलाने से लेकर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की कोशिशों का रीप्ले कर रहे हैं। हमारी अगली रिपोर्ट पारिवारिक संबंधों के एक ऐसे पहलू पर है जिसकी चर्चा खुले मंचों पर अक्सर नहीं होती। दरअसल ये चर्चा एक सवाल के तौर पर उठती है। सवाल ये कि क्या हमारे देश के पुरुष नो मीन्स नो का मतलब समझते हैं। हालांकि ये सवाल पुरुषों से नहीं बल्कि महिलाओं से पूछा जाना चाहिए। इंडिया टुडे के ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे में हमने यही किया। हमने इसी तरह के कुछ अनछुए सवालों को देश की महिलाओं के सामने रखा। हमें इन सवालों के जो जवाब मिले वो हमारे भारतीय समाज का सच है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि समाज की कितनी महिलाएं संबंधों में कंसेंट यानी सहमति का असली मतलब समझती हैं। इस सवाल का जो जवाब हमें मिला उससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे देश की 62.5% उच्च शिक्षित महिलाएं संबंधों में सहमति का मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाओं की तुलना में बेहतर समझती हैं। यानी महिलाएं जितना शिक्षित हो रही हैं वो अपने अधिकारों के प्रति और संबंधों में ना कहने को लेकर जागरूक होती हैं। इसके बाद सर्वे में एक बड़ा सवाल पूछा गया। महिलाओं से पूछा गया किसी काम को करने का उनका मन नहीं होता तो वो अपने पार्टनर को ना कैसे कहती हैं। इसके जवाब में 56% महिलाओं ने बताया कि वो सीधे ना कह देती हैं। 21% ने कहा कि उन्हें ना कहने में दिक्कत आती है और वो बहाने बनाती हैं। 20% महिलाओं ने कहा वो चाह कर भी ना नहीं कह पाती। यानी महिलाओं में अपनी इच्छा के प्रति जागरूकता तो आई है लेकिन अभी भी कुछ महिलाओं में ना कहने को लेकर हिचक है। लेकिन सर्वे में एक और बात पता चली है। देश की 79% महिलाएं किसी भी तरह की परिस्थितियों में नो मीन्स नो के विचार का समर्थन करती हैं। यानी वो मानती हैं कि महिलाओं की ना का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हमारा अगला सवाल यही था कि संबंधों में महिलाओं द्वारा ना कहने पर उनके साथी उन्हें कितना समझते हैं, यानी पुरुष नो मीन्स नो को कितना सम्मान देते हैं। 56% महिलाओं ने कहा कि उनके साथी ना कहने पर तुरंत समझ जाते हैं और फैसले को पूरा सम्मान देते हैं। 13% महिलाओं ने कहा कि उनके साथी उनकी ना सुनने के बाद विचार बदलने का दबाव डालते हैं। 12% महिलाओं ने कहा कि ना सुनने के बाद उनके पार्टनर उन पर ज्यादती का आरोप लगाते हैं और नाराज हो जाते हैं। 10% महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने साथी को मना करने की या किसी तरह सीमा तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति और इच्छाओं को सम्मान दिया जाता है। हमारा अगला सवाल यही था। सर्वे में महिलाओं से पूछा गया कि क्या भारतीय समाज में उनकी सहमति और इच्छाओं को सम्मान मिलता है। 29% महिलाओं ने इस सवाल का जवाब हां में दिया। 47% महिलाओं ने कहा ऐसा कभी कभी होता है। 21% महिलाओं ने सीधे सीधे इनकार किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति और इच्छा को सम्मान नहीं दिया जाता। माना जाता है कि कई बार महिलाओं की इच्छाओं और सहमति को स्वीकार करना उनके परिवार के पुरुषों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस सर्वे में महिलाओं से पूछा कि क्या भारतीय पुरुष जैसे पिता, भाई, पति या अन्य परिजन महिलाओं की सहमति के अधिकार को समझते या उसका सम्मान करते हैं। 62% महिलाओं ने इसका जवाब हां में दिया और 26% महिलाओं ने कहा कुछ समझते हैं कुछ नहीं। केवल 7% ने जवाब ना में दिया। यानी भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव तो आ रहा है जिसमें महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। हालांकि अभी भी महिलाओं और पुरुषों में इस तरह की सहमति और इच्छाओं को लेकर कुछ संकोच है लेकिन स्थिति फिर भी बेहतर हुई है। भारत के कॉलेजों में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद देश भर के कॉलेजों के लिए रैगिंग के खिलाफ कड़ा कानून है। कॉलेजों में रैगिंग के खिलाफ समाज में जरूरी जागरूकता भी दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूलों में 4th, 5th या 8th तक की छोटी क्लासेस में भी क्लासरूम बुली यानी किसी बच्चे को किसी साथी बच्चे से परेशान किया जाना देश के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है। क्या क्लासरूम बुली पर टीचर्स, स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और सरकार को और ज्यादा संवेदनशील और सतर्क होने की जरूरत नहीं है? ये सवाल जयपुर के बहुचर्चित अमायरा खुदकुशी केस के नए तथ्यों से सामने आया है। क्लास 4 में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा ने 1 नवंबर 2025 को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस की जांच में घटना वाले दिन क्लासरूम में क्या हुआ इसका सिलसिलेवार ब्यौरा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह साबित करने की कोशिश की कि क्लासरूम में अमायरा और दूसरे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान अमायरा ने अपनी बात क्लास में मौजूद टीचर पुनीता शर्मा को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अमायरा की बात पर तवज्जो नहीं दिया। इसी के बाद बच्ची क्लासरूम में तेजी से निकली और फिर चौथे मंजिल पर चली गई। पुलिस से हासिल इसी सीसीटीवी और जांच के इसी पहलू के आधार पर अमायरा के परिवार ने एक वीडियो जारी किया है। परिवार द्वारा जारी सीसीटीवी वीडियो पर वॉइस ओवर है, जिसे पुलिस की जांच के निष्कर्ष के आधार पर अमायरा के परिवार ने तैयार किया है। आप भी उसी वीडियो के आधार पर तैयार हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
3: अभी भी सही सेक्शंस नहीं लगे हैं। JJ 75 लगा है, जो कि पुनीता शर्मा क्लास टीचर पे लगा है, सिर्फ वो इंदु दुबे और सौरभ मोदी पे नहीं लगा। अबेटमेंट टू सुसाइड लगना चाहिए बिल्कुल। आप वीडियो देखेंगे, आप देख पाएंगे कि उसको किस तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया गया है। वो एकदम खुश स्टेट ऑफ माइंड में आपको डांस करते हुए दिखेगी, और उससे उसकी कैसी हालत कर दी कि वो जाके चौथी मंजिल से कूद गई।
4: अमायरा सबसे पहले क्लासरूम में आती है और बिल्कुल सामान्य दिखती है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड क्लासरूम में आती है। अमायरा उससे मिलती है। दोनों के बीच एक नॉर्मल स्कूल इंटरेक्शन जैसा दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद अमायरा डांस क्लास में जाती है। वो बाकी बच्चों के साथ एक्टिविटी में शामिल होती है। वो पार्टिसिपेट करती है, डांस करती है और पूरे समय एक नॉर्मल एक्टिव चाइल्ड की तरह दिखाई देती है। फिर अमायरा वापस क्लासरूम में आती है। ये वही डिजिटल स्लेट है जो क्लासरूम में अलाउड नहीं होनी चाहिए थी। क्लासरूम के अंदर टीचर की मौजूदगी में बच्चे उसे निकालते हैं और उस पर कुछ लिखते दिखाई देते हैं। फिर वही डिजिटल स्लेट बार बार अमायरा को दिखाई जाती है। यहीं से अमायरा की बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू होती है। जो बच्ची कुछ देर पहले नॉर्मल थी, वही अब असहज दिखाई देने लगती है। जिस डिजिटल स्लेट पर बार बार कुछ लिखकर उसे दिखाया जा रहा था, जिस वजह से वो परेशान और एम्बेरस दिखाई दे रही थी, इस समय अमायरा की बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाती है कि वो हेल्प चाहती है। वो चाहती है कि टीचर इस बात को रोके, लेकिन तभी अमायरा के आगे बैठा बच्चा भी टीचर के पास आ जाता है। वो अमायरा की तरफ इशारा करता है और क्लास टीचर से कुछ कहता दिखाई देता है। अब जिस बच्ची ने खुद कंप्लेन करने के लिए टीचर के पास कदम बढ़ाया था, उसी मोमेंट में बात फिर उसके ऊपर घूमती हुई दिखाई देती है। क्लास टीचर कुछ बच्चों के पास जाती हैं। वो बच्चों से बात करती दिखाई देती हैं और उसी दौरान अमायरा की तरफ इशारा करके कुछ कहती हुई नजर आती हैं। यही वो मोमेंट है जहां अमायरा की बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा हिला देने वाली दिखाई देती है। और फिर अमायरा एक आखिरी बार क्लास टीचर के पास जाती है, लेकिन टीचर की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रिक्ट दिखाई देती है, जैसे अमायरा को फिर किसी सीरियस कॉन्सिक्वेंस या एक्शन जैसी बात से डराया जा रहा हो। और फिर बातचीत के बीच ही अमायरा अचानक क्लास से बाहर निकल जाती है। और अब वही 9 साल की बच्ची स्कूल बिल्डिंग में अकेली भाग रही है, लेकिन कोई फ्लोर अटेंडेंट उसे रोकता हुआ नहीं दिखता। कोई टीचर तुरंत उसके पीछे जाती हुई दिखाई नहीं देती। क्लासरूम में एंटी बुलिंग रिस्पॉन्स नहीं दिखा, काउंसलिंग सपोर्ट नहीं दिखा,
5: और पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई कि क्लासरूम के अंदर अमायरा से ऐसा क्या कहा गया जिसने एक 9 साल की बच्ची को इतना डरा दिया कि वो इतना गंभीर कदम उठा बैठी।
0: आप सोचिए, अगर अमायरा मामले में पुलिस की जांच का यह पहलू सही है तो कितनी गंभीर बात है। 2017 में टीचर फाउंडेशन और विप्रो अप्लाइंग थॉट इन स्कूल्स नाम की संस्था ने 5 साल के शोध के बाद एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार क्लास 4 से क्लास 8 के 42% बच्चे और क्लास 9 से क्लास 12 के 36% बच्चे स्कूल में दूसरे साथी बच्चों से परेशान किए जाने के शिकार होते हैं। डराया जाना, तंग किया जाना, अपमानित किया जाना, मजाक उड़ाया जाना और लड़ाई झगड़े इसका हिस्सा है। स्कूल में जो बच्चे दूसरे बच्चों की प्रताड़ना करते हैं वो भी उतने ही वल्नरेबल हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद इतनी समझ नहीं होती। पर सवाल है कि स्कूलों में इस समस्या से निजात पाने का उपाय क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 साफ कहता है कि बच्चों की जिस पर जिम्मेदारी है या जिसका नियंत्रण है वो अगर खुद बच्चों की प्रताड़ना करता है या प्रताड़ना को नजरअंदाज करता है उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अमायरा के मामले में क्लास में मौजूद टीचर पुनीता शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अमायरा का पक्ष सुनती और उसे साथी बच्चों से बचाती, लेकिन पुलिस चार्जशीट के अनुसार उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया। पुलिस चार्जशीट में पुनीता शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत आरोप दाखिल किए गए हैं, लेकिन अमायरा का परिवार चार्जशीट में स्कूल की प्रिंसिपल इंदु दुबे और स्कूल चेयरमैन सौरभ मोदी पर जेजे एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर सवाल उठा रहा है।
3: अभी भी सही सेक्शंस नहीं लगे हैं, जेजे 75 लगा है जो कि पुनीता शर्मा क्लास टीचर पे लगा है सिर्फ, वो इंदु दुबे और सौरभ मोदी पे नहीं लगा। अबेटमेंट टू सुसाइड लगना चाहिए बिल्कुल, आप वीडियो देखेंगे आप देख पाएंगे कि उसको किस तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया गया है। वो एकदम खुश स्टेट ऑफ माइंड में आपको डांस करते हुए दिखेगी और उससे उसकी कैसी हालत कर दी कि वो जाके चौथी मंजिल से कूद गई।
0: अमायरा के परिवार ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक अलग केस दाखिल किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में नीरजा मोदी स्कूल पर सीबीएसई जांच रिकॉर्ड रखा गया है। 2024 से 2026 तक इस स्कूल में 102 नई टीचर भर्तियों में सिर्फ 17 ऐसे टीचर्स की भर्ती हुई जिनके पास जरूरी योग्यता थी, जबकि 85 टीचर्स के पास जरूरी योग्यता नहीं थी। प्राइमरी टीचर कैटेगरी में सभी 52 टीचर्स की योग्यता मानकों के अनुसार नहीं थी। यहां हम साफ करना चाहते हैं कि यह मसला किसी एक खास स्कूल का नहीं है, सवाल है व्यवस्था का, जहां बच्चों को बुली होने से बचाने का इंतजाम नहीं है। इसकी बड़ी वजह क्वालिफाइड शिक्षकों की कमी साफ नजर आती है। और अब हम आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के तनाव के ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। पाकिस्तान की फौज और अफगान तालिबान पिछले साल अक्टूबर से आमने सामने हैं। जून के आखिर में पाकिस्तान की वायुसेना ने आधी रात को डूरन लाइन के पास अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार में हमले किए। हमले में 35 से ज्यादा अफगानी नागरिक मारे गए। मृतकों में 4 से 9 साल के बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। 100 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए। अक्टूबर 2025 से यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बच्चों और बुजुर्गों समेत आम नागरिकों को निशाना बनाया। 16 मार्च को पाकिस्तान ने काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसमें 269 आम नागरिकों की जान चली गई थी। पिछले साल के आखिर में कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच अस्थायी युद्ध विराम कराया और इस साल मार्च में ईद के समय 3 दिनों का युद्ध विराम हुआ, लेकिन हर बार पाकिस्तान की बदनीयती से संघर्ष दोबारा शुरू हो गया। इसी हफ्ते पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स के साथ बैठक की थी। इसके बाद ISPR के बयान में तालिबान पर भारत की मदद से आतंकवाद को बढ़ावा देने का मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि POJK में हाल ही में हुए पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव को जिंदा रखना चाहता है। उधर अफगानिस्तान जो 1893 में अंग्रेजों द्वारा तय की गई डूरन लाइन को कभी स्वीकार नहीं कर सका है, उसके लिए वहां सुरक्षा को मुस्तैद रखना बेहद जरूरी है। आज तक संवाददाता मीर फरीद तालिबान के नियंत्रण वाले इसी डूरन लाइन के इलाके में पहुंचे। वहां तालिबान किस तरह सुरक्षा का घेरा बनाए हुए है अफगानिस्तान के पक्तिका से, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।

0: आज तक की टीम पहुंची है ड्यूरेंट लाइन पे। ड्यूरेंट लाइन नाम आपने बहुत सुना होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ और हर कोई ड्यूरेंट लाइन की बात करता है। आज हम आपको दिखाएंगे ड्यूरेंट लाइन और इस वक्त हम हैं शमखनी जो कि ड्यूरेंट लाइन का ही इलाका है और मेरे आसपास जैसे आप देख रहे होंगे तालिबान के जो जवान हैं यहाँ पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जो कन्फ्लिक्ट हुआ है और जो लगातार एरियल स्ट्राइक्स हैं बॉर्डर पे, जो पाकिस्तानी आर्मी ने गोलीबारी की है, तालिबान ने उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है और काफ़ी टेंशन है। लेकिन तालिबान के जवान जो हैं जिसको आप कहेंगे लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी कि तैयार हैं अगर कोई भी एग्रेशन होता है उसका जवाब देने को। लेकिन बात हम फिर से करेंगे ड्यूरेंट लाइन की और आपको इन दृश्यों के साथ रखेंगे। पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है लेकिन तालिबान सरकार जो है इस लाइन को नहीं मानती। हालात जो हैं अभी भी एज पे हैं, तालिबान के जो जवान हैं पूरी नज़र बनाए हुए हैं, जो भी उनकी पोजीशनिंग है और ज़्यादा जो है उसको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। जैसे मैंने कहा कि अफगान जो जवान हैं उनको लड़ने के लिए दूसरा बहाना नहीं चाहिए, यही वो सीख के पले बड़े हैं और यही बात वो पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि हम जो हैं पैदा ही हुए हैं लड़ाई के लिए और वॉर मशीन्स हैं। तो वो भी एक चीज़ है अगर आप इस पूरे जो बैलेंस है इसमें, जहां साफ तौर पे एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान के पास है लेकिन जो गुरीला वॉर टेक्टिक है, जो लड़ने की जो क्षमता है, जो एक अनएंडिंग जो एग्जॉस्ट ना होने वाली क्षमता है, वो तालिबान और अफगानिस्तान के सोल्जर्स के पास है। छापेमारी उनका जो है स्पेशलिटी है और वो पाकिस्तान जो है बखूबी जानता है। तो साफ तौर पर ये जो मुद्दा है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसका हल होना अभी दिख नहीं रहा। जहां फ्रेजाइल सीज फायर चलता है वहीं पूरी जो है आशंका है कि दोबारा फ्लेयर अप हो सकता है किसी मुद्दे पे और मेरे पीछे जो ड्यूरेंट लाइन है ये फिर से जो है हॉट हो सकती है। तो साफ तौर पे फिर एक बार आपको दिखाएंगे ये जो यहाँ से ही तालिबान की पोजीशनिंग जो है शुरू होती है। मल्टी टेयर उन्होंने जो है यहाँ सिक्योरिटी अपनी लगाई हुई है, उनकी गाड़ियां हैं और चप्पे चप्पे पे जो है उन्होंने नजर रखी हुई है। ये मैसेज साफ है कि हम यहां से कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने हमसे छेड़ा तो फिर हम जो है कोई लिहाज भी नहीं देखेंगे। मीर फरीद, ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान, आज तक।
1: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।
2: श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है। और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है, पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है। विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
3: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
4: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
3: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
4: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
5: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं। अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
3: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञान दास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञान दास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
6: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था कहा था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
3: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
7: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
2: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
3: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
8: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए, सजा मिलना चाहिए, ये मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं।
3: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
9: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
3: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
10: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुम्बद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
3: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
11: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी

0: हम माफ कर देंगे। अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है, रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
2: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
2: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
3: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
4: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को

0: मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो आईडी निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके वीआईपी पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को वीआईपी पास जारी करने वाली आईडी दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: हम पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांगे कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी। नाला बन, हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थयात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। सियानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
3: ये सियाना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वाश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है सियाना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वाश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सियाना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी सियाना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी सियाना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
3: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गई जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
4: लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है तो जलस्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहें।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पक्षियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है। और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है। विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं की बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, कहा था उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो उसके पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्री राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए, यह मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहां आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है, लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापिस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
7: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व के पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
7: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
12: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
0: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

0: राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मॉनसूनी बारिश जारी अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मॉनसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मॉनसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: हम पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांगे कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी। नाला बन, हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। स्यानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
3: ये स्याना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वाश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है स्याना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वाश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। स्याना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी स्याना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी स्याना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
3: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गई जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
4: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है तो जलस्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहे।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पक्षियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुपुर्द खाक हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है कि जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है।
0: युद्ध से पहले खामिनेई के खिलाफ जो गुस्सा ईरान की सड़कों पर दिख रहा था, आज खामिनेई की विदाई के बाद ईरान की तस्वीरें बदली हुई हैं। लोगों की आंखें नम हैं। वहीं अमेरिका के खिलाफ जमकर गुस्सा नजर आ रहा है। खामिनई को सुपुर्दे खाक किए जाने का कार्यक्रम करीब हफ्ते भर चला। इस दौरान सहानुभूति की लहर दिखी। शोक के इस कार्यक्रम का आयोजन इस्लामी निजाम की ओर से किया गया और इस वजह से वहां डेथ टू ईरान और डेथ टू ट्रंप के नारे भी लगे। ट्रंप का पुतला भी जलाया गया। इस गम और गुस्से के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के तय हुए रास्ते से ही जहाज गुजर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। वहीं ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की कार्ड खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है, विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की कार्ड ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आई। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की कार्ड हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञान दास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञान दास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था कहा था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्री राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए, सजा मिलना चाहिए ये मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है, लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
7: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं

0: गया।
1: अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर,
0: उनको यही बुरा लगता है।
2: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चहावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
1: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
3: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
2: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
4: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

0: राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने व्हील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। व्हील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: पानी देख रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांग है कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी।
3: नाला बन,
2: हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर तक बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। स्यानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
4: ये स्याना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है स्याना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। स्याना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी स्याना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी स्याना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
4: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोवेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गईं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
3: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका जिला पंचायत NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहे।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पक्षियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की कार्ड खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है, विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की गांठ ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आई। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की SIT रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की कार्ड हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के इफ्तार के समय था क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराया, नमाज पढ़वाई, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्री राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए, सजा मिलना चाहिए, ये मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है, लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
7: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
7: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
12: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
0: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

0: राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: हम पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांगे कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: ये तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी। नाला हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। स्यानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
3: ये स्याना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वाश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है स्याना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वाश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। स्याना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी स्याना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी स्याना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
3: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गई जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
4: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहें।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पक्षियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुपुर्द खाक हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है कि जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है।
0: युद्ध से पहले खामिनेई के खिलाफ जो गुस्सा ईरान की सड़कों पर दिख रहा था, आज खामिनेई की विदाई के बाद ईरान की तस्वीरें बदली हुई हैं। लोगों की आंखें नम हैं। वहीं अमेरिका के खिलाफ जमकर गुस्सा नजर आ रहा है। खामेनेई को सुपुर्दे खाक किए जाने का कार्यक्रम करीब हफ्ते भर चला। इस दौरान सहानुभूति की लहर दिखी। शोक के इस कार्यक्रम का आयोजन इस्लामी निजाम की ओर से किया गया और इस वजह से वहां डेथ टू ईरान और डेथ टू ट्रंप के नारे भी लगे। ट्रंप का पुतला भी जलाया गया। इस गम और गुस्से के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के तय हुए रास्ते से ही जहाज गुजर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। वहीं ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है, विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के इफ्तार के समय था, क्या था उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराया, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्री राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए, यह मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहां आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है, लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
7: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
7: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
12: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

0: कपूर अयोध्या आज तक।
1: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

0: राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें। उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार। यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक। नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर। बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी। मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम। सिक्किम में सैलाब का संकट। तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है। बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ। तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा

0: में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून। क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: पानी देख रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांग है कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी।
3: नाला बना,
2: हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। सियानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
4: ये सियाना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहे देखे कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है सियाना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सियाना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी सियाना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी सियाना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
4: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
3: लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है, तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहे।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पंखियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का। खामेनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर। तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है। और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है, पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है। विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञान दास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञान दास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था कहा था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए, सजा मिलना चाहिए, ये मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है, लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुम्बद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापिस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
7: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
7: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
12: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
0: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

0: राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी पे उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: हम पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांगे कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: ये तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी।
3: नाला बन,
2: हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थयात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। स्यानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
4: ये स्याना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वाश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है स्याना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वाश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। स्याना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी स्याना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी स्याना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
4: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोवेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गई जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
3: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका जिला पंचायत NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहे।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पक्षियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुपुर्द खाक हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है कि जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है।
0: युद्ध से पहले खामिनेई के खिलाफ जो गुस्सा ईरान की सड़कों पर दिख रहा था, आज खामिनेई की विदाई के बाद ईरान की तस्वीरें बदली हुई हैं। लोगों की आंखें नम हैं। वहीं अमेरिका के खिलाफ जमकर गुस्सा नजर आ रहा है। खामेनेई को सुपुर्दे खाक किए जाने का कार्यक्रम करीब हफ्ते भर चला। इस दौरान सहानुभूति की लहर दिखी। शोक के इस कार्यक्रम का आयोजन इस्लामी निजाम की ओर से किया गया और इस वजह से वहां डेथ टू ईरान और डेथ टू ट्रंप के नारे भी लगे। ट्रंप का पुतला भी जलाया गया। इस गम और गुस्से के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के तय हुए रास्ते से ही जहाज गुजर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। वहीं ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है। और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है, विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञान दास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञान दास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, क्या था उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराया, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो उसके पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्री राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए, यह मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहां आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है, लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
12: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
7: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
13: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
0: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जाए।

0: करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: पानी देख रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांग है कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने।

0: नदी नाला बना
1: हमारी
0: सके।
1: समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
2: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। सियानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है, तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
3: ये सियाना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहे देखे कि अगर जूम हो सकता है, तो ये वो स्थान है सियाना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सियाना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
2: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी सियाना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी सियाना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
3: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है, यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स, और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी, वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
2: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है, और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
4: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है, और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है, तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहें।
2: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पंखियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है, विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के इफ्तार के समय था, क्या था उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराया, नमाज पढ़वाई, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो उसके पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्री राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए, यह मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहां आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है, लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
12: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
7: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
13: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
0: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

0: राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेंद्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: आप पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांग है कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी।
3: नाला बन,
2: हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थयात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। सियानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
4: ये सियाना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है सियाना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सियाना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी सियाना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी सियाना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
4: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गईं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
3: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका जिला पंचायत NH PWD सभी को निश्चित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहे।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पक्षियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुपुर्द खाक हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है कि जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है।
0: युद्ध से पहले खामिनेई के खिलाफ जो गुस्सा ईरान की सड़कों पर दिख रहा था, आज खामिनेई की विदाई के बाद ईरान की तस्वीरें बदली हुई हैं। लोगों की आंखें नम हैं। वहीं अमेरिका के खिलाफ जमकर गुस्सा नजर आ रहा है। खामेनेई को सुपुर्दे खाक किए जाने का कार्यक्रम करीब हफ्ते भर चला। इस दौरान सहानुभूति की लहर दिखी। शो के इस कार्यक्रम का आयोजन इस्लामी निजाम की ओर से किया गया और इस वजह से वहां डेथ टू ईरान और डेथ टू ट्रंप के नारे भी लगे। ट्रंप का पुतला भी जलाया गया। इस गम और गुस्से के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के तय हुए रास्ते से ही जहाज गुजर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। वहीं ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब, हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है। और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए, क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है, विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आई। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: इट डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, कहा था उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराया, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की गांठ ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आई। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है। और
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल, मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए, सजा मिलना चाहिए, ये मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
7: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था,
2: जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
10: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है, रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
11: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
2: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
2: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
12: उनके लिए खतरा तो ये कि

0: ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
2: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

0: राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं।

0: ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है। बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ। तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने व्हील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। व्हील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून। क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: हम पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांगे कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी।
3: नाला बन,
2: हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा। आसमानी आफत का कहर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा। करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थयात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। सियानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है, तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
4: ये सियाना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वाश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है सियाना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वाश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सियाना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी सियाना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी सियाना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
4: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गईं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
3: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है, तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहें।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पक्षियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। बोले, पारिवारिक कारण से निर्णय, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे जाम किया। ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 40 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। खामनेई के सुपुर्द-ए-खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी लेकिन खत्म।